FM 102.103.6 MHz और मीडियम वेव 212.31 मीटर अर्थात 1413 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी कोटा बूंदी का चंबल चैनल है। आज गुरुवार है, शक संवत 1948 के वैशाख मास की 24वीं तिथि, तदनुसार 14 मई सन 2026। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 5:59 हो रहे हैं। हमारी आज की प्रसारण सभा आरंभ होती है।

0: ये आकाशवाणी कोटा बूंदी का चंबल चैनल है। प्रातः के 6 बजने को है। कुछ ही क्षणों में आप हमारे दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए खरीफ की 14 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार ने किसानों को उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए ये फैसला किया है।
2: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 2,60,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा इस पूरे फैसले से। और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन LMT।
1: श्री वैष्णव ने बताया कि सूरजमुखी के बीजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में 622 रुपए प्रति क्विंटल, कपास के लिए 557 रुपए और तिल के लिए 500 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। मंत्रिमंडल ने कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के लिए संवर्धन योजना को भी मंजूरी दी है। ये योजना भारत के कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी से देश के करोड़ों किसानों को उपज का उचित और लाभकारी मूल्य मिलेगा। श्री मोदी ने कहा कि अहमदाबाद धोलेरा सेमी हाई स्पीड डबल लाइन परियोजना देश की रेल विकास यात्रा के लिए महत्वपूर्ण पड़ाव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने

0: नई दिल्ली में बताया कि श्री मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे।
1: During the visit, यात्रा के दौरान दोनों नेता निवेश, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, संस्कृति और आपसी जनसंपर्क समेत विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाने के उपायों पर चर्चा करेंगे।
2: People to people connect.
0: ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की दो दिवसीय बैठक आज से नई दिल्ली में शुरू हो रही है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे। दूसरे दिन ब्रिक्स के सदस्य और सहयोगी देश ब्रिक्स एट 20 लचीलेपन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण विषय पर आधारित सत्र में हिस्सा लेंगे। इसके बाद वैश्विक शासन और बहुपक्षीय प्रणाली में सुधार पर सत्र आयोजित किया जाएगा। भारत इस वर्ष ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है। केंद्र सरकार ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के निदेशक प्रवीण सूद को एक वर्ष का सेवा विस्तार दे दिया है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के आधिकारिक आदेश के अनुसार मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने ये मंजूरी दी। श्री सूद का कार्यकाल 24 मई को समाप्त होना था। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में बारिश, आंधी और बिजली गिरने की घटनाओं में 43 से अधिक लोगों की मौत हो गई। सबसे अधिक 15 लोगों की जान भदोही जिले में गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को प्रभावित लोगों की हर संभव सहायता करने का निर्देश दिया है। असम सरकार 26 मई को विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक प्रस्तुत करेगी। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व सरमा ने कल अपने नए कार्यकाल की पहली मंत्रिमंडलीय बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में ये घोषणा की। विधानसभा का विशेष सत्र 21 से 26 मई तक चलेगा, जिसमें नव निर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी। पश्चिम बंगाल सरकार ने आलू, प्याज, फल, सब्जियों, तिलहन, अनाज और अन्य जरूरी उत्पादों को अन्य राज्यों में ले जाने पर लगे सभी प्रतिबंध हटा दिए हैं। ये प्रतिबंध पूर्ववर्ती तृणमूल कांग्रेस सरकार ने लगाए थे। इन प्रतिबंधों से आलू उत्पादक किसानों और अन्य संस्थाओं को भारी नुकसान हुआ था। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव से पहले राज्य के किसानों को प्रतिबंध हटाने का आश्वासन दिया था। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय आज नई दिल्ली में अल्पसंख्यक कल्याण विकसित भारत के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से समावेशी विकास विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करेगा। सम्मेलन भागीदारी से भाग्योदय लक्ष्य के तहत आयोजित किया जा रहा है। आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 6 विकेट से हरा दिया है। कोलकाता नाइट राइडर्स ने 20 ओवर में 4 विकेट पर 192 रन बनाए। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू ने 19 ओवर और 1 गेंद में 4 विकेट के नुकसान पर 194 रन बनाकर मैच जीत लिया। विराट कोहली ने 60 गेंद में नाबाद 105 रन बनाए। उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। टूर्नामेंट में आज शाम 7:30 बजे धर्मशाला में पंजाब किंग्स का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: FM 102 103.6 MHz, मीडियम वेव 212.3 मीटर अर्थात 1413 किलोहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल का प्रसारण। आइए प्रभात काल के इस पावन बेला में ईश्वर का स्मरण करें, लीन हो जाएं श्रद्धा और भक्ति में। भक्ति संगीत के कार्यक्रम अर्चना के माध्यम से

हम तो हैं दीन, तेरी भक्ति में लीन, शरण ले लो, तरस दे दो, कर लो अपने अधीन।

भक्ति भक्ति सब कोई कहे, भक्ति न जाने भेद, पूर्ण भक्ति जब मिले, कृपा करे गुरुदेव।

प्रभु जी कर दो नैया पार, विनती करती बारंबार, आकर आपके द्वार पर लगाई है गुहार, लेकर अपनी शरण में कृपा करो, दया करो, दुख हरो, आपकी लीला है अपरंपार।

तू सुमिरे सुमिरन कर राधे राधे, तेरे कष्ट मिट जाएंगे। राधा के पीछे श्याम स्वयं तेरे द्वार पे दौड़े आएंगे।

0: दोस्तों की राजधानी हो गई।
1: जुबा पर हो हरि का नाम, सुमिरन कर ले ध्यान, निर्मल मन से, शुद्ध हृदय से, प्रभु आपको शत शत प्रणाम।

आज की अर्चना को सुशोभित करने वाले पुष्प स्वर थे हरिओम शरण, अनुराधा पौड़वाल, अनूप जलोटा और महेंद्र कपूर के। अंधेरा नहीं होता उनके जीवन में जिनका सवेरा प्रभु स्मरण से होता है। इसी के साथ भक्ति संगीत के कार्यक्रम अर्चना को देते हैं विराम।

अभी आप भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना सुन रहे थे। FM 102.103.6 MHz, मीडियम वेव 212.31 मीटर अर्थात 1413 किलो हर्ट्स पर आप बने हुए हैं आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल के साथ। लीजिए प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस गान, मुख्य स्वर अनुराधा पौडवाल का, संगीत निर्देशन सतीश भाटिया का।

सखियां सीता जी को गौरी पूजन के लिए पुष्प वाटिका में ले आईं, जहां श्री राम को सीता के प्रथम दर्शन हुए। सीता ने भी श्री राम के श्यामल मनोहरी रूप को देखा कि तभी दोनों भाई वाटिका में उनकी आंखों से ओझल हो गए। वो चकित होकर चारों ओर देखने लगीं

राजकुमार क्षण भर में ही कहां लोप हो गए। उसी समय दोनों भाई लता कुंज में से ऐसे प्रकट हुए जैसे बादलों का आवरण हटाकर चांद निकल आता है। दोनों भाइयों के शरीर की आभा नीले और पीले कमल की सी है। माथे पर तिलक और पसीने की बूंदें शोभा पा रही हैं। कानों में सुंदर आभूषण, टेढ़ी भ्रिगुटी और घूंघर वाले बाल, रत्नारी आंखों और मुस्कान की शोभा मन को सहज ही मोह लेती है। ये मनोहारी दृश्य देखकर सखियां अपने आप को भूल गईं। तभी एक सखी ने सीता जी से ठिठोली की, पार्वती का ध्यान फिर कर लेना, इस समय राजकुमार को ही जी भर कर क्यों नहीं देख लेती। सिर से पैर तक श्री राम का सुंदर रूप देखकर और फिर पिता का प्रण याद करके सीता जी को अवसाद हो आया। शिव जी के धनुष की कठोरता स्मरण कर हृदय में श्री राम की मूर्ति बसाए बिसूरती सीता सखियों समेत पार्वती पूजन को चल पड़ी।

0: अभी आप श्री रामचरितमानस का संगीतमय प्रसारण सुन रहे थे। मुख्य स्वर था अनुराधा पौडवाल का, संगीत निर्देशन था सतीश भाटिया का। FM 102.3.6 MHz, मीडियम वेव 212.31 मीटर अर्थात 1413 किलोहर्ट्ज पर यह है आकाशवाणी कोटा बूंदी का चंबल चैनल। लीजिए सुनिए चिंतन के अंतर्गत धन एक शक्ति है। वार्ताकार हैं डॉक्टर सरोजनी कुलश्रेष्ठ।
1: मनुष्य मात्र के लिए धन का अत्यधिक महत्व है, क्यों न हो, आखिर जीवन यापन तो उसी से होता है। उसके बिना तो साधुओं और संतों का भी जीवन नहीं चल सकता, भले ही वो दान अथवा भिक्षा के रूप में प्राप्त होता हो। व्यापारीगण शुभ लाभ लिखकर लक्ष्मी जी का पूजन करते हैं, उद्देश्य होता है कि उन्हें धन की प्राप्ति होती रहे। उनकी इस इच्छा आकांक्षा की कोई सीमा नहीं रहती, वे ही क्यों नौकरी

करने वाले तथा मेहनत मजदूरी करने वाले खेत के किसान और सेना के जवान सभी इस धन रूपी लक्ष्मी की उपासना में लगे रहते हैं। परिश्रम करके पैसा कमाना और ईमानदारी से कमाना ये धन संग्रह की पहली शर्त है, किंतु उसके लिए आपक होना अर्थात अतिशय लोभ धन संग्रह के लिए कभी अच्छा नहीं होता। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि धन एक बहुत बड़ी शक्ति है, उससे मनुष्य शक्तिवान बनता है, सर्वत्र प्रतिष्ठित होता है, अतः इसको ईमानदारी से कमाना और जरूरी बातों पर ही खर्च करना चाहिए। अपव्यय से एक दिन पूरा कोष खाली हो सकता है। इस तरह के उदाहरण हम दिन रात दिन प्रतिदिन देखते ही रहते हैं। इसलिए बाजार से जब कोई वस्तु खरीदने को मन ललचाने लगे तो अपने से तर्क करो, मन से पूछो कि क्या उसके बिना हमारा काम नहीं चल सकता, यह वस्तु अभी खरीदना जरूरी है क्या। लक्ष्मी को चंचला कहा गया है, वो कभी एक ही व्यक्ति के पास

0: वस्तु खरीदने को मन ललचाने लगे तो अपने से तर्क करो, मन से पूछो कि क्या उसके बिना हमारा काम नहीं चल सकता, यह वस्तु अभी खरीदना जरूरी है क्या। लक्ष्मी को चंचला कहा गया है, वो कभी एक ही व्यक्ति के पास अधिक समय तक नहीं रहती, इसलिए अच्छा ये होगा कि मानसिक रूप से उसे अपना नितांत अपना मत समझो। तुम तो ये समझो कि तुम अपने पास के संपूर्ण धन के ट्रस्टी हो, उस ट्रस्ट में से नियमानुसार बजट बनाकर खर्च करो, फिर अपने आप से उसका हिसाब मांगो जैसे कि तुम अपने अकाउंटेंट से मांगते हो, बस फिर तो सारा काम ही बन जाएगा। लिप्तता नहीं रहेगी तो हाय हाय भी नहीं रहेगी, खर्च अपने आप ही सिमट जाएगा। अधिक कमाओ और सोच समझ कर कम खर्च करो, यही तो है धन की पूजा, यही है वास्तविक लक्ष्मी पूजा। शुभ लाभ लिखने से और स्वास्थ्य का चिन्ह बना देने से लक्ष्मी जी प्रसन्न नहीं होती, वे उसी व्यक्ति को शक्तिवान बनाती हैं जिसमें उनको संभालने की क्षमता हो। आखिर धन मनुष्य के उपयोग के लिए ही तो है, बड़ी चीज तो मनुष्य और मानवता है, मानवता धन के लिए तो नहीं है ना। जो लोग कहते हैं कि धन ही सब कुछ है वे झूठ बोलते हैं। कार्ल मार्क्स जैसे फिर फिरे लोग सबके सामने डंका बजाकर ऐलान करते हैं कि धन मनुष्य की प्रथम आवश्यकता है। हम भी कह सकते हैं कि हाँ है, पर तब मनुष्यता कहाँ रहेगी। उसी सिद्धांत का तो असर है कि एन केन प्रकारेण आज कमाने की केवल कमाने की होड़ लग रही है, उसमें से कितना अपने काम आता है अर्थात कितने का उपभोग किया जा सकता है ये नहीं सोचा जाता, बस संग्रह करने की आपक है। एक साड़ी या एक जोड़ी जूता अथवा एक सूट अगर नहीं खरीदा जाएगा तो साड़ियों की जूतों की और सूटों की कतार में कुछ विशेष कमी तो नहीं आ जाएगी ना। उतना धन यदि किसी भूखे को भोजन कराने में या एक दुशाला देकर उसे सर्दी से बचाने में भी तो काम आ सकता है। जिस देश में गरीबी और अमीरी ये दो ही रूप दिखाई पड़ते हैं उस देश में अमीरों की मानसिकता अब बदलनी चाहिए। जितना खर्च वे करते हैं, जितना वे व्यर्थी फेंक देते हैं, उतने में कई गरीब परिवार कम से कम एक दिन का भोजन तो पा ही सकते हैं। इसी प्रकार सभी अमीर भाई ऐसा सोचें तो गरीबी रह ही नहीं पाएगी। हमारे दान का भी अजीब तरीका है, अमीरी दिखाने के लिए अथवा अपनी नाक ऊंची रखने के लिए अनाप शनाप दान दिया जाता है, भले ही उसका उपयोग ठीक हो रहा है या नहीं। इसीलिए अपने को न्यासी या धन का ट्रस्टी समझना सबसे अच्छा है। धन एक प्यास है अमृत तृष्णा, जिसका होता है अंत नहीं, जितना भी पाया जाता है होता वो कभी अनंत नहीं। राष्ट्र की सेवा धन से भी होती है और वो तभी होगी जब धन शक्ति का ठीक तरह उपयोग करना हम जान लेंगे। धन कमाना पुरुषार्थ है परंतु धन लिप्सा अच्छी बात नहीं, धन लिप्सा बुरे साधन से भी कमाई करने को बाध्य करती है, अतः इसे तो छोड़ ही देना चाहिए। धनवान बनिए, उसका सदुपयोग कीजिए, भोग कीजिए, दान दीजिए, इसी में धन की सार्थकता है। आठवें स्कंद में श्रीमद् भागवत महापुराण में लिखा है जो मनुष्य अपने धन को कुछ धर्म के लिए, कुछ यश के लिए, कुछ धन की अभिवृद्धि के लिए और कुछ अपने स्वजनों के लिए खर्च करता है वही इस लोक और परलोक दोनों में सुख पाता है।
1: धन एक शक्ति है, चिंतन के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे। वार्ताकार थी डॉक्टर सरोजनी कुलश्रेष्ठ, संयोजन था हिमांशु नामा का। समय है कार्यक्रम विवरण का, लीजिए आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी हम आपको दे दें। सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो डॉक्टर सुबह 8:15 पर आप सुनेंगे, विषय होगा मुंह का कैंसर, समय पर दांतों की जांच से बच सकती है जान, और इस विषय के लिए जानकारी देंगे डॉक्टर धर्मेंद्र माहेश्वरी। प्रातःकालीन सूचनाओं का कार्यक्रम नमस्कार कोटा सुबह 7:00 आप सुनेंगे। कार्यक्रम घर आंगन सुबह 9:30 पर सुनिएगा, इसके अंतर्गत चर्चा होगी वट सावित्री व्रत और मित्र बनाएं संभल कर सोशल मीडिया पर विषयों पर। स्थल रिकॉर्डिंग पर आधारित विषय होगा शादियों में कैसे रोकें दिखावा और फिजूल खर्च।

जानकारी में आप जानेंगे मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के बारे में। सुबह 7:30 पर फिल्म संगीत में आप सुनेंगे युगल गीत। सुबह 9:10 पर सुनिएगा फिल्म संगीत। NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग दोपहर 12:00 आप सुनेंगे। शाम 4:00 सुनिएगा संदेश टू सोल्जर हमारे दिल्ली केंद्र से। शाम 5:00 हमारे युवा श्रोता सुनेंगे कार्यक्रम युववाणी। इसके अंतर्गत आज का संवाद सफलता निरंतर प्रयासों का परिणाम है विषय पर। प्रेरक प्रसंग में पंडित गोविंद वल्लभ पंत के जीवन से आप सुनेंगे। नॉलेज कॉर्नर में मेरा गांव मेरी धरोहर कार्यक्रम और रोजगार सूचनाएं, खेल गतिविधियां तो होंगी ही। कार्यक्रम चौपाल 7:00 होगा। इसके अंतर्गत चर्चा होगी मृदा परीक्षण की आवश्यकता विषय पर। प्रगतिशील कृषक के अनुभव श्री सुरेंद्र चौधरी बताएंगे। जानकारी में ई नाम के विषय में आप जानेंगे। राजस्थानी लोक संगीत माटी के स्वर 7:30 पर होगा। फिल्म संगीत का समय रहेगा 6:05 का। चित्रपट संगीत आप सुनेंगे 8:00 और 9:00 बातों बातों में फिल्म संगीत होगा। समाचार और विविध भारती के कार्यक्रम यथावत रहेंगे। ये थी आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। FM 102 103.6 MHz, मीडियम वेव 212.31 मीटर अर्थात 1413 किलोहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल का प्रसारण। प्रातः के 6:55 होने को है। कुछ ही क्षणों में आप हमारे दिल्ली केंद्र से संस्कृत में समाचार सुनेंगे।

FM 102.103 MHz, मीडियम वेव 212.31 मीटर अर्थात 1413 किलोहर्ट्ज पर गया अंधेरा, आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल के साथ हुआ है आपका नूतन सवेरा। जहाँ किया जाए कुछ विचार हो, जिम्मेदारियों की बात या जानकारियों की, गीत संगीत की छटा बिखेरी जाए, हम लेकर आ गए हैं विविधताओं से भरा आपका मनचाहा कार्यक्रम नमस्कार कोटा।

स्वीकारें वंदन अभिनंदन, शशि सोनी की आवाज है साथ। मत बैठे रखकर हाथों पर हाथ, बीत गई है तारों वाली रात। इस नव दिवस में आइए करते हैं कुछ नई बात। मौन का महत्व केवल शब्दों की अनुपस्थिति से परे है। यह आंतरिक शांति, एकाग्रता और आत्म जागरूकता को बढ़ावा देता है, जिससे व्यक्ति को अपने विचारों और भावनाओं पर अधिक अच्छी तरीके से नियंत्रण मिलता है। मौन रहने से सकारात्मक सोच को बढ़ावा दिया जा सकता है। इससे मन शांत रहता है, जिससे रचनात्मकता बढ़ती है। मौन एक साधना है, तप है। मौन ऊर्जा को संचित करता है। मौन से विचारों और शब्दों पर नियंत्रण रखने में हम परिपक्व हो जाते हैं, जिसके कारण किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा से मन दुखी नहीं होता। मौन द्वारा क्रोध पर भी नियंत्रण पाया जा सकता है, वाणी दोष से भी बचा जा सकता है। मौन का अर्थ है संयम के साथ धीरे धीरे इंद्रियों और मन की कार्य पद्धति को संयमित करना,

कबीरदास जी कहते हैं, अति का भला न बोलना, अति की भली न चुप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। इस दोहे में यह संदेश मिलता है कि जरूरत के मुताबिक ही चीजें ठीक रहती है, किसी भी चीज का अधिक होना हानिप्रद है। यानी बहुत ज्यादा बोलना सही नहीं है, बहुत ज्यादा चुप रहना भी ठीक नहीं है, न बहुत ज्यादा बारिश अच्छी है, न बहुत ज्यादा धूप। और धूप तो हम देख ही रहे हैं कि आग बरसा रही है, गर्मियों का मौसम है और गर्मी अपने पूरे तेवर हमें दिखा रही है। जी हाँ, और इन गर्मियों के दिनों में हमें बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना होता है। गर्मियों के दिनों में बच्चों, बुजुर्गों और पालतू जानवरों का विशेष ध्यान रखना होता है। हम बाहर जब जाते हैं वाहन में बैठकर, तो कभी भी बंद वाहन में इन्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। बाहर का तापमान सामान्य होने पर भी बंद कार के अंदर का तापमान कुछ ही मिनटों में खतरनाक स्तर पर 40 से 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, जिससे हीट स्ट्रोक या दम घुटने से जान का खतरा हो सकता है। गर्मियों में अपने प्रियजनों को सुरक्षित रखना आवश्यक है और इसके लिए सावधानियां बरतना आवश्यक है। अगर आपको किसी काम से बाहर जाना है तो बच्चों या पालतू जानवरों को भी अपने साथ बाहर निकालें। भले ही आप कुछ मिनटों के लिए जा रहे हैं, ज्यादा दूर नहीं जा रहे हैं, फिर भी उन्हें बाहर निकालें, गाड़ी के अंदर बंद न अकेला ना छोड़ें। हमेशा अपनी गाड़ी को छाया में पार्क करें और खिड़कियों को हल्का सा खुला छोड़ दें, ताकि हवा का जो वेंटिलेशन है वो बना रहे। सफर के दौरान हमेशा पर्याप्त मात्रा में पानी और ORS साथ रखें, ताकि शरीर में पानी की कमी ना हो। तो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर हम बहुत सारी बड़ी चीजों को होने से रोक सकते हैं।

गर्मी की छुट्टियां और बच्चों के लिए मौज मस्ती, जी हाँ, लेकिन माता पिता के लिए भी बच्चों को व्यस्त रखने, सुरक्षित रखने और रचनात्मक गतिविधियों में लगाने की बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है। माता पिता को पहले से ही अपनी

कार्य योजना तैयार रखनी चाहिए ताकि बच्चे स्क्रीन के सामने कम और रचनात्मक कार्यों में अपना समय ज्यादा बिताएं, जैसे कि कला, शिल्प, बागवानी, नई कौशल सीखना और साथ ही डिहाइड्रेशन से बचने के लिए तरल पदार्थों का सेवन सुनिश्चित कर लें क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है। छुट्टियों की शुरुआत में ही बच्चों की रुचियों के अनुसार इंडोर और आउटडोर गतिविधियों की एक सूची बना लें ताकि वो बोर ना हो। पढ़ाई और मस्ती के बीच संतुलन बनाकर रखना भी आवश्यक है। हल्का फुल्का शेड्यूल रखें ताकि वो अपना जो पढ़ाई है उसे भूले नहीं, तो थोड़ा थोड़ा, प्रतिदिन ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ा थोड़ा पढ़ाते रहें। धूप से बचाव के लिए सनस्क्रीन या टोपी, कॉटन के जो कपड़े हैं इनका उपयोग करें। नींबू पानी, नारियल पानी, तरल पदार्थ बच्चों को देते रहें। पेंटिंग, कहानी, लेखन या कोई भी नया खेल उन्हें सिखाएं, जैसे कि शतरंज है। बच्चों के साथ बोर्ड गेम खेलें, फिल्में देखें, साथ में खाना खाएं। बच्चों को बगीचे में, पार्क में रचनात्मक शौक में व्यस्त रखें। उन्हें बाग बगीचों के बारे में, पेड़ पौधों के बारे में बताएं। माता पिता को इस समय का उपयोग बच्चों के साथ गहरे संबंध बनाने, उन्हें नई चीजें सिखाने के लिए करना चाहिए, ना कि केवल उन्हें व्यस्त रखने में, मतलब अपने तनाव को कम करने के लिए ही नहीं, उनके बारे में भी सोचना चाहिए। बच्चों की देखभाल करने वाले प्राथमिक अभिभावकों के लिए यह समय एक अलग तरह से महसूस होता है। माता पिता के पास अचानक से बहुत सारा काम आ जाता है जिसे संभालना, प्रबंधित करना, बच्चों की निगरानी करना, बहुत सारे काम होते हैं प्रतिदिन के कार्यों के अतिरिक्त। क्योंकि बच्चे जब स्कूल जाते हैं, 6-7 घंटे स्कूल में रहते हैं, तब माता पिता अपने कार्य आसानी से और जल्दी से निपटा लेते हैं, लेकिन जब बच्चे घर में होते हैं तो काम स्वाभाविक बात है कि बढ़ ही जाते हैं। जब बच्चे संभावनाएं देखते हैं वहीं माता पिता पर दबाव महसूस होता है, जो इस बात से उपजा होता है कि वे अपने बच्चों को इस समय में सुरक्षित, व्यस्त और किस तरह से खुश रख सकते हैं। तो ये एक चुनौती लेकर के छुट्टियां आती हैं। बच्चों का विकास एक ऐसे नियमित कार्यक्रम में सबसे अच्छा होता है जो बहुत सख्त न हो लेकिन इतना हो कि वे उसमें व्यस्त रहें। बच्चों की छुट्टियां आ गई हैं और छुट्टियों का मतलब मस्ती से है, अर्थात बच्चों के लिए ढेर सारी मस्ती लेकर छुट्टियां आती हैं। लेकिन बच्चों के लिए आजकल छुट्टियों में वो मस्ती वाली बात नहीं रही जो पहले कभी हुआ करती थी। आज उनकी यह मस्ती यांत्रिक होकर रह गई है क्योंकि मोबाइल क्रांति ने बच्चों की मस्ती को छीन लिया है। उसको इससे फुर्सत ही नहीं है, लेकिन इसमें सिर्फ उनका ही तो कसूर नहीं है ना। जी हाँ, किसका कसूर है वो आप भी समझ रहे हैं। चेतावनी भरे लहजे में बच्चों को इन डिवाइस से दूर या कम प्रयोग करने के बारे में कहा जा सकता है क्योंकि ये आवश्यक भी है। लेकिन अभी तक इस प्रचलन में कोई कमी नहीं आकी गई है। दिनों दिन इसका प्रयोग बढ़ता जा रहा है, इसका असर बच्चों की सेहत पर भी पड़ रहा है, इसलिए इस ओर ध्यान देना अधिक आवश्यक हो गया है। इससे जहां बच्चों की सेहत कमजोर हो रही है, वहीं व्यवहारिक ज्ञान से भी वो पिछड़ते जा रहे हैं। उसमें सामाजिक बोध गौण होता जा रहा है। देखने में आता है अब उनमें परिवार के साथ मिलजुल कर रहने की भावना नहीं रही, जो एक पुराने समय में जो भावना थी, परिवार ही सबसे अहम होता था। आजकल बच्चों को किसी से कोई लेना देना ही नहीं होता है, तो किसी जमाने में विशेष महत्व होता था, लेकिन आज वो बदलाव आया है। तो इन गर्मी की छुट्टियों में बच्चों को बहुत कुछ सिखाना आवश्यक है। अपने बच्चों के साथ कम से कम 2 बार खाना जरूर खाएं आप। उन्हें किसानों के महत्व और उनके कठिन परिश्रम के बारे में भी बताएं। उन्हें बताएं कि अपना जो खाना है वो बेकार नहीं करना है क्योंकि कितनी परिश्रम से उसे पाया जाता है। खाने के बाद उन्हें अपनी प्लेट खुद धोने को कह सकते हैं क्योंकि छुट्टियां हैं, बच्चे भी फ्री हैं, तो उन्हें अपना काम करने की, आत्मनिर्भर रहने की आदत बनेगी। इस तरह से मेहनत की कीमत भी समझेंगे बच्चे और समय की कीमत भी समझेंगे। उन्हें अपने साथ खाना बनाने में भी मदद करने दें ताकि वो समझें कि खाना कैसे बनाते हैं और वो सीखें भी, क्योंकि आज के समय में ये भी बहुत जरूरी हो गया है। पड़ोसियों के बारे में भी उन्हें जानकारी दें। दादा दादी या नाना नानी के घर जाएं, उन्हें बच्चों के साथ घुलने मिलने दें। उनका प्यार और भावनात्मक सहारा आपके बच्चों के लिए बहुत ही जरूरी है। उन्हें अपने काम करने की जगह पर भी लेकर जाएं और वहां के बारे में भी उन्हें बताएं कि कितनी मेहनत करने से घर में पैसा आता है और पैसे का क्या महत्व है।
बच्चों को किचन गार्डन बनाने के लिए, बीज बोने के लिए प्रेरित करें। छुट्टियों में

समय होता है तो पौधे कैसे लगाए जाते हैं इसके बारे में भी उन्हें बताएं। पेड़ पौधों की जानकारी भी होना बच्चों के विकास के लिए बहुत ही आवश्यक है, और बचपन में अपने परिवार और इतिहास के बारे में भी बच्चों को बताना चाहिए। बाहर लेकर जब जाएं तो उन्हें खेलने दें, चोट लगने दें, थोड़ा गंदा भी होने दें। कभी कभार गिरना, दर्द सहना उनके लिए अच्छा है, क्योंकि सिर्फ आरामदायक जिंदगी ही बच्चों को आलसी बना देगी। और आजकल के बच्चे आलसी हो भी रहे हैं तो उन्हें थोड़ा बाहर निकालना, घर से बाहर लेकर जाना और बाहर की चीजें सिखाना भी आवश्यक है। हाँ, कुछ लोकगीत भी, चूंकि हर प्रांत के अपने अपने लोकगीत होते हैं जिनके बारे में आजकल के बच्चे बिल्कुल कुछ भी नहीं जानते, तो उनके बारे में भी उन्हें सुनाना चाहिए, बताना चाहिए, तभी तो वो जानेंगे कि हमारे जो लोकगीत हैं वो क्या हैं। बच्चों के लिए रंग बिरंगी तस्वीरों वाली कहानी की कुछ किताबें लेकर आएं, ताकि बच्चों का जो मन है उसे पढ़ने में लगे और वो देखने में भी उन्हें आकर्षित करे। अपने बच्चों की आंखों में देखें, ईश्वर को धन्यवाद दें कि उन्होंने इतना अच्छा तोहफा आपको दिया है। अब आने वाले कुछ सालों में वो नई ऊंचाइयों पर होंगे, लेकिन उसमें आपका जो मार्गदर्शन है वो बहुत ही आवश्यक है। तो अपना समय माता पिता होने के नाते बच्चों को देना बहुत ही आवश्यक है। और आज के समय में जो बच्चे हैं वो अपने आप में इतने व्यस्त रहते हैं, तो अपना समय बच्चों को जरूर दें।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नमस्कार कोटा, और लीजिए कुछ सूचनाएं आप तक पहुंचा देते हैं। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं व 12वीं की समकक्ष कक्षाओं की पूरक परीक्षाएं गुरुवार से शुरू हो रही हैं। 3 दिन तक चलेंगी। इन परीक्षाओं के लिए 167 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं।

वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय की ओर से वर्ष 2026 की प्री डीएल एड परीक्षा 20 मई को प्रदेश के 41 जिलों में आयोजित की जाएगी। कुछ तहसील मुख्यालयों पर भी परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षार्थियों के प्रवेश पत्र 14 मई से जारी किए जाएंगे, जिन्हें प्री डीएल एड पोर्टल से डाउनलोड किया जा सकेगा। परीक्षा दो पारियों में होंगी। पहली पारी सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दूसरी पारी दोपहर 2:30 से शाम 5:30 तक होगी। पहली पारी के लिए सुबह 7:30 से 8:30 तक और दूसरी पारी के लिए दोपहर 1 से 2 बजे तक ही परीक्षा केंद्र में प्रवेश मिलेगा। इसके बाद प्रवेश बंद कर दिया जाएगा। प्रवेश पत्र और मूल पहचान पत्र के बिना किसी परीक्षार्थी को केंद्र में प्रवेश नहीं मिलेगा। ड्रेस कोड का पालन करना अनिवार्य होगा।

दरा में बनाया जा रहा है रेलवे अंडरपास। 48 घंटे तक सड़क मार्ग का परिवहन डायवर्ट किया है। आज कोटा झालावाड़ मार्ग बंद रहेगा। कनवास या बारा होकर यात्रा करना होगा। यहां से आने वाले वाहनों को कराड़िया इंटरचेंज से बारा बपावर और खानपुर होते हुए झालावाड़ भेजा जाएगा, जो दिल्ली से सवाई माधोपुर से 8 लेन एक्सप्रेसवे पर आएंगे। कोटा से झालावाड़ जाने के लिए इन वाहनों को मोरूकला कनवास और धूलेट मार्ग से खानपुर झालावाड़ की ओर डायवर्ट किया गया है। रामगंज मंडी सुकेत मोड़क से दरा की ओर जाने के लिए इन वाहनों को मोड़क चेचट और भड़वाड़ा होकर कोटा की तरफ निकाला जाएगा। सांगोद बपावर से दरा जाने के लिए इन वाहनों को बपावर चौराहे से ही खानपुर झालावाड़ मार्ग की तरफ मोड़ा जाएगा। अनंतपुरा फोर लेन की हाईवे भारी वाहनों के लिए बंद रहेगा। स्थानीय लोगों की सुविधा के लिए कुछ रियायत दी गई है। यदि आपको मंडाना कसार या दरा मुख्य बाजार तक जाना है तो आप जा सकेंगे। बाजार के आगे रास्ता पूरी तरह ब्लॉक रहेगा। तो ये जो परिवर्तन किए गए हैं, इसका ध्यान रखते हुए ही अपना सफर जारी रखें।

बात करें मौसम की तो कोटा शहर में मौसम का मिजाज कुछ दिनों से दिनों दिन गर्म होता जा रहा है। लगातार दूसरे दिन बुधवार को तापमान 44 डिग्री से अधिक रहा, जिससे दिन के समय भीषण गर्मी से ऐसा लगा मानो गर्मी आसमान से आग बनकर बरस रही हो। प्रदेश में अधिकतर जिलों में इन दिनों गर्मी चरम पर है। कई जिलों में तापमान 44 से 48 डिग्री के बीच बना हुआ है और इसका असर हम कोटा में भी देख सकते हैं। गर्मी को देखते हुए स्कूलों में भी अवकाश घोषित कर दिया गया है। ग्रीष्मकालीन अवकाश पहले जहां 17 मई के बाद लगने वाले थे, अब 14 मई से ही लगा दिए गए हैं।

नए कोटा शहर में ये स्टेशन क्षेत्र में जहां हरियाली अधिक होने से सर्दी के समय में तापमान सामान्य से कम रहता है, वहां भी बुधवार को अधिकतम तापमान 44 डिग्री रहा जबकि न्यूनतम 24 डिग्री रहा। वहीं कोटा में एक दिन पहले जहां अधिकतम तापमान 44.7 डिग्री और न्यूनतम 28.3 डिग्री था, वहीं बुधवार को अधिकतम तापमान 44.8 डिग्री और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री रहा, जिससे दिन के साथ ही रात के समय भी मौसम में गर्माहट बनी रही।

लीजिए, सूर्योदय और सूर्यास्त का समय हम आपको बता दें, आज शाम 7:07 पर सूर्यास्त होगा और कल प्रातः 5:42 पर सूर्योदय होगा।

छत्रपति संभाजी राजे जाधव। शिवाजी राजे 14 मई 1657 से 11 मार्च 1689 तक इनका जीवन काल रहा। मराठा साम्राज्य के द्वितीय छत्रपति राजा, लेखक, विचारक और छत्रपति शिवाजी के उत्तराधिकारी थे। उन्होंने अपने जीवन काल में 121 युद्ध लड़े और सभी में विजय प्राप्त की। दक्षिण भारत में मुगलों के आक्रमणों को रोकने के लिए संभाजी की प्रमुख भूमिका के लिए वे प्रसिद्ध थे। संभाजी महाराज का जन्म 14 मई 1657 को पुरंदर के जिले में हुआ। वे महान शिवाजी और उनकी पत्नी, पहली पत्नी सईबाई के पुत्र थे। जब वे 2.5 साल के थे तब उनकी मां का निधन हो गया। मां की मृत्यु के बाद शंभू राजे का पालन पोषण उनकी दादी जीजाबाई ने किया। संभाजी राजे न केवल अपनी दादी के करीब थे बल्कि वे अपने दादा शाहजी महाराज के भी करीब थे। जीजाबाई ने अपने पुत्र शिवाजी की तरह ही पोते संभाजी में भी राष्ट्र प्रेम, धर्म प्रेम, हिंदवी स्वराज, देव देश धर्म और आदर्श जीवन मूल्यों को स्थापित किया। इसके अलावा उन्होंने गणित, तर्क, भूगोल, इतिहास, पुराण, रामायण, व्याकरण आदि का ज्ञान काशीराम शास्त्री से अर्जित किया। पिता शिवाजी ने उन्हें शारीरिक प्रशिक्षण दिया। उन्होंने अपने उम्र में केवल 14 साल में उन्होंने बदभूषण, नखशिख, नायिका भेद और 7 शतक, यह 3 संस्कृत ग्रंथ लिखे थे जो उनकी प्रखर विद्वता का परिचय है। शिवाजी महाराज के सबसे बड़े पुत्र होने के नाते संभाजी अपने पिता द्वारा हिंदवी स्वराज के निर्माण के लिए किए गए प्रयासों को देखते हुए बड़े हुए। मराठा साम्राज्य के राजकुमार के रूप में संभाजी ने 1 से अधिक अवसरों पर अपनी बहादुरी, सैन्य प्रतिभा साबित की। उन्होंने 16 साल की उम्र में रामनगर में अपना पहला युद्ध लड़ा और जीता और 1675-76 के दौरान उन्होंने गोवा और कर्नाटक में सफल अभियानों का नेतृत्व किया। शिवाजी महाराज की मृत्यु के 3 महीनों बाद संभाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ। छत्रपति शिवाजी ने उन्होंने कई प्रजा कल्याण के कार्य किए। सार्वजनिक मार्गों और जल निकास व्यवस्था का जीर्णोद्धार कराया, किसानों के ऊपर के कर को घटाया, प्रजा को निःशुल्क उपचार और औषधि उपलब्ध करवाए। अनेक जगह इन्होंने आक्रमण किए और उन्हें जीता भी। संभाजी महाराज ने मुगलों को भारत से पूरी तरह से उखाड़ फेंकने की योजना बनाई। इस योजना को और भी आगे तक ले गए और इसके अलावा छत्रपति संभाजी महाराज ने अपने अल्प जीवन काल में कुल 120 युद्ध लड़े, अजय रहे। उन्हें उन सभी युद्धों की जीत हासिल हुई और इतिहास में बहुत कम राजा हुए जिनको हराना असंभव था। संभाजी महाराज उन्हीं चुनिंदा राजाओं में से एक हैं।

धैर्य कठिन परिस्थिति में व्यक्ति की सहनशीलता की अवस्था है जो उसके व्यवहार को क्रोध या खीज जैसे नकारात्मक अभिवृत्तियों से बचाती है। दीर्घकालीन समस्याओं से घिरे होने के कारण व्यक्ति जो दबाव या तनाव अनुभव करने लगता है उसको सहन कर सकने की क्षमता भी धैर्य का एक उदाहरण है। धैर्य नकारात्मकता से पूर्व सहनशीलता का एक स्तर है। यह व्यक्ति की चारित्रिक दृढ़ता का परिचायक भी है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि समय और परिस्थितियां हमेशा एक जैसी नहीं होती। हर व्यक्ति के जीवन में कभी अच्छा समय आता है तो कभी बुरे दौर से उसे गुजरना पड़ता है, किंतु ऐसा माना जाता है कि व्यक्ति के धैर्य की पहचान उसके बुरे दौर में ही होती है। ऐसा कहने के पीछे सबसे बड़ा कारण

यही है कि जीवन के अच्छे दौर में तो सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी सही निर्णय करने की क्षमता रखता है, किंतु जब स्थिति प्रतिकूल हो तो उस समय व्यक्ति के धैर्य का आकलन किया जाता है। प्रतिकूल परिस्थितियों में सही निर्णय लेने वाला व्यक्ति ही सफलता की ओर अग्रसर होता है, और जो व्यक्ति ऐसे समय में स्वयं को नहीं संभाल पाता उसे विफलता हाथ लगती है। सबसे महत्वपूर्ण है प्रतिकूल समय में धैर्य को बनाए रखना। धैर्य से कठिन चुनौतियों का सामना किया जा सकता है। जिस व्यक्ति के पास धैर्य नहीं है वह छोटी से छोटी समस्याओं का सामना भी सही तरीके से नहीं कर सकता। तो केवल धैर्य ही आपको अपनी पूरी मानसिक क्षमता का उपयोग करने में सक्षम बनाता है, और जिसके कारण आप कठिन से कठिन चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना करने के योग्य बन जाते हैं। इसीलिए धैर्य को बनाए रखने की प्रवृत्ति का विकास करें। धैर्य रखने सीधा मतलब अपने स्वभाव को शांत रखने से है। और अब कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर हम हैं, तो हम सभी जानते हैं जीवन एक यात्रा है। हम पर निर्भर करता है कि इस यात्रा को हम कैसे तय करते हैं। इस जीवन यात्रा को हम संगीत के साथ तय करें, जिसमें फिर चाहे प्रेम गीत हो, दुख भरे गीत हो, सुख भरे गीत हो, हास्य गीत हो, भक्ति गीत हो, गजल हो, कव्वाली हो, कैसे भी गीत हो, किंतु इस संगीत यात्रा में धुन होगी, सुर होंगे, साज होंगे, सरगम होगी, ताल होगी, थाप होगी, नृत्य होगा, प्रेम होगा, आनंद होगा, कला होगी, संगीत से जुड़ी हर विधा होगी, और ये संगीतमय यात्रा बड़ी ही सुंदर होगी। अब आप चाहें तो इस जीवन यात्रा को युद्ध यात्रा में बदल दें, जहां क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या ये सब होंगे, जहां तलवारें चलेंगी, भाले चलेंगे, तोपे चलेंगी, मिसाइलें चलेंगी, हर तरफ हाहाकार होगा, विनाश होगा, सर्वनाश होगा। तो ये चयन हमारा स्वयं का है कि हम जीवन यात्रा को संगीतमय बनाए या युद्धमय। और अब कार्यक्रम का समय समाप्त हो गया है। हम आपको बता दें कार्यक्रम का संयोजन था तेजराम मीणा का, प्रस्तुति थी राजेश महावर की। अनुमति दीजिए शशि सोनी को। नमस्कार कोटा।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नमस्कार कोटा, FM 102 103.6 MHz और मीडियम वेव 212.31 मीटर अर्थात 1413 किलोहर्ट्ज पर। हंसते मुस्कुराते रहिए, गाते गुनगुनाते रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल का प्रसारण। हम लेकर हाजिर हैं फिल्म संगीत। आज फिल्म संगीत में आप सुनेंगे युगल गीत।

लता मंगेशकर और अमित कुमार के युगल स्वर थे। फिल्म का नाम लव स्टोरी। आनंद बख्शी के लिखे गीत को संगीत दिया आरडी बर्मन ने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम संबंधी सूचना। सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो डॉक्टर सुबह 8:15 पर आप सुनेंगे। विषय होगा मुंह का कैंसर, समय पर दांतों की जांच से बच सकती है जान। विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर धर्मेंद्र माहेश्वरी। इस विषय पर कोई भी जानकारी आप चाहें तो फोन कर सकते हैं। हमारे टेलीफोन नंबर हैं 2941 142, एसटीडी कोड 0744। तो कार्यक्रम का समय याद रखिएगा, प्रातः 8:15 से 9 तक। आप सुन रहे हैं युगल गीत। और लीजिए अब सुनिए भीगी पलकें। इस फिल्म का ये गीत लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी के युगल स्वर।

0: सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-doj.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: फिल्म संतोष में अब आप सुनेंगे नितिन मुकेश और आशा भोसले के युगल स्वर। संतोष आनंद के लिखे गीत को संगीतबद्ध किया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

हम आपको बता दें, आज प्रातः 8:15 पर हेलो डॉक्टर कार्यक्रम का विषय रहेगा मुंह का कैंसर, समय पर दांतों की जांच से बच सकती है जान। विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर धर्मेंद्र माहेश्वरी। इस विषय से संबंधित कोई भी जानकारी आप चाहें तो हमें फोन कर सकते हैं। हमारे टेलीफोन नंबर है 2941 142, एसटीडी कोड 0744। तो समय याद रखिएगा, आज प्रातः 8:15 से 9 बजे तक। फिल्म संगीत में आज आप हम सुन रहे हैं युगल गीत, और लीजिए अब सुनिए फिल्म मुद्दत का ये गीत, आवाजें आशा भोसले और मोहम्मद अजीज की। शब्दों से गढ़ा है इंदिवर ने और धुन बनाई बप्पी लहरी ने।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: और लीजिए सुनिए लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी के युगल स्वर। फिल्म का नाम है हाथ की सफाई। शब्दों से गढ़ा है गुलशन बावरा ने और संगीत कल्याण जी आनंद जी का।

श्रोताओं, हम आपको एक बार फिर से याद दिला दें, आज प्रातः 8:15 पर हेलो डॉक्टर कार्यक्रम का विषय रहेगा मुंह का कैंसर, समय पर दांतों की जांच से बच सकती है जान। विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर धर्मेंद्र माहेश्वरी। इस विषय से संबंधित कोई भी जानकारी आप चाहें हमें फोन कर सकते हैं। हमारे टेलीफोन नंबर है 2941142, एसटीडी कोड 07444। तो समय याद रखिएगा प्रातः 8:15 से 9 बजे तक। और लीजिए फिल्म संगीत की आखिरी पेशकश हम आपको सुनवा देते हैं। फिल्म का नाम है अजनबी। लता मंगेशकर और किशोर कुमार के युगल स्वर हैं।

0: अच्छा मैंने बिकी थी दिल लगी।
1: फिल्म संगीत में अभी आप सुन रहे थे युगल गीत। एफएम 102 व 103.6 मेगाहर्ट्ज़, मीडियम वेव 212.31 मीटर अर्थात 1413 किलोहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल का प्रसारण। प्रातः के 8 बजने को है। कुछ ही क्षणों में आप हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार प्रभात सुनेंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की दो दिवसीय बैठक आज से नई दिल्ली में शुरू हो रही है। असम सरकार 26 मई को विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक प्रस्तुत करेगी। भारत ने घरेलू कीमतों पर नियंत्रण के लिए इस वर्ष सितंबर तक चीनी के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया। पश्चिम बंगाल सरकार ने आलू, प्याज, फल, सब्जियों, अनाज और अन्य आवश्यक वस्तुओं की अंतर राज्य आवाजाही पर सभी प्रतिबंध हटाए। उत्तर प्रदेश में बारिश, आंधी और बिजली गिरने की घटनाओं में 60 लोगों की मौत। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के निदेशक प्रवीण सूद का कार्यकाल एक वर्ष बढ़ाया गया। और आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 6 विकेट से हराया। विराट कोहली ने रचा इतिहास। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की दो दिन की बैठक आज से नई दिल्ली में शुरू हो रही है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर अध्यक्षता करेंगे।

0: विस्तार पर चर्चा की जाएगी।
1: पर एक विशेष सत्र आयोजित किया जाएगा। इसके बाद वैश्विक शासन और बहुपक्षीय प्रणाली में सुधार पर चर्चा की जाएगी। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की पिछली बैठक 26 सितंबर 2025 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र के दौरान हुई थी। बैठक की अध्यक्षता भारत ने 2026 के लिए ब्रिक्स अध्यक्ष के रूप में की थी। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि श्री मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात करेंगे। पिछले 5 महीने में प्रधानमंत्री मोदी और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद।
3: भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच ऊर्जा और व्यापार के क्षेत्र में मजबूत साझेदारी है। इस बारे में खाड़ी क्षेत्र के लिए अपर सचिव असीम महाजन ने बताया।
4: यूएई हमारी ऊर्जा सुरक्षा का महत्वपूर्ण साझेदार है। पिछले साल यूएई भारत के लिए कच्चे तेल का 4th सबसे बड़ा आपूर्ति करता था और उसने हमारी कुल जरूरत का लगभग 11% तेल उपलब्ध कराया। एलएनजी के क्षेत्र में भी भारतीय कंपनियों और यूएई की अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी के बीच दीर्घकालिक समझौते हुए हैं, जिनके तहत भारत को कुल 4.5 एम

0: MTPA LNG की आपूर्ति की जाएगी।
1: MMTPA LNG टू इंडिया।
2: भारत के यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI और संयुक्त अरब अमीरात के आनी सिस्टम को जोड़ने से दोनों देशों के बीच व्यापार करना पहले से आसान हो गया है। पश्चिम एशिया संघर्ष के बीच अबू धाबी में होने वाली यह बैठक दोनों देशों के मजबूत और दीर्घकालिक रिश्तों के लिए बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से चाहत सिंह।
3: असम सरकार 26 मई को विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक प्रस्तुत करेगी। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने कल अपने नए कार्यकाल की पहली मंत्रिमंडलीय बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में ये घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि विधानसभा का विशेष सत्र 21 से 26 मई तक चलेगा। इसमें नव निर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी।
4: यूनिफॉर्म सिविल कोड विधेयक सत्र के अंतिम दिन यानी 26 मई को पेश किया जाएगा। प्रस्तावित कानून में विवाह की आयु, बहुविवाह, उत्तराधिकार और लिव इन संबंधों जैसे विषय शामिल होंगे। धार्मिक प्रथाओं को इस विधेयक के दायरे से बाहर रखा जाएगा, जबकि राज्य के पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों में रहने वाले जनजातीय समुदायों को भी प्रस्तावित कानून के दायरे से बाहर रखा जाएगा। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
3: उत्तराखंड और गुजरात के बाद असम नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का तीसरा राज्य होगा। सरकार ने घरेलू कीमतों पर नियंत्रण के लिए इस वर्ष सितंबर या अगले आदेश तक चीनी के निर्यात पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन विदेश व्यापार महानिदेशालय की अधिसूचना में ये जानकारी दी गई। ये प्रतिबंध अमरीका, यूरोपीय संघ और अन्य देशों की खाद्य सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निर्यात की जा रही चीनी पर लागू नहीं होगा। निर्यात प्रक्रिया में पहले से मौजूद खेपों को भी छूट दी गई है। पश्चिम बंगाल सरकार ने आलू, प्याज और अन्य आवश्यक उत्पादों को अन्य राज्यों में ले जाने पर लगे सभी प्रतिबंध हटा दिए हैं। ये प्रतिबंध पूर्ववर्ती तृणमूल कांग्रेस सरकार ने लगाए थे। इन प्रतिबंधों से आलू उत्पादक किसानों और अन्य संस्थाओं को भी भारी नुकसान हुआ था। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव से पहले राज्य के किसानों को प्रतिबंध हटाने का आश्वासन दिया था।
5: आलू, प्याज, सब्जियां, फल, खाद्यान्न और तिलन जैसी वस्तुओं अब बिना किसी बाधा के राज्य की सीमाओं के पार स्वतंत्र रूप से भेजी जा सकती है। जिला प्रशासन, पुलिस और परिवहन अधिकारियों को इस आदेश के सुचारू क्रियान्वयन के सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। ये निर्णय छोटे और सीमांत किसानों के साथ साथ व्यापारियों को भी लाभ पहुँचाएगा। अब किसानों के उनकी उपज का उचित मूल्य मिलेगा। मुख्यमंत्री ने यह भी चेतावनी दी कि यदि माल से भरे वाहनों को अंतर्राज्यीय सीमाओं पर अनावश्यक रूप से रोका या परेशान किया गया तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। संदीप दास गुप्ता, आकाशवाणी न्यूज, कोलकाता।
3: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
6: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
7: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
6: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए खरीफ की 14 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार ने किसानों को उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए ये फैसला किया है।
8: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 2,60,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन।
3: श्री वैष्णव ने बताया कि सूरजमुखी के बीजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में 622 रुपए प्रति क्विंटल, कपास के लिए 557 रुपए और तिल के लिए 500 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में बारिश, आंधी और बिजली गिरने की घटनाओं में 60 लोगों की मौत हो गई। एक रिपोर्ट।
9: मौसम में आए अचानक बदलाव ने राज्य भर में भारी तबाही मचाई है। आंधी, भारी बारिश और बिजली गिरने से कई लोगों की जान चली गई है। प्रयागराज में 17, भदोही जिले में 15

0: 17, मिर्जापुर में 10, फतेहपुर में 9, बदायूं में 5 और बरेली जिले में 4 लोगों की मौत हो गई है। 100 से ज्यादा लोग घायल भी हैं, जिन्हें अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। सबसे ज्यादा मौतें बिजली गिरने की घटनाओं के कारण हुई हैं। विभिन्न जिलों से बिजली के खंभे और पेड़ गिरने की घटनाएं भी सामने आई हैं, जिससे बिजली आपूर्ति और सड़क यातायात प्रभावित हुआ है। बारिश के साथ हुई ओलावृष्टि से फसलों को भी भारी नुकसान हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की और उन्हें अगले 24 घंटों के भीतर प्रभावित लोगों को मुआवजा दिलाने का निर्देश दिया। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: केंद्र सरकार ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के निदेशक प्रवीण सूद को एक वर्ष का सेवा विस्तार दे दिया है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के आधिकारिक आदेश के अनुसार मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने ये मंजूरी दी। श्री सूद का कार्यकाल 24 मई को समाप्त होना था। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग की महत्वपूर्ण शिखर बैठक आज से शुरू हो रही है। श्री ट्रंप पेचिंग पहुंच गए हैं। 2 दिन की बैठक में ईरान से युद्ध, ताइवान को अमेरिकी हथियारों की बिक्री, व्यापार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टैरिफ जैसे कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की उम्मीद है। ये बैठक दुनिया की 2 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच बढ़ती आर्थिक और तकनीकी स्पर्धा के बीच हो रही है।
2: अमरीकी राष्ट्रपति अपने साथ कई शीर्ष व्यापार और प्रौद्योगिकी अधिकारियों को लेकर गए हैं। अमरीकी राष्ट्रपति ने अपनी यात्रा से पहले आशा व्यक्त की है कि इस बैठक से आने वाले दशकों तक अमरीका और चीन के बीच मजबूत संबंधों का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। राष्ट्रपति ट्रंप के साथ विदेश मंत्री मार्को रूबियो और रक्षा मंत्री पीट हेक्सेथ सहित वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी और व्हाइट हाउस के प्रमुख सहयोगी भी गए हैं। इस यात्रा पर वैश्विक स्तर पर कड़ी नजर रखी जा रही है, क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप और शी जिनफिंग की ये मुलाकात व्यापार, प्रौद्योगिकी और रणनीतिक प्रभाव को लेकर दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव के समय हो रही है। 2017 के बाद राष्ट्रपति ट्रंप की चीन की यह पहली आधिकारिक यात्रा है। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: आईपीएल क्रिकेट में विराट कोहली ने कल रात रायपुर में कोलकाता नाइट राइडर्स पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की 6 विकेट की जीत के दौरान इतिहास रचा और कई कीर्तिमान ध्वस्त किए। कोहली ने 60 गेंद में नाबाद 105 रन बनाए। ये आईपीएल में उनका 9वां शतक है, जो इस टूर्नामेंट के इतिहास में किसी भी खिलाड़ी के सबसे ज्यादा शतक हैं। वे T20 में सबसे तेज 10,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने क्रिस गेल का कीर्तिमान ध्वस्त करते हुए 409 पारियों में ये उपलब्धि हासिल की। गेल ने 423 पारियों में ये रिकॉर्ड बनाया था। कोहली ने इस आईपीएल में 400 रन भी पूरे कर लिए हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स ने 20 ओवर में 4 विकेट पर 192 रन बनाए। जवाब में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 19 ओवर और 1 गेंद में 4 विकेट के नुकसान पर 194 रन बनाकर मैच जीत लिया। विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। टूर्नामेंट में आज शाम 7:30 बजे धर्मशाला में पंजाब किंग्स का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। मौसम विभाग ने आज पश्चिम मध्य प्रदेश और पश्चिम राजस्थान के कुछ इलाकों में लू चलने की संभावना जताई है। साथ ही पूर्वी राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में भी लू की स्थिति बनी रह सकती है। वहीं अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में भी भारी बारिश का अनुमान है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, केरलम, माहे, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी और काराईकल में अगले 3 दिन भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, बिहार, छत्तीसगढ़, चंडीगढ़, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों में आज गरज चमक और बिजली गिरने की आशंका जताई गई है। मौसम विभाग ने झारखंड, तटीय कर्नाटक और उत्तर आंतरिक कर्नाटक में अगले 2 दिन तक तेज आंधी और गरज के साथ बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
3: धन्यवाद मुकेश। विदेशी मुद्रा की बचत के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर कार्रवाई शुरू होने की खबर पर नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, पीएम मंत्र समझदारी से खर्च बनेगा, देश का आर्थिक कवच कटौती नहीं स्मार्ट लाइफ की सलाह, हम मिलकर कर सकते हैं ये सब। हिंदुस्तान का शीर्षक है, सख्ती संयम का समय शुरू, मोदी और शाह ने गाड़ियों के काफिले में कटौती की, उत्तराखंड में वर्क फ्रॉम होम और 1 दिन नो व्हीकल डे। जनसत्ता का शीर्षक है, सोने चांदी पर आयात शुल्क शेष से बढ़कर 15%। इसी खबर पर दैनिक जागरण ने फिजूल खर्ची की संस्कृति शीर्षक से संपादकीय में लिखा है कि ये अच्छा है कि प्रधानमंत्री ने अपनी कारों के काफिले में कटौती कर इसका उदाहरण पेश किया कि वो जो कुछ औरों को करने के लिए कह रहे हैं उस पर स्वयं अमल कर रहे हैं। आशा है कि भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और मंत्री भी इसका अनुसरण करेंगे। अमर उजाला ने नीट पेपर लीक पर सुर्खी दी है, सीबीआई ने मारे कई जगह छापे।

0: पे एनटीए मुख्यालय भी पहुंची एजेंसी, चार और गिरफ्तार, 40 लाख तक में बिका पेपर। पंजाब केसरी का शीर्षक है तमिलनाडु में फ्लोर टेस्ट में विजय की शानदार विजय, समर्थन में 144 और विरोध में 22 वोट पड़े। दैनिक भास्कर ने केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसले देते हुए लिखा है धान का समर्थन मूल्य 72 रूपए बढ़ाकर 2,441 रूपए किया, खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में भी इजाफा। जनसत्ता का कहना है प्रधानमंत्री मोदी कल से 5 देशों की यात्रा पर, सबसे पहले यूएई जाएंगे, एलपीजी और रणनीतिक तेल भंडार पर करार संभव। राजस्थान पत्रिका के अनुसार ईरान को ब्रिक्स से आस, कहा अधिकार की रक्षा करें। पत्र के अनुसार दिल्ली बनी केंद्र, भारत मंडपम में जुटेंगे कई विदेश मंत्री। दैनिक ट्रिब्यून का शीर्षक है हरियाणा निकाय चुनाव में कमल का क्लीन स्वीप, हुड्डा के गढ़ से लेकर तीनों निगमों तक भाजपा का दबदबा, पीएम मोदी ने जताया आभार। लोकसत्ता की सुर्खी है सीबीआई निदेशक प्रवीण सूद का कार्यकाल 1 साल बढ़ा। देशबंधु ने महंगाई का एक और झटका शीर्षक से लिखा है अमूल ने बढ़ा दिए दूध के दाम 2 रूपए प्रति लीटर। दैनिक जागरण की सुर्खी है 12वीं में अव्वल बेटियां ही बेटियां, पत्र के अनुसार सीबीएसई की 12वीं कक्षा की कॉपियां स्क्रीन पर जांची गई, 7 साल में सबसे कम रहा रिजल्ट।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की 2 दिवसीय बैठक आज से नई दिल्ली में शुरू हो रही है। असम सरकार 26 मई को विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक प्रस्तुत करेगी। भारत ने घरेलू कीमतों पर नियंत्रण के लिए इस वर्ष सितंबर तक चीनी के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया। पश्चिम बंगाल सरकार ने आलू प्याज फल सब्जियों अनाज और अन्य आवश्यक वस्तुओं की अंतर राज्य आवाजाही पर सभी प्रतिबंध हटाए। उत्तर प्रदेश में बारिश आंधी और बिजली गिरने की घटनाओं में 60 लोगों की मौत और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के निदेशक प्रवीण सूद का कार्यकाल 1 वर्ष बढ़ाया गया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: FM 102.6 MHz और मीडियम वेव 212.31 मीटर अर्थात 1413 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी कोटा बूंदी का चंबल चैनल है। लीजिए प्रस्तुत है सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो डॉक्टर।
1: प्रोग्राम के इस भाग के प्रायोजक हैं कोटा आई हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर 88 शक्तिनगर दशहरा मैदान कोटा।
2: कोटा आई हॉस्पिटल 88 शक्तिनगर कोटा। कोटा आई हॉस्पिटल जहां बिना दर्द बिना टांके और बिना पट्टी के मोतियाबिंद का ऑपरेशन और मुड़ने वाले लेंस का प्रत्यारोपण किया जाता है। कोटा आई हॉस्पिटल के रेटिना विशेषज्ञ डॉक्टर अंकित पंजाबी द्वारा रेटिना से संबंधित सभी प्रकार के रोगों का उपचार और विश्व की सर्वोत्तम एलकॉन कॉन्स्टिलेशन मशीन द्वारा सर्जरी की सुविधा। कोटा आई हॉस्पिटल में हाड़ौती की प्रथम और विश्व की सर्वश्रेष्ठ एलकॉन वेव लाइट EX500 लेसिक लेजर मशीन द्वारा चश्मा हटाने की सुविधा। कोटा आई हॉस्पिटल राजस्थान राज्य कर्मचारियों एवं पेंशनरों की नेत्र चिकित्सा सुविधा के बिल पुनर्भरण हेतु अनुमोदित है। कोटा आई हॉस्पिटल जहां एक छत के नीचे आँखों की संपूर्ण जांच, परामर्श और उपचार की सुविधा उपलब्ध। 1987 से आपकी सेवा में समर्पित अत्याधुनिक सर्व सुविधा युक्त संस्थान कोटा आई हॉस्पिटल 88 शक्तिनगर कोटा।
0: आप सुन रहे हैं हेलो डॉक्टर कार्यक्रम। मुंह का कैंसर एक गंभीर बीमारी है। मुंह का कैंसर चुपचाप जानलेवा बन सकता है, तो सही समय पर जांच और लक्षणों की पहचान करके आप अपना जीवन बचा सकते हैं। जी हां श्रोताओं, आज का हमारा जो विषय है वो है मुंह का कैंसर, समय पर जांच से बच सकती है जान। और इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर धर्मेंद्र माहेश्वरी, MDS ओरल एंड रेडियोलॉजी, कोटा डेंटल इंस्टीट्यूट से। नमस्कार डॉक्टर साहब।
3: नमस्कार मैडम
0: जी, कार्यक्रम में आपका बहुत स्वागत है।
3: धन्यवाद।
0: और जैसा कि आज का हमारा विषय है मुंह का कैंसर, समय से जांच से बच सकती है जान, तो सबसे पहले तो हमें यह समझना आवश्यक है कि मुंह का कैंसर क्या है।
3: नमस्कार श्रोताओं, मैं डॉक्टर धर्मेंद्र महेश्वरी, मैं एक डेंटल सर्जन हूँ। और सबसे बड़ी बात, मतलब लोगों को लगता है कि ओरल कैंसर, मुंह का कैंसर की दंत चिकित्सक सिर्फ दांतों का या मसूड़ों का, इन्हीं का इलाज करते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो ओरल कैंसर होता है उसकी प्राइमरी डायग्नोसिस, बेसिक डायग्नोसिस, इनिशियल डायग्नोसिस वो एक डेंटल सर्जन द्वारा ही करी जाती है मैक्सिमम।

0: अगर आप समय पर अपने दंत चिकित्सक के पास जाते रहते हैं 6 महीने में, तो सप्ताह आपके मुंह में कोई परेशानी हो तो वहां से आपको तुरंत पता चल जाएगा कि आपके कोई कैंसर की बीमारी तो डेवलप नहीं हो रही। अब जैसे मैडम ने पूछा कि ओरल कैंसर होता क्या है, तो सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि ओरल कैंसर होता क्या है। ओरल कैंसर एक अनवांटेड ग्रोथ कह लो या मतलब बढ़ावा कह लो चमड़ी के अंदर, जैसे कोई चमड़ी बढ़ती चली जाती है
1: जी।
0: जो कि हमें नहीं चाहिए, मतलब अनवांटेड ग्रोथ एंड अनकंट्रोल्ड ग्रोथ, जिसपे आपका कंट्रोल भी नहीं है, जो नहीं होना चाहिए और होता रहता है। अब ये कहीं भी हो सकता है, आपकी जुबान में भी हो सकता है, आपके गालों में भी हो सकता है, मसूड़ों में भी हो सकता है, होठ पे भी हो सकता है, आपके तालू जैसे रूफ ऑफ द माउथ कहते हैं गले में भी हो सकता है, और जबड़े जुबान के नीचे वाले जो फ्लोर ऑफ द माउथ होता है उसमें भी हो सकता है
1: जी।
0: तो ये इसके जो अर्ली स्टेजेस होते हैं वो आप पता कर सकते हैं। जैसे कई लोगों को अल्सर हो जाता है, अब वो अल्सर उसको नेगलेक्ट करते हैं कि यहाँ पे ठीक है छाला है कुछ दिन में ठीक हो जाएगा, लेकिन अगर वो 2 महीने में ठीक नहीं हो रहा है 8 वीक्स के अंदर, तो आप तुरंत मान के चलिए कि वो एक कैंसर का ही सिम्टम हो सकता है। तो तुरंत अपने किसी भी दंत चिकित्सक या किसी भी डॉक्टर को, नाक कान गले वाले को दिखा के आप उसका इलाज शुरू करवाएं तुरंत
1: जी।
0: ये है
1: श्रोताओं, इस विषय से संबंधित कोई भी जानकारी आप चाहें तो हमें फोन कर सकते हैं। हमारे टेलीफोन नंबर है 2941 142, एसटीडी कोड 0744। तो सबसे पहले तो हम शुरुआती लक्षण के बारे में बात करें कि क्या लक्षण होते हैं।
0: शुरुआती लक्षण में मैम, इसमें सबसे पहले तो पेशेंट को लगता है कि मेरे कोई अल्सर हो गया, छाला हो गया, जो उसे नॉर्मल समझ रहा है लेकिन वो ठीक नहीं हो पा रहा है
1: जी।
0: दूसरा है उसको खाने में दिक्कत आ रही है, डिफिकल्टी च्यूइंग। तीसरा है जैसे मुंह के अंदर कोई सफेद लाल पैचेस हो गए हैं, मुंह में मिर्ची खा रहा है तो मिर्ची बहुत लग रही है उसको, बर्निंग सेंसेशन हो रहे हैं मुंह के अंदर, जलन रहती है हमेशा, कोई मुंह से ब्लीडिंग हो रही है बार बार जो अनएक्सप्लेन्ड है, बार बार दवाई लेने के बाद भी ठीक नहीं हो रही है। दूसरा उसके बाद में मुंह पूरा नहीं खुल पा रहा है उसका
1: जी,
0: मुंह से बदबू आ रही है या दांत उसके ढीले होते जा रहे हैं
1: जी,
0: ये सब शुरुआती लक्षण है इसके
1: जी। और यदि हम बात करें कारणों पे।
0: हाँ मैम, कारण बहुत सारे हैं इसके। सबसे बड़ा कारण तो अपने हिंदुस्तान के अंदर ये जो आप देखते हैं खैनी
1: जी,
0: जो खाते हैं जर्दा खाते हैं जैसे लोग बोलते हैं देशी जर्दा, सिगरेट है, बीड़ी है, तंबाकू है, खैनी है, पान के साथ जो तंबाकू लेकर खाते हैं वो लोग है, सुपारी के बहुत सारे मिक्सचर है, और आजकल एक नया दौर चला है बच्चे आजकल वेपिंग करते हैं, एक ई सिगरेट करके आती है जिसके अंदर निकोटीन का केमिकल डाल के बच्चे खूब पी रहे हैं आजकल
1: जी,
0: है ना, तो वो बाजारों में अवेलेबल है, तो उससे भी कैंसर बढ़ता है। और तीसरा एक कारण और भी है कि किसी के मुंह में तीखे दांत रहते हैं, जैसे कोई दांत टूट जाता है उसकी जड़ें पड़ी रहती है, वो शार्प एजेस होते हैं, तो उन शार्प एजेस की वजह से भी अगर टिश्यू का कंटिन्यू इरिटेशन हो रहा है तो मान के चलिए कि उससे भी कैंसर डेवलप हो सकता है। तो हम लोगों को समझाते हैं कि आपके मुंह में कोई टूटा फूटा दांत है या कोई तीखा दांत है तो उसको आगे घिसवा लो, ग्राइंड करा लो, है ना, ये सब चीजें हैं मैम।
1: हेलो
2: हेलो,
1: हाँ जी नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
2: जी हम योगेश जांगड़े बोल रहे हैं, बेमेतरा छत्तीसगढ़ से।
1: जी बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में, पूछिए अपना प्रश्न।
2: हम ये जानना चाहते हैं कि जो लगातार मतलब खराश रहता है खांसी टाइप का या आवाज में भारीपन वगैरह होना, क्या ये भी उसके शुरुआती लक्षण?
0: हाँ बिल्कुल, शुरुआती लक्षण हो सकते हैं। अगर आपकी हॉर्सनेस ऑफ वॉइस हो रही है, आवाज आपकी धीरे धीरे बदल रही है, चेंज हो रही है, तो उसके अंदर आपके कैंसर के सिम्टम हो सकते हैं, हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, और भी कई सारे कारण हो सकते हैं। ये मत समझिए कि वो कैंसर ही होगा
1: जी,
2: जी
0: और भी कई सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन एक कारण कैंसर भी हो सकता है, मतलब और भी बहुत सारे कारण है इसकी चीज के ना। आप वो डॉक्टर को दिखा के उसको डायग्नोज कराइए कि ये एग्जैक्टली हो क्यों रहा है
1: जी। बहुत धन्यवाद आपने फोन किया। तो जैसा कि आज का हमारा विषय है मुंह का कैंसर, समय पर जांच से बच सकती है जान, तो अब यही हम इस विषय पर बात करेंगे कि ये जो जांच है समय पर, ये क्यों आवश्यक है?
0: मैम समय पर जांच इसलिए आवश्यक है कि इनिशियल स्टेज में अगर कैंसर का पता चल जाता है तो वो इलाज के लायक हो जाता है, मरीज उसका इलाज हो जाता है और वो उसका जीवन जो है वो बच सकता है और कुछ दिन जी सकता है वो
1: जी।
0: अगर वो समय पर नहीं आएगा तो इस कैंसर की भी क्या 4 स्टेज होती है, स्टेज 1 स्टेज 2 स्टेज 3 स्टेज 4। अगर स्टेज 1 पर पता है तो वो मतलब मान लेते हैं कि कुछ ना इलाज करा लिया तो वो जीवन भर सुरक्षित हो गया
1: जी।
0: स्टेज 2 स्टेज 3 में इलाज तो हो जाएगा लेकिन कितने दिन तक ठीक रहेगा, दोबारा रिकैंसर होगा नहीं होगा। अगर स्टेज 4 पर आदमी आता है तो मान लेते हैं कि वो लाइलाज हो गया
1: जी। हेलो
3: हेलो,
1: हाँ जी नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
3: मैं अर्जुन जाड़ बोल रहा हूँ
1: जी। बहुत स्वागत है, पूछिए अपना सवाल
3: जी। मैडम मुझे बस एक बात पूछनी है।

0: है कि जैसे ये पान मसाला खाने से जैसे वो होता है कैंसर,
1: जी बिल्कुल होता है।
0: तो हमारे जो सेलिब्रिटी है जी, ये प्रचार बहुत कर रहे हैं आजकल,
1: किस चीज का प्रचार कर रहे हैं?
0: तो ये विमल का ऐसे करते हैं ना, टीवी में दिखाते हैं, ब्रेक में आते हैं,
1: हाँ सर वो तो कर रहे हैं ना, वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको पैसा मिल रहा है।
0: तो हाँ पैसा मिल रहा है, लेकिन इनसे कहना, छोटे बच्चे देख देख के सोचते हैं कि अच्छी चीज होगी, इसलिए प्रचार कर रहे हैं।
2: जी देखिए, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों को समझाएं, खुद को समझाएं, अपने परिवार का माहौल ऐसा रखें कि उन्हें क्या खाना है क्या नहीं खाना है। हमें उन्हें समझाना होगा कि कौन सी चीज़ हमारे लिए फायदेमंद है और कौन सी नुकसान, तो ये तो परिवार की जिम्मेदारी है।
1: एक चीज और है मैम, ये जो लाल मंजन अपने एरिया में चलता है एकदम,
2: जी
1: ये क्या कहते हैं जिसे अपन लाल मंजन बोलते हैं, वो जर्दे वाला,
2: जी
1: ये भी एक कारण है। उसके अलावा और भी बहुत सारे कारण हैं, जैसे स्ट्रेस है, लाइफ स्टाइल डिजीज है, इनकी वजह से भी कैंसर बढ़ता है।
2: जी देखिए, घर परिवार में जो माहौल होता है, बच्चे जैसा देखते हैं वैसा सीखते
1: हैं। वैसे ही करते हैं, गाँव में लाल मंजन का चलन बहुत ज्यादा है तो उससे भी कैंसर कॉजिंग होता है।
2: तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी अपने अभिभावक की है कि वो अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं,
1: कंट्रोल करना पड़ेगा
2: और समझाना चाहिए। बच्चे तो बाहर भी देखेंगे लेकिन समझाना उन्हें पड़ेगा। जी तो हम बात कर रहे थे कि जांच क्यों आवश्यक है, अब हम बात करेंगे जांचें किस प्रकार से होती है, इसकी जांच।
1: सबसे पहले तो मैम, पेशेंट जैसे हमारे पास आता है तो हम उसके पूरे मुंह को चेक करते हैं।
2: जी
1: उसको चेक करते हैं कि उसके ओरल टिश्यूज की कंडीशंस कैसी है, कोई लाल सफेद चकत्ते तो नहीं हो रखे मुंह के अंदर, कोई छाला तो नहीं हो रखा उसके अंदर। दूसरा, उसके मसूड़ों की कंडीशन कैसी है, जुबान का मूवमेंट कैसा है, कि चारों तरफ जुबान फ्रीली घूम पा रही है नहीं घूम पा रही है, कहीं अटक तो नहीं रही है।
2: जी।
1: उसके चीक जो गाल है उसके, उसकी लाइनिंग कैसी है, उसमें कहीं फाइब्रोसिस तो नहीं हो गई है। उसके अलावा पूरी ओवरऑल हेल्थ देखते हैं उसकी, जैसे अभी उन्होंने आवाज के लिए बोला कि आवाज में हॉर्सनेस और वॉइस चेंज तो नहीं आया है। मरीज से पूछते हैं कि इसके 2-4-6 महीने में उनको कैसा बदलाव महसूस हुआ हो, जो उनको तगड़ा हो, जैसे मुंह में मिर्ची लगती हो उनको बार बार, खाने में खाना नहीं खा पा रहे हो, निकलने में कोई दिक्कत आ रही हो, इस तरह की चीजें उनके ओवरऑल चेक करके फिर पेशेंट के आगे जाके फिर रेडियोलॉजिकल जांचें भी होती हैं, जिसके अंदर हम ओपीजी कराते हैं, सीबीसीटी कराते हैं।
2: जी।
1: उसके अलावा इंटरनल कैमरास आते हैं जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, कैमरे से उनके फोटोग्राफ्स वगैरह करते हैं। आजकल आर्टिफिशियल असिस्टेड एग्जामिनेशन भी होता है, उनके फोटोग्राफ्स को AI पर डाल के, कंप्यूटर्स में डाल के उनको चेक करते हैं कि कहाँ पे कोई छोटी मोटी परेशानी नहीं लग रही, फिर उसको क्लिनिकली रीएवेल्युएट भी करते हैं।
2: जी
1: ये है मैम, कोई दांत तीखा तो नहीं हो रहा, कोई छाला गांठ जैसी तो नहीं बन रही। अक्सर हमारे पास काफी पेशेंट आते हैं इस तरीके के।
2: जी
1: ये
2: तो मुंह के कैंसर के लिए फिर कौन कौन सी जांच करवानी होती है?
1: मैम वो डिपेंड करता है कंडीशन पे,
2: जी
1: कि किस लेवल पे आया पेशेंट। सबसे जरूरी तो है, जैसे अगर हमें लगता है कि हाँ इसको कैंसर है, तो सबसे पहली जांच होती है बायोप्सी।
2: जी
1: एक सॉफ्ट टिश्यू उसका, मतलब मसूड़ा जहां से हमें छाला लग रहा है कुछ लग रहा है, उसको थोड़ा सा काट के निकाल के लैब में भेजते हैं, करीब 12 दिन में उसकी जांच आती है। पैथोलॉजिस्ट उसकी स्लाइड बना के चेक करके बताते हैं कि भाई इसको कैंसर है कि नहीं है।
2: जी।
1: तो मेन तो वही है। दूसरा होता है, जैसे जहां पे हम सॉफ्ट टिश्यू नहीं निकाल पा रहे वहां पे होता है एफएनएससी, मतलब फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी, एक मोटी सिरिंज उसके डाल के, जैसे कहीं फ्लड भरा हुआ होता है या कहीं ऐसा लगता है गांठ सी बनी हुई है अंदर, उसका सॉफ्ट टिश्यू तो निकल नहीं पाएगा, तो वो डाल के इनसे उसको खींचते हैं उसका फ्लड को, और फ्लड को फिर वहां लैब में भेजते हैं, फिर पैथोलॉजिस्ट देख के बताते हैं कि ये कैंसर वाली गांठ है या बिना कैंसर वाली गांठ है, बिनाइन है या मैलिग्नेंट है।
2: जी
1: ये है मैम। उसके अलावा फिर रेडियोलॉजिकली भी होता है, जैसे मैंने आपको बताया एक्सरेज वगैरह होते हैं, उसमें भी डिस्ट्रक्शन ऑफ बोन कितना, मतलब हड्डी कहीं गल रही है घट रही है क्या है। उसके बाद में जब बेसिक हो जाता है तो फिर एडवांस होता है सीटी स्कैन।
2: जी
1: सीटी स्कैन के अंदर और पता चल जाता है।
2: जी है। एक कॉलर है हमारे साथ। हेलो
3: नमस्कार।
2: जी नमस्कार,
3: मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाहता हूँ कि जैसे जीवा जीव है जो सफेद हो जाती है, ऊपर का तलवा सफेद हो जाता है, तो ये भी कैंसर रोग के लक्षण है क्या?
1: देखिए ये शुरुआती लक्षण हो सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ सफेद हुआ है तो अभी कैंसर नहीं हुआ है पेशेंट को, लेकिन जैसे वो डिपेंड करता है कि उसकी सफेद हुआ क्यों है।
3: अच्छा।
1: अगर उसको जर्दा खाने की आदत है, शराब पीने की आदत है, बीड़ी सिगरेट पीता है, तो वो इनिशियल सिम्टम हो सकते हैं कैंसर के, लेकिन ये जो सिर्फ सफेद है ये रिवर्सिबल है।
3: अच्छा।
1: मैंने आपको क्या बताया, मतलब कैंसर जी
3: इसकी जांच होती है क्या?
1: हाँ इसकी जांच होती है, डॉक्टर को जाकर दिखाएं, इसमें फिर एंटीऑक्सीडेंट चला के 6 महीने करीब दवाई चलती है और ये वापस से ठीक हो जाता है, या वहीं के वहीं रोक सकते हैं उसको।
3: धन्यवाद साहब आपकी जानकारी।
2: जी बहुत धन्यवाद, आपने फोन किया। तो मुंह का कैंसर हम बात कर रहे हैं, इसके

0: बचाव के उपाय क्या हो सकते हैं, क्या सावधानियां बरतें?
1: सावधानियां यही है मैम, इसमें अगर आपके पास किसी भी तरह की आदत है खाने की,
0: जी
1: इवन तेज मिर्ची भी अगर पेशेंट खाता है तो वो भी एक कारण होता है कैंसर का। जैसे अपने हाड़ौती क्षेत्र के अंदर लोग मिर्चियां बहुत तेज खाते हैं, तो ये भी एक कारण होता है। मतलब क्या होता है, कैंसर इज कॉज्ड बाय ए क्रॉनिक इरिटेंट। अगर आप जैसे स्किन है मेरी, स्किन को अब गाल की जो स्किन है, मुंह की स्किन है, बहुत मुलायम है, आप जानते हो, जरा सा भी छू देते हैं अपन तो सेंसिटिव होती है बहुत ज्यादा। अब उसको आप बार बार किसी चीज से इरिटेट कर रहे हो, जैसे कोई सपोज करे कीली है, वो चुबा रहे हैं 6 महीने से चुबा रहे हैं, तो वो बॉडी भी अपना एक रिएक्शन देगी। मतलब हर आदमी को आदत होती है अपने आप को बचाने की। अब जैसे मेरी चमड़ी में बैठा हूं, अगर कोई गर्म चीज लगेगी तो मैं तुरंत हाथ को हटाऊंगा वहां से, ऐसे ही मुंह के अंदर अब वो हटा नहीं पा रहा है उसके अंदर, तो वो क्या करेगा, धीरे धीरे अपने बचाव के लिए कैंसर बनाना चालू कर देगा, वो एक्स्ट्रा टिश्यू बनाना चालू कर देगा। तो ये जो जर्दा खाते हैं, पान मसाला बीड़ी है, ये एक क्रॉनिक इरिटेंट की तरह काम करते हैं, मतलब छेड़ रहे हैं
0: जी।
1: उसको परेशान कर रहे हैं अपनी चमड़ी को
0: जी।
1: नहीं सर, तो चमड़ी भी अपना शरीर है, वो भी कहेगा यार ये कौन आदमी जो मेरे को बार बार दुखी कर रहा है, तो वो अपने आप को बचाने के लिए एक्स्ट्रा चमड़ी की ग्रोथ करेगा, वही कैंसर का फॉर्म ले लेती है मैम। तो कोई तीखा दांत है जो बार बार चुभ रहा है, उसको आप निकलवा दो या ग्राइंड करा लो। अगर आप तेज मिर्ची खा रहे हैं, लाल मंजन कर रहे हैं, जर्दा खा रहे हैं, पान मसाला टीढ़ी तिगड़ी इस तरह की चीजें ले रहे हैं तो बंद कर दें
0: जी।
1: शराब है उसको आप बंद करें, जो भी गलत आदतें हैं उसको आपको बंद करना पड़ेगा
0: जी।
1: ये
0: तो जैसे आपने कहा राजस्थान में मिर्च ज्यादा खाते हैं, काली मिर्च है, हरी मिर्च है, लाल मिर्च है, तो हर तरह की मिर्च,
1: मतलब लाल मिर्ची का खास रोल है मैम इसके
0: जी। लाल
1: काली मिर्ची वगैरह तो लोग जनरली इतना नहीं डालते हैं, वो तो एक लिमिट में डलती है, लेकिन जो लाल मिर्ची है वो बहुत तेज खाते हैं, तो वो क्रॉनिक इरिटेंट का काम भी करती है मैम
0: जी।
1: उससे भी कैंसर के चांसेस मतलब स्टडीज में देखे गए हैं, अगर बहुत तेज खाते हैं
0: जी। और अब एक अंतराल का समय है,
2: प्रोग्राम के इस भाग के प्रायोजक थे कोटा आई हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर 88 शक्तिनगर दशहरा मैदान कोटा।
3: कार्यक्रम के इस भाग के प्रायोजक हैं राजदीप फर्टिलिटी रिसर्च सेंटर एंड आईवीएफ सेंटर 12-13 आदित्य आवास बजरंग नगर कोटा। एक ही छत के नीचे निसंतानता से लेकर स्वस्थ शिशु जन्म तक की सारी सुविधाएं उपलब्ध। यहां पर IVF, ICSI, एडवांस लेप्रोस्कोपी, हिस्ट्रोस्कोपी, IUI, कृत्रिम गर्भाधान तथा स्पर्म बैंक की सुविधा महानगरों के तुलना में कम खर्च में उपलब्ध। फोन 2320711960223636। ना रहे कोई घर खुशियों से खाली, हर आंगन में गूंजे किलकारी।
0: हेलो डॉक्टर, कार्यक्रम में एक बार फिर से हमारे सभी श्रोताओं का स्वागत है। हमारा आज का विषय है मुंह का कैंसर, समय पर दांतों की जांच से बच सकती है जान। हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर धर्मेंद्र माहेश्वरी, और इस विषय से संबंधित कोई भी जानकारी आप चाहते हैं हमें फोन कर सकते हैं। हमारे टेलीफोन नंबर है 2941142, एसटीडी कोड है 0744। तो डॉक्टर साहब, अब हम बात करें कि ये जो कैंसर का जो शुरुआती यदि हुआ है तो क्या ये ठीक हो सकता है पूरी तरह से?
1: हाँ बिल्कुल ठीक हो सकता है मैम, अगर शुरुआती स्टेज में पकड़ में आता है तो 100% क्यूरेबल है। मेरे पास ऐसे कई कॉन्टेक्ट, मतलब मैं पुराने पेशेंट्स हैं जिनके 10-10 साल पहले कैंसर हुआ था, उन्होंने जाकर प्रॉपर इलाज कराया और आज वो बिल्कुल सही है
0: जी। तो ये जो मुंह का कैंसर है इसको फैलने में कितना समय लगता है?
1: मैम ये एक जो कैंसर है डिपेंड करता है कि जैसे आपको शुरुआत में एक छाला हुआ, सपोज करिए एग्जाम्पल लीजिए, एक छाला हुआ या थोड़ी सी भी ग्रोथ दिखी, अब शुरुआत में ही आपने उस सिम्टम को इग्नोर नहीं किया, जैसे कई लोग तो इग्नोर करते हैं, कई लोग समझ ही नहीं पाते कि हो क्या रहा है और वो जर्दा खाते रहते हैं नहीं मानते हैं, तो वो बढ़ जाएगा, तेजी से बढ़ेगा और पेशेंट को समझ में आ गया कि हाँ भैया मेरे तो ये छाला हो गया या मेरे कुछ जलन लग रही है या गले में कोई तकलीफ हो रही है कुछ भी, तुरंत डॉक्टर के पास पहुंच गया, तो वो वहीं के वहीं रुक जाएगा और अपनी आदत छोड़ दी। मेरे पास ऐसे भी पेशेंट्स हैं जिनको कैंसर हो गया, इलाज करा लिया, उसके बावजूद वो जर्दा खाना नहीं छोड़ा उन्होंने और शराब पीना नहीं छोड़ा, तो उन लोगों का कुछ नहीं हो सकता, समझ रहे मेरी बात
0: का?
1: तो ये तो इंसान का जो अवेयरनेस लेवल है उस पर डिपेंड करता है
0: जी, बिल्कुल।
1: और करीब मान के चलिए कि अगर छला है तो 6 महीने तो मैं वाइग्रस हो जाता है कैंसर
0: जी, बिल्कुल। हेलो,
4: हाँ
0: जी नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
4: चित्रलाल मरविंद बोल रहा हूँ, ग्राम पायलट जिला बारा से
0: जी। क्या जानना चाहते हैं पूछिए।
4: हाँ अभी डॉक्टर साहब ने कहा है कि सुशील करने से कैंसर होता है,
1: क्या करने से
4: आदमी गुटखा तम्बाकू सिगरेट शराब।

0: और आप इसका यूज नहीं करते हैं
1: जी,
0: उनके कैंसर हो जाता है, देखा हमने। और जो इसमें तल्लीन है,
1: थोड़ा जोर से बोलिए आवाज कम आ रही है
2: जी। आप अपना प्रश्न एक बार फिर से पूछिए।
0: बहुत सारे ऐसी लत पड़ रही है गुटखा खाने की, शराब पीने की, धूम्रपान की, तो उनके कैंसर नहीं होता है, और जो नहीं करते उनके कैंसर हो जाता है।
1: देखिए डिपेंड करता है,
0: क्या इंसान की बॉडी कैपेसिटी माने या इंसान की जीवन शक्ति माने या क्या माने इसको? फिर
1: किस्मत माने सर इसको, किस्मत
0: किस्मत।
1: हाँ
2: देखिए बहुत सारे,
1: देखिए आप क्या है कि मेरी बात समझिए, आप क्या है, जिन लोगों के साथ उठते बैठते हैं वो एक छोटा ग्रुप है। आप एक बार अस्पताल में जाके देखिए जहाँ हम लोग काम करते हैं वहाँ कितने मरीज आते हैं, नहीं समझा मेरी बात भाई? आपके जीवन में 2-4 मरीज से कॉन्टेक्ट आया होगा
2: जी,
1: नहीं समझा मेरे। लेकिन हमारे कॉन्टेक्ट में रोज इतने मरीज आते हैं तो हमें समझ में आ रहा है कि कैंसर कितनी तादाद में हिंदुस्तान में बढ़ रहा है। रोज नए कैंसर के अस्पताल खुलने पड़ रहे हैं, सरकार को कितना खर्चा आ रहा है।
0: हाँ वो तो हो रहा था
2: जी,
1: भाई कारण... आप एक दिन अस्पताल में जाके बैठ जाइए।
2: कारण बहुत सारे हो सकते हैं लेकिन मुख्य कारण ये है,
1: मुख्य कारण ये
0: मजबूत हो
1: जी,
0: या रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत हो तो क्या उसे कैंसर नहीं होने का चांस रहते हैं? यूं मेरा मतलब
1: सर ये डिपेंड करता है, कई बार क्या होता है जेनेटिक्स पे भी डिपेंड करता है। जैसे पिछला जीवन जो उनके पिताजी थे दादाजी थे, किसी किसी के जेनेटिक्स अच्छे होते हैं, प्लस खाने का तरीका भी होता है
2: जी।
1: कोई आदमी मुंह में लेकर तुरंत थूक देता है, नहीं समझा मेरी बात? कोई आदमी उसको रख के सो जाता है रात भर, तो जो रात भर रख के सोएगा जर्दे को गाल के बगल में उसको तो कैंसर जल्दी होएगा। अब जो आदमी ने चलो खाया 5-10 मिनट मुंह में रखा उसके बाद थूक दिया निकाल दिया, तो भले खा वो भी रहा है नहीं, खाने के तरीके से भी फर्क पड़ जाता है
2: जी।
1: ये सर
2: जी बहुत सारे कारण हो सकते हैं।
1: कोई एक बोतल रोज पी रहा है, कोई एक पैक रोज पी रहा है, तो जो एक बोतल रोज पी रहा है उसके ज्यादा जल्दी असर आएगा, जो एक क्वार्टर कम पी रहा है उसे कम असर आएगा
2: जी। बहुत धन्यवाद आपने फोन किया। तो मुंह के कैंसर से बचने की जो संभावना है ये किन बातों पर निर्भर करती है?
1: देखिए इसकी संभावना बहुत सारे बातों पर डिपेंड करती है मैम। एक तो जिन लोगों का खान पान अच्छा होता है
2: जी,
1: जिसे इन्होंने अभी क्वेश्चन पूछा थोड़ी देर पहले आया था कि किन बातों पर, मतलब किसी की इम्यूनिटी अच्छी है क्या है, जैसे किसी के हेल्दी न्यूट्रिशंस हैं बढ़िया है, खान पान बढ़िया है
2: जी,
1: तो उसका ज्यादा रहेगा। प्लस क्या है कि अगर आदत आप छोड़ सकते हैं, बहुत सारे लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल कम होता है
2: जी,
1: तो उनमें कॉन्फिडेंस नहीं होता कि वो छोड़ पाते हैं। कई लोग महीना भर छोड़कर दोबारा चालू कर लेते हैं, कई लोग हमेशा के लिए एक सेकंड में छोड़ देते हैं कि जिनको छोड़ना होता है। दूसरा वो ओरल हैबिट कितनी अच्छी है उसकी, सुबह शाम ब्रश कर रहा है नहीं कर रहा है
2: जी,
1: हाइजीन कितनी मेंटेन कर रहा है, तो उस चीजों पर डिपेंड करती है, और कितना साइन को जल्दी जल्दी पकड़ ले रहा है वो
2: जी। हेलो
3: नमस्कार जी मैडम।
2: हाँ जी नमस्कार, पूछिए अपना प्रश्न।
3: मेरे ये जो राइट साइड है ना
2: जी,
3: जो जुबा रहते हैं ना अपने अंदर से, वहाँ से थोड़ा थोड़ा दर्द होता है, जब मतलब कुड़ा करते हैं ना पोड़
2: जी,
3: तब वहाँ से दर्द होता है।
1: निकलने में दिक्कत आती है क्या आपको, खाना निकलने में दिक्कत आती है?
3: हाँ गले में दिक्कत आती है इस राइट साइड पे।
1: किसी को दिखाया आपने डॉक्टर को?
3: डॉक्टर को अभी तो नहीं दिखाया सर।
1: तो दिखाओ सर आप उसको।
3: आज दिखा लूंगा सर, बता दो बड़े अच्छी सी।
1: किसी भी नाक कान गले वाले अच्छे किसी नाक कान गले डॉक्टर को दिखाओ, आप जांचे होंगे आपकी
3: सर,
1: है ना, जांचे करके बताएंगे वो आपको। आपकी कोई आदत है खाना खाने की, जर्दा वर्दा? कुछ जर्दा वर्दा खाते हो क्या आप?
3: जर्दा खाता हूँ सर, जर्दा नहीं खाता, विमल खाता हूँ।
1: हाँ बात वही है, विमल जर्दा तम्बाकू तुलसी उसी कैटेगरी में आती है सर। मेरे हिसाब से सर आपको तुरंत विमल का तो सेवन बंद कर देना चाहिए।
3: अच्छा
1: है ना, और बढ़िया खान पान करो, तुरंत डॉक्टर को दिखाएं सर
2: जी। बहुत धन्यवाद आपने फोन किया। तो डॉक्टर साहब जब इसका इलाज चल रहा होता है तो उस दौरान मरीजों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
1: देखिए जब इसका इलाज चल रहा होता है तो मरीजों को सबसे पहले तो ध्यान रखना चाहिए कि हमें एक तो स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है
2: जी,
1: क्योंकि स्ट्रेस भी टेंशन जो होता है इससे भी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो डाउन होता है और कैंसर चीजें बढ़ती हैं
2: जी।
1: तो अपने आप को बिल्कुल शांत रखें, परिवार वालों को ध्यान रखना चाहिए कि हम उसको कोसे नहीं कि जर्दा क्यों खाते थे, अब इसका फल मिल रहा है ये मिल रहा है, उस तरह की बातें ना करें, क्योंकि जो हो गया वो तो हो गया, अब उसका कुछ नहीं कर सकते। आप फर्दर उसके बारे में ध्यान रखें, डॉक्टर की बताई हुई दवाइयां, अगर डॉक्टर रेडियोथेरेपी बता रहा है आपको, एक रेडियोथेरेपी है सर्जरी है जो भी है, तुरंत उसको कराएं अच्छे सेंटर पे, हायर सेंटर पे कराएं उसको, और उसको फॉलो करें
2: जी।
1: और खान पान अच्छा रखें अपना, फल फ्रूट ज्यादा खाएं
2: जी, बिल्कुल।

0: तो इसका इलाज कितने समय में हो सकता होगा, कितना समय लग जाता है?
1: देखिए डिपेंड करता है कि कैंसर का लेवल कैसा है। अगर इनिशियल स्टेज में है तो तुरंत सर्जरी हो जाती है, और उसके बाद में अगर जरूरत होती है तो डॉक्टर रेडियोथेरेपी के लिए अप्लाई करते हैं, वरना मेडिसिन देके ठीक करते हैं। कई ओरल कैंसर के अंदर केमोथेरेपी भी दी जाती है, केमिकल द्वारा उसको डिस्ट्रॉय किया जाता है। कई जगह रेडियोथेरेपी दी जाती है, रेडियोलॉजिकली उसको डिस्ट्रॉय किया जाता है। आजकल तो बहुत अच्छी मशीन आ गई है, लीनियर एस्केलेटर्स वगैरह मशीन आ गई है, तो वो तुरंत वहीं के वहीं मार देते हैं जहाँ पे सेल्स होते हैं।
0: अच्छा जी,
1: और सर्जरी तो है ही है ऑप्शन।
0: तो क्या इलाज के बाद भी कैंसर दोबारा हो सकता है?
1: हाँ बिल्कुल हो सकता है, चांसेस रहते हैं।
0: तो इसमें स्टेज का कोई फर्क नहीं पड़ता?
1: स्टेज का कोई फर्क नहीं पड़ता। सर्जरी के दौरान अगर कोई टिश्यू छूट गया या सर्जरी या बिनाइन रहता है तो चांसेस रहते हैं। जनरली सर्जन सर्जरी करते हैं तो जो कैंसर का पार्ट होता है उसके आसपास का भी काफी सारा निकाल लेते हैं। हर साल में आप एक बार जांच करा लें, जैसे पैट स्कैन वगैरह होता है तो उससे भी डॉक्टर पता कर लेते हैं।
0: जी हेलो। हेलो, हाँ जी नमस्कार।
2: नमस्कार मैडम, मैं डॉक्टर साहब से मैं कोटा शिवपुरा से बोल रहा हूँ।
0: पूछिए।
2: डॉक्टर साहब से ये पूछना चाह रहा हूँ कि ऊपर के जबाड़े के जो चार दांत है उससे दाएं साइड के चार दांत से पहले है ना दांत है ना जिसके पीछे का साइड टूट गया मेरा
1: जी,
2: तो MBS में दिखाया था तो उन्होंने बोला कोई इस दांत दांत को आप निकलवा लेना नहीं तो कैंसर हो जाएगा, पर वो हिल भी नहीं रहा।
1: तो उन्होंने डॉक्टर साहब ने कुछ सोच समझ के बोला, वहां से पूछ लेते हैं ऐसी क्या लग रहा है आप।
2: अब मैं उन्होंने तो बोल दिया था भाई निकला लेना नहीं तो, उस टाइम मेरा क्या है जबाड़ा छूट गया था, सूजन ले लिया था, तो उस टाइम में उन्होंने गोली दवाई दी तो ठीक हो गया, पर वो दांत हिल नहीं रहा।
1: हिलने से मतलब नहीं, इसका मतलब वो दांत अंदर से खराब है आपका, ऐसी सूजन आई होगी आपको।
2: हाँ हाँ हाँ, तो अब है ना उसके अंदर मेरे ये दिक्कत आ रही है, जैसे खाना खाता हूँ तो वो बुरादे फंस जाते हैं।
1: हाँ तो उसको सर निकलवा लो आप, वरना वो बुरादे फंस के दोबारा री इन्फेक्शन होके ना वो क्या होता है। हाँ। जो जैसे डॉक्टर साहब ने सोच समझ के ही बोला, क्रॉनिक इन्फेक्शन मतलब लंबे समय तक मुंह के अंदर अगर कोई इन्फेक्शन बना रहता है तो वो भी कैंसर का रूप ले लेता है कई बार।
2: ये डॉक्टर साहब मैं बोल रहा हूँ जैसे इसमें कोई मसाला वसाला नहीं पड़वा सकतेगा?
1: वो तो मतलब देख के ही बताएंगे डॉक्टर की, मसाले भरने लायक स्थिति में बचा है कि नहीं बचा है, निकलेगा क्या होगा, मैं फोन पर तो नहीं बता पाऊंगा ये चीज़।
0: जी तो आप एक बार डॉक्टर से संपर्क करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपने फोन किया। तो अब हमें ये समझना क्यों आवश्यक है कि इलाज मतलब किस तरह से होगा।
1: देखिए सबसे पहले कि आपका कैंसर का स्टेज लेवल क्या है।
0: जी
1: आप शुरुआती लक्षण में है, आगे के लक्षण में है, किस तरह के है। अगर शुरुआती लक्षण है जैसे खाली छाला है, अब छाले क्यों है उसका वो देखना पड़ेगा, कारण क्या है छाले का। अगर तीखा दांत है तो कई बार वो छाला तीखा दांत निकालने से भी या उससे भी ठीक हो जाता है। अगर उसके बावजूद ठीक नहीं हो रहा तो फिर ओरल कैंसर के लिए उसमें सर्जरी होती है, मेडिसिन कर देते हैं, बहुत सारे तरीके हैं उसको करने का। वो स्टेज पे डिपेंड करता है कि पेशेंट किस स्टेज में
0: जी।
1: शुरुआत में तो मेडिसिन से ही ठीक करने की कोशिश करते हैं, जिस कारण की वजह से है वो कारण ठीक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अग्रिम स्थिति में आता है तो फिर ऑपरेशन ही एकमात्र उपाय है उसका।
0: जी जी बिल्कुल। तो इसके इलाज के मुख्य तरीके क्या हैं, आधुनिक तकनीकें क्या हैं?
1: आधुनिक तकनीक ये है कि सबसे पहले तो जांच हुई पेशेंट की, उसके बाद में उसको बायोप्सी हुई। जनरली मुकंदर स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा ही होता है
0: जी।
1: तो वो जांच में पहले पता पड़ता है कि भी कौन सा कैंसर है पेशेंट को, और फिर उसके बाद में देखा जाता है कैंसर कहाँ कहाँ तक फैल गया है
0: जी।
1: जो पैट स्कैन वगैरह मशीन आती है उसमें सब चेक कर लेते हैं कहाँ तक फैला है, फिर उसके बाद में प्लानिंग करते हैं कि इसका ऑपरेशन पॉसिबल है या नहीं है। कई बार वो ऐसी जगह पे फैला हुआ होता है कि उसका ऑपरेशन करेंगे तो पेशेंट की सांस नली में अटक गई या सांस नली काटनी पड़ गई तो पॉसिबल नहीं है करना ऑपरेशन, फिर उसमें दूसरा ऑप्शन ढूंढने जाते हैं रेडियोथेरेपी वगैरह है ये
0: जी।
1: तो किस एरिया का कैंसर है मुंह के, किस लेवल का कैंसर है
0: जी,
1: किस स्टेज का कैंसर है, उसके ऊपर डॉक्टर फिर डिसाइड करता है क्या करना है उस पेशेंट का
0: जी। तो उपचार के बाद मुंह के स्वास्थ्य का जो ध्यान रखना है वो किस प्रकार से रखना है?
1: इस प्रकार से रखना है कि कोई भी एक तो तीखी चीज नहीं खानी है
0: जी,
1: मिर्च मसाले कम से कम लेने हैं आपको, सादा भोजन करना है, फ्रूट्स वगैरह ज्यादा लेने हैं, मेडिसिन जो डॉक्टर ने दी वो टाइम से लेनी है, और कोई भी जो बुरी आदत हम पहले करते थे वो नहीं करनी है
0: जी,
1: और हाइजीन मेंटेन करनी है दोनों टाइम, आपको ब्रश करना है, माउथ वॉश वगैरह जो भी डॉक्टर ने बोल रखा है वो लेना ही लेना है
0: जी। तो सर्जरी के बाद क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं कुछ?
1: हाँ साइड इफेक्ट्स होते हैं, जो कि पेशेंट का सर्जरी के बाद जैसे गाल काटना पड़ा या जीभ काटनी पड़ी या पीछे जबड़ा काटना पड़ा तो उसका मुंह खुलना बंद हो जाता है, रेस्ट्रिक्शंस हो जाती हैं, और वो ठीक से बोल भी नहीं पाता है कई बार, और मतलब एक तरह से देखा जाए तो चेहरा

0: भी विकृत सा हो जाता है पेशेंट का, तो सोशली और मेंटली
1: जी
0: एक परेशानी तो है ही है। पेशेंट जैसे आप और हम जी रहे हैं उस तरह से तो नहीं जी पाता
1: जी,
0: मतलब एक प्रेशर में तो रहता ही रहता है मरीज।
1: हाँ।
0: और हमेशा उसको एक डर बना रहता है दिमाग के अंदर कहीं दोबारा ना हो जाए।
1: जी बिल्कुल। तो जो हमारी जीवन शैली है किस तरह की होनी चाहिए, जैसे मुंह है उसको किस तरह से साफ करना है, दांतों का कैसे ख्याल रखना है, हमारा खान पान कैसा हो, इस बारे में क्या कहेंगे? हाँ।
0: हमारा खान पान मेरे हिसाब से अपने जो हिंदुस्तानी खान पान था
1: जी, पुराना। पहले हम एक कॉल ले लेते हैं। हेलो
2: हेलो, गुड मॉर्निंग मैम।
1: हाँ जी, कौन बोल रहे हैं?
2: मैम मैं राजकुमार लक्षकर बात कर रहा हूँ, कोटा राजस्थान
1: जी। पूछिए क्या पूछना चाहते हैं।
2: मैम मेरे ऊपर वाली राइट हैंड पे ना दाढ़ में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, इस वजह मतलब कीड़ा लग गया था, तो वो दाढ़ है ना क्या टूट गई, तो अब इसमें मतलब हमें मसाला भरवाना चाहिए या फिर उसमें ऐसा कुछ इलाज हो सकता है क्या, या कैसे करना है इसको?
0: सर ये है, पहले तो आपको किसी भी जो अच्छे दंत चिकित्सक हैं शहर के अंदर उनको जाके दिखाइए, उसमें ये पता लगाइए कि वो बचने लायक स्थिति में है भी या नहीं है। कई बार क्या होता है कि दांत इस कंडीशन में आ जाता है कि वो बच ही नहीं सकता, तो उस कंडीशन में उसको निकलवाना बेहतर है। अगर दांत इतना ज्यादा खराब नहीं हुआ है कि उसको बचाया जा सकता है, तो उसमें रूट कनाल करके कैपिंग वगैरह हो जाती है, दांत बचा लिया जाता है, लेकिन वो एक्सरे करने के बाद प्रॉपर जांच करने के बाद ही डिसाइड हो पाएगा वो।
1: जी, बहुत धन्यवाद आपने फोन किया। और अब समय है एक अंतराल का।
3: एक ही छत के नीचे निसंतानता से लेकर स्वस्थ शिशु जन्म तक की सारी सुविधाएं उपलब्ध यहां पर। IVF, ICSI, एडवांस लेप्रोस्कोपी, हिस्ट्रोस्कोपी, IUI, कृत्रिम गर्भाधान तथा स्पर्म बैंक की सुविधा महानगरों की तुलना में कम खर्च में उपलब्ध। फोन 2320711960223636। ना रहे कोई घर खुशियों से खाली, हर आंगन में गुंजे किलकारी। कार्यक्रम के इस भाग के प्रायोजक थे राजदीप फर्टिलिटी रिसर्च सेंटर एंड IVF सेंटर, 1213 आदित्य आवास, बजरंग नगर, कोटा।
4: कार्यक्रम के इस भाग के प्रायोजक हैं कोटा डेंटल इंस्टीट्यूट, 5A10 रंगबाड़ी रोड, तलवंडी, कोटा।
5: लब हिले तो मोगरे के फूल खिलते हैं कहीं।
4: जी हाँ, आप भी अपनी मुस्कान और हंसी से अब मोगरे के फूल बिखेर सकते हैं। कोटा डेंटल क्लिनिक इम्प्लांट एवं लेजर सेंटर में आपको मिलती है अनुभवी एवं डेंटल इम्प्लांट और डेंटल लेजर विशेषज्ञ डॉक्टर धर्मेंद्र माहेश्वरी की विश्वसनीय सेवाएं। रूट कैनाल, केपिंग, टेढ़े मेढ़े दांतों का प्रभावी इलाज। डेंटल इम्प्लांट के बारे में एक बार अवश्य संपर्क करें डॉक्टर धर्मेंद्र माहेश्वरी, मोबाइल 9928085808।
1: हेलो डॉक्टर, कार्यक्रम आप सुन रहे हैं। हमारा आज का विषय है मुंह का कैंसर, समय पर दांतों की जांच से बच सकती है जान। हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर धर्मेंद्र माहेश्वरी। और श्रोताओं, इस विषय पर जानकारी लेने के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारे टेलीफोन नंबर है 2941 142, STD कोड 0744। तो डॉक्टर साहब, हमारा जो प्रश्न था, हमारी जो जीवन शैली है कैसी हो, अपने मुंह के स्वास्थ्य का कैसे ख्याल रखें, इस बारे में बताएं।
0: देखिए, सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि हिंदुस्तान में जैसे लोग कह रहे हैं कि खैनी खाने से इनसे कुछ नहीं उभरता
1: जी,
0: ये आजकल मैंने, हम लोग कई बार गाँव में जाके कैंप्स वगैरह भी करते हैं, तो हमने ये पाया है कि आजकल छोटा बच्चा भी है जैसे 8वीं क्लास का 9वीं क्लास का, तो वो भी जर्दा खा रहा है
1: जी,
0: विमल खा रहा है। तो ये जो टीवी में एडवर्टाइजमेंट्स वगैरह आ रहे हैं, तो मैं कहना चाहूंगा कि हिंदुस्तान में कैंसर इतनी तेजी से फैल रहा है, सिगरेट के ऊपर लिख भी रहे हैं लेकिन लोगों पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा
1: जी।
0: तो ये लोगों को खुद समझना पड़ेगा कि हमारे स्वास्थ्य के लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है
1: जी।
0: सबसे पहले इम्पोर्टेंट पार्ट तो ये है। तो एक और, कैंसर इतनी गंभीर बीमारी है कि जिसको होने के बाद आदमी जिंदा रहेगा नहीं रहेगा, ये भी एक क्वेश्चन मार्केबल रहता है। अगर वो जिंदा रह भी गया, इलाज भी करा लिया, सब कुछ ठीक भी है, तो भी वो नॉर्मल लाइफ नहीं जी सकता
1: जी।
0: सबसे प्रॉब्लम वाली बात यह है। तो अपने को इन चीजों को तो सबसे पहले अवॉइड करें
1: जी।
0: सबसे चीज स्ट्रेस वगैरह जो है वो भी अवॉइड करें
1: जी। कॉलर को ले लेते हैं। हेलो,
6: नमस्कार जी।
1: हाँ जी, कौन बोल रहे हैं?
6: शर्मा सर बोल रहे हैं।
1: पूछिए अपना सवाल। हेलो
6: हेलो, नमस्कार जी।
1: हाँ जी, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं।
6: कैंसर का

0: खाएगा दांतों का है।
1: कैंसर सर मुंह का कैंसर होता है?
0: हाँ मैं कह रहा था मुंह में जो दांत टूट जाते हैं
1: जी,
0: जो उससे कैंसर हो जाता है क्या?
1: हाँ हो जाता है सर, वो दांत तीखे होते हैं उनसे आपके गाल कटते रहते हैं, गालों में घाव होता रहता है और वो कैंसर का रूप धारण कर लेता है।
0: तो चेकअप करवाने के लिए कहाँ है, MBS में है, कहाँ है?
1: कहीं भी दिखा सकते हैं सर, आपके नियर बाय कोई डेंटिस्ट हो जहाँ आप रहते हैं उसके आसपास, MBS है, न्यू गवर्नमेंट कॉलेज मेडिकल कॉलेज है, कोई प्राइवेट डेंटिस्ट है, जहाँ भी आपको सुविधा अनुसार जहाँ भी आप जाना चाहें जा सकते हैं।
2: जी धन्यवाद फोन किया। जी डॉक्टर साहब तो आप बता रहे थे।
1: हाँ मैं कह रहा था कि एक तो क्या होता है कि गाँव के अंदर एक तो न्यूट्रिशन लेवल ठीक नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि बच्चे का खान पान ठीक नहीं है। दूसरा आजकल जो खाने में पेस्टिसाइड डाले जा रहा है सब्जियों के अंदर, उनके अंदर एक तो जर्दा भी खा रहा है प्लस वो पेस्टिसाइड भी खा रहा है
2: जी,
1: तो डबल चीज हो गई प्लस वो टेंशन में भी जी रहा है। तो ये सब दो चार फैक्टर मिलके कैंसर बहुत तेजी से फैलता ही है
2: जी।
1: आप किसी आप जैसे उन्होंने एक बार बीच में एक कॉलर ने क्वेश्चन किया था कि किस चीज पे डिपेंड करता है, आप जैसे कोई आदमी है खाना ऑर्गेनिक खा रहा है।

0: अंदर उनके अंदर एक तो जर्दा भी खा रहा है प्लस वो पेस्टिसाइड भी खा रहा है
1: जी,
0: तो डबल चीज हो गई प्लस वो टेंशन में भी जी रहा है। तो ये सब दो चार फैक्टर मिलके कैंसर बहुत तेजी से फैलता ही है
1: जी।
0: अब किसी अब जैसे उन्होंने एक बार बीच में एक कॉलर ने क्वेश्चन किया था कि किस चीज पे डिपेंड करता है। अब जैसे कोई आदमी है खाना ऑर्गेनिक खा रहा है, स्ट्रेस नहीं है जीवन में, लेकिन जर्दा खा रहा है तो उसको थोड़ा देर से हो सकता है अगर वो ज्यादा खा रहा है। तो एक आदमी है जिसके साथ काफी सारी चीजें हैं, न्यूट्रिशन लेवल कम है, टेंशन भी है उसको, स्ट्रेस भी है लाइफ के अंदर, और जर्दा भी खा रहा है, शराब भी पी रहा है, तो उसको जल्दी हो जाएगा
1: जी।
0: लेकिन मैं कहता हूँ अगर हो भी गया, अगर आप जनरल चेकअप करा भी रहे हैं, अपने सिम्टम को इग्नोर नहीं किया, जैसे आपको लगने लग गया कि हाँ भैया मैं मिर्ची खा रहा हूँ तो मुझे बहुत जलन हो रही है, मुझे बोलने में मुझे कोई गांठ जैसी महसूस हो रही है, मेरे मुंह में कोई मवाद निकल रहा है, सूजन आ रही है मसूड़ों में बार बार, कहीं से खून आ रहा है, और तुरंत जाके आपने डॉक्टर को चेकअप करा लिया, अर्ली स्टेज में पता चल गया, तो हो सकता है आप दवाइयों से ही ठीक हो जाओ, आपको आगे फर्दर पड़े ही नहीं जरूरत, और आपको समझा ही देंगे डॉक्टर की भाई ये चीजें नहीं करनी है
1: जी।
0: अगर आप इन सब चीजों को इग्नोर कर रहे हैं तो आपका कैंसर होना लाजमी है। फिर उसके बाद में महंगा खर्चा
1: जी,
0: इलाज में खर्चा काफी आता है, और प्लस आपका टाइम
1: जी,
0: पूरी जिंदगी पूरे परिवार की और आपकी पूरी डिस्टर्ब हो जाती है,
1: बिल्कुल
0: है ना। और कैंसर वर्ड सुनते ही आधा तो डिप्रेशन में वैसे ही आ जाता है आदमी
1: जी।
0: तो हम ये चाहेंगे कि आप इन सब चीजों को कोशिशें करें भाई, वो अपना काम कर रहे हैं
1: जी,
0: वो जो बेच रहे हैं, जो इसके डीलर हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट दे रहे हैं, सब बेच उनका काम बेचना है क्योंकि उनको तरफ से पैसा कमाना है। आपको समझना है कि आपको क्या करना है, मतलब आपको अपने आप को बचाना है, अपने पैसे बचाने हैं, अपना जीवन बचाना है
1: जी,
0: वो डिपेंड करता है सर।
1: बिल्कुल। तो ये ग्रामीण परिवेश में अधिक देखने में आता है या शहरी?
0: मैम ग्रामीण में ज्यादा आ रहा है आजकल
1: जी,
0: शहरी में तो क्या है कि आता ही है, लेकिन शहर में लोग जनरली दिखा लेते हैं, लेकिन ग्रामीण में क्या होता है कि एक तो दूरी
1: जी,
0: और प्लस जानकारी का अभाव,
1: हाँ हाँ,
0: दूसरा पैसे का अभाव, बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं मैम
1: जी। और इसमें क्या उम्र का भी फर्क पड़ता है?
0: उम्र का फर्क पड़ता है, अगर यंग आदमी है उसमें कैंसर का इलाज अगर तुरंत पकड़ में आ जाता है तो ज्यादा बेटर तरीके से हो जाता है। ओल्ड एज है तो वो इलाज झेलने की कैपेसिटी कम होती है, जो कि इसकी जो दवाइयां होती है कैंसर की, इससे जो रेडियोथेरेपी होती है ये अपने आप में बहुत स्ट्रांग होती है, इसको झेलने के लिए भी शरीर में ताकत चाहिए
1: जी। बिल्कुल। तो अब हम बात करेंगे इसके इलाज के बारे में ही
0: जी,
1: कि किस तरह से इसका उपचार होता है।
0: इसका मैम सबसे पहले पेशेंट को जैसे हमारे पास आया, पेशेंट से हमने पूरी हिस्ट्री ली उसकी कि भाई आपको क्या क्या समस्या है, उसने अपनी चीफ कंप्लेंट बताई, उसके बाद में हमने उसका ओरल एग्जामिनेशन किया सारा, अगर हमें लगा कि हाँ इससे कोई कैंसर का सिम्टम है तो उसके लिए फिर हमने सबसे पहले उसकी बायोप्सी लेते हैं
1: जी।
0: बायोप्सी लेने के बाद उसमें कंफर्म हो जाता है कैंसर है या इनिशियल स्टेज में, अगर इसमें कैंसर के पहले प्री कैंसरस लीजन्स भी होते हैं जैसे ल्यूकोप्लेकिया हो गया, लाइकेन प्लेनस हो गया, ये ऐसे इलाज होते हैं जो हमारे लेवल पे ही ठीक हो जाते हैं, हमें आगे फर्दर उसको रिफर नहीं करना पड़ता। तो ऐसे में हम दवाइयां देते हैं, 6 महीने का कोर्स होता है, उसके जो प्री कैंसरस लीजन होते हैं वो ठीक हो जाते हैं, बशर्ते पेशेंट को जो हम बता रहे हैं जर्दा वर्दा छोड़ दे, अपना थोड़ा खान पान बढ़ा दे, अच्छा कर ले। ऐसे बहुत सारे मरीज मैंने ठीक किए हैं जो प्री कैंसरस लीजन कहते हैं, ऐसे हजारों मरीज हैं जो ठीक हो गए, उनको उनको समझदारी से उन्होंने ठीक हो गए। अब कोई आदमी है बताने के बावजूद भी नहीं समझ रहा है, वो जर्दा खा रहा है या पान मसाला तंबाकू जो भी उसकी आदत नहीं छोड़ रहा, तो उसको फिर वो प्री कैंसरस लीजन से कैंसरस लीजन के अंदर आ जाएगा। कैंसरस लीजन में आने के बाद बायोप्सी होगी, उसके बाद में फिर हम लोग उसको ओरल जो कैंसर सर्जन होते हैं उनके पास रिफर कर देते हैं, कैंसर सर्जन उसकी सर्जरी करता है, रेडियोथेरेपी करता है, फिर बाकी का ट्रीटमेंट वो करते हैं सारा, रेडियोथेरेपी वो करते हैं।
1: तो इसमें पहले कैंसर को हटाते हैं और फिर जो त्वचा हट गई है उसको वापस से लगाया जाता है।
0: हाँ,
1: तो इसमें क्या दो सर्जरी होती है?
0: दो सर्जरी होती है उसमें, एक तो आपका कैंसर एक ऐसी चीज है जिसका इलाज करने के लिए आपको सिर्फ काटनी पड़ती है
1: जी।
0: उसके बाद में चेहरा विकृत हो गया उसको बनाने के लिए ग्राफ्टिंग है, बोन ग्राफ्ट वगैरह, काफी सारी सर्जरी उसके बाद में करनी पड़ती है, महंगा इलाज है
1: जी, और एक लंबा प्रोसेस,
0: लंबा प्रोसीजर है, उसमें पूरा परिवार डिस्टर्ब, आप डिस्टर्ब, काम धंधा डिस्टर्ब, शरीर डिस्टर्ब। तो मैं तो यही एडवाइस करूंगा कि अगर कोई भी मेरी बात जो श्रोता मुझसे सुन रहे हैं
1: जी,
0: मैं उनसे यही कहना चाहूंगा कि कृपया करके अगर आपको कोई ऐसी भी गंदी आदत है तो अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाइए, आपके परिवार में किसी की आदत है तो उसको छुड़ाइए। जर्दा पान मसाला तंबाकू ये आपके स्वास्थ्य के लिए ना, आपके मानसिक परिवार के लिए, सबके लिए घातक है। लाल मंजन की अगर आदत है तो उसको भी बंद कराइए, अपने बच्चों को बचाइए। मैंने देखा है कि गांव में यह स्थिति है कि पेशेंट के पास पेस्ट खरीदने के पैसे नहीं है
1: जी।
0: उनसे कहते हैं कि भाई तेरे दांत इतने गंदे क्यों हैं, तो पेस्ट नहीं करता क्या, कहता है तो वो बच्चा कहता है सब पेस्ट लाते ही नहीं घर वाले
1: जी।
0: मतलब पेस्ट खरीदने के पैसे नहीं है लेकिन वो 1-2 रुपए की विमल खरीदने के पैसे हैं
1: जी।
0: तो आप सोचिए कितनी गंभीर स्थिति है।
1: बिल्कुल जी। तो मुंह की और दांतों की जो देखभाल है वो किस तरह से की जाए?
0: मैम सबसे पहले तो हमको हमारा जो न्यूट्रिशन लेवल है वो अच्छा रखना है, फूड्स वगैरह अपने क्वांटिटी में अच्छा रखना है, सिर्फ रोटी सब्जी दाल चावल पे डिपेंड ना रहे
1: जी।
0: छाछ

0: लस्सी वगैरह दूध वगैरह भी अच्छे क्वालिटी में लें। कोशिश करें कि सब्जियां वगैरह अगर लें तो ऐसी ना लें जिसमें पेस्टिसाइड डाला हुआ हो, और करें तो धोके लें, क्योंकि पेस्टिसाइड भी एक नया कैंसर का कॉजिंग बन गया है। जो लोग जिससे जिनको कुछ नहीं खाने की आदत है उनके भी कैंसर हो जा रहा है, जो सादा खाना खाते हैं उसका रीजन ये होता है कि वो पेस्टिसाइड वगैरह या क्रॉनिक इरिटेंट वगैरह वो भी काम करते हैं। दोनों टाइम ब्रश करें आप, माउथ वॉश वगैरह करें, कोई भी सिम्टम नजर आए जैसे मुंह में ब्लीडिंग आ रही है या मुंह में बदबू आ रही है, फॉल स्मेल आ रही है, कहीं भी आपको सूजन दिख रही है मुंह के अंदर, टूटा फूटा दांत दिख रहा है, तुरंत उसको निकलवा लें। दांत लगवाए नहीं कोई बात नहीं, लेकिन निकलवा जरूर लें उसको। कई बार लोगों को लगता है कि निकलवा के लगवाना भी पड़ेगा तो महंगा खर्चा आएगा, उसकी चिंता मत करिए। अगर आपका दांत टूटा है तो निकलवा तो लीजिए, नहीं लगवाएंगे उससे बेटर है उसको निकलवाना।
1: जी, अगर मुंह में कोई भी समस्या लग रही है तो एक बार दिखा जरूर,
0: तुरंत गले की आवाज चेंज हो रही है, जुबान में मूवमेंट नहीं आ रहा है, कहीं तालू में आपको लग रहा है कि मेरे भी गांठ जैसी हो रही है, कि हल्का फुल्का दर्द है जबड़े में, कोई दांत मेरा काफी टाइम से हिल रहा है, गंदगी जम रही है, तो तुरंत दिखा के तुरंत इलाज कराएं। मतलब मुंह के ऊपर खास ख्याल रखें, मुंह से ही काफी सारी बीमारियां चालू होती है और मुंह की जांच से बहुत सारी बीमारियां पता भी चल जाता है।
1: जी, जैसा कि आपने बताया ये बीमारी वंशानुगत हो सकती है।
0: जी बिल्कुल,
1: तो क्या संभावना रहती है या किस तरह से फिर बचाव हो सकता है?
0: देखिए, इसमें वंशानुगत ये होती है कि अगर आपको लगता है कि मेरे परिवार में भी किसी को पहले कैंसर हुआ था इस तरह के, तो हम ऐसी कोई भी चीज ना करें जिससे कि वो कैंसर हमें पकड़ सके, क्योंकि उस केस में प्रोबेबिलिटी काफी हाई है। जैसे एक दो परिवार मान ले, एक परिवार में कभी किसी को कैंसर नहीं हुआ और एक परिवार में पहले भी दो चार लोगों का कैंसर हो चुका है, तो उनको तो इन चीजों से खास बचाव करना चाहिए, बहुत ध्यान रखना चाहिए, हर छह महीने में अपनी जांच करनी चाहिए जिससे उनको ना हो। और एक परिवार में जिसमें ना भी हुआ तो उसके प्रोबेबिलिटी कम होगी।
1: जी,
0: ये
1: एक चीज आपने और बोली कि जो परिवार वाले हैं अगर घर में किसी को कैंसर हो गया तो उनका सपोर्ट होना बहुत जरूरी है,
0: सपोर्ट होना बहुत जरूरी है,
1: मानसिक और
0: भावनात्मक।
1: क्या कहेंगे इस बारे में?
0: मैम ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि क्या है कि कैंसर वर्ड सुनते ही पेशेंट डिप्रेशन में जाता है। अपना जो शरीर है ये अपना दिमाग कंट्रोल करता है। अब दिमाग जैसे आप है, अब बॉडीज में अगर एनर्जी, आपके दिमाग में एनर्जी है तो कमजोर आदमी भी उठकर दौड़ने लगता है।
1: जी,
0: आज मेरे को कुआं कूदना है और मैं पहले ही सोच लूं कि मैं तो कुएं में गिरूंगा ही गिरूंगा, तो कोई दुनिया का ताकत नहीं है जो उसको कुआं कूदवा दे। और आप पहले सोच लेंगे हाँ नहीं मैं इसको कूद जाऊंगा, मैं निकल जाऊंगा, उसको ओवरकम कर जाऊंगा, आपने दिमाग से कंट्रोल कर लिया तो आप उसको क्रॉस कर सकते हैं। अब फैमिली वाले उसको बार बार डिस्टर्ब करेंगे, ये जर्दा खाते थे, ये करते थे, फलाना करते थे, उसको कोसने लगेंगे, तो उसमें क्या है, वो पहले टूटा हुआ आदमी है वो बेचारा और मानसिक रूप से टूट जाएगा, तो उसको ये लगेगा कि ऐसी जिंदगी से तो मरना बेहतर है। तो अगर आप उसको सपोर्ट करें, कोई बात नहीं भैया जो होना था हो गया, तो अपन इलाज करा ले, अपन सुधर जाए, और कोई बात नहीं, अब अपन आगे की सोचें। अगर उसको आप फैमिली का सपोर्ट करेंगे तो वो डिप्रेशन में नहीं आएगा, और अगर लग रहा है कोई डिप्रेशन में तो अपन साइकेट्रिस्ट से उसके डिप्रेशन का भी इलाज कराएं। मतलब मेंटल कंट्रोल होना बहुत जरूरी है, दिमाग से सारी चीजें कंट्रोल करती है शरीर की। अगर आप मेंटली स्ट्रांग हैं तो आप किसी भी बीमारी से, दुनिया की किसी भी समस्या से बाहर निकल सकते हैं।
1: जी बिल्कुल, जैसा आपने कहा तनाव में ना रहे, तो इसके लिए क्या एक्सरसाइज वगैरह का कोई रोल है?
0: नहीं मैम, इसमें एक्सरसाइज नहीं होती है। तनाव का मतलब यह है कि आजकल जैसे आदमी है ना हर चीज के पीछे भाग रहा, मतलब आदमी दौड़ ही रहा है।
1: जी
0: समझ रहे हैं? अब जैसे बहुत सारे पेशेंट मेरे पास आते हैं, कहते हैं कि साहब, मैंने उनसे कहा साहब जर्दा क्यों खाते हो जर्दा? अरे साहब बहुत समस्या है, रात भर जगना पड़ता है, मेरी ड्यूटी नाइट में लगती है, तो मन नहीं लगता तो जर्दा खा लेता हूँ। तो वो सब चीज गलत है। मतलब आप उसको एक वो दे रहे हो, आप मतलब जबरदस्ती बहाना दे रहे हो। ऐसा नहीं है जो लोग सारे लोग रात में काम करते हैं सारे जर्दा ही खा रहे हैं। भाई एक तो आप रात में जग रहे हो, आपकी साइकिल बिगड़ी हुई है, जॉब कर रहे हो, फिर आप जर्दा भी खा रहे हो, दो चीजें ज्वाइंट हो गई, तो आपके तो कैंसर के बहुत सारे केसेस हाई हो गए।
1: बिल्कुल, तो क्या कहना चाहेंगे अंत में हमारे श्रोताओं से?
0: अंत में मैं ये कहना चाहूंगा मैम कि आदमी, मतलब जितने भी जो श्रोता मेरे को सुन रहे हैं, मैं उनको एक तो धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने काफी देर तक मेरी बात सुनी। आपको भी धन्यवाद देना चाहूंगा, ऑल इंडिया रेडियो को भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया और इस टॉपिक पे बोलने का मौका दिया। मैं कहना चाहूंगा कि ये जो मुंह है, मुंह को आप इग्नोर ना करें, मुंह को आप छोटा ना माने, इससे बहुत सारे सीरियस डिजीजेस के साइंस मिलते हैं जो कि आपकी जीवन को बचा सकते हैं और अच्छा कर सकते हैं। इसलिए जो भी मुंह के अंदर कोई चेंजेस आ रहा है उसको तुरंत ध्यान दें और उसको करें। दूसरा मैं कहना चाहूंगा कि लोगों को एक बेटर न्यूट्रिशन की तरफ जाना चाहिए, खान पान अच्छा रखें, कॉन्फिडेंस लेवल अपना अच्छा रखें, लोगों से कम्युनिकेट करते रहें, छुपाएं नहीं बातों को। अगर आपको लगता है कोई सिम्टम है तो परिवार में बताएं अपने, जिससे कि वो आपको लेके जा सके डॉक्टर के पास में और साथ में जाएं, आपको सपोर्ट कर सके। ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ पे ध्यान दें, ना कि दौड़ भाग करें।
1: जी
0: थैंक यू,
1: आपने बहुत ही महत्वपूर्ण और लाभप्रद जानकारी दी है, अपना महत्वपूर्ण समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू मैम, थैंक यू।
2: कार्यक्रम के इस भाग के प्रायोजक थे कोटा डेंटल इंस्टीट्यूट 5A10 रंगबाड़ी रोड तलवंडी कोटा। कोटा डेंटल क्लिनिक इम्प्लांट एवं लेजर सेंटर में आपको मिलती है अनुभवी एवं डेंटल इम्प्लांट और डेंटल लेजर

0: विशेषज्ञ डॉक्टर धर्मेंद्र माहेश्वरी की विश्वसनीय सेवाएं, रूट कैनाल, केपिंग, टेढ़े मेढ़े दांतों का प्रभावी इलाज, डेंटल इम्प्लांट के बारे में एक बार अवश्य संपर्क करें। डॉक्टर धर्मेंद्र माहेश्वरी, मोबाइल 9928085808।
1: हेलो डॉक्टर, कार्यक्रम आप सुन रहे थे। आज का हमारा विषय था मुंह का कैंसर, समय पर जांच से बच सकती है जान। हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित थे डॉक्टर धर्मेंद्र माहेश्वरी कोटा डेंटल इंस्टीट्यूट से। और हम आपको बता दें, कार्यक्रम का संयोजन था रामनारायण मीणा का और तकनीकी सहयोग दिया निहाल सिंह और सुरेंद्र सिंह तंवर ने। FM 102.103.6 MHz, मीडियम वेव 212.31 मीटर अर्थात 1413 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी कोटा बूंदी का चंबल चैनल है। कुछ ही क्षणों में आप हमारे जयपुर केंद्र से हिंदी में प्रादेशिक समाचार सुनेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नागौर और जोधपुर जिले के दौरे पर, मेड़ता सिटी में राव दूदा और जोधपुर में पूर्व उपराष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किसानों और पशुपालकों से जैविक खेती अपनाने और युवाओं से कृषि से जुड़ने का आह्वान किया। राज्य सरकार ने देर रात 187 आरएएस अधिकारियों के तबादले किए। और प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में भीषण गर्मी और हीट वेव का असर जारी, हालांकि सीकर, बाड़मेर, बीकानेर और चूरू में तेज आंधी के साथ बारिश हुई। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नागौर और जोधपुर जिले के दौरे पर रहेंगे। वे नागौर के मेड़ता सिटी में मेड़ता के संस्थापक राव दूदा की 15 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण करेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। इनके अलावा केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खिवसर, पंजाब के पूर्व राज्यपाल वीपी सिंह बदनौर सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहेंगे। प्रतिमा अनावरण के बाद जनसभा का भी कार्यक्रम है। केंद्रीय रक्षा मंत्री चार भुजानाथ मंदिर और मीरा मंदिर दर्शन के लिए भी जाएंगे। इसके बाद वे जोधपुर पहुंचेंगे। वहां श्री सिंह रातानाड़ा चौराहे पर आयोजित पूर्व उपराष्ट्रपति और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत की प्रतिमा अनावरण समारोह में भाग लेंगे। समारोह को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किसानों और पशुपालकों से जैविक खेती अपनाने और रासायनिक खाद के प्रयोग से बचने की अपील की है। उन्होंने युवा पीढ़ी से खेती और कृषि से जुड़ने के साथ स्थानीय पैदावार के अनुसार प्रोसेसिंग यूनिट्स लगाने को कहा है। मुख्यमंत्री कल जालौर के पंसेरी गांव में किसानों और पशुपालकों से संवाद कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने आम जन की अपेक्षाओं के अनुरूप प्रदेश के विकास का रोड मैप तैयार किया है, ताकि राजस्थान मॉडल स्टेट के रूप में स्थापित हो। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार मुख्यमंत्री विकसित ग्राम वार्ड अभियान चलाकर प्रदेश की सभी पंचायतों के सुनियोजित विकास का ब्लूप्रिंट भी तैयार कर रही है। मुख्यमंत्री ने राजीविका से जुड़ी महिलाओं से भी संवाद किया। महिलाओं ने उनसे अपने अनुभव साझा किए। श्री शर्मा ने कहा कि राजीविका से जुड़ने के बाद राज्य की महिलाएं आत्मनिर्भर बनी हैं।
1: हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये योजना राजीविका की लखपति दीदी की योजना ये चलाई है। आज इसमें 22 लाख बहनों को ट्रेनिंग इसमें राजस्थान के अंदर मिली है और लगभग 17 लाख बहन हमारी लखपति दीदी बन गई है।
0: मुख्यमंत्री ने आज सुबह पंसेरी गांव का पैदल दौरा भी किया। उन्होंने ग्रामीणों से बातचीत की। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गर्मी के मौसम को देखते हुए प्रदेश में पेयजल और बिजली आपूर्ति व्यवस्था को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि पानी और बिजली आपूर्ति को लेकर आम

0: को किसी तरह की परेशानी ना हो, इस संबंध में शिकायतें मिलने पर संबंधित जिला कलेक्टर और विभागीय अधिकारियों की जिम्मेदारी तय होगी। श्री शर्मा ने कल मुख्यमंत्री कार्यालय में आयोजित बैठक में निर्देश दिए कि सभी कलेक्टर नियमित रूप से पानी बिजली आपूर्ति को लेकर साप्ताहिक बैठकें कर मॉनिटरिंग करें और संबंधित शिकायतों का विभागीय अधिकारी प्राथमिकता के साथ तुरंत निस्तारण करें। उन्होंने कहा कि गर्मी के दौरान आमजन को राहत पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता है और इसमें किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। मुख्यमंत्री ने पेट्रोल डीजल बचत के लिए सभी अधिकारियों को वाहनों का कम से कम उपयोग करने को भी कहा है। मुख्यमंत्री ने कार पूलिंग व्यवस्था अपनाने के निर्देश दिए। ब्रिक्स के विदेश मंत्रियों की आज नई दिल्ली में बैठक होगी। वैश्विक नेता नई दिल्ली पहुंच चुके हैं। इससे पहले विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल नई दिल्ली में रूस, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील और मालदीव के विदेश मंत्रियों से मुलाकात की। डॉ जयशंकर ने बताया कि सभी देशों के साथ रणनीतिक साझेदारी के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की गई और आपसी हित के बहुपक्षीय मुद्दों पर भी चर्चा हुई। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट पेपर लीक मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। 3 व्यक्ति जयपुर से, 1 गुरुग्राम से और 1 व्यक्ति को नासिक से गिरफ्तार किया गया है। अन्य कई संदिग्ध व्यक्तियों की जांच की जा रही है। सीबीआई ने कल इस सिलसिले में कई स्थानों पर छापे मारे और अनेक आपत्तिजनक सामग्री और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए। सीबीआई इस मामले में शुरुआती जांच करने वाले राजस्थान के विशेष कार्यबल के भी समन्वय में है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। राज्य सरकार ने देर रात राजस्थान प्रशासनिक सेवा के 187 अधिकारियों के तबादले किए। तबादला सूची में 70 से अधिक एसडीएम और 35 एडीएम, 8 जिला परिषदों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और 16 विकास प्राधिकरण तथा नगरीय निकाय के अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। साथ ही सचिवालय और संयुक्त सचिव स्तर के 15 और विभिन्न विभागों के 20 निदेशक और अतिरिक्त निदेशक इनमें शामिल हैं। तबादला सूची में बीकानेर के अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जसवंत सिंह को पंचायती राज विभाग में अतिरिक्त आयुक्त और संयुक्त शासन सचिव तृतीय के पद पर, बीकानेर के अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन गोपाल राम बिरदा को जयपुर के जवाहर कला केंद्र में अतिरिक्त महानिदेशक के पद पर लगाया गया है। डॉ ज्योति चौहान का राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के कार्यकारी निदेशक से चिकित्सा शिक्षा विभाग में संयुक्त शासन सचिव के पद पर तबादला किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी से देश के करोड़ों किसानों को अपनी उपज के लिए उचित और लाभकारी मूल्य मिलेगा। कल हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के निर्णयों की सराहना करते हुए श्री मोदी ने कहा कि किसानों के हित में लिए गए इस फैसले से उनके जीवन में समृद्धि आएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि अहमदाबाद धोलेरा सेमी हाई स्पीड डबल लाइन परियोजना देश की रेल संपर्क यात्रा में महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि कोयला लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं की संवर्धन योजना से ऊर्जा सुरक्षा बढ़ेगी, निवेश को बढ़ावा मिलेगा और युवाओं के लिए रोजगार सृजित होगा। केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि अमेरिका के स्मिथसोनियन राष्ट्रीय एशियाई कला संग्रहालय से 3 भारतीय प्राचीन वस्तुओं की भारत वापसी हुई है। इसका उद्देश्य भारत की चोरी हुई सांस्कृतिक विरासत को पुनर्स्थापित और संरक्षित करना है। नई दिल्ली में श्री शेखावत ने कहा कि देश की विरासत, जिसे अनैतिक तरीकों से देश से बाहर ले जाया गया था, अब वापस लाई जा रही है।
1: ऐतिहासिक एंटीक्विटीज को जो भारत लाने का क्रम पिछले वर्षों से चल रहा है, उस दिशा में हम ऑस्ट्रेलिया से 11 और अमेरिका से 3 और मूर्तियों को भारत में लाने में सफल हुए। इसके अतिरिक्त भी 657 एंटीक्विटीज को आइडेंटिफाई करके हमने अमेरिका के साथ चर्चा की। यूएस एनफोर्समेंट एजेंसीज ने उनको भारत के दूतावास को अमेरिका में सुपुर्द कर दिया है। उनको लाने की प्रक्रिया भी प्रारंभ होगी। 657 एंटीक्विटीज उसके बाद में भारत आएंगे।
0: प्रदेश के पश्चिमी इलाकों में पड़ रही भीषण गर्मी के बीच कल सीकर, बाड़मेर, बीकानेर और चूरू सहित कई जिलों में तेज आंधी के साथ बारिश दर्ज की गई। चूरू में एक दो स्थानों पर ओलावृष्टि भी हुई। हालांकि मौसम में आए इस बदलाव के बावजूद प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में भीषण गर्मी और हीट वेव का असर जारी रहा। कल पांच शहरों में अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के

0: पार पहुंच गया। फलौदी प्रदेश का सबसे गर्म शहर रहा, जहां अधिकतम तापमान करीब 47 डिग्री और न्यूनतम तापमान 34 डिग्री दर्ज हुआ। भीषण गर्मी के कारण जनजीवन प्रभावित रहा। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि वर्तमान में राज्य के दक्षिणी पश्चिमी और पूर्वी भागों में अधिकतम तापमान 45 से 48 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि आगामी दिनों में न्यूनतम और अधिकतम तापमान में विशेष बदलाव की संभावना नहीं है। वहीं आगामी 48 घंटों के दौरान बीकानेर संभाग, शेखावाटी क्षेत्र, जयपुर और भरतपुर संभाग के उत्तरी इलाकों में कहीं कहीं बादल गरजने, 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आंधी चलने और हल्की बूंदाबांदी की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नागौर और जोधपुर जिले के दौरे पर। मेड़ता सिटी में राव दूदा और जोधपुर में पूर्व उपराष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किसानों और पशुपालकों से जैविक खेती अपनाने और युवाओं से कृषि से जुड़ने का आह्वान किया। राज्य सरकार ने देर रात 187 आरएएस अधिकारियों के तबादले किए और प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में भीषण गर्मी और हीट वेव का असर जारी। हालांकि सीकर, बाड़मेर, बीकानेर और चूरू में तेज आंधी के साथ बारिश हुई। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: FM 102.103.6 MHz, मीडियम वेव 212.31 मीटर अर्थात 1413 किलो हर्ट्स पर यह है आकाशवाणी गोटा बूंदी के चंबल चैनल का प्रसारण। हम लेकर हाजिर हैं फिल्म संगीत दिल तो पागल है। इस फिल्म का गीत हम आपको सुनवा रहे हैं। लता मंगेशकर, उदित नारायण के युगल स्वर हैं। आनंद बख्शी का लिखा गीत है, संगीत है उत्तम सिंह का।

0: الرهن.
1: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
2: जी,
1: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
2: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
1: पर ये होगा कैसे?
2: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
1: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
2: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
1: बस
2: बस
1: समझ गया।
2: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
3: आरबीआई कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: फिल्म संगीत में लीजिए अब आप सुनिए कुछ कुछ होता है फिल्म का ये गीत, जिसे गाया है उदित नारायण, अलका याग्निक ने लिखा है समीर ने और धुन बनाई जतिन ललित ने।
6: ये

फिल्म संगीत में दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे फिल्म का गीत हम आपको सुनवा रहे हैं। लता मंगेशकर, उदित नारायण के स्वर हैं, शब्दों से गढ़ा है आनंद बख्शी ने और धुन जतिन ललित की।

और लीजिए सुनिए फिल्म संगीत की आखिरी पेशकश। फिल्म का नाम है राजा हिंदुस्तानी। इस गीत को गाया है अलका याग्निक ने, शब्द कृति समीर की और संगीत नदीम श्रवण का।

इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत अब समाप्त होता है। FM 102 103.6 MHz, मीडियम वेव 212.31 मीटर अर्थात 1413 किलोहर्ट्ज पर आप बने हुए हैं आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल के साथ। अब हमारी ग्रामीण बहनें सुनेंगी अपना कार्यक्रम घर आंगन।

घर आंगन कार्यक्रम सुनवा वाली संधि माँ की बण्या ने ममता बणा की आड़ी सू घणो घणो राम राम बण्यो। आशा करा छा कथा तपती लू मा परिवार सहित मजा मई होगी बण्यो। अब आर गर्मी जोरा की पड़ रही छे और साथ ही गर्मी का मौसम का लारा ला रही कई बार त्योहार और अपना सामाजिक कार्यक्रम भी चल रहे छे। और बण्यो जब यह सामाजिक कार्यक्रम मा आपन भरी दफेरी में जानी पड़ जाओ छे तो आदि बुखार तो आपने कार्यक्रम को नू तो आता ही शुरू हो जाओ छे। पर सामाजिक व्यवहारता का चालता आपन सभ्या ने मजबूरी में ही सही या कार्यक्रम में शामिल होनी ही पड़े छे। और जब आपन भरी दपेरी में यदि दुपहिया वाहन सु या पैदल वहां जानी पड़ जाव और यदि कोई कारणवश आपन बीच में ही कहीं रुकनी पड़ जाव और जब आपन कहीं पर भी छायादार वृक्ष न दिखे तो आपन थोड़ी ही देर में परेशान हो जाओ जा और उ भगत में आपन न आपने द्वारा ही काट्या वो बरसा पराना खड़ा पेड़ पौधा और विशाल वृक्ष याद आउ जो क निस्वार्थ भाव सु हर रागीर ने छाया फल देकर वहां का तन मन न ठंडक पहुंचाओ जा और उ भगत आपन न अपनी गलती को एहसास हो जा कि क्यों आपन न वो हरा भरा वृक्ष अपना थोड़ा सा लोभ लालच के चलते काट्या बण्यो। यही वो हरा भरा वृक्ष छे जो पशु पक्षियों का लारा लारा ही आपन सभ्या ने भी जीवन दायिनी हवा सांस तो देवे छे। साथ ही ये कई जहरीली गैसा सु भी आपन सभ्या ने बचाओ छे बण्यो। यही वो हरा भरा वृक्ष छे जो आपन न जन्म सु लेकर मृत्यु ताई हर एक पड़ाव में आपने साथ रहे छे और साथ ही मीठा मीठा फल और छाया आपन सभ्या ने बना जात पात ऊंच नीच छोटा बड़ा जाने बना ही देव छे बण्यो। खबा को मतलब छे कि जीव जगत में वृक्ष की उत्पत्ति ही केवल और केवल परमारथ के लिए ईश्वर ने करी छे। इसलिए बण्यो आपन सभ्या ने प्रकृति की अनमोल धरोहर की हमेशा रक्षा करनी चाहिए और यहाँ को छोटा रहता हुआ अपना बाल बच्चा की नहीं पूरी परवरिश करनी चाहिए और बाद में यही कटबा सु बचावा को प्रयास अपनी आड़ी सु हमेशा करनी चाहिए बण्यो। अपनी भारतीय संस्कृति तो हमेशा सु ही आपन सभ्या ने प्रकृति की हर एक चीज को सम्मान करवो सिखाओ छे बण्यो। अपनी संस्कृति सु जुड़ा संदा बार त्योहार भी आपन ने तो प्रकृति सु जुड़ा रेबा को ही संदेश दियो छे। जशा के हाल ही में आबार आबा वालो बड़ पूजनीय अमावस को बरत बण्यो। ई व्रत में आपनी संधि सुहागिन बण्या सुबह सुबह निर्जला व्रत रेकर बड़का वृक्ष की पूजा करे छे उनकी परिक्रमा करे छे और साथ ही अपना पति की लंबी आयु की कामना बट वृक्ष सु करे छे बण्यो। आपनी संस्कृति तो हमेशा सु ही प्रकृति सु जुड़ी हर एक चीज में भगवान का दर्शन की बात करे छे और आपन सभ्या ने भी ई बात को ध्यान रखानता होया हर एक हरा भरा वृक्ष

अपना इष्ट भगवान का दर्शन करनी चाहिए और अपनी आस्था रखानी चाहिए। बण्यो अपना हरा भरा वृक्ष ये पेड़ पौधा सब अपना परम मित्र रहे छे, क्योंकि बण्यो जब कभी अपन में नकारात्मकता घर कर जाओ छे तो यह प्रकृति और यह हरियाली ही छे जो अपन सकारात्मकता से भर देव छे। और अपन जब कभी निराश हो जाऊं छा और यह पेड़ पौधा के बीच में चले जाऊं छा तो अपन महसूस करा छा कि ये पेड़ पौधा भी अपना सच्चा मित्र की नहीं, बड़ी ही गंभीरता के साथ अपनी बात सुने छे और बना बोले ही सकारात्मकता के द्वारा अपनी निराशा ने आशा में बदल देव छे। तो बण्यो मां को तो आप संधि बण्या सु खेबो छे कि प्रकृति से जुड़ो, सकारात्मक बनो और नकारात्मकता न अपना जीवन सुकोसा दूर भगावा के लिए अधिक से अधिक हरा भरा वृक्ष अपनी चारों मेड़ लगावा को प्रयास करो। और जब तक का कोई बहुत बड़ी मजबूरी न आ जावे तब तक वृक्ष न कतई मत काटो और ईसु अपनी मित्रता निभावा को हर संभव प्रयास अपनी हाड़ी सु करो। बण्यो बात मित्रता की आई तो आज अपनी बण्या देख रही होगी का आज मित्रता शब्द केवल और केवल ये मोबाइल की दुनिया में ही रह गयो। बण्यो आज युवा पीढ़ी और बड़ा बूढ़ा ही कहीं छोटा छोटा बाल बच्चा भी ई मोबाइल के द्वारा सोशल मीडिया पर कई सारा मित्र बना सोचा समझा ही बना ले उचे। बण्यो जहाँ मित्र सु आपन कभी मल्या कोई न कभी आपन न वो मित्र के लिए देखियो न कभी उको परिवार और मित्रता का नाता, केवल उको सोशल मीडिया पर लाग्या फोटो सु ही और मोबाइल पर लिखा पड़ा संदेशा सु ही आकर्षित होकर कई बार आपन वहाँ बाता भी जो का अपना घर की अंदर की बात आ चे वो बाता भी बारह का मन क्या कले बता बैठा छा। और इको नतीजो यो खड़ा छ ये ही सोशल मीडिया का मित्र आपने साथ या बाता न लेकर आपने साथ ठगी करे छ और आपन न शारीरिक और मानसिक रूप से कष्ट पहुंचाओ छ। तो बण्यो मां को तो आप सभी सुखेबो छ के यदि आपन सभ्या ने सोशल मीडिया से जुड़िया ये शारीरिक और मानसिक कष्ट से बचनो छ तो सोशल मीडिया पर मित्रता करता होया पूरी सावधानी बरता और सोच समझ कर ही मित्र बनावा। बण्यो मित्र तो वो मनक रहे छ जो अपना दुख सु दुखी और अपना सुख सु सुखी हो और उम्र का हर पोड़ाओ में आपनो साथ एक परछाई की नहीं देव। तो बण्यो खबा को मतलब यही छ कि सोशल मीडिया पर मित्रता करो पर पूरी सावधानी और सतर्कता के साथ। बण्यो गर्मी को मौसम हो और आपन कहीं जा रहा हो और बीच रास्ता में हरा भरा वृक्षा की छाओ आपन न मल जाओ तो आपन यही खेऊंगा कि

0: बण्यो भगत भगत पर्मा थाई स्थल रिकॉर्डिंग आधारित कार्यक्रम भी सुनाता रहूं छा। तो आज ई क्रम में ही आपने वर्षा बर्णा द्वारा लाई गई पूर्व प्रसारित बातचीत आपन सुनेगा। आपने ई बातचीत को विषय छे शादियों में कैसे रुके दिखावा और फिजूल खर्चे। तो लियो सुना या स्थल रिकॉर्डिंग बातचीत।
1: अब आज शादी ब्याह को टेम चाल रही है और ब्याह को नाम आता ही जहाँ एक और मन खुशी से फूलों न समा वहीं एक और तनाव में भी डूब जाऊ। क्योंकि आजकल अपन देखा जाकर जो शादियां हो रही है वो दिखावा की शादियां हो रही है और जीमा नावश्यक खर्चा मनमाना हो रहा है वो भी रस्मा रिवाज के नाम पर। तो बण्यो आज इस संबंध में ही माना बाता करी छ। तो माना बात करी छ रवि जी से जो एक वकील भी छ।
2: आजकल शादी में लोग बाग महंगे होटल और रिसोर्ट मतलब बुक करने का चलन ज्यादा ही बढ़ गया है। मतलब लोग घर सामुदायिक भवन या साधारण मैरिज हॉल की जगह बड़े बड़े रिसोर्ट होटल्स वगैरह बैंक्वेट हॉल इनको चुनने लगे हैं, जिसका मतलब मेन पर्पज यही होता है कि दिखावा और एक स्टेटस सिंबल कि भाई हमने इतनी अच्छी जगह शादी करी, हमारा वो रिसोर्ट था, हमारा ऐसा बैंक्वेट था। और इन सब चीजों में होटलों की सजावट में खाना, कमरों की बुकिंग, लाइटिंग, इवेंट वगैरह, इन सब में लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं। कई बार क्या होता है परिवार दिखावे के चक्कर में अपनी आर्थिक स्थिति से ज्यादा बढ़कर भी खर्च कर देता है और यही चीज फिर दूसरे लोगों के लिए प्रतिस्पर्धा और मानसिक दबाव का कारण बनती है।
3: बिल्कुल। तो फिर काई करनी चाहिए जब भाई आपन कशा फिर आपन साधारण भी शादी हो सके।
2: साधारण भी हो सकती है शादी, भाई कोई सामुदायिक जो अपने स्थानीय निकाय के सामुदायिक भवन होते हैं वहाँ भी अपन कर सकते हैं। कोई साधारण होटल वगैरह लेकर भी भाई ठीक है, आदमी अपनी सुविधा के हिसाब से लोगों को सुविधा देने के लिए मतलब होटल रूम्स वगैरह बुक करता है वो कर सकते हैं। बट ये अनावश्यक जो लाइटिंग वाइटिंग ये इस तरह की डेकोरेशन जिसमें लाखों रुपए खर्च होते हैं उसको हम थोड़ा कम कर सकते हैं।
1: बिल्कुल अभिजीत।

0: बहुत बढ़िया जानकारी दी, इके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। माना आज इस संबंध में एक और बना का विचार जाना चाहे। नीतू जी, आप माने या बताओ का आजकल आप देखा जाए का शादी ब्याह का नाम पर खाबा में सबसे ज्यादा फिजूल खर्ची हो रही है।
1: बिल्कुल, मैं कहना चाहूंगी कि बफर डिनर जरा हम कर लेते हैं शौक से, सबको ये पसंद आएंगे वो पसंद आएंगे, तो बच्चों के हिसाब से भी कर लेते हैं। आजकल बच्चों को जैसे चाइनीज वगैरह खाना पसंद है, उनके हिसाब से बच्चों के बड़ों को भी पसंद है, तो उस हिसाब से कर तो लेते हैं। बाकी उसमें फिजूल खर्ची बहुत ज्यादा होती है।
0: सही बात है।
1: जैसे कि खड़े होकर खाना खाते हैं अपन, ले तो लेते हैं, मतलब हम प्लेट में बहुत सारा ले लेते हैं कि हम ये भी खा लेंगे वो भी खा लेंगे, लेकिन उतना खा नहीं पाते हैं और वेस्ट जाता है, डस्टबिन में डाल देते हैं और वो खाना सभी वेस्ट जाता है। और मैं ये मानती हूँ कि खाने का कभी अपमान नहीं करना चाहिए।
0: सही बात है।
1: तो इसलिए हम चाहे तो टेबल कुर्सी वाला भी खाना कर सकते हैं, बैठ के भी खिला सकते हैं।
0: वही व्यंजन उसमें बनाना,
1: वही व्यंजन हम उसमें भी बना सकते हैं कि हम वो भी व्यंजन उसमें भी लग सकते हैं, बाकी भी टेबल कुर्सी वाला कर सकते हैं, बिठा के खिला सकते हैं खाना, ताकि उसमें वेस्ट ना हो। और अगर बच जाता है तो हम किसी गरीब को भी दे सकते हैं, खाना खिले में दे सकते हैं वो खाना, जो भी बच जाए, जो बाकी वेस्ट नहीं हो।
0: माँ ने इस संबंध में शिल्पा बना से भी बात करी और जाने माँ का इस संबंध में विचार।
2: इसमें तो मेरा यही कहना है कि ये सब चीजें सिर्फ दिखावे के लिए होती है, और मैचिंग क्या है, मैचिंग से कुछ भी नहीं है। मतलब हम लोग बस हम अपने आप को प्रेजेंटेबल, मतलब अपने आप को सामने रखने, हम अच्छे ही पहनते हैं, अच्छा पहनते हैं, अच्छा दिखते हैं, यही चीजें चाहिए होती है। तो दिखावे में मतलब लोग बस दिखावे की ओर अग्रसर हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। क्योंकि हम शो ऑफ में क्या होता है, हम किसी को हम पाबंद कर देते हैं, किसी के ऊपर स्ट्रेस दे देते हैं, परेशानी होती है कि वो उस चीज को नहीं चाहते हुए भी कर रहा है, आगे उसको करना पड़ता है,
0: मजबूरी में
2: मजबूरी हो जाती है कि दूसरे लोग क्या कहेंगे, क्या हमारे लिए क्या बातें होंगी, वो चीजें हैं।
0: बिल्कुल, जैसे आपने भी देखी ना आजकल लेडीज संगीत में और हल्दी में सब अलग अलग कपड़ा फोन जो भाई यो कलर चाहे तो समझा नहीं ये फोन का आनो छ।
2: हाँ, तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है, जो फैमिली है ठीक है, हमारी शादी है हमारे घर में, हम कर सकते हैं, हमें तो कपड़े खरीदने ही होते हैं, तो हम इसके अकॉर्डिंग खरीद सकते हैं। लेकिन जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनको हम बाउंड कर देते हैं, उनको हम पाबंद करते हैं, नहीं हम ये पीला पहनेंगे तो आपको भी पीली ड्रेस ही पहनानी है, भले ही उसकी वो नहीं हो, उसकी इतनी क्षमता ना हो कपड़े खरीदने की, तब भी उसके लिए एक तरह से ये नेगेटिव पॉइंट हो जाता है।
0: बिल्कुल।
2: अब जैसे गिफ्ट पैकिंग हो गई, हमें हर चीज को दिखावे में, हर चीज को जैसे पैकिंग, हम पहले जमाने में हमारी शादी हुई थी तो हमारी पैकिंग होती थी
0: सिंपल तरीके से
2: एक थैली में रैप करी, साड़ी रखी, बिंदी रखी, हो गया काम। लेकिन आजकल उसके ऊपर सैटिन रिबन भी लगाना है, डेकोरेशन भी करना है, उसको और प्रेजेंटेबल बनाने के चक्कर में वो चीजें और महंगी होती जा रही है, हमारे पास इतना फिजूल खर्चा हो रहा है, मतलब वो चीज नहीं होनी चाहिए, नहीं होते हुए हमें करना पड़ता है।
0: सही बात
2: ये है। और
0: दिखावा ही एक तरफ।
2: हाँ, दिखावा ही है। जैसे मान लो हमें रिंग सेरेमनी करी तो नॉर्मल रिंग्स भी वेयर करा सकते हैं, लेकिन हमें उसको आजकल फ्लावर में डेकोरेट करके लेके आना पड़ता है, एक फ्लावर पकड़ाया वो करवाया, उसके लिए हमें केक कटिंग, आजकल केक कटिंग सेरेमनी नहीं होती थी वो भी होने लगे, वेडिंग में जैसे अब नहीं है तो हमारी रिंग सेरेमनी, तो उसमें भी हमें केक कट करना होता है, तो ये सब शो ऑफ है, नहीं चाहते हुए भी ये चीजें हो रही है।
0: सही है। मतलब शादी में खर्च ना जो मेन चीज होनी चाहिए, जो ऊपर तो ध्यान ये दिखावा की चीजें,
2: हमारा एंटरटेनमेंट कम हो गया, हम जो मस्तियां करते थे, हम जो हर एक मोमेंट को जीते थे, हर एक जो पल था उसको हंसी मजाक सब लोग के बैठे थे, वो चीज ना हो के अब अपना अपना सब अपना अपना देखने लग गए, वो चीज
0: बहुत बढ़िया।
2: और इस चीज को हम ऐसे भी कर सकते भाई, ठीक है, इन चीजों को ना करके हम अपनी बेटी के लिए या अपने बेटे के लिए कुछ एफडी करा दें, इन सब चीजों से सेव करके, इन फालतू चीजों पे ना खर्च करके हम एफडी करा दें बैंक में डिपॉजिट, जिससे उसके फ्यूचर के लिए वो चीजें काम आए, कभी भी जरूरत पड़ जाती है, कभी हमें टाइम कह के नहीं आता है, तो उन चीजों में वो चीज यूज हो जाए।
0: बिल्कुल शिल्पा जी, थाने बहुत ही अच्छी जानकारी दी, इकली बहुत बहुत धन्यवाद। शादी की फिजूल खर्ची के बारे में मैंने एक और बना का विचार जाना, यहाँ को नाम छे पारुल जी कई होगा।
3: जो इवेंट्स कंपनियां करती हैं वो हम नॉर्मल पहले से करके आ रहे हैं, बस इवेंट्स कंपनी क्या है उस चीज को बहुत बड़ा चढ़ाकर पेश करती है, तो जो हमारे बच्चे वो भी उस रिचुअल्स को नहीं समझ रहे, वो केवल नाच गाने में ही रह जाते हैं, ड्रेसअप होने में रह जाते हैं, और आप देख रहे हैं कि बच्चों को कोई भी रीति रिवाज की जानकारी नहीं हो पा रही है। इवेंट्स कंपनी कोई भी छोटी सी भी चीज को आप बड़ा बहुत ज्यादा पेश करते हैं, जैसे मेहंदी है तो मेहंदी एक नॉर्मल रिचुअल्स होता था जिसमें लाडा लाडी के आपको रूप निखरता था, पर इवेंट्स वाले उसको एज ए मतलब क्या पार्टी टाइप कर देते हैं कि अब यहाँ फोटो हो रहा है, आपको उनको कमल के फूल पे बिठा देंगे, सारे वो कर देंगे, तो जो मेन रिचुअल्स हैं वो तो हो ही नहीं पा रहा।

मुझे लगता है कि इवेंट्स वाले हर चीज को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहे हैं, तो हमें उस चीज पे कंट्रोल करना चाहिए। हम लोग यूँ सोचते हैं कि हमने इवेंट वाला कर लिया, अब सारे काम वो करेगा, हमें कुछ नहीं करना है। पर अगर आप डीपली सोचेंगे तो आप देखेंगे इवेंट वाला केवल और केवल वो जो 4-5 रस्म उन्होंने ले रखी है उनको बहुत बड़ा चढ़ाकर पेश करता है। आपके एक से एक दिन की शादी को 2 दिन में कन्वर्ट करता है। आपके गेस्ट हाउस का एक्स्ट्रा पैसा दे रहे हैं आप इवेंट में, जब वो कह देता है हल्दी है मेहंदी है आपको अलग ड्रेसअप करनी है तो आप सारे अलग से कर लेते हैं।

0: सही
1: आपके गेस्ट हाउस का एक्स्ट्रा पैसा दे रहे हैं आप। इवेंट में जब वो कह देता है हल्दी है मेहंदी है आपको अलग ड्रेसअप करनी है, तो आप सारे अलग से कर लेते हैं,
0: सही
1: और
0: बात
1: फिर
0: है।
1: आप वो दूसरी शादी में भी वियर अप नहीं करते क्योंकि इतनी सारी फोटो खींच लेते हैं वो
0: सही
1: कि आपको खुद लग रहा है कि हम क्या करते
0: सही
1: हैं।
0: बात है,
1: तो वो चीज को हमें कंट्रोल करना चाहिए थोड़ा सा।
0: सही बात है। जैसा का आपका बाल बच्चा होगा तो आप भविष्य में वहां का विवाह करेगा तो आपकी तरफ से कर बोछा होगा, काई सोच रखियो छे आपने?
1: मैंने तो सोच रखा है कि कोशिश करूंगी कि बच्चों को ये समझाऊं कि इवेंट वाला केवल और केवल हमारी जो रीति रिवाज उनको बढ़ा चढ़ा कर पेश कर रहा है, तो हम खुद ही उस चीज को सेलिब्रेट करें ना। हल्दी मेहंदी जो भी चीजें हैं हम खुद उस चीज को इतने अच्छे से प्रेस करें, इतने अच्छे से सेलिब्रेट करें कि सब इंजॉय भी करें और हमारा एक्स्ट्रा खर्चा भी ना हो उस पे।
0: सही बात है,
1: क्योंकि मैंने भी अभी शादी की, बाल बच्चे तो बहुत ज्यादा
0: सही बात
1: दूर
0: है,
1: हो जाते हैं
0: सही बात।
1: अभी, जो चीज मुझे अच्छी नहीं लगती। मैंने खुद अभी अपने भाई की शादी की तो हमने कहा कि पापा कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना है।
0: सही बात
1: जैसे
0: है,
1: इवेंट वाले कहते हैं कि नहीं अब शाम को संगीत होगा,
0: सही है,
1: सुबह हमें हल्दी करनी, तो वो एक शादी को हमारे 2 दिन में कन्वर्ट कर देते हैं।
0: सही है,
1: आप एक दिन में कीजिए ना, आप
0: सही,
1: सुबह सारा हल्दी मेहंदी का, अगर आपको फोटो सेशन भी करना है बच्चों का मन भी रखना है तो
0: सही
1: आप
0: बात
1: सुबह
0: है,
1: कर लीजिए,
0: सही बात है,
1: दोपहर में आप शादी कीजिए, आप देखना आपकी कितनी लाइट भी बचती है, पैसा भी बचता है, और
0: सही
1: सबसे
0: बात,
1: ज्यादा आपका माइंड बचेगा। और जो पैसा बचेगा आप अपने बच्चों के उसके भविष्य निधि में कीजिए, आप उसको डिपॉजिट कर दीजिए
0: सही बात,
1: या आप उनके थ्रू किसी को दान कर दीजिए जिससे उनको ब्लेसिंग्स मिले तो
0: सही
1: उनको
0: बात,
1: भी अच्छा लगेगा। और जो इवेंट वाले धमाल मस्ती करते हैं उसमें जो बड़े लोग कन्वर्ट करते हैं अपनी ब्लेसिंग कि बेटा अब आप वैवाहिक जीवन में जा रहे हो तो आप उसको एंजॉय करो,
0: सही है,
1: पर अपनी जो लिमिटेशंस हैं अपनी जो वैल्यूज हैं उनको आगे
0: सही
1: बढ़ाओ।
0: बात है,
1: लेकिन आजकल युवा पहले बहुत डांस करते, उन्हें लगता है शादी एक डांस
0: सही
1: है,
0: बात
1: तो
0: है,
1: वो सब भूल जाते हैं। तो मुझे
0: सही
1: लगता
0: बात,
1: है यहाँ पे हमें कंट्रोल करना चाहिए, अभी से शुरुआत करेंगे तो
0: सही बात है।
1: आगे कंट्रोल हो जाएगा वो।
0: माने एक और बना से बात करी नेहा जी से, और वहां का भी जाना है ई बारा में विचार। नेहा जी जैसा अपन देखा चाह कर बार शादिया में हर चीज में ही फिजूल खर्ची है। अब जैसा का आजकल वो प्री वेडिंग जैसा भी हो रहा है, तो प्री वेडिंग में आपन यह जाना चाह कभी इसे तो अपनी मल तो काई कोई न, लेकिन सबकी अपनी अपनी मानसिकता च, कोई तो दिखावा का लेकर च, कोई सोच च लोगा का देखा देखी कर च, तो इस संबंध में आपको काई खबू च?
2: कहने में तो ये फिजूल खर्ची ही होता है प्री वेडिंग सूट। जैसे कि आजकल लड़का और लड़की फिर मिलने लग जाते हैं और इससे फिर आगे जाके डिवोर्स की और इसकी बातें होने लग जाती है। ये पहले ही मिलना जुलना ये तो आजकल अपने संस्कारों में भी नहीं है,
0: सही बात,
2: और आगे पहले तो नहीं होता था लेकिन ये अब होने लग गया है और इसी को देख देख के सब करने लग गए और इसी में फिजूल खर्ची होती है, पैसों की बर्बादी होती है। इवन यहाँ प्रॉपर अपने जैसे अपने गांव या अपने शहर सिटी में तो नहीं करते, और आगे जाकर बाहर विदेशों में इसको करते हैं, तो इसकी वजह से ये ज्यादा चलन में आ गया है। लेकिन इसके लिए तो ये फिजूल खर्ची है, और जिसके पास नहीं हो इतना करने के लिए वो भी उस चीज को करने के लिए आजकल पैसा बर्बाद कर रहा है अपना,
0: देखा देखी में
2: पैसा बर्बाद हो रहा है।
0: सही बात, बहुत बढ़िया आपने इसके बारे में जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद।
3: बण्यो शादी ब्याह एक पावन और पवित्र संस्कार छे, इसलिए आपने इस संस्कार न दिखावा और फिजूल खर्ची सु दूर रखनी चाहिए, और परिवार का मन क्या और अपना नजदीकी मित्रा का साथ ही इकले संपन्न करनी चाहिए।

योजना को मुख्य उद्देश्य ही गरीब निराश्रित परिवार और बीपीएल श्रेणी की बेटियां का शादी के लिए आर्थिक सहायता प्रदान कर बोचे जूसु को वो भी विवाह से जुड़ी संधि सामाजिक रस्मा छोका सु निभा सक बण्यू। ये योजना की राशि सरकार द्वारा सामूहिक विवाह में दी जाऊ छे जिसु के शादी ब्याह में होबा वाली फिजूल खर्ची भी बच सक और संधा रीति रिवाज छोका सु हो सक बण्यू। ये योजना के लिए अपनी कन्या की आयु 18 बरस से अधिक होनी ही चाहिए और साथ ही वह राजस्थान की मूल निवासी होनी चाहिए बण्यू। ई योजना में पात्रता के लिए अपने पास आधार कार्ड, मूल निवासी प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, बीपीएल राशन कार्ड, बालिका को जन्म प्रमाण पत्र और साथ ही बैंक खाता को विवरण होनी चाहिए बण्यू। यहाँ दस्तावेजा के साथ अपन ई योजना से जुड़ सका छा और अपनी बेटिया को विवाह संस्कार छोका सु कर सका छा बण्यू। गर्मी को मौसम चाल रो छ तो क्यूँ न एक और लोकगीत गर्मी का मौसम से जुड़ियो ही सुन लेवा।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: बण्यो बात शादी ब्याह की चल रही थी, तो क्यों ना आप शादी ब्याह से जुड़ी एक सरकारी योजना की आपन बात कर लिया। बण्यो अपनी सरकार ने बालिका की शादी के लिए एक योजना चला रखी छ, और यह योजना छ मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। बण्यो

अर बण्यो अंत में चालता चालता यही कहूंगा कि गर्मी जोरा की पड़ रही है, खुद को और परिवार को तो ध्यान रखाणो ही सही, साथ ही अपना अनबोल्या मित्र, अपना चढ़ी चुगला, पेड़ पौधा और जीव जंतुआ की भी पूरी देखरेख की व्यवस्था अपने आडिसू करता रेवा।

0: अभी हमारी ग्रामीण बहनें सुन रही थी अपना कार्यक्रम घर आंगन FM 102.103.6 MHz, मीडियम वेव 212.31 मीटर अर्थात 1413 किलोहर्ट्ज़ पर। यह आकाशवाणी कोटा बूंदी का चंबल चैनल है। लीजिए सुनिए विविध भारती के कार्यक्रम।
1: बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना, जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: मेहंदी हसन साहब का यहाँ पे एक दौर आया था, तो हमने बोला क्यों नहीं इसको हम कैश करें।
1: लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी के प्यारेलाल,
2: तो देखिए उसका अंतरा है दरा दरा दरा दरा। अब ये क्या उल्टी हरकत है, हम लोग जो गाते हैं दरा तारा दरा तारा, लेकिन मेहंदी हसन साहब की खास ढंग था, तो हमने वो चीज ऐसे उठा के रख दिया कि लोगों मालूम भी नहीं पड़ा और लोगों ने कहा क्यों।
1: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती।

0: नमस्कार श्रोताओं, आज के मेहमान आज इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं सुप्रसिद्ध शायर और विविध भारती के भूतपूर्व केंद्र निदेशक राजेश रेड्डी से एक मुलाकात। आपसे बातचीत की है यूनुस खान। आज सुनिए इस बातचीत का पहला भाग।
1: राजेश रेड्डी एक जाने माने शायर जिनकी गजलों का हर शेर खरा होता है। वो लिखते हैं, शाम को जिस वक्त खाली हाथ घर जाता हूं मैं, मुस्कुरा देते हैं बच्चे और मर जाता हूं मैं। राजेश रेड्डी अपने समय और समाज की आवाज भी बन जाते हैं। जुबां खामोश है डर बोलते हैं, अब इस बस्ती में खंजर बोलते हैं। राजेश रेड्डी की शायरी में जिंदगी का फलसफा छलक छलक पड़ता है। वो लिखते हैं, ये जो जिंदगी की किताब है, ये किताब भी क्या किताब है, कहीं एक हसीन सा ख्वाब है, कहीं जानलेवा अजाब है। जिंदगी के डर, जिंदगी की उदासी और जुल्मतों को वो अपनी लेखनी में पिरो देते हैं। घर से निकले थे हौसला करके, लौट आए खुदा खुदा करके। जिंदगी की नाकामियां, उदासियां और विडंबनाएं भी राजेश रेड्डी की लेखनी में नजर आती हैं। जिंदगी तूने लहू लेके दिया कुछ भी नहीं, तेरे दामन में मेरे वास्ते क्या कुछ भी नहीं। राजेश रेड्डी वो शायर हैं जिन्होंने बड़ी ही मशहूर गजल लिखी जिसे पंकज उधास ने गाया, यहां हर शख्स हर पल हादसा होने से डरता है, खिलौना है जो मिट्टी का फना होने से डरता है। कई वर्षों तक राजेश रेड्डी विविध भारती के हेड रहे। उन्होंने विविध भारती को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। जाने माने शायर और विविध भारती के हमारे पुराने साथी राजेश रेड्डी विविध भारती के स्टूडियो में मौजूद हैं और मैं उनका बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूं।
2: बहुत बहुत शुक्रिया यूनुस और विविध भारती पूरे परिवार को।

0: इस पूरे परिवार से बरसों बाद 13-14 साल बाद एक मुलाकात हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। और विविध भारती के श्रोताओं से भी इस बहाने मिलना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया यूनुस, विविध भारती परिवार को।
1: मुझे ऐसा लग रहा है जैसे अभी वो जमाना लौट आया जब आप विविध भारती के मुखिया हुआ करते थे और ढेर सारे काम हम लोग मिलकर एक साथ किया करते थे।
0: जो वो बहुत प्यारा जमाना था, और एकदम तुमसे मिलके और विविध भारती में आने के बाद वो जमाना फिर एकदम तरोताजा हो गया, और वो ऊर्जा, वो उत्साह, वो उमंग और श्रोताओं के साथ वो लगाव एकदम आंखों के सामने आ गया। जी खुश हुआ जी।
1: क्या बात है। अच्छा, आकाशवाणी अब अपने 90 बरस की यात्रा की तरफ अग्रसर है। एक बहुत बड़ा सांस्कृतिक सामाजिक योगदान रहा है, चेतना का योगदान रहा है आकाशवाणी का। तो 90 बरस की इस यात्रा के बारे में जानकर आपकी क्या कैफियत है और आप क्या कहना चाहते हैं?
0: इस यात्रा का तो कोई भारत में खास तौर से पूरे भारत को सांस्कृतिक रूप से और भाषा के तौर पर जोड़े रखने का इससे अच्छा माध्यम, क्योंकि बाकी जो संचार माध्यम है उनमें भाषा, अखबार की बात करें या किताबों की बात करें, टीवी तो खैर बहुत बाद में आया, तो ये आकाशवाणी था जो देश के कोने कोने में, चाहे वो पहाड़ हो, चाहे वो मैदान हो, गांव हो, बसा हुआ शहर हो, सब जगह अगर पहुंचती तो आकाशवाणी की ही थी। और एक से दूसरे से जोड़ने का जो काम आकाशवाणी ने किया उसकी कल्पना ही नहीं की जा सकती कि कितने अच्छे ढंग से काम हुआ और हो रहा है।
1: बिल्कुल, अपने बचपन की तरफ अगर लौटें तो रेडियो को आप किस तरह से अपने बचपन में देखते हैं, किस तरह से प्लेस्ड था रेडियो और कितनी सुनहरी यादें आकाशवाणी से जुड़ी हैं?
0: यूनुस, कमाल की बात यह है कि अब सारा बचपन जो है वो उस जमाने में, और आज के जमाने में तो सोशल मीडिया और जाने क्या कुछ हो गया है, हम लोगों का बचपन रेडियो सुन सुनकर ही बढ़ा। उसमें जो कुछ भी संस्कार आए, सुनने के भी, सीखने के भी, बोलने के भी, समझने के भी, ये सब संस्कार आकाशवाणी ने दिए। और जिसको सुनते सुनते कि ये आवाजें कानों को इतनी अच्छी लगती है, फिर फिल्म म्यूजिक की तो मैं बाद में बात करूंगा, जिनको हम सुनते थे, चाहे रेडियो ड्रामा हो, अनाउंसर हो, अनाउंसर उस वक्त जो है वो पूरे शहर में सुपरस्टार हुआ करते थे,
1: जिनकी
0: आवाज सुना, अनाउंसर, न्यूज रीडर्स, ये सब जो है। तो अगर किसी से कहा जाए कि आप रेडियो में काम करते, अच्छा अनाउंसर है आप, ये अनाउंसर का वो दर्जा था, मतलब, और वो पॉपुलरिटी थी। तो मतलब आप स्टेशन डायरेक्टर हो तो कोई मतलब ही नहीं है,
1: हाँ।
0: कोई जानता ही नहीं आपको, लेकिन अगर अनाउंसर है आप, अच्छा, तो ये मतलब बड़ी पहचान हुआ करती थी कि आप रेडियो में अनाउंसर है। फिर रेडियो सिंगर होना, रेडियो आर्टिस्ट होना, ये बड़ी बातें थी। तो हम जब बचपन में सुना करते थे, तो जयपुर में मेरा सारा बचपन बीता, तो ये सब हुआ। और फिर उसी केंद्र को सुनते सुनते युवाणी शुरू हुआ था, तो जयपुर के जो पहले युवाणी वाला बैच था उसमें हमें सौभाग्य मिला कि हम पार्टिसिपेंट के तौर पर एक
1: कैंडिडेट
0: के रूप में, एक ड्रामा आर्टिस्ट के रूप में ऑडिशन दिया, क्लियर हुए और फिर उसका हिस्सा बने। तो वही युवाणी कार्यक्रम जिसकी शुरुआत ही हम कलाकार थे, पार्टिसिपेंट थे, फिर उसी को हमने एज अ प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव उसको प्रोग्राम को संभाला आकाशवाणी ज्वाइन करने के बाद। और फिर जो मैं दूसरी बात कहना चाह रहा हूँ ये,
1: हाँ।
0: कि आज मैं विविध भारती में बैठ के ये बात बड़े गर्व से कहना चाह रहा हूँ कि बचपन में फिल्म म्यूजिक और उस दरबार का फिल्म म्यूजिक का तो खैर कहना ही क्या
1: जी।
0: तो जिनको, जिस चैनल को सुन सुन के, वो संगीत सरिता, वो सारे कार्यक्रम और बड़ी बड़ी आवाजें, बड़े बड़े संगीतकार, फिल्म म्यूजिक, तो जिन जिन को सुन के हम लोग बड़े हुए, विविध भारती चैनल को, मैं कभी कल्पना नहीं कर सकता था कि मैं उसी चैनल में आऊंगा
1: जी,
0: और न सिर्फ आऊंगा
1: बल्कि हेड करेंगे
0: उसका कार्यक्रम का, मतलब मुझे संचालन करने का मौका मिलेगा, उसको निर्धारित करने का मुझे मौका मिलेगा, प्लान करने का मौका मिलेगा, और पूरे चैनल को मैं अपने ढंग से चला पाऊंगा, देख पाऊंगा। तो ये मेरा सौभाग्य था कि जिस चैनल को सुनते सुनते मैं बड़ा हुआ,
1: वाह वाह वाह,
0: उसी चैनल से मैं रिटायर हुआ, और अच्छे ढंग से रिटायर हुआ। कि मेरी एक अच्छी टीम थी जिसमें यूनुस, एक सेक्टेबल मैं क्या नाम लूं, और पूरी अच्छी टीम, और उनकी वजह से हम अच्छे अच्छे प्रोग्राम शुरू कर सके, चला सके, और आज भी वो चैनल बहुत पॉपुलर है दुनिया भर का।
1: क्या बात है, क्या बात है, मुझे याद आता है आपके साथ काम करने का वो पूरा दौर। कितनी प्यारी आपने बात कही है, युवाणी से आपकी शुरुआत हुई और जयपुर के पहले युवाणी के बैच में आप रहे हैं। न जाने कितने लोगों की यादें ताजा हो गई होंगी, मेरी अपनी खुद की याद इसलिए ताजा हो गई कि मैंने भी अपनी रेडियो की शुरुआत युवाणी से ही की है, तो वो जो जहन में युवाणी की सिग्नेचर ट्यून बजने लगी जिस तरह की वो होती थी। पर क्या ये रेडियो तक का रास्ता आसान था, या वो रास्ता बहुत सारे डिबेट्स और कल्चरल एक्टिविटीज से होता हुआ पहुंचा है?
0: हाँ, नेचुरली ये आप एकदम अचानक आकाशवाणी में नहीं जा

0: सकते, आपको एक सांस्कृतिक लिटरेरी बैकग्राउंड तो आप में होना ही पड़ेगा,
1: बिल्कुल,
0: उसके बगैर आप आकाशवाणी में एंटर नहीं कर सकते, कम से कम आर्टिस्ट के तौर पर या पार्टिसिपेंट के तौर पर। और उस वक्त तो शर्तें और भी ज्यादा, वो आकाशवाणी का एक तरह से जयपुर आकाशवाणी ड्रामे के मामले में नंबर वन था।
1: बिल्कुल बिल्कुल, बड़े दिग्गज,
0: बड़े दिग्गज लोग, नंदलाल शर्मा जी, फिर ओम शिवपुरी, ये सब लोग वहां पे,
1: गंगा प्रसाद जी,
0: हाँ हाँ, तो ये सब जो उसका मेयर था वो ऐसा था कि पूछे मत। जब हम आकाशवाणी में एंटर, उससे पहले हम लोग रंगमंच, कवि सम्मेलन, साहित्य, ये सब कर चुके थे
1: जी,
0: और
1: जी,
0: कर रहे थे, है ना। तो उसके साथ ये हम ऑडिशन देने गए, उत्तर से सेलेक्ट हुए और पार्टिसिपेंट के तौर पे उसमें हिस्सा लिया। तो ये सफर जो है आकाशवाणी का सफर, पहले मेरा अपना रचनात्मक सफर शुरू हुआ और वो फिर आकाशवाणी के जरिए आगे बढ़ा। ये
1: बहुत ही शानदार बात है। जयपुर में जब आप पढ़ रहे थे तो आपने कहा कि रंगमंच और बाकी कल्चरल एक्टिविटीज में आप शामिल थे, तो रंगमंच की अपनी एक्टिविटीज के बारे में बताइए।
0: रंगमंच का यूं था कि मैं थोड़ा अपना पारिवारिक पहले बैकग्राउंड बताऊं कि मैं, हमारे परिवार में संगीत का परिवार रहा है। हमारे पिताजी बाकायदा गायक रहे और आकाशवाणी जयपुर के उस वक्त ए ग्रेड आर्टिस्ट में से वो सुगम संगीत के गीत, गजल, ये सब गाना उनका रहा। और न सिर्फ वो गायक थे बल्कि उन्होंने जयपुर में एक राष्ट्रीय तरुण कलाकार परिषद और श्रुति मंडल, ये दो सांस्कृतिक, मतलब कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन कौशल भार्गव साहब के साथ मिलकर खड़ी की, जिसने साल भर में बड़े बड़े कंसर्ट, म्यूजिकल कंसर्ट, और बड़े बड़े उस्ताद, बड़े बड़े पंडित, बड़े बड़े गुरु, तो इन सबको हमने बचपन से उनको आमने सामने बैठ के सुना, उनके आसपास घूमे, कई लोग हमारे घर भी आए। तो वो माहौल जो था बचपन का, वो सांस्कृतिक माहौल हमें बचपन से मिला।
1: हम यहां एक पल के लिए रुकना चाहता हूं कि जिस किसी को भी आपके बारे में बताएं तो लोग सोचते हैं कि आपका ताल्लुक तो कहीं आंध्रा से होना चाहिए, तो जयपुर से होते हुए लोगों को थोड़ा ताज्जुब होता है इसके बारे में।
0: बिल्कुल सही है, वो नाम से भी बिल्कुल है कि, और ये सही है कि हम लोग मूल रूप से आंध्रा के ही हैं, तेलंगाना के हैं, हमारे पिताजी माताजी सब वहीं के रहे, लेकिन मेरा ननिहाल नागपुर, और मेरी पिताजी जो पोस्ट एंड टेलीग्राफ्स में डिपार्टमेंट में काम करते थे उनकी पहली पोस्टिंग भी नागपुर में थी, तो मेरा जन्म भी नागपुर में हुआ। लेकिन आंध्रा में हमारा संपर्क लगातार, हम लोग नहीं रहे कभी भी, माताजी पिताजी कभी रहे थे, हम लोग बचपन में कभी शादी ब्याह में गए, साल में एक आध बार घूमने गए, तो आंध्रा उससे पहले हमारे पिताजी माताजी वहां से निकल चुके थे नागपुर, और नागपुर के बाद एक पूरा डिपार्टमेंट पिताजी के सेक्शन का वो जयपुर शिफ्ट हुआ, तो पिताजी जयपुर शिफ्ट हुए, तो हम बहुत बचपन में ही, हम बच्चे लोग जो थे वो जयपुर शिफ्ट हो गए उनके साथ, और फिर मेरी सारी परवरिश, पढ़ाई लिखाई सब जयपुर हुई। तो ये है आंध्रा और जयपुर का।
1: बिल्कुल, ये मुझे लगा कि ये जरूर इस बात के बारे में बात कर लेनी चाहिए। तो गुलाबी नगरी एक तरह से आपके बनने का एक बुनियाद का शहर रहा है, और आज भी बहुत सशक्त परंपरा रंगमंच और संगीत की जयपुर में रही है। तो आपके जमाने में वो कौन से कलाकार थे जो रंगमंच में बहुत जबरदस्त तरीके से सक्रिय थे? मुझे लगता है कि ओम शिवपुरी वाला दौर था।
0: ओम शिवपुरी उस वक्त एनएसजी जा चुके थे।
1: ओके,
0: हाँ, और हम उस वक्त छोटे थे और हम लोग रंगमंच में एक्टिव हुए हुए थे, देख ही रहे थे, सुन ही रहे थे, और एक सीखने का प्रोसेस जारी था
1: जी।
0: तो जो हमारी बचपन की यादें हैं, मतलब शुरुआती दिनों की यादें हैं, उस वक्त ओम शिवपुरी और सुधा शिवपुरी का तुगलक,
1: क्या बात
0: है, इब्राहिम अलकाजी का डायरेक्ट किया हुआ, वो क्लासिक प्ले था, क्लासिक प्ले, और इन दोनों का जो रोल था, मतलब ये मैं इन्हें कह सकता हूं कि ये ओम शिवपुरी, उनको फिल्मों में वो जगह नहीं मिली, उनको वो क्रेडिट नहीं मिला, उनको वो काम नहीं मिला जिसके हकदार थे, वो दिलीप कुमार थे, वो
1: बिल्कुल
0: रंगमंच के दिलीप कुमार थे, वो क्रेज था उनका, और वो जो अदायगी, उनका प्रेजेंटेशन, उनकी डायलॉग डिलीवरी, सब कुछ। तो बचपन से ये ओम शिवपुरी, सिद्धार्थ शिवपुरी, मोहन महर्षि, ये सब लोग, और दिल्ली से प्लेस बराबर आते रहते थे, हम लोग देखते थे अंधायुग
1: जी,
0: ये सब देखे हमने, और एवं इंद्रजीत, ये सब नाटक जो बादल सरकार के सारे। तो रंगमंच की एक अच्छी खासी परंपरा जिसमें जयपुर के लोग तो करते ही थे, दिल्ली से भी बड़े बड़े थिएटर ग्रुप, दिल्ली और कलकत्ता के लोग आते थे, थिएटर फेस्टिवल भी होते थे और क्लासिकल म्यूजिक कंसर्ट्स भी होते थे।
1: बिल्कुल, आज जयरंगम जैसी चीजें चल रही हैं, तो कैसा लगता है आपको?
0: बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। मैं गया हूँ उनके एक फेस्टिवल में, और जहाँ से मकरंद देशपांडे वगैरह हर साल जाते हैं वहाँ पे टीम लेकर के, प्ले लेके, तो वो एक तरह से थिएटर का माहौल जो है वो रिवाइव कर रहे हैं, और अच्छी ऑडियंस भी आती है वहाँ पे, और अच्छा चल रहा है मुझे
1: जी। और बातें करेंगे आपके बचपन की, हम यहीं इसी वक्त में थोड़ा ठहरना चाहेंगे। मुझे लगता है कि जिस जिस दौर की हम बात करें, उस दौर की याद के नाम एक गाना होना चाहिए तो

0: हमने ये गाना सुना, हाय रे वो दिन क्यों ना आए, शैलेंद्र का लिखा, पंडित रविशंकर का स्वरबद्ध किया ये गाना, अनुराधा फिल्म का, ऋषिकेश मुखर्जी की ये फिल्म थी। उस दौर में फिल्म म्यूजिक और फिल्मों से किस तरह का ताल्लुक था? जयपुर में फिल्में देखने की और टॉकीजों की भी एक बड़ी शानदार सी परंपरा रही है।
1: जयपुर में एक से एक थिएटर थे
0: जी,
1: और उस वक्त ये राज मंदिर, कभी नाम सुनाओ?
0: बिल्कुल
1: हाँ। तो राज मंदिर मेरे ख्याल से भारत का अकेला ऐसा थिएटर था जो बिल्कुल राज मंदिर, और उसमें राज वाला वो भी था
0: जी,
1: शाही अंदाज उसका, तो वो लोग देखने आते थे। फिल्म तो बाद में, थिएटर पहले देखते
0: हाँ, वो टूरिस्ट मैप पर था
1: वो थिएटर का अपना क्रेज था उसका
0: जी।
1: तो राज मंदिर, जैम, पोलिविक्ट्री, ये सब उस वक्त फिल्में भी मतलब आज कहीं नहीं इतने करोड़ उतने करोड़, मतलब 100 दिन चली, ये बड़ी बात होती थी।
0: बिल्कुल
1: है ना, इसने 100 दिन पूरे किए। तो उस वक्त वो जमाना था जब हम लोग फिल्में देखते थे, तो ये सब बड़े बड़े थिएटर थे। और फिल्मों का तो खैर दोहरिया लगता, हम कभी कभी स्कूल से भी भाग के देखा करते थे ये सब भी होता था
0: जी, ये हुआ है, लेकिन स्कूल से भाग के देखना भी हुआ है।
1: उपकार जैसी फिल्म हमने देखी थी, और कई फिल्में थी, और लंबी लंबी लाइनें, और आपको टिकट मिल जाए बड़ी बात, तो ये वो दौर देखा है हमने, जबकि थिएटर में जाकर फिल्म देखना और स्कूल से भाग के भी देखना और टिकट के लिए धक्का मुक्की होना, ये सब दौर देखा है। और फिल्म म्यूजिक का तो ये था कि सबसे बड़ा एंटरटेनमेंट वही था, घर में रेडियो चल रहा है, विविध भारती चल रहा है, फिल्म भी गा रहे हैं, कहीं लता जी हैं, कहीं आशा जी हैं, कहीं रफी जी हैं, कहीं मुकेश हैं, कहीं मन्ना डे हैं, तो ये सब चलता था। और हमारे क्योंकि संस्कार में म्यूजिक भी था और म्यूजिक ही था
0: जी,
1: मैं अपने घर में नहाने में सबसे ज्यादा टाइम लेता था।
0: अच्छा, क्योंकि गाना चलता था?
1: ये गाना चलता नहीं था
0: जी,
1: मैं गाता रहता
0: खुद गाते था
1: तो वो घर वाले भी बार बार, तो मुझे

0: फिल्मी गानों का शौक
1: जी,
0: गुनगुनाने का शौक वो बचपन से था, फिर वो संस्कार में ऐसा है कि फिर उसको धुने भी बनाने लगा और बाकायदा परफॉर्म भी करने लगा, वही का अलग दौर। फिल्मी गानों का ये असर फिल्म म्यूजिक का मेरी जिंदगी बहुत पड़ा रहा।
1: क्या बात है, और तब से ही ये गायकी वाला मामला आपका?
0: हाँ, मेरे कहा गायकी तो हमारे परिवार में पिताजी और बड़े भाई सब आज भी गायक हैं, वो सिखाते भी हैं, तो संगीत और गायकी का एक वो जो अंग है वो हमारे संस्कार में है। लिखना पढ़ना साहित्य में मैं बाद में आया उस तरह से।
1: जी, रंगमंच वाली आपकी एक्टिविटीज में वो कौन से नाटक याद आते हैं जिनका यहाँ जिक्र हो जाए?
0: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया
1: जी।
0: वो एक लड़कपन का दौर था हमारा, मतलब बीए का दौर ही था, हम उम्र लोगों ने हमने एक टीम बनाई और मैंने उसका नाम दिया ग्रुप का विकल्प
1: जी।
0: वो अभी भी चल रहा है, वो हमारे जो दोस्त है वो चला रहा है, हरी डायन उसका नाम है। तो हम चार लोगों ने मिलकर एक विकल्प नाम की संस्था बनाई और उसके साथ मैं लिखता था और डायरेक्ट करता था, और एक आध कभी कभी छोटा मोटा रोल की जरूरत पड़ी तो कर लिया। तो उससे हमने एकांकी से शुरुआत की और उस वक्त मैं ज्यादातर राजनीतिक व्यंग और पॉलिटिकल सटायर और ह्यूमर यही मेरा विषय रहा, तो उस पर ज्यादा काम हुआ और उस तरह के नाटक मैंने लिखे भी। नाम से ही समझ जाओगे कि होशियार समाजवाद आ रहा है,
1: बाबा
0: नेता कुर्सी प्रसाद सिंह,
1: क्या बात है।
0: और एक नाटक जिसको बहुत ज्यादा जिसके हमने शोज किए, भूमिका, जिसको उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकेडमी का ड्रामा कंपटीशन में बेस्ट ड्रामा का अवार्ड भी मिला। और एक नाटक मराठी, क्योंकि हम जिस कॉलोनी में रहते थे तो बहुवर्षीय कॉलोनी थी, मतलब एक छोटा भारत था वो।
1: हा हा हा
0: हा। उसमें गुजराती, मराठी, सिंधी, पंजाबी, सिख, मुस्लिम, सब मतलब कोई भेदभाव ही नहीं था। मतलब आज इस घर में घुस गए, कल उस घर में घुस गए, सब मिलजुल के खेल रहे हैं, होली हो, ईद हो और गणेशोत्सव हो। तो गणेशोत्सव यहाँ के बाद कई लोगों को पता लगता है गणेशोत्सव क्या है, ये हमने जयपुर में देख चुके हैं।
1: वाह वाह।
0: तो उनकी एक्टिविटीज में शामिल होना, सब कुछ करना, तो मराठी लोगों के साथ उठना बैठना बचपन से रहा, तो मराठी नाटकों का मैंने अनुवाद भी किया।
1: गजब।
0: तो एक नाटक था शाम फड़के का, कॉमेडी, काका की शाचा, जिस पर मराठी में फिल्म भी बनी।
1: हाँ हाँ।
0: तो उसका मैंने कौआ चले हंस की चाल,
1: क्या बात है,
0: इस नाम से किया। और वो जयपुर का पहला नाटक था जो टिकटेड हाउसफुल रहा, रविंद्र मंच पर टिकटेड हाउसफुल, वो पहला नाटक था जो विकल्प ने किया, हमने किया और खूब प्रसन्न किया और उसके बहुत शोज हुए।
1: हम जब असरानी साहब के बारे में सुनते हैं तो वो भी काफी रंगमंच पर सक्रिय थे और जयपुर में थे, जयपुर की एक बड़ी शख्सियत रहे, कभी उनसे आमना सामना हुआ उस दौरान?
0: नहीं, मेरा ये रहा कि वो असरानी साहब से बहुत अरसे बाद एक किसी फंक्शन में यहाँ पे मिलना हुआ।
1: अच्छा।
0: लेकिन उस दौरान में नहीं, वो जयपुर से
1: जा चुके थे उस दौर में जब आप
0: तो, तो हमसे काफी से, तो लेकिन उनकी एमआर रोड से पांच बत्ती के पास में ही सब बताते थे कि ये असरानी साहब के भाई की दुकान है
1: जी।
0: वो उनकी एक कपड़ों की दुकान थी।
1: बिल्कुल।
0: फिर हमारे जो पिंचू कपूर, आपने नाम सुना होगा
1: जी, बिल्कुल,
0: पिंचू कपूर, ओम शिवपुरी, ये सब ये हमारे सीनियर लोग, मतलब जो निकल चुके थे हमारे जमाने से पहले ही।
1: हाँ,
0: तो लेकिन इनको सुन सुन के, मतलब ये हमारे लिए वो मिसार थे कि जयपुर के ये लोग हैं जिन्होंने नाम कमाया, बड़े लोग थे।
1: क्या प्यारी बात है। अच्छा, जब आप आकाशवाणी से जुड़े और युववाणी करने लगे उस समय भी तो जयपुर आकाशवाणी जो है वो एक बहुत ही बुलंद संगठन था और बहुत बड़े बड़े लोग आकाशवाणी से जुड़े थे, किन हस्तियों के सानिध्य में सीखने को मिला आपको?
0: बहुत बड़े नाम थे और बहुत जयपुर, मैंने कहा ना, जब नाटक में तो नंबर वन हुआ करता था, हवा महल में मैक्सिमम उसके प्लेस हुआ करते थे, और उसके अलावा वहां पे जो आधा आधा घंटे के या एक एक घंटे के नाटक हुआ करते थे वो कमाल थे। मतलब उसमें नंदलाल शर्मा, आपके नाम सुना,
1: बिल्कुल,
0: गणपत लाल डांगी,
1: हाँ,
0: इनका हवा महल में
1: आज भी हवा महल में उनके नाटक ब्रॉडकास्ट होते हैं,
0: रंजना चौधरी, तो ये एक से एक नाम थे और एक से एक आर्टिस्ट थे और जिनके प्लेस लोग बहुत पसंद करते और इंतजार करते थे ये
1: जी। और आकाशवाणी जयपुर जो है वो जयपुर अजमेर था तब भी।
0: हाँ, क्योंकि अजमेर इंडिपेंडेंट स्टेशन नहीं था
1: जी,
0: वो सिर्फ रिले सेंटर था, तो जयपुर अजमेर ही बोला जाता था उसको।
1: अच्छा।
0: और आज भी शायद वही होगा
1: जी,
0: अजमेर सिर्फ रिले सेंटर है, वहां पे कोई रिकॉर्डिंग या उस तरह का इंडिपेंडेंट ब्रॉडकास्ट नहीं होता है, अजमेर को लिंक किया हुआ है यह
1: जी। तो आकाशवाणी में नौकरी का रास्ता किस तरह से खुला?
0: हाँ, मैं उस वक्त एक और पहलू भी था मेरा कि मैं एमए मैंने किया ही किया था
1: जी,
0: और मैं उस वक्त ये राजस्थान पत्रिका,
1: बहुत ही मशहूर
0: हिंदुस्तान का, उस वक्त राजस्थान का नंबर वन अखबार था हिंदी का, और उसका एक संडे एडिशन शुरू हुआ था
1: जी,
0: वो राजस्थान में पहली बार हुआ था, पता नहीं दिल्ली और जगह होगा, उसका नाम ही इतवारी पत्रिका था, हर इतवार को आता था और उसका नाम रखा था इतवारी पत्रिका। कर्पूर चंद कुलेश साहब राजस्थान पत्रिका के मालिक भी

0: थे और बड़े पत्रकार थे, तो उन्होंने शुरू किया था। उसमें उन्होंने श्री गोपाल पुरोहित उसके संपादक थे और मैं उनके साथ सहायक संपादक के तौर पर लगा। 3 साल मैंने वहाँ काम किया और वो हर इतवार उसमें कॉलम भी लिखता था, इंटरव्यू भी करता था, ये सब होता रहा। उसी दौरान ये आकाशवाणी की ये वैकेंसी निकली थी UPSC की, तो मैंने भी अप्लाई कर दिया और संयोग से सेलेक्ट हुआ। UPSC में इंटरव्यू दिया, सब हो गया और पहली पोस्टिंग मेरी आई जलंधर।
1: अच्छा,
0: ये 1980 की बात है।
1: क्या बात है,
0: 19 नवंबर, हाँ 1980 में, तो पहली पोस्टिंग मेरी जलंधर हुई। मैंने वहां ज्वाइन किया, 1 साल वहां काम किया।
1: तो वहां तो पता चला था कि ये वो स्टेशन है जहां जगजीत सिंह गाया करते थे।
0: हाँ, बिल्कुल सब और जगजीत सिंह, सुदर्शन फाकीर
1: जी,
0: इन लोगों के नाम से वो
1: ऐतिहासिक स्टेशन है जलंधर।
0: और वहां पे पंजाबी के बड़े बड़े लोग थे, मतलब
1: बिल्कुल
0: पंजाबी राइटर्स, सोहन सिंह मीशा
1: जी,
0: और मतलब ऐसे नाम जो बाद में साहित्य अकेडमी अवार्ड जिनको मिला, सुरजीत पात्र, ये सब लोग वहां पे मतलब एक्टिव लोग थे, पार्टिसिपेंट के तौर पर आते थे। सुरजीत पात्र लुधियाना से, सब कुछ। तो जलंधर भी उस वक्त पंजाब का जयपुर था एक तरह से।
1: बिल्कुल
0: पंजाब का जयपुर था वो। वहां बड़े अच्छे नाटक, बड़े अच्छे आर्टिस्ट और बहुत एक्टिव शहर था
1: जी।
0: तो मेरा बहुत अच्छा वक्त गुजरा। और मेरे जो सीनियर थे वो सारे पंजाबी लोग थे, मतलब हिंदी वाला मैं अकेला था वहाँ पे।
1: हाँ।
0: हिंदी का प्रोग्राम मैं ही संभालता था वहाँ पे, हिंदी का पैक्स था वहाँ पे मैं, लेकिन एक से प्रोग्राम पंजाबी ऐसी भाषा थी कि जो समझने में उतनी मुश्किल नहीं थी,
1: थी, थी जी।
0: तो मेरा अच्छा वक्त गुजरा जी।
1: कितने वक्त तक आप जलंधर में रहे?
0: 1 साल
1: जी। और किन हस्तियों से आपका बहुत करीबी ताल्लुक रहा लिटरेचर की?
0: मैंने बताया ना, सोहन सिंह मिश्रा
1: जी,
0: और फिर उर्दू के भी कई लोग थे वहां पे
1: जी,
0: जो सुरजीत पात्र वो उस जमाने में उनसे मिलना हो गया था, जो बाद में साहित्य अकेडमी अवार्ड मिले हुए सब।
1: बिल्कुल
0: विषय साहब को मिला।
1: तब तक आपका लिखना शुरू हो चुका था?
0: हाँ, लिखना तो मेरा जयपुर में शुरू हो चुका था
1: जी,
0: लेकिन मैं उस वक्त मैं गीत लिखता था। शुरुआत मेरी मंच से हुई, गीत लिखता भी था, छपते भी थे सब कुछ। और एक गीतकार के तौर पर मैं राजस्थान में जगह जगह कवि सम्मेलनों में भी जाया करता था। उदयपुर में जब कवि सम्मेलन हुआ तो पहला जो मेरा बड़ा ब्रेक था या पहचान या आत्मविश्वास जिसे मिला, तो नीरज जी का तो बोलबाला था उस वक्त गीतों के राजकुमार।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: उनके नाम से पूरा क्राउड इकट्ठा होता था, हजारों लोग इकट्ठा हो जाते थे
1: सुबह तक, लोग सुनते थे और सबसे लास्ट में उन्हें पढ़वाया जाता
0: जी। और मेरा वो शुरुआती दौर था
1: जी,
0: तो नीरज जी थे वहां पे, वो मुख्य कवि तो थे ही थे। तो मैंने जब वो गीत पढ़ा अपना, तो ये नीरज जी ने आशीर्वाद देने का उनका तरीका था, उन्होंने बहुत प्यार दिया पहचान, और अपने गले की माला मेरे गले में जब मैं पढ़ रहा हूँ तभी आके डाल दी।
1: अरे
0: तो ये एक आशीर्वाद था जो मुझे।
1: क्या बात है, क्या वो गीत याद है आपको?
0: हाँ, जो वो मेरे काफी पढ़ा इधर उधर
1: जी,
0: तरन्नुम में सुनाऊं?
1: जरूर सर, जरूर, बिल्कुल स्वागत है।
0: जिंदगी की बस्ती में

0: क्या बात है, क्या बात है। जाहिर है कि इस रचना से नीरज जी की प्रशंसा तो मिलनी ही थी और ये आपके लिए बहुत यादगार लम्हा रहा होगा।
1: बिल्कुल, और एकदम शुरुआती दौर में इतने बड़े हस्ती का जी।

0: आशीर्वाद मिलना और प्रोत्साहन मिलना, तो वो एकदम यादगार और बहुत आत्मविश्वास देने वाला लम्हा था, एक सफर को आगे बढ़ाने वाला होता था।
1: जब आप घर लौटे इस कवि सम्मेलन के बाद, तो क्या पिताजी की कैफियत थी, उन्हें क्या बताया?
0: वो बहुत खुश हुए, लेकिन मैं यहाँ ये भी बताना चाहूंगा कि हमारे पिताजी, मैंने कहा वो गायक थे और संस्था चला थे सब कुछ, लेकिन एक अलग तरह के पिता थे वो, बिल्कुल बहुत कम बोलना, मतलब उनसे हमारा संवाद जो है ना
1: मिनिमम,
0: हमारे नाटक भी देखते थे, आते थे देखते थे, लोग खुश हो रहे हैं तालियां बजा रहे हैं या सब कुछ, या कभी सल्लू ने भी आते थे कभी, तो वो आके देखा और चले आए घर पे। अखबार में भी कॉलम लिखता था, हर संडे आता था, पढ़ते थे सब कुछ था, लेकिन वो खुद अपनी तरफ से कभी, वो दौर था, तो हो सकता है कि आज तो अगर हम अपने बच्चों से दोस्त की तरह से बात करते हैं
1: जी,
0: पिताजी का एक डिस्टेंस हमेशा रखते थे।
1: तो आपके जहन में हमेशा ये सवाल रहता होगा कि अच्छा हा? लगा है कि नहीं, क्या चल रहा है मन में,
0: बस वो उनको सूचना जरूर हो। और हमारा संवाद माँ से होता था
1: जी,
0: उनसे खूब मतलब हंसी मजाक बोलना चलना, नाराजगी या गुस्सा या सब कुछ पिताजी से घर में जो था, लेकिन वो खुश तो होते थे, बहुत खुश होते थे, लेकिन वो डायरेक्ट इस तरह से बोलते नहीं थे।
1: वो दौर भी ऐसा था कि पिताओं से संवाद बहुत कम हुआ करता था। माँ की स्मृतियां हमारे साथ बांटिए कि उनसे क्या कुछ आपने सीखा है, आपकी शख्सियत में उनका क्या योगदान है, और आपकी कामयाबी उन्हें कितना खुशी दी।
0: बिल्कुल, ये पारिवारिक रूप से अगर देखें तो पिता ने माहौल दिया
1: जी,
0: पिता ने माहौल दिया, मतलब अगर मैं कलाकार बना हूं या कलाकार कला के क्षेत्र में हूं तो वो पिता के संस्कार है, पिता ने जो माहौल दिया बचपन से। अगर आप देखें तो कुमार गंधर्व, भीमसेन जोशी, रविशंकर, बुद्धदेव मुखर्जी, राजन साजन मिश्र, अमजद अली खान, कोई नाम लीजिए जिनको हमने बचपन में आगे
1: बढ़ने सामने देखा,
0: आमने सामने देखा, उनके आसपास घूमे बैठे, गिरिजा देवी, बेगम अख्तर,
1: बाप रे,
0: कोई नाम लीजिए, तो वो सब हमने देखा है और उनके साथ उठे बैठे हैं, कई लोग हमारे घर आए है ना, तो ये माहौल पिताजी ने दिया, उसके बगैर हमारे संभव नहीं था कि हम उस दुनिया को देख सकते, इन बड़े लोगों को देख सकते, इन हस्तियों, तो वो उनको सुन सुन के भी संस्कार हुए। संगीत जो है वो इस तरह से भी संस्कार में आता है, एक तो बाकायदा आप गुरु से सीखते हैं और एक सुन के भी सीखते हैं, तो वो हमने उस तरह से सीखा। तो पिताजी ने माहौल दिया, संस्कार दिया, माँ ने जो है वो एक पूरा प्रोटेक्शन कहना चाहिए। मैं बात करूं तो हमारी कॉलोनी में जो मैंने कहा ना वो एक मिनी भारत था वो
1: जी जी,
0: लेकिन मेरा बचपन बिल्कुल विपरीत था। मैं अपनी कॉलोनी के चंद शैतान बच्चों में से एक
1: ये तो नया खुलासा है हमारे लिए,
0: मतलब खेलना कूदना ये तो सही है ही, सभी बच्चे करते सब कुछ, लेकिन छेड़ने की आदत जो है ना, किसी के साथ भी मजाक कर लेना, किसी को
1: तंग करना
0: या मस्ती करना
1: जी,
0: तो कहीं ना कहीं एक या दूसरे दिन में कोई
1: शिकायत आती थी,
0: कि आज इसने ये क्या, और मेरा बचपन का नाम छोटू था।
1: अच्छा, क्योंकि आप छोटे थे इसलिए।
0: हाँ, मेरे बड़े भाई साहब थे, मैं नंबर दो था
1: जी,
0: तो पहले नाम ऐसे ही रखे जा रहे घरेलू,
1: बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल।
0: बड़े भाई साहब श्याम और मेरा नाम छोटू
1: जी,
0: तो वो छोटू की शिकायत जो है
1: रोज आ रही है,
0: मतलब हर दूसरे दिन या हर दिन जो है वो, आज इसने ये किया, आज इसने वो किया, ये सब चलता रहता था। तो वो माँ थी
1: प्रोटेक्शन
0: संभालती थी, और कभी कभी वो पिता तक पहुंच जाती थी बात, पिताजी जिस ढंग से पेश आते थे वो तो वो मैं
1: उसका जिक्र ना ही करे तो अच्छा।
0: तो ये एक अच्छा बचपन बीता, और माँ ने जो है वो, क्योंकि पिताजी का यही था कि वो दिन में नौकरी करना, आना, फ्रेश होना, चाय पीना और कपड़े वपड़े बदल के सीधा रविंद्र मंच।
1: अरे
0: घर
1: तो
0: में वो पारिवारिक उसके पिता नहीं थे वो,
1: हाँ, वो अपनी दुनिया उनकी,
0: वो अपनी दुनिया थी उनके, बस आए सुबह ऑफिस चले गए, शाम को आए और फ्रेश हुए, चाय वाय पी और फिर सीधा रविंद्र मंच, फिर वहां से लौटे, खाना वाना खाए, सो गए। तो बच्चों से भी उनका उस तरह संवाद नहीं होता था, तो वो माँ थी जिनसे मैंने कहा ना कि वो तो परिवार में पारिवारिक माहौल का जो और पारिवारिक मजबूती जो है, खुलापन भी, छूट भी, उसे माँ से मिली।
1: क्या बात है, और क्या आपकी रचनाओं में माँ झलकती हैं?
0: उस तरह से तो डायरेक्ट तो नहीं, लेकिन कहीं कहीं जैसा बचपन हमने गुजरा, तो वो एक लोअर मिडिल क्लास का जो मिडिल क्लास मतलब सरकारी कर्मचारी जो है,
1: बिल्कुल
0: की कॉलोनी थी, तो हम उसी में तो, लेकिन बहुत खुशहाल, मतलब मैं अपने आप को अगर आप देखूं तो हो सकता है आर्थिक रूप से हम लोग बहुत लोअर मिडिल क्लास ही कहना चाहिए उस वक्त, लेकिन एक बहुत ही सांस्कृतिक रूप से समृद्ध खुशहाल परिवार थे, और मुझे अपने बचपन की बहुत अच्छी यादें हैं, मैं खुशहाल हूँ जी।
1: क्या बात है, इतनी सुंदर बातें हो रही हैं और इतनी जज्बाती बातें, तो मुझे लगता है कि यहाँ आशीर्वाद

0: बचपन की बातें हमने की रेड्डी साहब, और ये वो बातें हैं जो इसलिए जरूरी थी कि वो कौन से तत्व थे जिन्होंने आपको बनाया। लेखन की दुनिया में उस समय में जब आप धीरे धीरे कदम बढ़ा रहे थे, तो आपके आदर्श कौन थे और क्या कोई था जो आपकी रचनाओं को सुधारे या जो आपको मार्गदर्शन दे वहां पर जयपुर में?
1: जी, जयपुर में जैसे मैंने कहा कि मैं गीत से शुरू हुआ था, तो मेरे दो बड़े लोग थे जो मेरे काव्य गुरु भी मैं जिन्हें मान सकता था और जो मुझे मार्गदर्शन भी देते थे, आशीर्वाद भी देते थे। एक तो तारा प्रकाश जोशी
0: जी,
1: और एक हरिराम आचार्य। हरिराम आचार्य फिल्मों में भी लिखा
0: जी जी,
1: मेहंदी रंग लाई,
0: डांसिंग जी के साथ उनके गाने हैं बहुत सारी फिल्मों के।
1: और तारा प्रकाश जोशी जी आईएएस ऑफिसर थे।
0: अच्छा।
1: लेकिन गीत में उनका कोई जवाब नहीं था, मतलब इतने बड़े गीतकार थे वो राजस्थान के। मतलब एक पंक्ति यूनुस में बताऊंगा उनकी, मेरे गुरु तुम्हें एक तरह से, मेरा वेतन ऐसे रानी, मेरा वेतन ऐसे रानी जैसे गर्म तवे पर पानी।
0: ओ हो, क्या अद्भुत है, क्या अद्भुत है,
1: जैसे गर्म तवे पर पानी,
0: क्या बात है।
1: ऐसी पंक्ति मतलब मैंने नहीं सुनी।
0: क्या बात है, क्या बात
1: नहीं सुनी। तो ऐसे लोग मेरे आदर्श थे, मेरे गुरु थे, जिनके साथ बैठता था।
0: गजब, ये जीवन में कभी भूलेगा नहीं, इतनी अद्भुत है।
1: मेरा वेतन ऐसे रानी जैसे गर्म तवे पर पानी,
0: तुरंत खत्म। वाह वाह।
1: तो और हरिराम आचार्य जी के तो
0: बिल्कुल मेरी भी मुलाकात रही है।
1: तो ये लोग थे जिनसे सीखा। लेकिन मेरे साथ अच्छी बात रही आप संस्कारों में, जिसने मुझे आगे थोड़ा गंभीर लेखन की तरफ रखा, सिर्फ मंची ये नहीं बनाया, वो ये कि मैं बाकी विधाएं भी पढ़ता था। मेरे निर्मल वर्मा, भीष्म सहनी, राजेंद्र यादव, कमलेश्वर, ये सब मतलब फिक्शन भी, उपन्यास भी, आलोचना भी, नवर सिंह जी भी, मैं हिंदी में तो एमए किया था, तो हिंदी साहित्य से बराबर जुड़ाव। और फिर बचपन से ही वो हमारे कॉलोनी में, हमारे अखबार परिवार में सिर्फ अखबार था, मतलब किताबें विताबों को वो नहीं था उतना। तो एक कॉलोनी के आगे डिपार्टमेंटल लाइब्रेरी हुआ करती थी,
0: उसमें
1: तो सारे अखबार आते थे, मतलब अखबार तो थे ही थे,
0: पत्रिकाएं भी,
1: दिनमान, साप्ताहिक हिंदुस्तान, कादम्बिनी, तो ये मैं इन सबको चार्ट जाया करता था वहां जाकर के, घंटों घंटों वहीं बैठता था। तो और बाकी लोग जो आके चले गए, और मैं अपने अभी इसको पढ़ रहा हूँ, फिर उसको पढ़ रहा हूँ, फिर उसको, मतलब तीन चार टेबल पे मैं, मेरे दो तीन घंटे निकल जाते थे
0: जी।
1: तो बचपन से वो पढ़ने का भी शौक था, संगीत का भी शौक था, तो ये सब चीजें जो है संस्कार में। और फिर जैसे होता है कि ये तो मेरे आदर्श थे ही और बड़े थे, बाकी फिर उर्दू शायरी की तरफ यूं हुआ कि गीत करते करते फिर हम उम्र लोगों के साथ उठना बैठना है ना, सुनना सुनाना, और फिर मुशायरे भी वहां हुआ करते थे जयपुर में, तो बड़े बड़े मुशायरों को सुनना, तो हम उम्र लोगों की टोली में यंग शायर भी थे जिनके साथ उठते बैठते थे। तो जब मुशायरे सुने और उसमें जो शेर का जो दो मिसरों में, दो पंक्तियों में जो
0: सारी बात कह,
1: सारी बात कह देने का जो जादू वो मुशायरों में देखा, तो फिर वो उस विधा ने मुझे आकर्षित किया, मैं उस तरफ झुका और फिर गजलें कहने लगा। अमर लोगों को हमारे जो साथ में थे, अरशद अब्दुल हबीब, इनाम शरर, मजा साहब, तो ये सब लोग सुनते थे, वो सराहते थे और कि ये अच्छा है।

0: अच्छा है। और फिर मैंने बाकायदा गजल के लिए उर्दू स्क्रिप्ट सीखी, मौलवी साहब आते थे मुझे पढ़ाते थे सिखाते थे, और फिर मैं बाकायदा गीत से गजल में शामिल हो गया। गजल को मैंने अपनाया और शायद फिर गजल ने मुझे भी अपना लिया।
1: क्या प्यारी बात है। तो शुरुआती गजलों में से कोई एक हमें सुनाइए।
0: मेरा सौभाग्य रहा यूनुस की ये जो गजल पंकज दास साहब ने गाई और पूरे दुनिया में पहुंची,
1: जो आपकी पहचान के साथ की हुई है,
0: वो जयपुर की गजल है।
1: वाह,
0: वो शुरुआत
1: कमाल।
0: हाँ,
1: ये मुझे नहीं पता था। और ये मेरे लिए हैरत की बात है कि वो आपकी शुरुआती गजल है।
0: नहीं, यूनुस इसलिए आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए वो, कि गीत से मेरी यात्रा शुरू हो चुकी थी
1: जी।
0: गजल की विधा को मैंने
1: अपने शिफ्ट किया है।
0: हाँ, गजल में शिफ्ट किया और उसको अपना लिया। मैंने कहा ना, हम उम्र लोगों के साथ उठते बैठते सुनते सुनाते उनसे आश्वस्ति मिली। और एक हमारे बुजुर्ग होते थे, कहना चाहिए टोंक में रहते थे वो, तो वो भी आया करते थे और शाम को बैठे और एक दूसरे को सुनना सुनाना। तो उन्होंने जब ये पहली बार सुनी गजल तो वो भी चौंक गए, मतलब क्योंकि ये ट्रेडिशनल ढंग की गजल नहीं है।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: है ना? बिल्कुल। तो बोले और ये जो जिसको कि गजल की जबान में या उर्दू में टेक्निकली रदीफ कहते हैं, है ना, जो गजल के वक्ति के आखिर में आती है और वो रिपीट होती है हर शेर में, से डरता है। अब ये रदीफ जो है वो अनसुनी सी थी, मतलब
1: और कभी इससे पहले मैंने सुना नहीं है।
0: तो खुद
1: मुश्किल भी है।
0: हाँ,
1: मुश्किल भी है,
0: मुश्किल भी है। तो उसको निभा ले जाना और उसको, तो वो भी हैरान हुए कि ये यार तुम ये रदीफ ले आए और उसको तुमने शेर भी कह दिए और अच्छे शेर कह दिए सब कुछ है। और फिर वो शेर उसने तो मुझे मतलब सबसे ज्यादा प्यार दिया, पहचान दी। तो वो गजल मैं अगर कहे तो
1: जरूर सर, अरे स्वागत है, बिल्कुल।
0: जो पंकज जी ने गाई उसकी धुन अलग है,
1: आपकी धुन अलग है।
0: जो मैं सुनाता हूँ और जिसने मुझे शहरों में पहचान दी वो ये गजल।
1: स्वागत।
0: यहाँ हर शख्स

0: मिट्टी का फना होने से डरता है, खिलौना है जो मिट्टी का फना होने से डरता है, यहाँ हर शाख। ये खास शेर है, वो
1: स्वागत है।
0: मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा, मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा, बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है, बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है, खिलौना है जो मिट्टी का फना। यूनुस, इसकी एक शेर और सुनाता हूँ।
1: जरूर सर।
0: ये बच्चे वाला जो शेर है उसको सबसे ज्यादा प्यार मिला
1: जी।
0: ये शेर भी उतना ही सच्चा है।
1: बिल्कुल।
0: हम देखते हैं कि हर जिंदगी में हर इंसान की कभी न कभी वो पल आता है कि वो ऊपर वाले से पनाह मांगता है।
1: बिल्कुल।
0: बहुत हो गया, अब नहीं रहा, अब नहीं, बहुत हो गया, है ना। ये आता है
1: सबके साथ, सबके साथ।
0: अरबपति खरबपति भी खुदकुशी करते हैं, उनके पास क्या नहीं होता
1: जी।
0: लेकिन वो जिंदगी ऐसे मोड़ पे ले आते हैं कि वो बस बहुत हो गया। लेकिन जब ऐसा पल आता है
1: तो आप कहते हैं अजब ये जिंदगी की।
0: तो फिर हमारे क्या रिएक्शन होते हैं।
1: वाह।
0: और कोरोना में तो हमने देखा ही कैसे जान बचाते फिर रहते हम लोग। तो ये शेर है जो सबका सच है।
1: वाह।
0: अमीर हो गरीब सबका, यहाँ हर शख्स हर पल हादसा होने से डरता है, अजब ये जिंदगी की कैद है, दुनिया का हर इंसान, अजब ये जिंदगी की कैद है, दुनिया का हर इंसान रिहाई मांगता है, और रिहा होने

0: है और रिहा होने से डरता है, खिलौना है जो मिट्टी का फना होने से डरता है।
1: क्या बात है सर, हम बहुत खुश नसीब है कि विविध भारती की स्टूडियो में आप मौजूद हैं और आप से ये सुन रहे हैं।
0: मेरी खुशनसीबी है, थैंक यू।
1: ये अद्भुत गजल है और हजारों बार तो हमने पंकज जी की आवाज में सुनी होगी, पर जब आपके साथ काम करते थे तब तो हिम्मत नहीं होती थी ये कहने की कि आपसे ये गजल सुननी है। आज ये मौका आया है, बहुत अच्छा लगा, ये बहुत ही अनमोल पल है। रेडियो की तरफ वापस लौटते हैं और जलंधर में एक साल बिताने के बाद आप कहाँ गए?
0: उसके बाद मैं अपने होम टाउन जयपुर।
1: जी जी,
0: मेरे साथ ये भी रहा और अभी भी होता है ये कि मैं शुरू से ही होम सिक रहा, मतलब
1: जी जी बिल्कुल,
0: जलंधर मुझे कोई कमी नहीं थी। हाँ। बहुत अच्छा शहर था, बहुत प्यारे लोग थे,
1: अच्छा खान पान था,
0: अच्छा खान पान था, अच्छा मौसम था
1: जी,
0: सब कुछ अच्छा था, बहुत अच्छा था, केंद्र भी बहुत अच्छा था, लोग भी अच्छे थे, मैं खुश था, सब भी था, लेकिन एक होम सिकनेस होती कि वो मुझे अपने शहर जाना है वापिस, तो मतलब मैंने रिक्वेस्ट की और वो सुन ली गई, मान ली गई और मैं वापिस अपने शहर में आ गया जयपुर। मैं वहां फिर वापिस शायद 5 साल जयपुर रहा।
1: तो ये बहुत ही अनमोल पल रहे होंगे कि जिस स्टेशन में आप बतौर कैजुअल आया करते थे, युवाड़ी करते थे, वहां आपकी वापसी होती है और अब आप प्रोड्यूसर बनते हैं।
0: और ये भी कमाल थी कि जिस केंद्र में मैं कैजुअल के लिए ऑडिशन देने गया हूँ
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल,
0: वही मैं एक प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव तौर पर एंटर हो रहा हूँ और ज्वाइनिंग के लिए सब कुछ है। तो और क्या टीम थी वो वहाँ पे,
1: बिल्कुल
0: करीब बड़े लोग, अच्छे लोग, तो उनके साथ मिलना जुलना हुआ और वो एक अलग अनुभव था। और मुझे जयपुर मेरा क्रिएटिव जैसा विविध भारती मेरा बाद में हुआ
1: जी जी,
0: और इसमें मैंने प्रोडक्शन कम किए लेकिन प्रोग्राम में उनकी परिकल्पना, उनको संवारना या उनको इम्प्लीमेंट करना, ये सब रहा। मेरा क्रिएटिव जो बेस्ट था
1: जी
0: वो जयपुर में था
1: जी जी जी,
0: नाटक लिखना, कंपोज करना,
1: बिल्कुल
0: प्रोड्यूस करना, इंटरव्यूज करना, वो सब जयपुर हुआ। मतलब वो मेरी जो पूरी जलंधर में मुझे आकाशवाणी की जानकारी सब हुई, सब कुछ हुआ। एक लिमिटेड काम था, ये हिंदी का कार्यक्रम अधिकारी था, हिंदी का लिमिटेड उसमें सब कुछ था। जयपुर मेरे पूरा खुला मंच था
1: बिल्कुल, और फिर आप उस शहर में पले बड़े थे,
0: पला
1: तो
0: बड़ा
1: सब
0: था
1: जानते थे
0: और फिर और... उसने मुझे, मैंने कहा ना कि मेरे क्रिएटिविटी के सारे पहलू उसमें खुले
1: जी,
0: मेरा लेखक भी खुला, मेरा संगीतकार भी खुला, मेरा प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव भी तो तब था ही था, सब कुछ नाटक लिखे, निर्देशित किए, संगीतबद्ध किए, अब म्यूजिकल शो पूरा उसमें हुआ, अभी तो नहीं हो रहा है। उस वक्त जयपुर में और जयपुर के पूरे आकाशवाणी के दौर था कि वो आमंत्रित श्रोताओं के सामने कॉन्सर्ट होते थे
1: जी,
0: तो उसके लिए भी मतलब तैयार करना, उसके लिए प्लेज लिखना, तैयार करना, गाने लिखना, ये सब जयपुर में हुआ।
1: वाह क्या बात है। तो उस दौर में कौन से नाटक आपने रेडियो के लिए बनाए, उनको कुछ याद कीजिए थोड़ा सा।
0: उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण नाटक है, राजेंद्र यादव की कहानी थी टूटना
1: जी जी,
0: उसका मैंने रेडियो नाटक रूपांतर किया।
1: वाह,
0: और उसका प्ले किया और बहुत पसंद किया गया लोगों द्वारा। और ये तो हुआ टूटना, एक ज्ञान प्रकाश विवेक की कहानी थी अंधा सूरज,
1: क्या बात है,
0: उसका किया।
1: वाह,
0: और इसके अलावा गीत गोविंद,
1: अरे गजब,
0: ये मेरे लिए सबसे बड़ी बात जो उपलब्धि थी। यूनुस उसके आश्चर्य की बात यह थी कि गीत गोविंद का आपने ड्रामेटिक नाट्य रूपांतर किया, वो नाट्य रूपांतर तो हिंदी में हुआ, मतलब उसका कैरेक्टर जो राधा कृष्ण सखी ये सब कुछ है, गीत गोविंद मूल रूप से संस्कृत में है,
1: बिल्कुल
0: जयदेव जी का
1: जी।
0: हाँ, उसके जो गाने हैं, उसके जो गीत हैं, वो मूल संस्कृत में, मूल संस्कृत में मैंने कंपोज किए, रिकॉर्ड किए, गाए
1: संस्कृत में,
0: संस्कृत में,
1: अरे बाप,
0: तो गाने संस्कृत में हैं
1: जी,
0: और उनके इंटरप्रिटेशन करते हुए उनको एक तरह से समझाने के लिए मैंने कैरेक्टराइजेशन किया कि लोग, आम लोग समझ चुके इस गाने का क्या मतलब है, इसमें क्या कहा गया है, इसमें कौन कैरेक्टर है, ये राधा का दुख है, ये कृष्ण की पुकार है।
1: हाँ,
0: है ये
1: तो बहुत मुश्किल काम है।
0: हाँ, बहुत मुश्किल, तो वो एक मेरे लिए वो मील का पत्थर जैसा हुआ और लोगों को भी हैरानी हुई कि लोगों ने उसका आनंद भी लिया और समझे भी, मतलब गीत गोविंद को ओरिजिनल, क्योंकि मैं ये समझता था कि उससे पहले गीत गोविंद रघुनाथ पाणिक रहे उड़ीसा में
1: जी जी,
0: तो वो करते रहे और वो बहुत मशहूर है, बहुत पॉपुलर है, सब कुछ है, लोग गायक के रूप में वो पॉपुलर है वो वहां पे, लेकिन मैंने उनका सुना है और वो तो कमाल है, मतलब वो भी, लेकिन मुझे ये लगा कि उनमें वो लोक तत्व ज्यादा है, मतलब कि बंगाल या उड़िया का, उनके कंपोजिशंस में भी, उनके गाने में भी, तो

0: मैंने उसको बाकायदा एक फिल्म का तो फाइल था तो सुगम संगीत के तौर पर मैंने उसको कंपोज किया और गाने वाले भी बहुत अच्छे थे, तो उस तरह से वो एक लोगों को लगे कि ये गाना है।
1: क्या बात है, ये तो बहुत मुश्किल है।
0: तो वो गाने के तौर पर वो हुआ और लोगों ने सुना और पसंद किया।
1: वाह वाह वाह, तो ये पूरा जयपुर का दौर था।
0: अभिज्ञान शाकुंतल
1: जी
0: कालिदास का, तो वो मैंने रेडियो एडॉप्टेशन किया, वो किया, तो ये दो बड़ी थे कहना चाहिए।
1: क्या शानदार बातें हैं, ये तो बहुत मुश्किल वाले काम आपने वहाँ किए। इसके अलावा वहाँ विकल्प भी चलता रहा आपका? हाँ, नाट्य समूह
0: नहीं विकल्प, ये दौर मेरा पहला था, मतलब रेडियो आने से पहले का था।
1: हाँ,
0: विकल्प अपने ढंग से चलता रहा, वो बीच बीच हम लोग करते भी रहे लेकिन वो सक्रियता नहीं रही
1: जी, क्योंकि रेडियो में आप पूरी तरह से अपने आपने अपने आप को झोंक दिया था।
0: मतलब बीच बीच में हम करते रहे नाटक, लेकिन वो जो 10 साल लगातार जो किया वो रेडियो में आने से पहले किया
1: जी, और बाद में फिर आप पूरी तरह से रेडियो में व्यस्त हो गए।
0: हाँ, उसके बाद भी एक नाटक आला अफसर मुद्रा राक्षस का
1: जी जी,
0: तो गोगोल का

0: जी, क्योंकि हाँ, रेडियो में आप पूरी तरह से अपने अपने अपने आप को झोंक दिया था।
1: मतलब बीच बीच में हम करते रहे नाटक, लेकिन वो जो 10 साल लगातार जो किया वो रेडियो में आने से पहले किया
0: जी, और बाद में फिर आप पूरी तरह से रेडियो में व्यस्त हो गए।
1: हाँ, उसके बाद भी एक नाटक जो आला अफसर मुद्रा राक्षस का
0: जी जी,
1: तो गोगोल का उन्होंने
0: इंस्पेक्टर जनरल
1: नौटंकी की शैली में उन्होंने किया, तो उसका भी मैंने कंपोजिशन भी किया, डायरेक्शन भी किया, और वो भी किया।
0: तो संगीत जो है वो एक तो घर से मिला था, लेकिन ये एक लगातार चलता रहा कि कंपोजिशंस भी करनी है आपको लगातार।
1: हाँ, इसमें करनी है वाला बात नहीं था,
0: जरूरत
1: से होता था
0: जी जी,
1: अंदर से होता था कि ये मैं करूं। मतलब मेरी कोई मजबूरी नहीं थी कि,
0: बिल्कुल
1: हाँ, कि कोई और भी कर सकता था, लेकिन अंदर से कहीं होता था कि ये
0: मैं करता हूं।
1: इसको जैसे लिखने का जो है वो अंदर से ही होता है।
0: बिल्कुल,
1: आप तो उसी तरह से वो चाहे वो गीत गोविंद हो, जयपुर में उस वक्त 5 बड़े संगीतकार थे
0: जी,
1: जो स्टाफ में थे, म्यूजिक डायरेक्टर, म्यूजिक कंपोजर भी एक पोस्ट होती है।
0: बिल्कुल होती है
1: ना, जानते होंगे। और विविध भारती में नहीं है वो, लेकिन मेन सेंटर्स पे बॉम्बे में हो या किसी भी सेंटर में कंपोजर की भी पोस्ट होती है
0: जी जी।
1: उस वक्त 4 मौजूद थे और वो 4 लोग भी परेशान होते थे कि हम हैं और ये आदमी कंपोज कर रहा है। तो उसमें मेरे उस वक्त स्टेशन डायरेक्टर थे गिरीश चतुर्वेदी
0: जी जी,
1: तो उन्होंने मुझे छूट दी
0: कि नहीं नहीं आप करो।
1: हाँ, मतलब ये होता नहीं है ये।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: तो 4 कंपोजर यहाँ स्टाफ में मौजूद है,
0: तो आप उनको
1: और उस वक्त आप अपना काम खुद कर रहे हैं
0: जी जी,
1: तो उन्होंने छूट दी और उसकी वजह से वो एज ए कंपोजर भी रेडियो पर, मतलब फिर गाने भी हुए, सब कुछ हुआ।
0: हाँ,
1: एक बार मैं बताऊं कि जो महादेव वर्मा का गीत,
0: हाँ,
1: मैं नीर भरी दुख की बदली,
0: हाँ हाँ,
1: और ये सब, मतलब ये सब हमने किए, मतलब जो एक वो जैसे यहाँ मंथन शुरू हुआ था ना
0: जी,
1: हमने 10 मिनट का प्रोग्राम होता था
0: जी,
1: एक अच्छा गीत या अच्छी कविता,
0: हाँ,
1: किसी के लेके उसको भी पढ़ता था और गीत होता था, कोई गाता था, तो उस तरह का एक प्रोग्राम तो वो मैं करता था, तो उसमें महादेव वर्मा का और भारती जी का, फिर बाद में गालिब की गजलें कंपोज की,
0: क्या बात है,
1: कबीर को कंपोज किया,
0: इसको
1: स्टेज किया, स्टेज शो किया, तो ये सब मेरे संगीतकार के रूप में मेरे
0: ये चीजें चलती रही लगातार। ये बहुत अद्भुत बात है, ये एक अलग पूरा एक पक्ष है। हमारे सुनने वालों को ये जानकर अच्छा लगेगा कि आप मंच पर तो गाते ही हैं, लेकिन आप अपने निजी जीवन में भी कुछ फिल्मी गीतों से आपका बड़ा लगाव है जो आप गुनगुनाते हैं, तो हमारे लिए कुछ गुनगुनाइए।
1: चलिए मैं गुनगुना देता हूं। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है,
0: वाह वाह,
1: कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है,

ये था जाने माने शायर और विविध भारती के भूतपूर्व केंद्र निदेशक राजेश रेड्डी से यूनुस खान की बातचीत का पहला भाग। इस बातचीत का दूसरा भाग आपको सुनवाएंगे अगले हफ्ते आज ही के दिन। रिकॉर्डिंग इंजीनियर भावना सिंधल, संपादन सहयोग रीमा जोशी। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। आज के

0: सुनो जरा राइमा की फीस भरने चले जाना, आज आखिरी तारीख है।
1: देखो मैं 3 बजे नहीं जा पाऊंगा।
0: क्यों क्यों नहीं जा सकते?
1: वो मैं
0: साफ बताओ क्या करना है 3 बजे?
1: करना नहीं है, सुनना है।
0: ऐसा क्या सुनना है तुम्हें? पहेलियां मत बुझाओ, जल्दी बताओ।
1: वो मुझे सखी सहेली सुनना है।
0: तुम्हें सखी सहेली सुनना है? पर वो तो सखियों का प्रोग्राम है।
2: सखियां ही नहीं, सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दिन में 3 बजे।
3: सखी सहेली।
2: जैसा कि आप जानते हैं, विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर 21 मई शाम 6:30 पर। लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने, देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त, आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। विविध भारती
1: रंग तरंग।
0: स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम रंग तरंग में। मैं हूं विधि प्रवीण जैन। नमस्कार।

हम सुन रहे थे मनमस्त कबीरा एल्बम से बैजू मंगेशकर की आवाज में और उनके ही द्वारा संगीतबद्ध किए गए, कबीर के द्वारा लिखे गए इन प्यारे से बोलों को। आइए चलते हैं, सुनते हैं अगला नगमा आज के कार्यक्रम रंग तरंग में। ये सुंदर सा नगमा लिया है हमने कागा एल्बम से, मिर्जा डेयर टू लव इस एल्बम का नाम है। कौशिकी चक्रवर्ती ने इसे गाया है, गुलजार ने इसे लिखा है और शंकर एहसान लॉय ने इसे संगीतबद्ध किया है।

द खजाना कॉन्सर्ट अहमद हुसैन मोहम्मद हुसैन के द्वारा संगीतबद्ध किए गए और गाए गए इस प्यारे से नगमे को हम सुन रहे थे। आइए सुनते हैं अगला नगमा कार्यक्रम रंग तरंग में, बड़ा खूबसूरत सा है, जिसे लिया गया है यूनिक जगजीत सिंह एल्बम से, जिसे जगजीत सिंह ने गाया है और उन्होंने ही संगीतबद्ध किया है, सहरी भोपाली ने इसे लिखा है।

सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन, अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम।

संजो रहा है सांस्कृतिक धरोहर का श्रोताओं से नाता, सांगीतिक परंपरा की खोज और फिल्म संगीत में शास्त्रीयता।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है रंग तरंग। आइए सुनते हैं एहसास एल्बम से तलत अजीज के द्वारा संगीतबद्ध किए गए और गाए गए सईद राही के द्वारा लिखे गए इस प्यारे से नज्म को, और सुनते हैं ये प्यारी सी नज्म।

यार का दीदार चाहिए एल्बम से रामशंकर की आवाज में असीर बुरहानपुरी ने इसे लिखा और दीपक पंडित ने इसे संगीतबद्ध किया।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुनते हैं कार्यक्रम रंग तरंग में अगला नगमा, अनफॉरगेटेबल ट्रीट, आशा भोसले एल्बम से। आशा भोसले की आवाज में फानी बदायूनी ने इसे लिखा और जयदेव ने इसे संगीतबद्ध किया।

हम सुन रहे थे एल्बम प्यार का पहला खत से ये नगमा जगजीत सिंह की आवाज में, जगजीत सिंह के ही संगीत के साथ। इसे लिखा है हस्ती ने।

0: हम सुन रहे थे गुलदस्ता अहमद हुसैन मोहम्मद हुसैन की आवाज़ में उनके ही द्वारा संगीतबद्ध किए गए अमीर हनीफ के बोलों को। यहीं पर समाप्त होता है कार्यक्रम रंग तरंग।
1: रंग तरंग
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। दोपहर के 12 बजने वाले हैं। हम थोड़ी ही देर में समाचार प्रसारित करेंगे।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की दो दिन की बैठक नई दिल्ली में चल रही है। इसकी अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर कर रहे हैं। बैठक में ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्री तथा सदस्य और भागीदार देशों के शिष्टमंडल प्रमुख भी हिस्सा ले रहे हैं। भारत की अध्यक्षता में आयोजित इस वर्ष का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास।
3: FM 102 103.6 MHz और मीडियम वेव 212.3।

मीटर अर्थात 1413 किलो हर्ट्ज पर यह आकाशवाणी गोटा बूंदी का चंबल चैनल है। लीजिए एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग सुनिए।

0: तो हो जाए सब दंग।
1: CIET प्रस्तुत करता है
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
1: और अजीत का भी जोहार और जय जोहार। कच्छ भुज से जगदीश जौहरी, पूजा और पायल जी ने सुविचार भेजा है, लिखते हैं,
3: शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य का सर्वांगीण विकास करना है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपके सुंदर विचार के लिए। और आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम जिन्होंने हमें भेजा है संदेश।
3: पगवंदी धमदा जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से हरख राम पटेल, कुंती पटेल, भूमि और चंचल पटेल।
1: और मुस्तफाबाद दिल्ली से लाल बाबू दीवाना।
3: शास्त्री नगर बीड शहर से किशन सपकाल।
1: और मध्य प्रदेश से प्रहलाद जी।
3: और इसके साथ साथ ही हमें संदेश मिला है चमन पार्क दिल्ली से डॉक्टर सोनम, डॉक्टर सना और डॉक्टर अदीबा।
1: और बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी और फातिमा खातून अंसारी जी का।
3: संदेश भेजने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब स्वागत है आप सभी श्रोताओं का श्रृंखला ये भी जानिए में। श्रोताओ, जैसा कि आप जानते हैं, इस सप्ताह हम विशेष रूप से चर्चा कर रहे हैं गर्मी के प्रकोप से बचाव की।
1: जी श्रोताओ, पिछले दिनों हमने चर्चा की थी गर्मी से बचने के सामान्य तरीकों और इस मौसम में खान पान की।
3: जी
1: तो विमलेश जी, मुझे लगता है कि हमारे श्रोता बड़ी उत्सुकता से आज भी इंतजार कर रहे हैं कि हमारी चर्चा किस विषय पर रहेगी, जरा श्रोताओं को तो बताइए।
3: अजीत जी, आज की हमारी चर्चा का विषय रहेगा प्राथमिक उपचार। यानी आज हम ये चर्चा करेंगे कि जब किसी को लू लग जाए तो तुरंत हमें क्या करना चाहिए।
1: जी विमलेश जी, क्योंकि हमारे बहुत सारे ग्रामीण विद्यार्थी श्रोता भी हैं, वैसे सभी उपचार की विधियों को थोड़ा बहुत तो जानते ही हैं।
3: जी
1: लेकिन फिर भी हम चर्चा जरूर करेंगे क्योंकि हमें अपने प्रिय श्रोताओं और उनके परिवारों की चिंता है।
3: जी बहुत सुंदर। जी हाँ श्रोताओं, जब उमंग कार्यक्रम के द्वारा हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तो जरूर हमें एक दूसरे का ख्याल तो रखना ही होगा। तो आइए जानते हैं सबसे पहले कि लू लगने के क्या लक्षण हैं।
1: इसके मुख्य लक्षण है चक्कर आना, अचानक बहुत तेज सर में दर्द होना, बहुत पसीना आना या बिल्कुल पसीना नहीं आना,
3: घबराहट, जी मिचलाना, बहुत तेज बुखार और दिल की धड़कन का तेज होना, भ्रम और यहाँ तक के बेहोशी।
1: श्रोताओं, ये सामान्य लक्षण है। लेकिन अब प्रश्न ये है कि यदि ऐसा किसी के साथ हो तो हम तत्काल क्या क्या कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा किसी के साथ और कहीं भी हो सकता है।
3: तो श्रोताओं, सबसे पहली बात यह है कि पीड़ित व्यक्ति को तुरंत किसी ठंडे स्थान पर ले जाएं और जहां तक संभव हो उसे लिटा दें। उसे धूप से तुरंत बचाना बहुत जरूरी है।
1: और तुरंत किसी छायादार पेड़ या किसी दीवार की आड़ में या किसी खुले कमरे में ले जाएं, किसी ठंडी जगह पर लिटाएं और उसके शरीर को ठंडा करें।
3: ठंडा करने के लिए उसे एक कपड़ा भिगोकर या ठंडे पानी से पोंछें और माथे पर गीला कपड़ा रखें। इससे पीड़ित व्यक्ति को कुछ हद तक जरूर राहत मिलेगी। किसी मोटे कागज या कपड़े से पंखा झलते रहें।
1: और यदि संभव हो तो कूलर या पंखा चलाएं। उसके तंग कपड़े और बेल्ट को ढीला करें। इससे पीड़ित के रक्त संचार में सहूलियत होगी और वो सांस भी ठीक से ले पाएगा।
3: यदि पीड़ित होश में है तो पानी, नींबू पानी, नारियल पानी या ORS दें। लेकिन धीरे धीरे ध्यान रखें, बहुत ठंडा पानी अचानक न पिलाएं।
1: और हाँ, एक बात बहुत जरूरी है जानना कि बेहोश व्यक्ति को मुंह में कुछ भी ना दें। उसकी सांस की नली अवरुद्ध या चोक हो सकती है और अतिशीघ्र डॉक्टर को दिखाएं। श्रोताओं, अक्सर ये होता है कि ऐसी परिस्थिति में हमें जल्दी कुछ समझ में नहीं आता कि क्या करें और क्या ना करें,
3: और इतनी देर में बहुत देर हो जाती है। यदि हम इन छोटी छोटी प्राथमिक उपचार की विधियों से परिचित रहेंगे तो यथासंभव किसी का जीवन जरूर बचा लेंगे।
1: तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की जानकारी जो हमने जनहित में प्रसारित की। अब आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से हमारा प्रश्न है। तो प्रश्न है श्रोताओं कि पीड़ित व्यक्ति के कपड़े और बेल्ट ढीली करने से उसे किस प्रकार की राहत मिलती है। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
3: पीड़ित व्यक्ति के कपड़े और बेल्ट ढीली करने से उसे किस प्रकार की राहत मिलती है।
1: भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर, जो है हमारा IVRS नंबर। और साथ ही साथ आप हमारे ईमेल के पते पर भी अपना संदेश भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in।
3: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
1: तो अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। आइए सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम। श्रोताओं, अब

0: जब इतनी गर्मी है तो हम कुछ समय के बाद मानसून की उम्मीद कर सकते हैं
1: जी।
0: तो भाई मानसून आएगा, वर्षा होगी, तो मेंढकों के तर्राने की आवाज भी तो सुनाई देगी
1: जी।
0: आइए सुनते हैं कार्यक्रम बरसात और मेंढक।
1: कक्षा 2 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर निर्मित इस कार्यक्रम में वर्षा ऋतु की सामान्य जानकारी देते हुए विशेष रूप से बताया गया है कि बरसात के मौसम में जब मेंढक निकलते हैं तो बच्चे उन्हें परेशान करते हैं। कार्यक्रम में संदेश दिया गया कि बच्चे जीव जंतुओं से प्यार करें और उनका ख्याल रखें।
0: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है NCERT की कक्षा 2 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक सारंगी के एक पाठ पर आधारित कार्यक्रम बरसात और मेंढक।

0: सोमारू और कमली जंगल घूमने गए। लौटते समय उन्हें जोर की भूख लगी। उन्हें एक गाय दिखी। कमली ने गाय से कहा,
1: गाय गाय जरा सा दूध दे दो तो भूख मिटे।
0: गाय बोली,
2: मेरे पास खाने को घास ही नहीं है, मुझे हरी हरी घास खिलाओ तो मैं दूध दूं।
0: कमली और सोमारू चले घास ले।

0: थोड़ी सी घास ले ले।
1: पर घास तो सूख कर पीली हो गई थी। घास ने कहा,
2: मुझे पानी दो तो मैं खाने लायक बनूं।
1: कमली और सोमारू चले पानी लाने।
0: नदी नदी हमें थोड़ा पानी दे दो ना।
1: पर नदी तो सूखी हुई पड़ी थी। नदी ने कहा,
3: बरसात हो तो मुझे पानी मिले।
1: कमली और सोमारू चले बादल लाने।
0: बादल, तुम यूं मुंह लटकाए क्यों टंगे हो? थोड़ा बरस जाओ ना।
1: बादल बोले,
4: मेंढक टर टर बोले तब तो हम बरसें।
1: कमली और सोमारू चले मेंढक के पास। मेंढक बोले,
4: हम बाहर निकलते हैं तो बच्चे हमें पत्थर मारते हैं।
5: जो हुआ उसके लिए माफ करो, अब से तुम्हें कोई पत्थर नहीं मारेगा।
1: मेंढक मान गए।

0: टर टर सुनकर बादल आए और झूम कर बरसे। नदी में पानी बहने लगा। कमली और सुमारु ने नदी से पानी लाकर घास को दिया। घास हरी हो गई। दोनों घास लेकर गाय के पास गए। गाय ने घास खाकर दूध दिया। कमली और सुमारु ने दूध पीकर अपने घर की राह ली।
1: तो बच्चों,

0: बरसात नहीं हुई तो सब परेशान हो गए। नदी सूख गई, घास सूख गई और दूध भी नहीं मिला। तो जरा सोचो तो बच्चों, यदि वर्षा नहीं होगी तो और क्या क्या परेशानियां हो सकती हैं? इसके बारे में अपने बड़ों से पूछो। और हाँ, याद है मेढक ने की थी एक शिकायत कि बच्चे उसे पत्थर मारते हैं। तो बच्चों, हमें पशु पक्षियों जीव जंतुओं को सताना नहीं चाहिए, उनका ख्याल रखना चाहिए। हाँ, बरसात और मेंढक, अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय बटी लैंगलिंगडो, कलाकार ममता मलकानी और बाबला कोचर, बाल कलाकार रिद्धि, वान्या, नव्या, सोहम और लवीश, ध्वन्यांकन मयंक कुमार, मार्गदर्शन अजीत होरो, निर्माण सहायक जगबंधु जाना तथा निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी। प्रिय श्रोता, यदि आप हमारे कार्यक्रमों पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करना चाहते हैं तो हमारे IVRS यानी इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पांस सिस्टम पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा IVRS नंबर है 8800440559। और हाँ, आप हमसे हमारे ईमेल पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी हमने सुना कार्यक्रम बरसात और मेंढक, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम सूबेदार बाना सिंह।
1: कार्यक्रम में सूबेदार बाना सिंह की वीरता का वर्णन करते हुए बताया गया है कि उन्होंने किस प्रकार बर्फीली सियाचिन की ऊंची और बेहद खतरनाक पहाड़ी पर अपने साथियों के साथ आक्रमण करके दुश्मन की चौकी पर अधिकार कर लिया। इस वीरता के प्रदर्शन के लिए उन्हें भारतीय सेना के सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।
0: राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है भारतीय सैनिकों के असाधारण शौर्य की गाथाओं पर आधारित श्रृंखला सीमा प्रहरी तुम्हें प्रणाम। इस श्रृंखला के अंतर्गत प्रस्तुत है कार्यक्रम सूबेदार बाना सिंह।
2: सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख क्षेत्र के उत्तर पश्चिम में स्थित विश्व का सबसे सुंदर ग्लेशियर है। ग्लेशियर यानी हिमनद, बर्फ से बनी हुई नदी। ये नाम सुनते ही एक ऐसा दृश्य आंखों के सामने आता है जहां ठंड का साम्राज्य है, यानी ठंड ही ठंड। इसीलिए तो किसी ने इसके बारे में कहा है, सुदुर्गम दूर देश पथ शून्य तरु शून्य प्रांतर अशेष महापिपासार रंग भूमि। ऐसे हिमनद के ऊपर से अगर हवाई जहाज में भी बैठकर गुजरें, तो इस अनोखे दृश्य को अच्छी तरह देखा जा सकता है। दूर दूर तक फैली मीलों लंबी सफेद चादर, और इस चादर पर पैर रखने की कल्पना से ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसी जगह जहां पर तापमान ने शून्य से भी 40 डिग्री तक कम हो जाए, उसकी कंपकपाने की क्षमता का अंदाजा लगा सकते हैं आप। और यही है सियाचिन की सबसे ऊंची चोटी, जहां स्थित है भारतीय सेना की बाना पोस्ट।

0: स्थित इन चौकियों पर रहने वाले हमारे फौजी भाई कुछ वैसे ही बसते हैं जैसे उत्तरी ध्रुव पर इग्लुओं में जिंदगी बसर करने वाले एस्किमो। चारों ओर दूर दूर तक बर्फ का वीरान साम्राज्य, निर्जनता का सन्नाटा, और इन बर्फीली पहाड़ियों पर अपनी अपनी चौकियों की चौकसी करते भारतीय सैनिक।
1: नमस्कार सैनिक दोस्तों, आज हम अपने इस विशेष रेडियो कार्यक्रम में सबसे पहले पेश कर रहे हैं वाद्य संगीत।
2: अरे भाई कितनी ठंड है, कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसी भी कोई जगह हो सकती है। अरे जूस तक उबाल कर पीना पड़ता है।
3: जूस छोड़ यार, ये चाय भी चुस्की लेते लेते ही जैसे जम जाएगी। और ये अंडे, अंडे कम गोल्फ की गेंद ज्यादा लगते हैं।
2: आजा खेलते हैं।
3: अच्छा देख, सब कुछ कितना शांत सा है यहाँ, जैसे जैसे सब कुछ रुका हुआ हो।
4: कहाँ सब रुका है भाई, कम से कम दो चीज तो हैं जो कभी नहीं रुकती।
3: अच्छा वो क्या?
4: एक तो ये जलता हुआ स्टोव, और दूसरा
5: हाँ दूसरा क्या?
4: और दूसरा हमारा धड़कता हुआ दिल।
2: क्या बात कही है।

ये है बाना पोस्ट, जिसे भारत के एक परमवीर सूबेदार बाना सिंह के नाम पर रखा गया है। बाना सिंह का जन्म 6 जनवरी 1949 को जम्मू कश्मीर के कड्याल जिले में हुआ। उनके पिता अमर सिंह यूं तो खेतीबाड़ी से जुड़े थे, पर सैन्य जीवन से वे काफी प्रभावित थे, शायद इसीलिए कि उनके काफी रिश्तेदार सेना में भर्ती थे। जब उनमें वे सैन्य वृत्ति की झलक देखते तो एक उम्मीद जगती कि कभी बाना सिंह भी फौज में भर्ती हो और उनका नाम रोशन करे। जब कभी छुट्टी आए सैनिकों को बाना सिंह देखते या मिलते तो बहुत खुश होते।

बाना सिंह की इच्छा उनकी 20वीं सालगिरह पर पूरी हुई। अपने जन्मदिन पर इससे अच्छा तोहफा उन्हें कुछ और नहीं मिल सकता था। 6 जनवरी 1969 को उनकी भारतीय सेना में भर्ती हुई। इस खबर को सुन वे फूले नहीं समा रहे थे।

0: जब पाकिस्तानी फौज ने सियाचिन ग्लेशियर में स्थित एक महत्वपूर्ण दुर्गनुमा स्थान पर कब्जा कर लिया था। महत्वपूर्ण इसलिए कि ये भूखंड आसपास की बर्फ से ढकी धरती से और भी 15,000 फीट ऊंचा था और यहां से दुश्मन की फौज हमारे सारे बचाव क्षेत्र, अड्डों व हर हरकत पर नजर रख सकती थी। एक छोटा परंतु अजेय दुर्ग, कैद पोस्ट, दोनों ओर से सीधी सपाट सफेद दीवारें और उन पर चढ़ना तो नामुमकिन सा लगता था। भारतीय सेना के लिए इस पर कब्जा करना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। इस पर कब्जा करने के लिए एक कार्यवाहक दल का गठन किया गया। काम था इस कैद पोस्ट को दुश्मन के चंगुल से छुड़ाना। काम बहुत कठिन था, ये जानते हुए भी बाना सिंह ने अपना नाम स्वयं निवेदित किया। वे इस कार्यवाहक दल में शामिल ही नहीं कर लिए गए, बल्कि टुकड़ी के नेतृत्व की बागडोर भी उन्हें ही सौंपी गई। बाना सिंह ने अपने साथियों के साथ मिलकर योजना बनाई।
1: साहब, ये रास्ता तो बहुत मुश्किल है।
2: हाँ साहब,
1: यहाँ से कैद पोस्ट 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है।
2: जी साहब।
1: और प्लान के अनुसार तो हमें 2 गुनी लंबाई का रास्ता तय करना पड़ेगा।
2: बिल्कुल।
1: और इन सीधी सपाट दीवारों पर चढ़ाई तो और भी मुश्किल है।
2: बहुत मुश्किल। बिल्कुल।
3: देखो चुन्नीलाल, ये मैंने एक नक्शा बनाया है।
1: हाँ,
3: ये देखो, पास आ जाओ, आगे आओ, आगे आओ। ये देखो, यदि इधर देखो, ये इधर से यहाँ से हम ऊपर चढ़ते हैं तो इस खड़ी चट्टान के कारण हमें कोई देख नहीं सकता।
1: हाँ, बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है साहब। रास्ता तो मुश्किल है, पर अगर जीत भी मिलेगी तो इसी रास्ते।
3: बिल्कुल, यही मैं कहना चाहता हूँ।
0: मौसम जनवरी की जानलेवा सर्दी का था। हवा भयंकर रफ्तार से चल रही थी, हाथ सुन्न थे, सांस फूल रही थी और चारों ओर बर्फ ही बर्फ। दीवार की चढ़ाई शुरू की गई। भयंकर तूफानी रात। अभी एक तिहाई राह पार की थी कि दल का एक सदस्य गर्त में जा गिरा। लेकिन साथियों, उनके पास पीछे मुड़कर देखने का भी अवसर नहीं था। इससे विचलित होना पूरे ऑपरेशन को जोखिम में डाल सकता था। ये रणबांकुरे अपने कंधों पर सामान लादे, पैरों में कंटीले कीलों वाले बूट पहनकर रस्सियों के जरिए और कुल्हाड़ियों के सहारे ऊपर चढ़ते रहे। सुबह सवेरे कोई 5:30 बजे का समय था। तब उन्होंने लिया आखिरी पड़ाव। वहां से दुश्मन थोड़ी ही दूरी पर था।
4: साहब जी, अभी और कितनी दूर जाना है?
3: बस थोड़ी दूर और। वो देखो, उस गड्ढे के पास।
4: जी।
1: अच्छा।
0: बांध टूटने का समय आ गया था। बाना सिंह और उनके साथी पहले मोर्चे पर कूद पड़े।

0: यही रोक कर रखना। मैं दूसरे बंकर की तरफ पहुंचता हूँ।
1: ठीक है साहब। हाँ साहब। ठीक है साहब।
2: बाना सिंह कभी इस मोर्चे पर दौड़ते तो कभी उस पर, स्टैन गन से गोलियों की बौछार करते हुए, कभी संगीन घोपते हुए तो कहीं ग्रेनेड फेंकते हुए दुश्मनों पर वो कहर बरपा रहे थे। आखिरकार उन्होंने वहां से शत्रु का सफाया कर दिया।
1: जय हिंद कर्नल साहब।
3: जय हिंद बाना सिंह।
1: कर्नल साहब, अब कैद पोस्ट हमारे कब्जे में है। हमने एक एक को भगा देता है।
3: वेरी गुड बाना सिंह, वेल डन।
1: थैंक यू सर, थैंक यू सर जी, थैंक यू।
2: नायब सूबेदार बाना सिंह ने अत्यंत कठिन परिस्थितियों में परम उत्कृष्ट वीरता और विशिष्ट नेतृत्व का परिचय दिया, जिसके कारण उन्हें भारत के सर्वोच्च वीरता पदक परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया और उस पोस्ट का नाम कैद पोस्ट से हटाकर बाना पोस्ट रख दिया गया। अभी आपने सुना विश्व की सबसे ऊंची युद्ध भूमि पर किस तरह बाना सिंह और उनके साथियों ने अपनी सूझबूझ व अदम्य साहस का प्रदर्शन करते हुए अपने देश की मर्यादा को बनाए रखा। कितनी हैरानी की बात है ना कि इन बर्फ में लिपटे पहाड़ों पर और इस खामोश सफेदी के बीच कहीं कोई रंग नहीं, लेकिन नाम, नाम सियाचिन यानी गुलाबों का संग्रह।

0: सूबेदार बाना सिंह। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। आलेख एवं विषय संयोजन अनुभूति यादव, आलेख परामर्श सूबेदार बाना सिंह और मेजर जनरल सूरज भाटिया, कलाकार सुचित्रा गुप्ता, दिनेश वर्मा, राजेश आहुजा, मंगत राम, सुनील लोहिया और आकाश आहुजा, तकनीकी निर्देशन पुष्पलता कुमार, ध्वन्यांकन दीपक पांडे, निर्माण सहयोग दाऊदयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति अजीत होरो। अभी आपने सुना कार्यक्रम सूबेदार बाना सिंह। और श्रोताओं, अब इसी के साथ हम आज के कार्यक्रम को विराम देने की आज्ञा चाहेंगे, तो अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: अभी आप NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग सुन रहे थे। FM 102 व 103.6 MHz, मीडियम वेव 212.31 मीटर अर्थात 1413 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी कोटा बूंदी का चंबल चैनल है। लीजिए सुनिए विविध भारती के कार्यक्रम।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन, यादों की महफिल में आइए सुनते हैं एक बहुत खूबसूरत सा गीत। हम आपके हैं कौन फिल्म से, लता मंगेशकर, बाला सुब्रमण्यम और साथियों की आवाज में रविंद्र रावल के बोल हैं और राम लक्ष्मण का संगीत।
1: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, let's go.

0: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
1: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
0: सखी सहेली।

0: हाँ, हर रोज दो सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
1: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा। सखी सहेली?
0: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं, सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे।
2: सखी सहेली।
3: जैसे कि आप जानते हैं, विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर 21 मई शाम 6:30 पर। लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने, देवीदास लेन, बोरीवली पश्चिम, मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
4: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है यादों की महफिल। बड़ी खूबसूरती से हमने सजाया इसे सुंदर गीतों के साथ में। राजकुमार बड़जात्या के द्वारा बनाई गई फिल्मों के गीतों को हम सुन रहे हैं। अगला गीत हम सुनेंगे पिया का घर फिल्म से, किशोर कुमार की आवाज में, आनंद बख्शी के बोल और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत के साथ।

विवाह फिल्म का यह गीत उदित नारायण श्रेया घोषाल की आवाज में रविंद्र जैन के बोल और रविंद्र जैन के संगीत के साथ हम सुन रहे थे कार्यक्रम यादों की महफिल में। और इसी कार्यक्रम में हम सुनने वाले हैं एक और बहुत खूबसूरत सा नगमा जिसे गाया है शान ने और श्रेया घोषाल ने रविंद्र जैन के बोल और उनके ही संगीत के साथ, एक विवाह ऐसा भी इस फिल्म से।

0: absolutely.
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नागौर और जोधपुर जिले के दौरे पर हैं। जोधपुर पहुंचने पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने उनकी अगुवाई की। मुख्यमंत्री के साथ केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी मौजूद रहे। इसके बाद श्री सिंह नागौर के मेड़ता सिटी पहुंचे। उन्होंने वहां मेड़ता के संस्थापक राव दूदा की 15 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। इसके बाद रक्षा मंत्री जनसभा को संबोधित करेंगे। रक्षा मंत्री वापस जोधपुर जाएंगे। वे वहां रातानाड़ा में पूर्व उपराष्ट्रपति और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत की प्रतिमा अनावरण समारोह में भाग लेंगे। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े आज डूंगरपुर जिले के प्रवास पर हैं।

0: राज्यपाल बोरी स्थित गुरुकुल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन संस्थान पहुंचे। वहां वे पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के तहत आयोजित महिला प्रशिक्षणार्थियों के कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। उनका जनजाति क्षेत्र में कौशल विकास और महिला सशक्तिकरण पर केंद्रित आशीर्वाद समारोह में भी शिरकत करने का कार्यक्रम है। राज्यपाल और कुलाधिपति हरिभाऊ बागड़े ने एक आदेश जारी कर प्रोफेसर कैलाश डागा को उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के कुलगुरु पद पर और प्रोफेसर मदन सिंह राठौड़ को भरतपुर के महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय के कुलगुरु पद पर नियुक्त किया है। श्री बागड़े ने राज्य सरकार के परामर्श से ये आदेश जारी किया। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा में कथित पेपर लीक मामले में चार मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की पहचान मांगीलाल बिवाल, दिनेश बिवाल, हरियाणा निवासी यश यादव और विकास के रूप में हुई है। चारों को जयपुर से गिरफ्तार कर कल मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। बाद में उन्हें ट्रांजिट रिमांड पर लेकर पूछताछ के लिए दिल्ली भेज दिया गया। जांच अधिकारियों के अनुसार आरोपी यश यादव और विकास ने पहले सीकर जिले के एक कोचिंग सेंटर में साथ में पढ़ाई की थी। सीबीआई अब कोचिंग संस्थानों, बिचौलियों, छात्रों और आरोपियों से जुड़े अन्य व्यक्तियों के बीच संभावित संबंधों की जांच कर रही है। इस बीच जांच का दायरा और बढ़ गया है। एजेंसी उन आरोपियों के परिवार के सदस्यों और रिश्तेदारों की भूमिका की भी जांच कर रही है, जिन्होंने हाल ही में नीट परीक्षा उत्तीर्ण की और मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश प्राप्त किया है। सीबीआई की एक टीम सीकर में और नेटवर्क से जुड़े कई लोगों से पूछताछ कर रही है। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की दो दिन की बैठक आज से नई दिल्ली में शुरू हुई। इसकी अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर कर रहे हैं। बैठक में ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्री और सदस्य तथा भागीदार देशों के शिष्टमंडल प्रमुख भाग ले रहे हैं। भारत की अध्यक्षता में आयोजित इस वर्ष का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास के लिए निर्माण। इस अवसर पर विदेश मंत्री ने कहा कि तकनीकी प्रगति वैश्विक परिदृश्य को नया आकार दे रही है और इसका उपयोग सुशासन तथा समावेशी विकास के लिए किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ सहयोग मजबूत करने को लेकर भी साझा हित जुड़े हैं। डॉ जयशंकर ने भागीदार देशों को उनकी उपस्थिति और सहयोग मजबूत करने की उनकी प्रतिबद्धता के लिए धन्यवाद दिया। भरतपुर में केंद्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र की ओर से किसान प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इसमें किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड के बारे में जानकारी दी गई। अनुसंधान निदेशालय के निदेशक डॉ विजय वीर सिंह ने किसानों को बताया कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड के माध्यम से खेत की मिट्टी में उपलब्ध नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, जैविक कार्बन और सूक्ष्म पोषक तत्वों की स्थिति की जानकारी मिलती है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं की पूरक परीक्षाएं आज से शुरू हो गई हैं। 16 मई तक चलने वाली इन परीक्षाओं का आयोजन प्रदेश के 167 केंद्रों पर हो रहा है। परीक्षा में 40,000 से अधिक परीक्षार्थी शामिल हो रहे हैं। इसके सफल आयोजन के लिए बोर्ड प्रशासन ने पुख्ता व्यवस्थाएं की हैं। आकाशवाणी के 90 वर्ष सफलतापूर्वक पूरे होने के उपलक्ष्य में आज आकाशवाणी जैसलमेर की ओर से गड़ीसर तालाब से कार्यालय परिसर तक वॉकेथॉन का आयोजन किया गया। वॉकेथॉन को जैसलमेर विधायक छोटू सिंह भाटी ने रवाना किया। इसमें आकाशवाणी के सभी कर्मचारियों, शहर के प्रबुद्धजन और विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 मई को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 134वीं कड़ी होगी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: आज की इबारत पर यह शब्द हो सकते हैं मोहब्बत डॉन
2: लगे जिया पे पुनर्जन्म होई जा।

0: ये गीत जो हम सुन रहे थे वो था डॉन फिल्म से. इसके पहले भी हमने डॉन फिल्म की एक झलक सुनी. ऐसे कई गीत आए पान बनारस के ऊपर, जिनमें से सबसे बेहतरीन हम सबका पसंदीदा गीत है किशोर कुमार का गाया हुआ अनजान फिल्म अनजान के बड़े प्यारे से बोल हैं. कल्याण जी आनंद जी ने इसे संगीतबद्ध किया है. और हम बात कर रहे हैं सुरीला सफर कार्यक्रम में बड़े सुंदर से गीतों के बारे में और बड़े सुंदर से डायलॉग्स के बारे में. तो आपने हमें बहुत सारे डायलॉग्स भेजे हैं, कौन कौन से आपको पसंद हैं या क्या आप सुनना पसंद करते हैं तो या कहना पसंद करते हैं और कहते कहते लोगों को रिझा लेते हैं. तो हमारे एक श्रोता लिखते हैं, उन दिनों की याद आती है जब टेप रिकॉर्डर में मनपसंद फिल्मों के डायलॉग सुना करते थे और दोहराते थे. और हमारे श्रोता ने हमें बड़ी अच्छी सलाह लिखी है कि आपके पांव बहुत हसीन है, अरे दीवानो मुझे पहचानो मैं हूं. डॉन जीवन जीने का भी बहुत हसीन बनाया जा सकता है, बस आपको आत्मविश्वास होना चाहिए और हम सफर का साथ हमेशा बहुत मायने रखता है. हमारे श्रोता लिखते हैं आई हेट टियर पुष्पा, इन्हें यह लिखना था. और पिक्चर अभी बाकी है. मेरे दोस्त अपने फ्रेंड से मिलते थे, कुछ बात हो जाती थी तो हम बोलते थे पिक्चर अभी बाकी है, और हमारी फ्रेंड हम हमारा दिल दिखाई देते थे एंड कहते थे आई हेट टीयर्स. मतलब मैं जी हम स्कूल में जो थे वो सारे डायलॉग्स बोला करते थे, मर जावा गुड़ खा के. हाँ ये डायलॉग सभी लोग बोला करते हैं ना, मर जावा गुड़ खा के. गुड़ खा के कैसे मर सकते हैं, गुड़ खा के तो खुशियां होती हैं. ये बात भी, ये डायलॉग भी हमारे श्रोता बोला करते हैं. और हमारे श्रोता लिखते हैं कि फिल्म शक्ति का संवाद, इनकी बातों में आकर किसी ऐसे रास्ते पर मत चले जाना जहां से चाहो तो भी वापस ना आ सको. यह संवाद दिलीप कुमार ने अमिताभ को समझा कर कहा था. ये भी बात सही है. और हमारे एक और श्रोता ने पसंदीदा डायलॉग लिखा है, जिनके मकान शीशे के होते हैं दूसरों के घर पर पत्थर नहीं फेंका करते. ऐसे कितने सारे डायलॉग्स हैं ना जो हमें पसंद हैं. अभी इन डायलॉग्स के बारे में हम और चर्चा करेंगे, पर सुनते हैं ये संदेश.
1: सुनिए,
2: कहिए,
3: सुनिए एक खुशखबरी.
2: कहिए ना,
3: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का. सखिया फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की. सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका

0: पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने।
1: एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन। अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम।

संजो रहा है सांस्कृतिक धरोहर का श्रोताओं से नाता, सांगीतिक परंपरा की खोज और फिल्म संगीत में शास्त्रीयता।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन और कार्यक्रम चल रहा है सुरीला सफर। और सुरीले सफर में हम चल रहे हैं डायलॉग्स के साथ, वो डायलॉग्स जो कहीं ना कहीं आपके जेहन में, मेरे जेहन में कहीं ना कहीं बस गए हैं। और बस ऐसे गए हैं कि चाहे जब चाहे में ही निकल आते हैं। हमारे श्रोता ने लिखा है कि हम बहुत अच्छा सफर इसमें चल रहे हैं। और हमारे श्रोता ने बहुत अच्छी बात लिखी कि आज की इबारत महज शब्दों का समूह नहीं बल्कि बॉलीवुड के सुनहरे दौर और हिंदी फिल्मों के कालजयी संवादों के माध्यम से बुनी गई जीवन के प्रति एक दार्शनिक और बेबाक अभिव्यक्ति है। यह इबारत एक ऐसी शख्सियत को बयां कर रही है जो मजबूत है पर भावुक भी, निडर है पर संवेदनशील भी, और जो जीवन की हर परिस्थिति में एक सिनेमैटिक अंदाज में जीती है। यह हार ना मानने की एक खूबसूरत दास्तान रचती है। कितनी अच्छी बात आपने लिखी है। और हमारे श्रोता इसी बात में एक और बात लिखते हैं कि आप हमारे एक मेडिकल स्टोर की शॉप है, जब भी कोई हमारे बहुत पुराने ग्राहक शॉप पर आते हैं तो हम उन्हें शोले फिल्म का डायलॉग आओ ठाकुर ऐसा बोल देते हैं और वो बहुत खुश हो जाते हैं और उनकी आधी बीमारी ठीक हो जाती है। कितनी अच्छी बात है ना, हमारे शब्दों से ही अगर किसी के जीवन में खुशियाँ आ जाएँ तो क्या कहना है। हमारे एक और श्रोता ने लिखा है, कई पुरानी फिल्मों के डायलॉग हैं जो आज भी लोगों की जुबान पर है, जैसे हम अंग्रेजों के ज़माने के जेलर हैं, कितने आदमी थे, बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती है सेनोरिटा, ऐसी सारी बातें हमारे श्रोताओं ने बताया है। और हमारे श्रोता ने लिखा है, कभी कभी यह डायलॉग हम उपयोग में लाते हैं, लातों के भूत बातों से नहीं मानते और जेब में फूटी कौड़ी नहीं और चला महलों के ख्वाब देखने, ये सारी बातें हैं और बहुत अच्छी बात है। हमारे श्रोताओं ने बहुत सारे संवादों के लिए लिखा है कि हमारे श्रोता लिखते हैं कि मैं कुछ फिल्मी संवाद को अपने जीवन में इस्तेमाल किया है, जिनमें एक संवाद है, तुमने सपने देखे हैं सपनों को टूटते नहीं देखा, दूसरा है जिनके घर सीसी के हों वो पत्थर नहीं फेंका करते, और तीसरा है मैं फेंके हुए पैसे आज भी नहीं उठाता। क्या बात है। हमारे श्रोता लिखते हैं, जरा सी परेशानी आती है तो हम कहते हैं साला ये तो काहे को खत्म नहीं होता। मतलब अगर हर बार भोजन यानी खाना पकाते हुए भी एलपीजी खत्म हो जाए तो भी यह डायलॉग दे ही देते हैं। क्या बात है। हमारे श्रोता ने बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं और शायद कुछ संदेश मैं पढ़ पाऊं या ना पढ़ पाऊं मुझे क्षमा कीजिएगा, पर ये जो अगला गीत है ना, इसके लिए हमारे श्रोता ने बहुत अच्छा लिखा है कि मोहब्बत में तारीफ नमक के माफिक होनी चाहिए, जरूरी भी है और जरूरत से ज्यादा भी नहीं। तारीफ पार्टनर को उसकी खूबसूरती अहमियत का एहसास दिलाती है। हम अक्सर अपनी खूबियों को नहीं देख पाते पर जब कोई चाहने वाला तारीफ करता है तो हम उसकी नजर से देखने लग जाते।

हैं, जिससे स्वयं आत्ममूल्य बढ़ता है और रिश्ते में सुकून आ जाता है। अगर तारीफ झूठी हो तो प्रेम नहीं बल्कि सौदाबाजी बन जाती है। सच्ची तारीफ भरोसा और अपनेपन, भरोसा और अपनेपन को गहरा करती है। अक्सर प्रेम में पुरुष स्त्री की आंखों की और स्त्री पुरुष के मन की तारीफ करते हुए पाए जाते हैं, लेकिन वही पुरुष स्त्री की आंखों को और स्त्री पुरुष के मन को पढ़ने की कोशिश करे, ये पढ़ ले, तो मोहब्बत किसी बाहरी सुंदरता की तारीफ की मोहताज नहीं रह सकती, बल्कि मोहब्बत की ही तारीफ हो जाती है। और एक बहुत खूबसूरत सा डायलॉग है जो हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं, राजकुमार का बेहतरीन संवाद है कि आपके पैर बहुत हसीन हैं। ये राजकुमार जी का, जरा बताइएगा, आपके पैर बहुत हसीन हैं, इन्हें जमीन पर मत रखिए मैले हो जाएंगे। ये डायलॉग पाकीज़ा फिल्म का है और उसका ही ये गीत हम आपको सुनवा रहे हैं। हो सकता है ये आपकी पसंद और मेरी पसंद दोनों का मिलान हो रहा हो, बताइएगा। अगर आपकी पसंद और मेरी पसंद दोनों की पसंद मिल गई है तो जरूर हमें सूचना दीजिएगा और इतना सब इस बता दीजिएगा कि इस गीत के गीतकार कौन है, और साथ में ये बताइएगा जो प्रश्न में चल रहा है उसको तो चलने ही दीजिए कि आपका पसंदीदा डायलॉग कौन सा है, और उसके साथ ये बताइएगा कि कभी कोई डायलॉग किसी मित्र ने, किसी शिक्षक ने, कभी माँ ने आपको ऐसे ही अनजाने में सुना दिया हो और आप हंस हंस के लोटपोट हो गए हो जहां पर आपकी पिटाई हो रही थी या डांट पड़ रही थी, जरूर बताइएगा। सुनिए ये खूबसूरत सा नगमा, बताइएगा इसके गीतकार कौन है।

हम सुन रहे थे पाकीज़ा फिल्म का यह गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में गुलाम मोहम्मद के संगीत के साथ। और हमने आपसे पूछा था कि इस गीत के संगीतकार कौन है, तो हमारे श्रोताओं से कहाँ क्या छुपा है, बहुत अच्छे से उन्होंने उत्तर दिया कि कैफ़ी आज़मी ने इस गीत को बोल दिए हैं। और गुलाम मोहम्मद ने कितना खूबसूरत संगीत दिया है ना। हमारे श्रोता लिख रहे हैं, रेलगाड़ी की सीटी आकर्षण का केंद्र है, गाने के अंत में सुनाई देती है। हाँ, हमने भी सुनी इन्हीं हेडफोन्स के जरिए विविध भारती के स्टूडियो से, आपने भी सुनी होगी अपने अपने रेडियो हैंडसेट पर। और हमारे श्रोताओं को बड़ा पसंद आ रहा है ये गीत, तो बहुत खुशी की बात है। और हमारे श्रोता लिखते हैं, गीत रूह को छू लेने वाला एक एहसास है। चलिए, बहुत बढ़िया बात है। तो जब हमारे पसंद के गीत हैं, हमारे श्रोता लिखते हैं, शबे आखिरी शबे इंतज़ार आखिर कभी होगी मुख्तसर भी, ये चिराग बुझ रहे हैं मेरे साथ जलते जलते। क्या बढ़िया शेर उठाया है आपने गीत से। हमारे श्रोता लिखती हैं, हमने पूछा था आपसे कि आपको कौन सा ऐसा डायलॉग है जो आपके घर वाले आपको देते हैं तो आप मार खाते खाते या डांट खाते खाते हंसने लगते हैं। तो हमारे श्रोता लिखते हैं, मेरी मम्मी हमेशा मुझे डांटती है, कभी कभी जब मारने लगती है तो मैं कह देती हूँ डॉन को ना कभी दर्द नहीं होता, तो मम्मी हंसती है, फिर क्या ना एक और डायलॉग बोल देती हूँ, हारने वाले को बाजीगर कहते हैं। फिर हम और उनको और उनकी माँ दोनों बहुत हंसते हैं। आप बहुत सौभाग्यशाली हैं, आपकी माँ आपके साथ आपको बहुत पिटाई करती हैं और बहुत सारा प्यार भी करती हैं, इन दोनों को संभाल कर रखिएगा। हमारे श्रोताओं ने बहुत सारे लिखे हैं। हमारे श्रोता ने लिखा है कि आज के इस सुरीले सफर में डायलॉग की बात हो रही है, तो उन्हें जो डायलॉग पसंद है उन्होंने लिखे, चल तनु बसंती आज चल धनो, यहाँ तनु नहीं या धनो होना चाहिए, चल धनो आज तेरी बसंती की इज्जत का सवाल है, तुम्हारा क्या नाम है बसंती, मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठा था, मेरे पास गाड़ी है बंगला है पैसा है, तुम्हारे पास क्या है, मेरे पास माँ है, आओ महारथी आओ, ये सारे डायलॉग ये बहुत प्यार से बोलते हैं, सुनते हैं, पसंद करते हैं, बहुत अच्छी बात है। हमारे श्रोताओं ने बहुत अच्छे से बोला कि आज का मेरा खुद का डायलॉग है कि अपुन सफर के साथ सफर यानी डबल सफर करता है, हम विविध भारती मुंबई के सुरीला सफर के साथ साथ ट्रेन के सफर का भी आनंद ले रहे हैं, आपकी यात्रा शुभ हो, हम ये बात आपसे कहते हैं। और हमारे श्रोता लिखती हैं कि हमारी आदत है शांति तुम नहीं जानती ये बोलने की। हाँ, ये बड़े प्यारे से डायलॉग थे ना, मीठे मीठे सुरीले सुरीले। और हमारे श्रोताओं ने जब बहुत सारे डायलॉग्स के बारे में लिखा, तो हमारे एक श्रोता ने तो ढेर सारे डायलॉग्स ही पहचान कर

के लिख दिए और उनका हम बहुत धन्यवाद करते हैं, लेकिन सारे डायलॉग अभी हम नहीं बोल सकते। हमारे श्रोता लिखते हैं, जंजीर फिल्म का एक संवाद है, जब तक बोला ना जाए चुपचाप खड़े रहो, ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारे बाप का घर नहीं। और हमारे श्रोता कहते हैं, अक्सर मेरे मित्र पूछते हैं कि आपके स्वस्थ और खुश रहने का राज क्या है, उनसे मेरा यही कहना है, मैं विविध भारती सुनता हूँ। बहुत बढ़िया बात है, सुनते रहिए, ये डायलॉग बड़े काम का है। हमारे श्रोता ने लिखा, हमने कल रात को ही प्रोमो देखा फिल्मों के डायलॉग के गीत पर, सभी को नमस्कार, लेकिन आज उन्हें गोदड़ी सिल के भेजनी है तो गाने सुनेंगी, तो सुनते रहिए। हमारे श्रोता लिखते हैं, बचपन में जब हम घर पर बच्चे शैतानी करते थे, माँ हम सबकी शिकायत पापा से करती थी, तो हमारे पिताजी पूछते थे कितने आदमी थे, और अब तो हंसी आती है ये सोचकर। हाँ, लेकिन उस समय तो हम सबकी हालत पिटाई और डांट के डर से देखने वाली होती थी। ऐसे ही खुश रहिए, क्योंकि ये डायलॉग जो है ना बड़े प्यारे प्यारे हैं। और हमारे अगला जो डायलॉग है वो बहुत खूबसूरत सी हीरोइन का डायलॉग है, तो ये गाना आप सुनिए और उस डायलॉग का जिक्र कीजिए, और उसके साथ ही एक जिक्र और कर दीजिएगा कि वो अभिनेत्री कौन है, उनका वो डायलॉग कौन सा है और ये फिल्म कौन सी है। ये तीन प्रश्न मैं आपके पास रख रही हूँ, अभिनेत्री, वो डायलॉग और साथ में फिल्म का नाम। सुनिए।

हम सुन रहे थे ये गीत अमित कुमार, कविता कृष्णमूर्ति और साथियों की आवाज में, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत के साथ। और हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि ये गीत किस अभिनेत्री पर फिल्माया गया है, और बता दीजिएगा जल्दी से, और यह भी बता दीजिए कि इसके साथ में डायलॉग कौन सा है। तो हमारे एक श्रोता ने बहुत अच्छे से इसका उत्तर दिया है कि जानी ये चाकू है, लग जाता है तो खून निकल आता है, श्रीदेवी, और फिल्म का नाम भी उन्होंने बहुत अच्छे से बताया, चालबाज। हमारे श्रोता लिखते हैं, चुलबुली अभिनेत्री श्रीदेवी का स्माइक असामयिक निधन हुआ, वो अफसोस की बात है, हम सभी उन्हें सच में याद करते हैं। और बड़ा खूबसूरत सा ये जो डायलॉग का सफ़र चल रहा है। हमारे श्रोता लिखते हैं कि जब भी स्कूल के दिन अपने दोस्तों के साथ छुट्टी लेते थे या घर जाते थे तो लिखते थे कि अच्छा तो हम चलते हैं, फिर कब मिलोगी, जब तुम कहोगी, ये डायलॉग इनके बीच में चलता था। और हमारे श्रोताओं ने इसके बारे में बहुत अच्छे अच्छे उत्तर दिए हैं। और हमारे श्रोता लिखते हैं कि उन्होंने कई सारे डायलॉग्स के बारे में बड़े प्यार से बताया है, और श्रोता अपनी बड़ी प्यारी प्यारी कहानियां भी लिख देते हैं, है ना। हमारे श्रोता लिखते हैं कि घर बच्चे छोटे थे, जब भी घर पर मैगी बनाते थे तो बच्चे कहते थे माम हो गए, वो खुश हुआ, और इस बात से हमारे श्रोता भी खुश हो जाते थे ये डायलॉग सुनकर। हमारे श्रोता लिखते हैं कि शाहरुख काजोल का वो डायलॉग है पलट पलट, वो भी उन्हें बहुत पसंद है। बिल्कुल सही बात है, ये कई लोग ट्राई करते हैं इस डायलॉग को। हमारे श्रोता लिखते हैं कि हमें ये डायलॉग अच्छा लगता है, आपकी इबारत में भी है कि बाबू मशाई जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं, और सही भी है। और शोले फिल्म का डायलॉग, बसंती का डायलॉग, हाँ बाबू जी कहाँ जाओगे, बेलापुर फतेहपुर, ये डायलॉग भी उन्हें बहुत पसंद है। पर ये डायलॉग पूरा याद करना बड़ा मुश्किल है, कैसे उस अभिनेत्री हेमा मालिनी ने उसे याद किया होगा। और हमारे एक श्रोता लिखते हैं, तो एक फिल्म धमाल का एक डायलॉग है, प्रेम चोपड़ा साहब डब्ल्यू वाली बात पर बताते हैं तो जावेद जाफरी कहते हैं कि हम कोई उसके बाप के नौकर हैं जो उसका काम कर रहे हैं। बड़ा खूबसूरत सा डायलॉग है। हमारे श्रोता लिखते हैं कि उन्हें मुगले आजम का डायलॉग बड़ा पसंद है, मेरा दिल आपका हिंदुस्तान नहीं है जिस पर आप राज कर सकें। क्या बढ़िया बात है, ब्लैक एंड वाइट मूवी का ये डायलॉग। हमारे श्रोताओं ने बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं, और अब हम आपको अगला जो प्यारा सा गीत है वो सुनवा रहे हैं। और इस फिल्म के जितनी ज़्यादा से ज़्यादा डायलॉग आप लिखकर भेज सकते हैं, ज़रूर भेजिएगा, और बस इतना ही बता दीजिएगा, वैसे आपको गाना सुनते ही पसंद आ जाएगा, समझ में आ जाएगा इसके गायक कलाकार कौन है और फिल्म कौन सी है और किस सन में आई थी, ये बताएंगे।

हम सुन रहे थे ये गीत किशोर कुमार मन्ना डे की आवाजों में आनंद बख्शी के बोल राहुल देवर्मन के संगीत के साथ। और आप सबने बिल्कुल सही पहचाना, शोले 1975 की फिल्म है। हमारे एक श्रोता लिखते हैं उस समय वह 8वीं कक्षा में थे, यानी आपने अपनी 8वीं कक्षा में ही शोले देख ली थी, कितने सौभाग्यशाली हैं। चलिए हम हमारे श्रोताओं से हमने कुछ प्रश्न पूछे थे, उन सबके उत्तर हमारे पास आ रहे हैं। आज का

पहला सफर में जुड़कर मुगैम्बो खुश हुआ, क्यों मिस्टर इंडिया? ये हमारे श्रोता लिखते हैं और हमने पूछा था आपसे कि इस फिल्म के कई सारे डायलॉग शायद आपको पसंद होंगे तो जरूर भेजिएगा। मौसी जी, तो क्या मैं ये रिश्ता पक्का समझूं? ये हमारे श्रोता कह रहे हैं। और इसके साथ ही हमारे श्रोता लिखते हैं कि असरानी का डायलॉग, हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं क्या? सही बात है, शंभू का दिमाग दोधारी तलवार है। प्रेम चोपड़ा का ये डायलॉग उन्हें बड़ा पसंद है। एक हाथ का पंजा कटा हुआ है तो उसके ऊपर धातु का ग्लव यानी कवच पहना हुआ है। और हमारे श्रोता लिखते हैं, यूं तो हमें बोलने की आदत तो है नहीं, चल बसंती आज धनों की इज्जत का सवाल है, हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं ही। और हमारे श्रोता ने बहुत सारी चीजें लिखी हैं। ठाकुर ये हाथ हमको दे दे, नहीं ये डायलॉग थोड़ा अलग है, ठाकुर हमका ये हाथ दे दे, क्या था सही डायलॉग आप जरा भेजिएगा। हमारे श्रोता लिखते हैं कि मरते दम तक साथ चलना है, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, ये गीत के साथ बोला आपने लिखा है। पार्टनर अब बोल दिया है तो देख लेंगे, ये मेरा फेवरेट है, कितना बढ़िया डायलॉग है ना। तुम क्या लाए हो धोलिया, ये मुट्ठी भर ज्वार, बाकी क्या अपनी लड़की के बरातियों के लिए रख छोड़ा है। और श्रोता लिखते हैं कि उन्हें पुष्पा एट ईयर्स मुगैम्बो खुश हुआ बड़ा पसंद है। हमारे एक और श्रोता ने बड़ा अच्छा डायलॉग दिया है, मेरा नाम सुरमा भूपाली ऐसे ही नहीं है। अरे वो सांभा कितने आदमी थे, ये हमारे श्रोता लिखते हैं। हमारे श्रोता लिखते हैं कि हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर, हमारी इतनी बदलियों के बाद जब हम नहीं बदले तो तुम क्या बदलोगे। ठाकुर साहब, गब्बर सिंह क्या कोई बकरी का बच्चा है दो जो दौड़ा और पकड़ लिया। बहुत खूबसूरत बात आपने लिखी है और आपने लिखा है कैसे हो सुरमा भोपाली। ये डायलॉग भी बड़ा अच्छा है, ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर, ये सही डायलॉग है और ये डायलॉग हम कई बार याद भी करते हैं। हमारे एक श्रोता ने बसंती इनके सामने नहीं नाचना ये भी लिखा है, इतनी खामोशी क्यों है भाई, ये डायलॉग भी यहाँ पर आया है। और इसके साथ ही बहुत सारे डायलॉग्स के साथ में हमारे श्रोता ने लिखा है, कितना इनाम रखे हैं सरकार ने, ये बात भी, कितने आदमी थे, ये सारे डायलॉग आपके रिपीट हो रहे हैं, कई सारे लोगों ने भेजे हैं। और इसके साथ बड़े अच्छे अच्छे डायलॉग हमारे बीच में आ रहे हैं और इसमें हमारे श्रोता ने लिखा है, जानते हो संसार का सबसे बड़ा बोझ क्या होता है, बाप के कंधे पर बेटे का जनाजा। ये बड़ा बड़ा खूबसूरत सा है और बड़ा दिल को कुछ कलेजे में कुछ करने वाला ये डायलॉग है। शोले फिल्म पुराने जमाने के जेलर मूवी जितनी बार देखी उन्हें अच्छी लगी, हेमा मालिनी का सीन बहुत अच्छा है, जब कहते हैं प्रभु आप बोल रहे हैं हम बोल रहे हैं क्या कन्या यूके यूके, वो सारी बात जो चलती है उनमें बड़ा मज़ा आता है। तो कालिया कहता है कि दो हैं कहाँ रे फौजी नंबर दो, ये कई सारे डायलॉग जो हैं लोगों को पसंद आते हैं। तो चलिए ऐसे ही सुंदर गीत आप सुनते रहिए और अगला जो गीत है वो हम आपको सौंप रहे हैं, बस यही करना है कि उस गीत के गायक को पहचान लेना है और जरा सा पहचानिए कि ये डायलॉग कौन सा हो सकता है। डायलॉग के साथ में आप पहचान लीजिए जल्दी से वो डायलॉग कौन सा होगा और ये फिल्म कौन सी होगी।

इस गीत का एक ही अंतर हम आपको सुनवा रहे हैं, क्योंकि हमें सुनवाने हैं बाकी डायलॉग के गीत भी। और इसके साथ में हमने आपसे पूछा था कि ये गीत जो है वो किस फिल्म से

शायद तारीख पे तारीख शायद इसी फिल्म का डायलॉग है, बिल्कुल सही। चलिए, ये सारे डायलॉग तो आपने बताया, आपने लिखा कि तारीख पे तारीख मिलती रही, लेकिन इंसाफ नहीं मिला माय लॉर्ड, इंसाफ नहीं मिला, मिली है तो सिर्फ ये तारीख, बिल्कुल सही। और हमारे श्रोताओं ने बहुत अच्छी चीज़ें लिखी हैं, और खाली आ कितने आदमी थे ये डायलॉग भी हमारे श्रोता ने दिया है। और इसके साथ में आपको अलग अलग गीतों की कई सारी बातें बनाऊंगी, तो एक डायलॉग मैंने लिया है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, उसके वह गीत है इस फिल्म ओम शांति ओम से। और उसके साथ ही हम एक और बड़ा प्यारा सा

आंखों में अदाएं भी हैं और एक और बात आ जाती है कि हम जहां खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू हो जाती है। ये डायलॉग भी इस फिल्म का है जो कि है फिल्म कालिया। तो सुनते हैं ये थोड़ा सा नगमा।

और अब हम चल रहे हैं आज के कार्यक्रम की अंतिम डायलॉग के साथ में, और वो डायलॉग बड़ा खूबसूरत सा है। अगर आप बताएंगे कि वो डायलॉग कौन सा बचा है तो जरूर बता दीजिएगा। बाकी हम तो आपसे बस इतना कहना चाहते हैं कि बाबू शाही जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। और ये फिल्म कितनी खूबसूरत थी ना, किस किस ने देखी, कब कब देखी जरूर बताइएगा। मैंने अभी 2 दिन पहले ही इस फिल्म को देखा है, हर रोज मैं इस फिल्म को देख सकती हूँ, जीने की एक ताकत देती है। सुनते हैं यह खूबसूरत सा नगमा, और आपको जो थोड़े थोड़े गीत सुनवाए हैं उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। कभी और किसी और रोज वो जो गीत रह गए हैं उन्हें पूरा सुनाऊंगी।

0: कभी तो हंसाए, कभी ये रुलाए।
1: आनंद फिल्म का ये गीत हम सभी सुन रहे थे और हमारे श्रोताओं ने बहुत सारी चीजें लिखी है। उन्होंने वह पूरी कविता लिख डाली, मौत तू एक कविता है, मुझाए मुझसे एक कविता का वादा है। वो पूरी कविता पढ़ने का समय तो नहीं है, जिंदगी की डोर ऊपर वाले के हाथ में किसकी डोर कट जाए ये बात है। और हमारे श्रोताओं ने बहुत सारी चीजें लिखी है और लिखा है कि आनंद फिल्म उन्होंने दूरदर्शन पर देखी थी और कई सारे और डायलॉग्स हम तक आए हैं। और हमारे एक श्रोता ने लिखा, एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। बिल्कुल सही बात है। अगर हमारे एक श्रोता ने बहुत अच्छा डायलॉग दिया है और उसके साथ आज के इस कार्यक्रम का समापन करते हैं कि अगर किसी चीज़ को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन में, कार्यक्रम सुरीला सफर में आज के लिए बस इतना ही। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।

नमस्कार मित्रों, आज की त्रिवेणी आधारित है रंग पर। साथियों, इस संसार में जो कुछ भी भौतिक रूप से उपस्थित है वो स्वाभाविक रूप से प्रकाश को परावर्तित करता है। हम जिस भी चीज को देख रहे हैं वो उसका अपना रंग नहीं है, हम बस परावर्तित प्रकाश के रंग को देख रहे हैं। हम कहते हैं कि घास हरी है, लेकिन घास हरी नहीं है, ये हरे रंग के प्रकाश को लौटा रही है, परावर्तित कर रही है, इसलिए हमें हरी घास नजर आती है। आकाश नीला है? नहीं, आकाश नीला नहीं है। हमें ये पता है कि अंतरिक्ष तो नीला अंधेरा है, वहाँ नीला जैसा कुछ भी नहीं है। आकाश अगर नीला नजर आता है तो उसकी वजह बिल्कुल अलग है। नीले रंग का अपवर्तन गुण बाकी रंगों से बिल्कुल अलग है, इसी वजह से आकाश नीला है।

संसार में किसी भी चीज में रंग नहीं है। पानी, हवा, अंतरिक्ष, पूरा संसार रंगहीन है। यहाँ तक कि जिन चीजों को भी हम देखते हैं वो सभी रंगहीन है। रंग तो केवल प्रकाश में होता है, रोशनी में होता है। रंग वो नहीं है जो वो दिखता है, बल्कि वो है जो वो त्यागता है। जो भी रंग बिखेरते हैं वही हमारा रंग हो जाता है। हम जो अपने पास रख लेंगे वो हमारा रंग नहीं होगा। ठीक इसी तरह से जीवन में जो कुछ भी हम देते हैं वही हमारा गुण हो जाता है, हमारा व्यक्तित्व हो जाता है।

जो रंगों से परे है वो रंगहीन नहीं है, वो पारदर्शी है, वैराग्य है, जिसका मतलब है कि हम ना तो कुछ रखते हैं और ना ही कुछ परावर्तित करते हैं, यानी हम पारदर्शी हो गए हैं। अगर हम पारदर्शी हो गए हैं तो हमारे पीछे की कोई चीज अगर लाल है तो हम भी लाल हो जाते हैं, अगर हमारे पीछे मौजूद कोई चीज नीली है तो हम भी नीले हो जाते हैं, हम जहां भी होते हैं उसी का हिस्सा हो जाते हैं। लेकिन किसी भी चीज में फंसते बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हम पारदर्शी हैं और वो रंग एक पल के लिए भी हमसे चिपकता नहीं है। हम शांत, संतुष्ट, उत्साही और जिज्ञासु रहते हैं।

जैसे कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर 21 मई शाम 6:30 पर। लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। दोपहर के 2:15 होने वाले हैं। थोड़ी ही देर में हम समाचार प्रसारित करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत ने कहा, वैश्विक अनिश्चितता और आर्थिक चुनौतियों के बीच ब्रिक्स रचनात्मक भूमिका निभा सकता है। नई दिल्ली में 2 दिन के ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कल अबुधाबी यात्रा के दौरान भारत और संयुक्त अरब अमीरात द्विपक्षीय संबंधों को एक नए स्तर पर ले जाने के लिए तैयार। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन केरलम के अगले मुख्यमंत्री होंगे। निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया SIR के तीसरे चरण की घोषणा की। इसे चरणबद्ध तरीके से 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में चलाया जाएगा। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, आपदा प्रबंधन में भारत एक वैश्विक नेता और अग्रणी देश के रूप में उभरा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने पेइचिंग में महत्वपूर्ण वार्ता की। इसमें ईरान संघर्ष, वैश्विक ऊर्जा संकट, शुल्क और व्यापार तनाव प्रमुख मुद्दे। और थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु महिला सिंगल्स में और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी तथा चिराग शेट्टी की जोड़ी पुरुष डबल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की 2 दिन की बैठक नई दिल्ली में चल रही है। इसकी अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर कर रहे हैं। बैठक में ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों के अलावा सदस्य और भागीदार देशों के शिष्टमंडल प्रमुख भी हिस्सा ले रहे हैं। भारत की अध्यक्षता में आयोजित इस वर्ष का विषय है, लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास के लिए निर्माण। ये विषय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मानवता प्रथम और जन केंद्रित दृष्टिकोण से प्रेरित है। इस अवसर पर विदेश मंत्री

0: डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है।
1: हमारी चर्चाओं का उद्देश्य ऐसा सतत विकास सुनिश्चित करना होना चाहिए जो समानता के सिद्धांतों तथा साझी लेकिन अलग अलग जिम्मेदारियों की भावना पर आधारित हो। तकनीकी प्रगति वैश्विक परिदृश्य को बदल रही है। इसका उपयोग सुशासन और समावेशी विकास के लिए प्रभावी रूप से किया जा सकता है। हाल के संघर्षों ने संवाद और कूटनीति के महत्व को और स्पष्ट किया है। आतंकवाद के खिलाफ सहयोग मजबूत करने पर सभी देशों की साझा सहमति है।
0: डॉक्टर जयशंकर ने भागीदार देशों को उनकी उपस्थिति और सहयोग मजबूत करने की उनकी प्रतिबद्धता के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स चल रहे संघर्ष के दौरान सार्थक भूमिका निभा सकता है।
1: हम ऐसे समय में मिल रहे हैं जब दुनिया तेजी से बदल रही है। अंतर्राष्ट्रीय तनाव, संघर्ष, आर्थिक अनिश्चितता और व्यापार, तकनीक तथा जलवायु से जुड़ी चुनौतियां वैश्विक स्थिति को प्रभावित कर रही हैं। ऐसे समय में ब्रिक्स से सकारात्मक और स्थिर भूमिका निभाने की उम्मीद बढ़ी है। आज कई देश ऊर्जा, भोजन, उर्वरक, स्वास्थ्य सुरक्षा और वित्तीय सहायता जैसी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। ब्रिक्स उन्हें इन समस्याओं से बेहतर तरीके से निपटने सहायता कर सकता है।
0: बैठक के दौरान ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्री वैश्विक और आपसी हित से जुड़े क्षेत्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। वे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे।
2: बैठक में ब्राजील के विदेश मंत्री माउरो वियेरा, रूस के विदेश मंत्री सरगई लावरोफ, ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराकची, इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो, मलेशिया के विदेश मंत्री दातो श्री उतामा मोहम्मद बिन हाजी हसन, संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मामलों के राज्य मंत्री खलीफा शाहीन अल मरार और दक्षिण अफ्रीका के विदेश मंत्री रोनाल्ड लामोलो सहित अन्य लोग भाग ले रहे हैं। कल दूसरे दिन ब्रिक्स संगठन के सदस्य और साझेदार देश ब्रिक्स @20 लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास के लिए निर्माण विषय पर एक विशेष सत्र में भाग लेंगे। इसके बाद वैश्विक शासन और बहुपक्षीय प्रणाली में सुधार पर चर्चा की जाएगी। आनंद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त अरब अमीरात जाएंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री अबू धाबी में यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता भारत और संयुक्त अरब अमीरात की मजबूत साझेदारी को एक और नए स्तर पर ले जाने के लिए चर्चा करेंगे। एक रिपोर्ट।
3: ऊर्जा क्षेत्र में महत्वपूर्ण साझेदारी के अंतर्गत ADNOC गैस और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड HPCL ने 10 वर्ष के लिए लगभग 3 अरब अमेरिकी डॉलर के अनुमानित मूल्य के LNG आपूर्ति समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसके साथ ही संयुक्त अरब अमीरात और भारत ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते CEPA के अंतर्गत वर्ष 2032 तक द्विपक्षीय व्यापार को $200 अरब तक पहुंचाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। UAE में भारत के राजदूत दीपक मित्तल ने आकाशवाणी से विशेष बातचीत में कहा कि भारत और संयुक्त अरब अमीरात के संबंध अब सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं है।
4: भारत और संयुक्त अरब अमीरात के संबंध अब केवल व्यापार और निवेश तक सीमित नहीं रहे हैं। अब हमारी साझेदारी तकनीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सुरक्षा, संस्कृति और स्वास्थ्य जैसे कई नए क्षेत्रों तक विस्तार कर चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब पूरा क्षेत्र अभूतपूर्व परिस्थितियों से गुजर रहा है।
3: UAE भारत के लिए दूसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य बन चुका है, जहां भारत का निर्यात $37 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। कांग्रेस ने 10 दिन से चल रही अनिश्चितताओं को खत्म करते हुए आज VD सतीशन को केरलम का नया मुख्यमंत्री घोषित कर दिया। ये घोषणा कांग्रेस नेताओं अजय माकन, मुकुल वासनिक और दीपा दास मुंशी ने नई दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान की। इस घोषणा के साथ ही कांग्रेस के नेतृत्व वाला UDF राज्य में सरकार बनाने की प्रक्रिया शुरू करेगा। UDF ने केरलम विधानसभा चुनाव में 2/3 से अधिक बहुमत हासिल किया है। असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंता बिस्व शर्मा की मंत्रिपरिषद के नवनियुक्त सदस्यों को विभाग आवंटित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। रामेश्वर तेली को विकास, श्रम कल्याण और चाय बागान, जनजाति तथा आदिवासी कल्याण विभाग

0: दिए गए हैं। अतुल बोरा पंचायत और ग्रामीण विकास, असम समझौते का क्रियान्वयन, सीमा सुरक्षा और विकास तथा उत्पाद शुल्क विभाग संभालेंगे। चरण बोरो को परिवहन विभाग और बोडोलैंड कल्याण विभाग का मंत्री बनाया गया है। श्रीमती अजंता नियोग महिला और बाल विकास तथा पर्यटन विभाग संभालेंगी। निर्वाचन आयोग ने आज विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के तीसरे चरण की घोषणा की है, जिसे 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में चरणबद्ध तरीके से चलाया जाएगा। ये राज्य हैं आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, पंजाब, सिक्किम, त्रिपुरा, तेलंगाना और उत्तराखंड। केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव शामिल हैं। भारत ने कहा है कि कल ओमान के तट पर हुए भारतीय ध्वज वाले जहाज पर हुआ हमला अस्वीकार्य है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक बयान में वाणिज्यिक जहाजों और आम नागरिकों को लगातार निशाना बनाए जाने पर खेद व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि जहाज पर सवार भारतीय चालक दल के सभी सदस्य सुरक्षित हैं। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर भारत की ऐतिहासिक सफलता का उत्कृष्ट उदाहरण है। इसमें त्वरित और समन्वित कार्रवाई तथा स्वदेशी हथियारों और प्रणालियों का उपयोग किया गया। नई दिल्ली में कलम और कवच के तीसरे संस्करण के उद्घाटन सत्र में श्री सेठ ने कहा कि आधुनिक भारत नई चुनौतियों के समय में वैज्ञानिक अनुसंधानों को सैन्य शक्ति के साथ जोड़ रहा है। भारतीय सेना और नौसेना ने आज अंतर सेवा सहयोग को मजबूत करने और अधिक समन्वय को बढ़ावा देने के लिए ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि समझौता ज्ञापन का उद्देश्य अंतर सेवा सहयोग को संस्थागत रूप देना और परिचालन सामंजस्य को मजबूत बनाना है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि राष्ट्रीय आपदा मोचन बल NDRF ने 2 दशक की अल्पावधि में देश के 140 करोड़ नागरिकों का विश्वास जीता है। श्री शाह ने गाजियाबाद में आज NDRF के राष्ट्रपति ध्वज समारोह में कहा कि आपदा की स्थिति में NDRF की मौजूदगी से लोग सुरक्षित महसूस करते हैं।
1: NDRF को राष्ट्रपति निशान का सम्मान दिया गया, वो हम सब के लिए गौरव और प्रतिष्ठा की बात। ये सम्मान NDRF के समस्त बल के सेवा, साहस, शौर्य और समर्पण के संचित गुणों का सम्मान है। 20 साल के कम अंतराल के अंदर आपदा बचाव के क्षेत्र में भारत को वैश्विक नक्शे पर रखने का काम NDMA और NDRF ने किया है।
0: प्रवर्तन निदेशालय विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम फेमा के प्रावधानों के अंतर्गत जायग्रेट टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड और अन्य से जुड़ी जांच के मामले में 14 व्यक्तियों और कंपनियों के परिसरों पर छापेमारी कर रहा है। एक बयान में निदेशालय ने कहा कि जायग्रेट टेक्नोलॉजीज कंपनी ऑनलाइन गेमिंग गतिविधियों के लिए भुगतान एग्रीगेटरों के जरिए लोगों से पैसा इकट्ठा कर रही थी। पंजाब पुलिस ने 5 मई को जालंधर में सीमा सुरक्षा बल मुख्यालय के मुख्य द्वार के पास हुए विस्फोट के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। सूत्रों ने बताया है कि आरोपी कथित तौर पर पाकिस्तान स्थित एक आतंकवादी के संपर्क में था। अधिक जानकारी की प्रतीक्षा है। इस बीच उसी रात अमृतसर में एक सैन्य चौकी पर हुए एक अन्य विस्फोट की जांच जारी है। मध्य प्रदेश के देवास जिले की पटाखा फैक्ट्री में भीषण विस्फोट से 2 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। देवास कलेक्टर ऋतुराज सिंह के मुताबिक हादसे में 2 मजदूरों की मौत हुई है। फैक्ट्री में काम करने वाले ज्यादातर मजदूर बिहार के अररिया जिले के बताए जा रहे हैं। संभागायुक्त आशीष सिंह और कलेक्टर ऋतुराज सिंह मौके पर पहुंच गए हैं और बचाव कार्य जारी है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने देवास पटाखा फैक्ट्री हादसे को हृदय विदारक बताया है। डॉ. यादव ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि और घायलों को निःशुल्क इलाज देने की घोषणा की है। लॉजिस्टिक्स इज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स लीड्स 2025 की रिपोर्ट में कल केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर को श्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता के रूप में मान्यता दी गई। नई दिल्ली में केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने प्रदेश को ये मान्यता दी। वर्ष 2023 तक जम्मू कश्मीर आकांक्षी प्रदेश की श्रेणी में था। वर्ष 2024 में इसे तेजी से प्रगति करने वाले प्रदेश के रूप में मान्यता प्राप्त हुई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @YRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है।

0: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने आज चीन की राजधानी बीजिंग में आयोजित शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। ट्रंप ने इसे अब तक का सबसे बड़ा शिखर सम्मेलन कहा है। इसमें ईरान संघर्ष और द्विपक्षीय व्यापारिक तनाव सहित कई मुद्दों पर चर्चा हुई। एक रिपोर्ट।
1: बीजिंग के ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल में आज श्री जिनफिंग के साथ बातचीत में ट्रंप ने कहा कि अमेरिका और चीन का भविष्य उज्जवल होगा। ट्रंप के साथ अमेरिका के शीर्ष व्यापारिक नेता भी आए हैं। इनमें एनवीडिया के जेंसन हुआंग, एप्पल के टिम कुक, टेस्ला और स्पेसएक्स के एलन मस्क और ब्लैक रॉक के लैरी फिंक के नाम शामिल हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि ये वर्ष चीन अमेरिका संबंधों के लिए ऐतिहासिक होगा। चीन और अमेरिका के बीच व्यापारिक तनावों के बारे में जिनफिंग ने कहा कि व्यापारिक संघर्ष में कोई भी विजय नहीं होता। राष्ट्रपति ट्रंप की यह यात्रा पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष और उसके बाद ईंधन से जुड़ी वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में आए व्यवधानों के बीच हो रही है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: देश में थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति वार्षिक आधार पर अप्रैल में 42 महीने के उच्चतम स्तर 8.3% पर पहुंच गई। पिछले वर्ष मार्च में ये 3.88% थी। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के अनुसार मुद्रास्फीति में ये वृद्धि मुख्य रूप से खनिज तेल, कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस, मूल धातुओं, विनिर्मित उत्पादों और गैर खाद्य वस्तुओं के दाम बढ़ने के कारण हुई। थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु महिला सिंगल्स में और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी तथा चिराग शेट्टी की जोड़ी पुरुष डबल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। सिंधु ने आज प्री क्वार्टर फाइनल में डेनमार्क की अमाली शूज को केवल 28 मिनट में हराकर अगले दौर में प्रवेश किया। क्वार्टर फाइनल में सिंधु का सामना विश्व चैंपियन जापान की अकाने यामागुची से होगा। पुरुष डबल्स में सात्विक और चिराग शेट्टी ने प्री क्वार्टर फाइनल में मलेशिया के ब्रायन जेरेमी गुंटिंग और मोहम्मद हैकल की जोड़ी को हराया। आईपीएल क्रिकेट में आज पंजाब किंग्स का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने कहा वैश्विक अनिश्चितता और आर्थिक चुनौतियों के बीच ब्रिक्स रचनात्मक भूमिका निभा सकता है। नई दिल्ली में 2 दिन के ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कल अबू धाबी यात्रा के दौरान भारत और संयुक्त अरब अमीरात द्विपक्षीय संबंधों को एक नए स्तर पर ले जाने के लिए तैयार। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन केरलम के अगले मुख्यमंत्री होंगे। निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के तीसरे चरण की घोषणा की। इसे चरणबद्ध तरीके से 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में चलाया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा आपदा प्रबंधन में भारत एक वैश्विक नेता और अग्रणी देश के रूप में उभरा है। और थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु महिला सिंगल्स में और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी तथा चिराग शेट्टी की जोड़ी पुरुष डबल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंची। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम सदाबहार नगमे में।

0: रोपी नैयर के संगीत के साथ। आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: मिलती हैं धाराएं तीन, विचार, स्वर और संगीत।
2: तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा।
1: बातें जो देती हैं हौसला, शब्द जो देते हैं सुकून।
2: ये ना सोचो इसमें अपनी हार है कि जीत है।
1: हालात से लहूलुहान दिल को मिलता है ठिकाना, विचार और संदेश थाम लेते हैं आपका हाथ।
2: तुम देना साथ मेरा, ओ हम नवा।
1: वो है कार्यक्रम त्रिवेणी।
2: तुम आ गए हो, नूर आ गया।
1: सुबह 8:15 और दिन में 2:15 सिर्फ विविध भारती पर। आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
3: देखो जी बहार आई, गांवों में खिली गलियां।
1: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
1: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
4: तुम्हारी याद सताते हैं
1: हर रोज सुबह 7 सिर्फ विविध भारती पर।
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुनते हैं अगला गीत। डिटेक्टिव फिल्म से गीता दत्त हेमंत कुमार की आवाजों में, शैलेंद्र के बोल और मुकुल रॉय के संगीत के साथ।

0: चले गए हम।
1: हम सुन रहे थे ये गीत काला पानी फिल्म से मोहम्मद रफी की आवाज में, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल और सचिन देव वर्मन के संगीत के साथ।

हम सुन रहे थे ये गीत आखिरी दाव फिल्म से आशा भोसले की आवाज में मजरूह सुल्तानपुरी के बोल और मदन मोहन के संगीत के साथ। आइए सुनते हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे का अगला नगमा, जो कि है फिल्म अनाड़ी से। लता मंगेशकर मुकेश की आवाजें हैं, हसरत जयपुरी के हैं बोल और शंकर जयकिशन का है संगीत।

हम सुन रहे थे मधुमति फिल्म का यह गीत मुकेश की आवाज में शैलेंद्र के बोल और सलिल चौधरी के संगीत के साथ। आइए सुनते हैं सदाबहार नगमे का अंतिम गीत और इस गीत के साथ आप मुझे आज्ञा दीजिए, आप सबका कल्याण हो ये प्रार्थना करती हूँ। और सुनिए ये गीत मालिक फिल्म से, सुरैया शमशाद बेगम और साथियों की आवाजें हैं, शकील बदायूनी के बोल हैं और गुलाम मोहम्मद का है संगीत।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। अगला कार्यक्रम है सखी सहेली, कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

0: सहेली
1: सखी सहेली कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी साथियों को, सभी सखियों को, प्यारे प्यारे जितने साथी बैठे हैं सभी को नमस्कार। और आज मेरे साथ इस मंच पर हैं दीपा, आपको भी दीपा प्यार भरा नमस्कार।
2: चंचल आपको और साथ में हमारी सारी सखियों, सहेलियों और हमारे श्रोता भाइयों को हमारा हेल्दी नमस्कार।
1: तो आपने पिछली बार भी हेल्दी नमस्कार किया, उसकी वजह बताई थी, और आज भी हेल्दी नमस्कार है, ये तो आज भी वजह बताइए
2: भाई। एक बार जब भी आते हैं ना तो अपने श्रोताओं को याद दिला दो, हेल्थ का ध्यान रख रहे हो ना,
1: हाँ,
2: सेहत का ख्याल है या नहीं।
1: इसीलिए भाई दीपा जी जब भी आएंगी ना वो स्वास्थ्य से भरा नमस्कार करेंगी,
2: और आपको ये बताना है कि आपने स्वास्थ्य का ख्याल रखा है या नहीं।
1: हाँ, तो भाई हमारे कौन से साथी अपने स्वास्थ्य का ख्याल रख रहे हैं

0: हमारी सहेलियां अपने परिवार वालों के स्वास्थ्य का ख्याल रख रही हैं।
1: जी बिल्कुल,
0: वो हमसे साझा कर सकती हैं, लेकिन विषय जिन पर हम बात करेंगे वो हम साझा कर लेते हैं।
1: स्वास्थ्य का ख्याल रखना देखो ना इसलिए भी बहुत जरूरी है, इन दिनों बहुत गर्मी हो रही है तो ये एक जायज सी बात है कि पसीना आता है, लेकिन कई लोगों के पसीने से दुर्गंध आती है।
0: हाँ, है ना। कुछ लोग इस बात का ख्याल रखते हैं कि जब हम किसी के पास बैठे हों तो दूर से भी उसे नाक भौं सिकोड़ने की जरूरत ना पड़े या उसे भी अच्छा महसूस हो, तो अपने आप को साफ सुथरा और स्वच्छ हाइजीन के पर ध्यान रखते हुए वो जो रखते हैं, तो इस बात का सभी ख्याल रखें। और इसमें क्या उपयोगी टिप्स हो सकते हैं, थोड़ी हम मदद करेंगे, थोड़ी हमारे जो सुनने वाले हैं वो उपयोगी टिप्स लगकर बताएं।
1: जी बिल्कुल। और फिर मुझे तो देखो आज उसके बाद ना खरीदारी करने भी जाना है प्रोग्राम के बाद।
0: तो क्या खरीदने वाली हो और कैसे खरीदना है तुम्हें ये बताओ।
1: देखो मैं सोच रही हूँ एक बहुत अच्छा सा ना फोन आया, स्मार्टफोन, और किश्तों पर भी मिल रहा है, तो सोचा कि चलो आज जाकर के देखते हैं कितना किश्त है, क्या है, हम भर सकते हैं या नहीं। तो बड़ा मन है कि फोन खरीद लें।
0: देखो
1: फोन वो स्मार्ट वॉच वाला साधारण नहीं।
0: क्या होता है ना आसानी से वो चीज हमारे हाथ में आ जाती है जब हम किश्तों पर लेते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि भाई जो चीज 15,000, 20,000, 50,000 तक की भी हो सकती है उसे हम कुछ 2,000, 4,000, 5,000, 8,000 देकर भी उसे अपने हाथ में ले सकते हैं, यानी कि बहुत कम रकम में आसानी से वो चीज आ सकती है। लेकिन हर चीज के कुछ अगर फायदे हैं तो नुकसान भी।
1: बिल्कुल। तो हमारी सखियां कहीं इस तरह से ये फोन लेना या स्मार्ट वॉच लेना या कोई और चीज के लिए किश्तों के उस जो सुंदर से दुनिया है उसमें कितना जा चुकी है, या उनको लगता है कि हाँ कुछ हद तक सही है, कुछ हद तक गलत है, लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए,
0: और क्या इसके साथ जुड़े उनके अनुभव भी होंगे कि उन्होंने जब किश्तों पर कोई चीज ली तो उनके साथ में अच्छा क्या हुआ या उसका खामियाजा क्या उन्हें भुगतना पड़ा, तो अच्छे बुरे सभी तरह के अनुभव वो हमारे साथ साझा कर सकते हैं।
1: बिल्कुल। और अनुभव तो बहुत सारे तरीके के होते हैं ना। देखो दोस्ती में भी कितने अनुभव मिलते हैं, कहीं अच्छे दोस्त मिलते हैं, कहीं ऐसी दोस्ती होती है जो ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाती, कहीं बहुत लंबी दोस्ती होती है, और जो बचपन की दोस्ती भी रहती है जहां पर हम KG1 KG2 के जब पढ़ते थे बिल्कुल छोटे, और आज तक दोस्ती, तो क्या ऐसी वाली दोस्ती भी आपके साथ है, या कहीं कुछ ऐसा आपका अनुभव रहा है कि कोई बहुत प्यारा दोस्त है और अभी उससे कहीं दूरी बन गई है, तो कुछ अगर आप बता सके तो कारण बताइएगा, तो कहीं हम शायद आपकी मदद कर सके दिल को हल्का करने में या अपने उस दोस्त के पास जाने में।
0: एक और दोस्त, यानी कि रेडियो को भी कई लोग अपना दोस्त बना लेते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं ना जो लोगों से दूरी बनाकर रखते हैं, तो वो लोग दोस्त बनाते हैं, कोई मोबाइल को अपना दोस्त बना लेता है, कोई किताबों को अपना दोस्त बना लेता है, कोई रेडियो को अपना दोस्त बना लेता है। वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो चित्रकारी को भी अपना दोस्त बना लेते हैं, बस अपने शौक में वो इस तरह डूब जाते हैं। मान लीजिए आपको अगर रंगों से प्यार है, चित्रों से प्यार है, तो चित्रकारी जैसे अगर और भी कला आपके भीतर है, चाहे वो गायन की हो, किसी वादन की हो, तो रंगों की जब मैंने बात की तो मुझे याद है कि आज जिस पद्मश्री महिला की हम बात कर रहे हैं, जो पद्मश्री से सम्मानित हो चुकी हैं, वो रंगों की दुनिया से ही तो जुड़ी हैं।
1: बिल्कुल सही कहा तुमने। और उनका सफर अगर हम उनके बारे में जानेंगे ना, जानना है या हमें क्या करना है, बहुत कुछ जानकारी तो है।
0: जानकारी बहुत सारी है, लेकिन मुझे लगता है कि भाई दोस्त जब हम रेडियो को बनाते हैं, गीत संगीत को बनाते हैं, तो पहले गाना सुनवाना बनता है।
1: अरे ये तो नियम भूल ही गई थी।

0: बहुत सुंदर गीत था और जिस तरह से इस गीत में खनक थी ना, वैसी ही कुछ खनक रंगों में होती है और रंग भी मन को मोह लेते हैं। और आज हम जिस महिला की बात कर रहे हैं जो चित्रकार हैं, जो अपने रंगों का जादू ना जब वो चलाती है ना रंगों की अपनी कलम, तो वो नजर आता है।
1: बिल्कुल सही कहा। और भूरी बाई, ये उनका सफर हमें यही बताता है चंचल कि कला छुपाए नहीं छुपती है, वो दुनिया तक एक दिन सबके सामने आ ही जाती है। इसलिए घर में कोई बच्चा हो या आप स्वयं हमारी सखी खास तौर पर, वो क्यों ना हो, किसी भी प्रकार की कला अगर आपके अंदर है तो उसे कहीं भी रोकिएगा नहीं, कभी दबाइएगा नहीं।
0: और ये जो अवसर है जब स्कूल के बाद बच्चों की छुट्टियां होती हैं, यही मौका उन्हें मिलता है कि उनके अंदर कोई कला है तो उसे आप उभारें और उन्हें कोई ऐसी क्लासेस में एक्टिविटी के लिए भी आप भेज सकती हैं, ताकि उन्हें खुद को जानने का अवसर मिलेगा इन चीजों से।
1: और बच्चों के साथ खुद भी क्यों नहीं, अगर आपको अब लगता है कि हाँ थोड़ा सा वक्त है, और अगर आपको मान लीजिए 40 पार या 45 की उम्र के पार आपको लगता है कि मैं कोई डांस क्लासिक हूँ, लेकिन मन में एक पहला ख्याल क्या आता है, अरे अब कहाँ, तो ये ख्याल आने भी मत दीजिएगा। जरूर अपने पास की किसी कोई क्लास कहीं पे कुछ सिखाया जा रहा हो तो जाकर एक बार देखिएगा जरूर कि आप कर पा रहे हो या नहीं।
0: और 40-50 के पार तो मैं कहती हूँ बहुत ज्यादा अच्छा समय होता है, उस वक्त अधिकतर महिलाएं या पुरुष बच्चों की जिम्मेदारियों से काफी हद तक मुक्त हो चुके होते हैं, क्योंकि बच्चे पढ़ लिख कर अपने नौकरी के लिए या बड़ी किसी पढ़ाई के लिए वो विदेश चले गए होते हैं, या कहीं और किसी अन्य शहर में चले गए हैं, या अपने ही शहर में वो व्यवस्थित शादी ब्याह करके या नौकरी करके सेटल हो चुके होते हैं।
1: बिल्कुल सही।
0: तो आपको जब अपने लिए समय निकालने का अब वक्त आया है तो बिल्कुल पीछे ना हटें, अपने उस शौक को पूरी तरह से जी लीजिए।
1: बिल्कुल।
0: तो आज हम बात कर रहे हैं चित्रकार भूरी बाई के बारे में, जो कि मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में एक छोटा सा गाँव है पिटौल, वहां पर इनका जन्म हुआ 1968 में। और उनके माता पिता बहुत ही निम्न वर्गीय परिवार से आते थे और मेहनत मजदूरी का काम वो किया करते थे, पढ़ाई लिखाई भी उनकी हो नहीं पाई ज्यादा, क्योंकि उनका जो कह सकते हैं ना कि

0: पृष्ठभूमि जो उनकी रही वो इस तरह की थी कि उन्हें पढ़ने लिखने का मौका ही नहीं मिल पाया। और जब छोटी सी थी वो तो चित्रकारी का बड़ा शौक था उन्हें, और मिट्टी और गेरू जो आमतौर पर हम देखते हैं कि घरों में गेरू से कुछ रंगोलियां अल्पना बनाई जाती है, तो उन्हीं से बस उन्हें भी खेलने का शौक लगा। और खेलते खेलते रंगों से कभी हाथी कभी घोड़ा और कभी पेड़ों के जंगलों से जो चीजें मिल जाती थी उन्हें लाकर वो चित्रकारी का अपना शौक है उसे पूरा किया करती थी।
1: जी, अब क्योंकि बहुत छोटी सी उम्र थी उनकी तो पड़ोस के ही गाँव में उनका ब्याह हो गया। पति पत्नी दोनों आस पास के गाँव शहरों में मजदूरी करके अपना जीवन चला ही रहे थे बस इसी तरीके से। और भूरीबाई भील आदिवासी समुदाय की भित्ति चित्र परंपरा में बहुत प्रशिक्षित भी थी और घर की कच्ची दीवारों पर गेरू से या कभी कोई दूसरे प्राकृतिक रंग से चित्रकारी वो करती थी। और ये हुनर कहीं कुछ ऐसा रहा कि राजधानी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल तक ले आया। तो 1982-83 की बात थी, भोपाल में भारत भवन का निर्माण चल रहा था चंचल, तो प्रदेश के अलग अलग अंचलों से आदिवासी कलाकारों को बुलाकर यहाँ के निर्माण में मदद लिया जा रहा था उस वक्त। तो भूरीबाई के पति को भारत भवन में बगीचे की देखभाल का काम मिल गया तो उनके साथ वो भी भोपाल चली आई।
0: और बिल्कुल, क्योंकि उस कच्ची मिट्टी से गेरू से खेलने का शौक तो उनको था ही, इन प्राकृतिक रंगों की चित्रकारी से जो हुनर उनको मिला था तो बस जब उनके पिता आए तो वो भी चली आई। और उनके पिता जो कि बगीचे की देखभाल का काम किया करते थे
1: जी, उनके पति चले आए। हाँ, पति के साथ,
0: पति के साथ वो चली आई और उन्होंने भी भारत भवन में मजदूरी का काम करना वहां शुरू किया। और यहाँ उनकी मुलाकात हुई उनके जो गुरु थे जे स्वामीनाथन, उनसे हो गई। और उनकी जो संस्कृति थी वहां के जो देवी देवता थे उनको समझने के लिए भूरीबाई और उनके पति से उन्होंने बात की। इसी दौरान उन्हें यह भी पता लगा कि देवी देवताओं के चित्र घर की दीवारों पर बनाने की बहुत पुरानी परंपरा रही है देश में। तो जे स्वामीनाथन ने पहली बार भूरीबाई से देवी देवताओं के चित्र कागज पर बनाने को कहा, यानी कि दीवारों पर तो बनते ही थे लेकिन ये चित्र उन्होंने कागज पर किस तरह उकेरे जाएंगे ये उनको कहा।
1: ये उनको कहा तो वे तो उंगलियों से बनाती थी, अब उन्हें कैनवास पर बनाने के लिए जब कहा तो बड़ी समस्या उनके सामने आन पड़ी कि जीवन में कभी कलम को तो हाथ ही नहीं लगाया। घर पर उन्होंने लेकिन क्या था, थोड़ी प्रैक्टिस की और फिर पहुंची अपने कला गुरु के जे स्वामीनाथन के पास। भूरीबाई ने 5 दिनों में यह काम करके दिखाया जिसके लिए उन्हें उस वक्त 50 रुपए मिले। यहां जी
0: भाई उस समय की जब आप बात कर रही हैं तो 50 रुपए मिलना अपने आप में बड़ी बात हुआ करती थी। और यहीं से जो उनकी कला की यात्रा है ये भी शुरू हो गई और ये ऐसी शुरू हुई कि फिर आगे चलकर विश्व स्तर तक पहुंची है। और भूरीबाई भी अपने बारे में बताती हैं कि उन्हें चित्रों में जो जनजाति की सांस्कृतिक धरोहर हैं, जंगल हैं, पशु पक्षी हैं और त्योहार, ये उनके मुख्य विषय थे जिनको वो चित्रकारी में उकेरा करती थी। और इन चित्रों को छोटे आयताकार वो बनाया करती थी जिनमें उंगलियों से बिंदी बिंदी लगाकर उसे वो बिल्कुल जीवंत बना दिया करती थी। हर कलाकार का चित्रकारी करने का जो एक अंदाज होता है तो वो उनका अंदाज था।
1: भूरीबाई कहती हैं कि उनको कला का पहला सम्मान 1986 में मिला और उसके बाद मध्य प्रदेश सरकार ने भी देवी अहिल्या सम्मान उन्हें दिया। 2018 में उनके चित्रों की पहली अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी भी लगी जो कि अमेरिका में लगी। बाद में उन्होंने दक्षिण अफ्रीका और जापान जैसे देशों में भी अपने चित्रों की प्रदर्शनी लगाई। हर जगह उनकी चित्रकारी को इतना पसंद किया गया कि उसके बाद मतलब उन्हें हर साल बुलाया ही जाता था कि आप आकर के एग्जीबिशन लगाइए।
0: बिल्कुल, हम अगर देखें कि उनकी क्या पृष्ठभूमि रही, किस तरह के परिवार से वो आती हैं, उन्हें पढ़ने लिखने को स्कूल जाने को नहीं मिला, किसी बड़े स्कूल कॉलेज की शिक्षा नहीं है उनके पास में, लेकिन जिस तरह के सम्मान उन्होंने पाए सिर्फ अपनी उस कला के जरिए, तो अगर आप शिद्दत से कोई भी काम करें तो वो छोटा बड़ा नहीं, वो आपको कहीं एक जगह ले जाकर वो सम्मान दिलवा सकता है।
1: बिल्कुल, वे कहती हैं कि अपने समुदाय में वो पहली महिला है जिन्होंने कागज और कैनवास का इस्तेमाल किया है और पेंटिंग करने के लिए अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझती है। एक मजदूर से लेकर विश्व स्तर तक अपने समुदाय के पेंटिंग को पहचान दिलाने वाली वे पहली महिला बनी जिसके लिए उन्हें 2021 में पद्मश्री पुरस्कार मिला।
0: और भूरीबाई का ये मानना है कि आप चाहे गाँव में रहते हैं या शहर में रहते हैं, किसी भी महिला को अपने क्षेत्र में हुनर को आगे ले जाते हुए जीवन में आगे जरूर बढ़ना चाहिए। और हम भी यही शुभकामनाएं देते हैं अपनी सभी सखियों को और अपने सभी साथियों को कि आप उम्र को एक सिर्फ नंबर मान के चलिए और उम्र को किसी भी चीज में आड़े मत आने दीजिए, आप आगे बढ़िए, अपने शौक को पूरी तरह से जी लीजिए। और अभी गाना सुन लें।
1: चलिए।

0: पानी पता कैसा होता है कि जिस रंग में मिल जाए वैसा ही बन जाता है.
1: बिल्कुल.
0: और दोस्ती भी ऐसी थी, अगर आपको दोस्त कोई बहुत अच्छा मिल जाए ना, आपके रंग में वो रंग जाए, तो बस ऐसा अगर दोस्त एक भी आपके पास है ना, तो वो 100,000 दोस्त के बराबर है.
1: बिल्कुल सही कहा. और देखिए, यही एक संदेश हमारी एक सखी ने लिखा है, दोस्ती से ही तो प्रेरणा लेकर सखी सहेली का नामांतरण हुआ होगा. हम सब आपस में अच्छे दोस्त हैं. सोचो अगर सखी सहेली न होती तो हमारी दोपहर कितनी सुनी होती. भाई सखी सहेली के रहते आपकी दोपहर कभी सुनी नहीं होगी.
0: और पता है दीपा, हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे रिश्तों से हम घिरे हुए होते हैं, जिनमें से अधिकतर या तो हम कहें सभी रिश्ते जन्म से संबंधित होते हैं. और जन्म से जो जुड़े हुए रिश्ते हैं, इन्हें बदल पाना भी हमारे लिए संभव नहीं है. लेकिन इन जन्म से जुड़े रिश्तों के अलावा जो एक बहुत महत्वपूर्ण रिश्ता है, वो होता है दोस्ती का. और ये वो रिश्ता है जिसे हम अपनी सोच समझ के साथ में खुद चुनते हैं और खुद इस रिश्ते से जुड़ते हैं.
1: बिल्कुल सही.
0: और जीवन के हर कदम पर अलग अलग लोग हमें मिलते हैं, कुछ से अच्छी जान पहचान हो जाती है, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिन्हें हम दोस्त कह पाते हैं.
1: बिल्कुल.
0: और मुश्किल समय में जो व्यक्ति हमारे लिए मदद के लिए सबसे पहले हाथ बढ़ाता है, वही सच्चा दोस्त होता है.
1: लेकिन चंचल, वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके जीवन में दोस्ती नाम का कोई रिश्ता नहीं होता. सोशल नेटवर्किंग के जमाने में भी बहुत ऐसे लोग हैं जिनके पास कोई दोस्त नहीं है. तो क्या हो ऐसा है कि उन लोगों को दोस्ती करने का सही तरीका मालूम नहीं है?
0: ऐसा तो नहीं हो सकता.
1: समय के साथ साथ दोस्ती के मायने भी बदल रहे हैं. आज जहां ज्यादातर लोग अपना मतलब और स्टेटस देखकर दोस्ती करते हैं, वहीं पुराने समय में दोस्ती का संबंध सिर्फ पहले कैसा होता था, बिल्कुल दिल से दोस्ती हुआ करती थी,
0: दिल से जुड़ जाते थे.
1: अब जो थोड़ा सा एक मॉडर्न जमाना कह लो या आधुनिकता कह लो, स्वार्थ की चकाचौंध कह लीजिए, आज दोस्ती को एक माध्यम की तरह बना दिया गया है, जबकि ऐसा कतई होना नहीं चाहिए.
0: इसीलिए तो हमारे साथी लिख रहे हैं कि दोस्ती के बिना जीवन वास्तव में अधूरा और सूना सा लगता है, क्योंकि दोस्त ही हर खुशी और जश्न और गम को हल्का बनाते हैं. वे भरोसे, ईमानदारी और बिना शर्त के हमारे सपनों को सहारा देते हैं. एक सच्चा दोस्त जीवन में सुकून, मस्ती और निस्वार्थ साथ लेकर आता है. दोस्ती के बारे में कुछ मुख्य बातें हैं जो हमारे साथी ने हमें लिखकर भेजी हैं. खुशी का एहसास, दोस्तों के बिना जिंदगी बेरंग है, वो हर पल को खुशी से भर देते हैं. सच्चे दोस्त की पहचान होती है कि अपनी कमियों को स्वीकार करे और मुश्किल समय में हौसला बढ़ाए, भावनात्मक सहारा देते हैं. दोस्त सिर्फ हंसी मजाक नहीं करते, बल्कि रोते हुए को भी सहारा देते हैं, कड़वे सच बताने वाले भी होते हैं. और दोस्ती एक ऐसा बंधन है जिसे हम अपनी पसंद से चुनते हैं, उसमें स्वार्थ, अहम, इन चीजों के लिए कोई जगह ही नहीं होती.
1: बिल्कुल सही कहा. और एक हमारे सखी कह रही हैं कि दोस्ती पर कोई बात की जाए जिसमें कृष्ण, सुदामा और कर्ण, दुर्योधन की मित्रता की चर्चा ना हो, ऐसा हो नहीं सकता. दोस्त एक दूसरे दोस्त के चेहरे का भाव समझकर उसके लिए अपना सर्वस्व दांव पर लगा देते हैं. और दोस्ती यही मांगती भी है, अपना स्वार्थ नहीं होता उसमें, भाव यह रहता है कि हमें ये वापस मिल जाएगा, लेकिन तू जो मतलब दोस्त है वो तू बस मेरे साथ रहे, बाकी सब कुछ हो जाएगा. आज के युग में बनावटी दोस्त तो मिल जाएंगे, लेकिन आपके पास भले अकुल संपत्ति हो, हिचकते नहीं है, कभी कम होगा और कभी मांगते रहेंगे, जिनसे आप वापस कुछ पाने की उम्मीद बिल्कुल ना करें. यानी कि वो बनावटी दोस्त के बारे में बता रहे हैं.
0: तो चलिए अब सिर्फ बातें नहीं करते हैं, कुछ सुन भी लेते हैं. अच्छा सा
1: चलिए,
2: बाकी रह गए दोस्ती यारी रद्द हो गई है. प्यार में दुनियादारी कैसी मुफ्त की चीज नगद हो गई है. छी छी यार की ये पहचान, दोस्ती में कैसा एहसान, जब दोस्ती होती है तो.

उंगली से उंगली का जब तक जोड़ सलामत, साथ सलामत, छोटी और बड़ी है तो क्या, पांचों है तो हाथ सलामत, एक एक के है पांच मुकद्दर, तकलीफों से घबराना मत, साझे जोड़ जवानी बचपन, पांच से पांच मिले।

बिल्कुल सही बात है कि दोस्ती में सिर्फ दोस्ती ही होती है, कोई एहसान नहीं होता। लेकिन इस वक्त समय हो चला है एक छोटे से अंतराल का।

0: विविध भारती पर इस समय चल रहा है कार्यक्रम सखी सहेली। मैं हूँ आपके साथ आपकी सखी चंचल वर्मा
1: और दीपा माहेश्वरी।
0: तो भाई हम बात कर रहे थे दोस्ती की। देखो दीपा, हम दोनों भी बड़े अच्छे दोस्त हैं ना
1: और हमारी सखियां भी तो सारी दोस्त हैं
0: जी।
1: तभी तो ये लिख रही हैं कि दोस्ती बिना जग सूना होता है। जैसे सखी सहेली प्रोग्राम में सब सखियां दोस्त हैं। हर रोज एक घंटा हमें मिलता है, सखियों के सुख दुख की बातें करते हैं हम सब। सखियों को जीवन के अलग अलग विषयों पर मार्गदर्शन मिलता है और सखियां भी इस दोस्त से कमेंट करके बेझिझक बातें करती हैं। तो भाई यही तो होना चाहिए कि क्योंकि हमारे पास जरिया यही है कि हम कमेंट करके एक दूसरे से अपने हर मन की हर बात का को हम साझा कर सकें।
0: बिल्कुल। और देखिए अगले संदेश में भी बड़ी अच्छी बात है। हमारे जो साथी हैं वो लिखते हैं कि दोस्ती अमूल्य होती है, जिसे धन से खरीदा नहीं जा सकता। इसीलिए कहा जाता है कि दोस्ती के बिना जग सूना है। यदि जीवन में दोस्त ना हो तो दुनिया सूनी सूनी और बेरंग लगने लगती है। मित्र हमारे चेहरे पर मुस्कान ले आते हैं और उदासी को दूर करते हैं। ये जीवन का सबसे सुंदर और अनमोल रिश्ता है। ये एक ऐसा बंधन है जहाँ बिना किसी स्वार्थ के ये दिलों को जोड़ता है। सच्चा मित्र हमारे सुख दुख का साथी होता है। जीवन में कठिनाइयां जब भी आती हैं तो दोस्त हमारा हौसला बनते हैं। दोस्ती में अपनापन, विश्वास और समझदारी होती है। एक अच्छा दोस्त हमें सही राह दिखाता है, गलतियों से बचने की सीख देता है। तो जहां इन्होंने लिखा ना कि दोस्ती अनोखा बंधन है, तो दोस्ती वो बंधन है जहां कोई बंधन नहीं होते।
1: सही बात है, बिल्कुल सही कहा आपने। और एक और हमारा एक संदेश आया हमारे, ये तो श्रोता भाई हैं, ये कहते हैं जैसे मेरी जिंदगी में विविध भारती

0: सखी सहेली एक सच्चे दोस्त के रूप में आया, वैसे ही महसूस होता है कि एक सच्चे और प्यारे दोस्त के बिना जग सुना है। कई बार जीवन में ऐसे पल आते हैं जब अपनी हमें हमारी भावनाओं को पूरी तरह समझ नहीं पाते, लेकिन एक सच्चा मित्र बिना कहे मन की बात समझ जाता है। सखी सहेली ने सिर्फ साथ नहीं दिया बल्कि हर दिन अपनापन, मुस्कान और भावनाओं का एक सुंदर रिश्ता दिया है। ये कहते हैं सच कहूँ तो जैसे दोस्ती बिना जग सुना लगता है, वैसे ही सखी सहेली के बिना जीवन का एक हिस्सा अधूरा लगता है। तो क्या बात है, हम अपने इस कार्यक्रम के जरिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं और ये साथ यूं ही चलता रहे, ये इसी बात की हम कामना भी करते हैं।
1: और भी बता दें कि जो आने वाला महीना है यानी जून, 2 जून को सखी सहेली की वर्षगांठ है। तो आप अभी से तैयारियां शुरू कर दीजिए अपनी सहेली के लिए, इस दोस्त के लिए।
0: बिल्कुल सही कहा।
1: तो अगला संदेश पढ़ते हैं, इसको हमारे श्रोता जो भी लिखने वाले हैं संदेश को, उन्होंने एक गीत की पंक्ति से शुरुआत की है कि दिए जलते हैं, फूल खिलते हैं, बड़ी मुश्किल से दुनिया में दोस्त मिलते हैं। दोस्ती के बिना जीवन वास्तव में अधूरा है और सूना है। दोस्त केवल साथ रहने वाले लोग नहीं होते बल्कि वे खुशियों को दुगना करने वाले, दुखों को आधा करने वाले हिस्सेदार होते हैं। उनके बिना हंसी, यादें, मुश्किल समय में डारस बंधाने वाले ये लोग होते हैं। सुख दुख बांटने के लिए दोस्त सबसे बड़ा सहारा होते हैं। दोस्तों के साथ बिताया हर पल जिंदगी की असली कमाई है और इसी दोस्ती के बिना जीवन में एक गहरा सुनापन आ सकता है। तो बिल्कुल आप दोस्त बनाइए। अगर आपको अकेले रहने की आदत है या आपको लोगों से मिलना जुलना कम पसंद है, तब तो सोशल मीडिया एक बहुत अच्छा जरिया है। लेकिन सोशल मीडिया पर अगर आप दोस्त बना रहे हैं तो लोगों पर आंख मूंद कर भरोसा मत कीजिए, क्योंकि वहां पर भी आपको धोखा देने वाले दोस्त मिल सकते हैं।
0: और एक हमारे साथी ने संदेश दिया है कि रेडियो तो हमारा बचपन से साथी रहा है। एक समय था एक बार के लिए खाना भूल जाते थे पर सखी सहेली सुनना नहीं भूल पाते थे, पर आज व्यस्तता के चलते बस सखी सहेली सुन पाते हैं। परिवार की जिम्मेदारी के साथ साथ हम आपको सच्चा दोस्त मानते हैं, तो भाई हमारे लिए आप हमारे सच्चे दोस्त हैं, क्योंकि श्रोताओं के बगैर, हमारी सखियों और सहेलियों के बगैर तो ये प्रोग्राम पूरा अधूरा है। इसका ये जो रिश्ता है, इसकी डोर अगर एक तरफ स्टूडियो है तो दूसरी तरफ आप सब हैं, आप ही सबसे इसकी सुंदरता है।
1: बिल्कुल, अगर सोचिए हम दोनों ही मिलकर सारी बातें करेंगे तो, और इनके कमेंट्स नहीं होंगे तो प्रोग्राम कितना खाली खाली सा लगेगा ना।
0: बिल्कुल, इनके बिना तो सब वैसे ही सब कुछ सूना है।
1: हाँ, तो भाई चलिए सूनापन दूर करें, एक और संदेश पढ़ते हैं। दोस्ती की मिसाल देखना है तो हमारे विविध भारती के फेसबुक के मित्रों को देखिए, वहाँ हर रोज मिलते हैं और पर्सनल मुलाकात भी करते हैं।
0: क्या बात है भाई, ये तो बहुत ही सुंदर बात है।
1: तो अब दोस्ती की बातें बहुत हुई, क्यों ना एक दोस्ती से भरा गीत सुन ले।
0: चलिए।

0: जैसे कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर 21 मई शाम 6:30 पर। लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
1: हम भी ये अनुरोध करते हैं कि अगर आप मुंबई में रहते हैं तो सृजन भारती के इस अगले अंक में आप जरूर हिस्सा बनिए इसका। और अब हम बात करते हैं हमारे अगले विषय पर, जिस पर हमने बताया था कि भाई किश्तों में अगर आपको कोई सामान लेना है तो वो कितना सही है या कितना गलत है। क्योंकि किश्तों पर खरीदारी करना इनकी कितना आसान ईएमआईज पर किसी चीज को ले लेना जीवन शैली का एक अहम हिस्सा बन गया है और ये दो धारी तलवार की तरह होता है ना दीपा?
2: बिल्कुल सही कहा। अगर समझदारी से इस्तेमाल किया गया तो ठीक, ना किया जाए तो ये कर्ज के जाल में भी आपको फंसा सकता है।
1: बिल्कुल, इसीलिए हमने कहा कि ये दो धारी तलवार है। अगर आसान है तो आपके लिए मुश्किल का सबब भी बन सकता है। और इस पर इतनी सारी बातें संदेश के रूप में हमें हमारे साथियों ने लिखकर भेजी हैं। तो इनका कहना है कि किश्तों पर खरीदारी कितनी सही है। भाई आजकल ईएमआई और यूपीआई का जमाना है और समूची दुनिया ही नहीं ये बल्कि हर कोई इसी तरह से खरीदारी करने में चाहता है, लेकिन कहीं से कोई भी एक भी गलत क्लिक हुआ तो फिर लेने के देने पर जाया करते हैं। इसीलिए इसके उपयोग के पक्ष में हम इसलिए भी नहीं हैं क्योंकि इससे पहले ऋण लेकर घी पीने की आदत बन जाती है और हम लोग उसके अधीन होकर अपने चैन सुकून को खोते रहते हैं और तनाव भरी जिंदगी जीते हैं, फलस्वरूप तनाव अलग से झेलते हैं। तो ये बात सही है, जब महीने का वो समय आता है किश्त चुकाने का तो वो एक तलवार की तरह आपके सर पर वो लटका रहता है कि किश्त देनी है किश्त देनी है, और उस चक्कर में कई बार आपका सुख चैन नींद खाना पीना सब कुछ हराम हो जाता है। इसीलिए कोई बहुत बड़ी चीज इसके लिए आपको बड़ी किश्त चुकानी पड़ रही है और आपको लगता है कि आपकी आमदनी से बाहर वो चीजें फिर जा रही हैं।
2: लेकिन चंचल ये बताओ, देखो महंगी वस्तुएं हैं जैसे कि घर हो गया, कार है या महंगे कोई इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, अगर उनको लेना हो तो एक साथ थोड़ी ले सकते हैं। कितना आसान हो जाता है किश्तों में चीजों को लेना।
1: लेकिन आपको अपनी आमदनी को देखते हुए अपनी किश्त बनानी होगी ना। आपने कहा घर लेना है तो घर इतनी बड़ी कहते हैं कि रकम वाली चीज होती है जिसे एक मुश्त लेना बहुत सारे लोगों के लिए संभव नहीं है। तो आप ये देखिए कि आप जरूरी नहीं है आपको बहुत बड़ा बंगला बहुत बड़ा घर लेना है। अपनी जरूरत के मुताबिक आप कितने सदस्य हैं घर में या आपकी आमदनी कितनी है इसको देखते समझते हुए आप अपने बजट में घर लीजिए और फिर जो किश्त बनानी है वो भी इतनी ही बनाइए

0: मान लीजिए अगर आप अभी आप एक किराए के घर में रहते हैं
1: जी,
0: तो जितना किराया अभी आप दे रहे हैं उतना देने की क्योंकि आपको बरसों से आदत है तो उतनी किश्त आप आसानी से निकाल कर दे पाएंगे, लेकिन उससे दुगना रकम अगर आपके पास में आ गया देने के लिए तो कहीं ना कहीं वो मुश्किल का सबब बन जाएगा।
1: ये बात तो सही है, लेकिन मुझे ये भी लगता है कि अगर कोई जरूरी चीज है जैसे आजकल लैपटॉप है या ये कहें कि फ्रिज, ये तो बहुत ज्यादा जरूरी चीज है, तो इनको लेना कितना आसान हो जाता है। हम एक साथ नगद नहीं भी हो हमारे पास, अगर जैसे इन दिनों बहुत गर्मी चल रही है, अब हमें लगता है कि नहीं भाई फ्रिज हो जाए, एक छोटा ही ले लें, नगद नहीं है तो किस्त में तो हम ले ही पाते हैं ना।
0: मैंने फिर वही कहूंगी कि किश्त अगर आपको लेनी है तो बहुत सारी किश्तें जब आपके समय समय पर जाती है ना, तो आप या तो उन्हें कहीं लिख कर रखें, अगर आप भूल जाते हैं उन किश्तों के बारे में लिखना। अब मान लीजिए हर हफ्ते आपकी कोई ना कोई किश्त भरने का समय है, आपने कार भी ले रखी है, आपने बड़ा टीवी भी लिया, लैपटॉप भी लिया और मोबाइल भी ले लिया कोई अच्छा महंगा वाला, तो किश्त अगर आप भूल गए तो जो वसूली के लिए जब उनका जो रवैया होता है वसूली करने वाली कंपनियों का, वो आपके साथ बहुत सख्त हो सकता है और फिर आपको ही बुरा लगेगा कि अरे ये चीज हमारी वापस से मांगी जा रही है, या इसके पीछे जो हमें जो भुगतान करना पड़ता है, जुर्माना भी हो सकता है, सजा भी हो सकती है, उन चीजों से अगर बचना है तो या तो समय पर किश्त देनी है, उतनी आमदनी आपको रखनी
1: होनी चाहिए,
0: या तो फिर किश्तों से ही बचना है।
1: बिल्कुल, क्योंकि क्या होता है ना, लगता क्या है अरे सिर्फ 2,000 या 3,000 की किश्त है, तो वो हम वो जो सिर्फ जो 2,000 या 3,000 दिख रहा है ना महीने का, सिर्फ उतना ही दिखता है, इसके पीछे जुड़ने वाला ब्याज या कहीं कोई ऐसी छिपे हुए कोई शुल्क हो जाते हैं ना, जैसे 0% के नाम पर अब कई बार हो जाते हैं कि फाइल चार्ज हो जाता है, प्रोसेसिंग फीस बाद में लग जाती है, या इंश्योरेंस के नाम पर भी कई बार वो कुछ एक अमाउंट कुछ अतिरिक्त पैसा उसमें और जोड़ दिया जाता है, बाद हमें समझ में आता है कि नहीं भाई ये 2 या 3 हजार की नहीं, ये तो जुड़ जुड़ के 4 या 5 हजार तक पे चली
0: जाती है। वो जो 20,000 की चीज आपको खरीदनी थी वो आपको 20 की जगह हो सकता है कि 30,000 या 35,000 तक की वो पड़ जाए।
1: बिल्कुल,
0: तो इसीलिए आप किश्तों में खरीदने का जो एक कहते ना कि वो लुभावना जो एक प्रलोभन होता है उससे बचने का प्रयास कीजिए। और इसके बारे में हमारे साथी लिखते हैं कि किश्तों में खरीदारी अच्छी है, चूंकि आपने आपके पास ज्यादा रकम चुकाने की स्थिति नहीं है तो अक्सर लोग अब किश्तों में खरीदने को अच्छा महसूस करते हैं, हालांकि ये नकद खरीदने से महंगा पड़ता है, लेकिन इस चलन के लिए सबके पास फ्लैट, गाड़ियां, इलेक्ट्रॉनिक आइटम आसानी से उपलब्ध होते जा रहे हैं, मासिक भुगतान का ये आइडिया ज्यादा लोगों को पसंद आता है। हाँ, आप हर महीने ईएमआई दे सकते हैं तो वही चीजें आप खरीदें, क्योंकि 2 या 3 किश्तों की लेट लतीफी फिर ब्याज बढ़ने की उसमें महंगी पड़ जाती है और लोग अन्य कामों में उलझ जाते हैं, किश्त बाकी होने पर कंपनी वाले आते हैं और गाड़ी उठाकर ले जाते हैं और पैसा भी डूब जाता है।
1: बिल्कुल, ये सही कहा। देखिए, इन्होंने तो हमें बताया कि किश्तों के फायदे क्या है, नुकसान भी क्या है, लेकिन हमारे एक और साथी वो कहते हैं भाई किश्तों से खरीदारी के कई नुकसान है, जैसे वो कहते हैं कि फिजूल खर्च को बढ़ावा मिल जाएगा, छिपे हुए शुल्क जैसे अभी हमने बात करी वो भी हो सकती है, जीएसटी कहां लग सकता है हमें पता ही नहीं चलता, फिर भविष्य की जो एक आय है उस पे भी बोझ आता है, यानी कि हर महीने की कमाई का एक हिस्सा पहले से ही आप ब्लॉक कर देते क्योंकि हमें पता है ना कि ये इतनी किश्त तो हमें जानी ही है, फिर कर्ज का जो एक जाल है, एक साथ कई सारे ईएमआई चालू हो जाएंगे, फिर देखिए आपको मानसिक तनाव बढ़ सकता है, डिफॉल्ट का भी खतरा हो जाता है कई बार कि किश्त बाउंस होने पर भारी पेनल्टी लगती है चंचल, और फिर क्रेडिट स्कोर भी खराब हो सकता है।
0: इसी तरह से हमारे एक साथी ने लिखा है कि किश्तों पर खरीदारी करना सही है जब आपको बहुत ज्यादा वैसा लगता है कि सही नहीं है, क्योंकि इससे आपकी आदतें बिगड़ जाएंगी और आपको ये पता ही नहीं चलेगा कि आप कितना खर्च कर रहे हैं, इसलिए किश्तों पर खरीदारी तभी करें जब क्रेडिट कार्ड से खरीदारी करनी हो, या कभी कभार ही आप ऐसा करें तो इससे आपको कोई टेंशन भी नहीं होगी, और मेरे हिसाब से तो ये खरीदारी ना ही करें तो अच्छा है, ऐसा हमारे जो साथी हैं जिन्होंने संदेश लिखा है उनका कहना है।
1: अच्छा, एक हमारे साथी ने कहा है कि 10% का नियम आपको, अगर आप ईएमआई के पक्ष में है तो 10% का नियम अपनाना चाहिए, वो क्या है कि आप सभी ईएमआई का कुल योग आपकी मासिक इनकम के 10% से अधिक नहीं होना चाहिए, मतलब जितना आपका है इनकम आपकी उसका 10% ही सिर्फ ईएमआई में जाना चाहिए। सामान सस्ता लगने के कारण कई बार क्या होता है कि हम गैर जरूरी चीजें भी खरीद लेते हैं, तो इस नियम को अगर आप पालन करते रहेंगे, ध्यान रखेंगे, तो शायद हम बेफिजूल की चीजों से खरीदने से बच सकते हैं।
0: बहुत सही बात कही, लेकिन हम गाना सुनने से बिल्कुल नहीं बचेंगे, सुनवा दें।
1: बिल्कुल सुनवाइए।

0: देखो भाई, ये जो गाने हैं ना, ये कई बार मन को बड़ी शीतलता देते हैं, लेकिन वातावरण में जब हम बाहर निकलते हैं देखते हैं गर्मी बहुत है।
1: सही
0: और
1: बात,
0: ऐसी गर्मी जो है ना, इसमें पसीने छूट जाते हैं।
1: बात तो बिल्कुल सही कही कि अब कभी कभी ऐसा होता है, हम कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ही इस्तेमाल करते हैं तो ऐसा लगता है भाई कब अपने स्टॉप पर आएंगे और वहां उतरेंगे, क्योंकि इतनी ज्यादा दुर्गंध आने लगती है कि सामने वाला भी शर्मिंदा तो हो रहा होता है, लेकिन बाकी सब लोगों के लिए उतनी देर बैठना एक दुभर और कठिन काम हो जाता है।
0: बिल्कुल दीपा, और शरीर से निकलने वाली जो तीखी गंध है, ये शरीर की गंध है, आम भाषा में लोग पसीने की बदबू के रूप में इसे जानते हैं। और बहुत से लोग शरीर की दुर्गंध की समस्या से प्रभावित भी होते हैं, और लोग अधिकतर यही सोचते हैं कि शरीर से बदबू या दुर्गंध पसीना उत्पन्न होने के कारण होती है। हालांकि इस बात में आधी सच्चाई तो है, और हमारे शरीर से बदबू आने का जो कारण है, शरीर की गंध पैदा करने वाले बैक्टीरिया है ना, उनकी मौजूदगी होती है।
1: बिल्कुल, और हमारे शरीर की त्वचा में रहने वाले जो बैक्टीरियाज हैं, वो पसीने में जो प्रोटीन और फैट होता है ना, उसे खाते हैं। शरीर के बाल वाले और नम हिस्से में लाखों जीव और बैक्टीरिया होते हैं जो पसीने के यौगिकों के बदबूदार को योगी उनको यौगिकों को बदबूदार गंध में बदल देते हैं। शरीर से दुर्गंध कई कारणों से भी आ सकती है, जैसे खराब खान पान,

0: की उम्र अनुवांशिक कारण भी हो सकते हैं और खराब साफ सफाई ये भी सब शामिल है। और शरीर की दुर्गंध के आसान उपाय और आसान घरेलू नुस्खों से हम इसे दूर भी कर सकते हैं।
1: तो उसके लिए सबसे अच्छा तो यही है कि जो सल्फर युक्त भोजन होता है वो आप थोड़ा सा कम करिए, क्योंकि उससे भी पसीने में दुर्गंध आती है। जैसे प्याज लहसुन ज्यादा सेवन अगर आप करते हैं या मांसाहार का सेवन अगर ज्यादा करते हैं तो उससे भी पसीने में दुर्गंध उत्पन्न होती है। इसके अलावा आप ये हो सकता है कि शरीर को हमेशा स्वच्छ रखिए, गर्मियों में नियमित

0: पसीने में दुर्गंध उत्पन्न होती है। इसके अलावा आप ये हो सकता है कि शरीर को हमेशा स्वच्छ रखिए, गर्मियों में नियमित रूप से 2 बार स्नान करिए, त्वचा पर पसीने को ज़्यादा जमा ना होने दीजिए, और सूती कपड़े पहने, ढीले ढाले आरामदायक कपड़े पहने, शरीर के जो अंतरंग हिस्से हैं उनकी साफ सफाई अच्छे तरह से रखिए, कॉफ़ी या चाय इनका सेवन थोड़ा कम करिए, धूम्रपान का सेवन कम करिए, क्योंकि ये भी शरीर की गंध को बढ़ाता है, और बिना धुले हुए कपड़े कभी ना पहने।
1: बिल्कुल, और यही सारी बातें हमारे एक श्रोता ने भी इसी तरह की बातें लिखी कि लिनन या सूती ढीले कपड़े पहने ताकि त्वचा में हवा आती जाती रहे, नायलॉन या पॉलिस्टर जैसे कपड़े पसीने को सोख नहीं पाते इसलिए बदबू बढ़ाते हैं, और एक बार कपड़े जैसे अभी आपने बताया कि एक बार कपड़े जो पहन लिए वो बगैर धोए उसे दोबारा ना पहने, और सारी बातें उन्होंने यही बताई है कि प्यास से युक्त भोजन का इस्तेमाल कम करें और पर्याप्त मात्रा में पानी पीने से शरीर के टॉक्सिक बाहर जाते हैं, शरीर ठंडा रहता है।
0: इसके अलावा अगर हम आसान घरेलू उपायों की बात करें तो सफ़ेद सिरका है या टमाटर को मैश करके उसका रस निकाल लें, सफ़ेद जिस सिरके के रस को आपको अपने जहां जो प्रभावी हिस्सा है जहां दुर्गंध ज़्यादा आती है पसीने में वहां रगड़कर धो लेना है, टमाटर है। इसी तरह से फिटकरी का जो पानी है वो भी पसीने की दुर्गंध को दूर करता है, नीम के पत्ते हैं उनसे आप स्नान कर सकते हैं, नीम के पत्तों को उबालकर नींबू का रस निचोड़कर इसे भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर शलजम के जो टुकड़े हैं उनको कुचलकर उसके रस से भी दुर्गंध को दूर कर सकते हैं।
1: बिल्कुल, और एक श्रोता ने लिखा है कि टी ट्री ऑयल का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको पानी में कुछ बूंदे डाल के नहाने से शरीर की दुर्गंध दूर होती है। साथ में उन्होंने कहा है नींबू का रस भी आप नहाने के पानी में थोड़ा सा रस मिला दीजिए, और नींबू को आप रगड़ भी सकते हैं शरीर पे आप अंडर आर्म्स में, ताकि जो जितने भी एसिडिक बैक्टीरिया मौजूद हैं वो सब खत्म हो जाएंगे।
0: नींबू को इस्तेमाल करने के बाद उसका बचा हुआ छिलका है उसका भी उपयोग किया जा सकता है। और अब चलते चलते एक गाना सुन लें।
1: चलिए।

0: कार्यक्रम का समय हो चला है पूरा, लेते हैं सखी सहेलियों से इजाजत। सभी को चंचल वर्मा
1: और दीपा माहेश्वरी का नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे हमारा विशेष कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया। ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है हमारा विशेष कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स।

स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में। मैं हूं आपके साथ विनीता बेदी। और दोस्तों, हर हफ्ते हमें रहता है इंतजार एक ऐसी शख्सियत से मिलने का इस कार्यक्रम में, जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत होकर उन्होंने अपना जीवन सेना के लिए समर्पित कर दिया और साथ ही साथ हम सबके लिए अनुभवों की एक मिसाल बन गए। और इस कड़ी में आज हमारे साथ हमारी अतिथि हैं भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स के रिटायर्ड विंग कमांडर प्रतीक्षा ठाकरे, जिन्होंने लगभग 1.5 दशक तक भारतीय वायुसेना में अपनी सेवा दी है। रिटायरमेंट के बाद वे कॉरपोरेट वर्ल्ड में काम कर रही हैं, साथ ही साइबर सुरक्षा इंफोसेक से जुड़े कार्यों में भी आप योगदान दे रही हैं। प्रतीक्षा ठाकरे का नाम विशेष रूप से उन महिला सैन्य अधिकारियों में लिया जाता है जिन्होंने भारतीय वायुसेना में नेतृत्व, अनुशासन और तकनीकी दक्षता का उदाहरण प्रस्तुत किया है। आपकी विशिष्टता और विशेषज्ञता रक्षा सेवाओं, नेतृत्व, सुरक्षा और तकनीकी प्रबंधन में रही है। हम आपका स्वागत करते हैं।

0: प्रतीक्षा जी, और संदेश टू सोल्जर्स में आज आपने समय निकाल कर जो यहाँ शिरकत की इस कार्यक्रम में, उसके लिए आपके हृदय से आभारी हैं।
1: धन्यवाद विनीता जी, मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस मंच का हिस्सा बनना वास्तव में मेरे लिए सम्मान और गर्व की बात है, जहाँ मुझे पूरे भारत के सैनिकों तक अपना संदेश पहुँचाने का अवसर मिल रहा है।
0: जी शुक्रिया, इसलिए भी कि आपने आकाशवाणी में ना केवल आकर हम लोगों को अनुभवों का खजाना सौंपा है, बल्कि इसलिए भी कि आप इसके लिए हमारे ही आभार जता रही हैं।
2: तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और एक बात मैं कार्यक्रम शुरू करने से पहले ही आपसे कहना चाहती हूँ, यू आर लुकिंग सो ब्यूटिफुल, आप इतनी यंग हैं, और ऐसे में जब हम आपके साथ रिटायर्ड शब्द इस्तेमाल करते हैं तो वो थोड़ा सा समझ नहीं आता, क्योंकि रिटायर्ड तो आमतौर पे व्यक्ति 60 साल की उम्र के बाद होता है, तो आप इतनी छोटी सी उम्र में रिटायर्ड कैसे हैं?
1: बात आपकी सही है, क्योंकि मैं भी रिटायर्ड ये शब्द थोड़े से बुजुर्ग लोगों के साथ एसोसिएट करती थी, बट क्योंकि मैंने अपने लाइफ के प्राइम 14 साल एयरफोर्स को समर्पित किए हैं और उसके बाद मैं सेवानिवृत्त हुई हूँ, इसी वजह से वो रिटायर्ड शब्द है, और वो मेरे लिए है पक्का, और डेफिनेटली इट इज नॉट फॉर द रैंक बट इट इज फॉर मी फ्रॉम द एयरफोर्स।
0: That's so so beautiful. अच्छा एक बात बताएं, आपको कैसे लगा कि आपको एयरफोर्स में आना है, कौन था इसके पीछे या किससे आपको प्रेरणा मिली?
1: विनीता जी, मैं आपको बताना चाहूंगी कि इसके पीछे कोई व्यक्ति नहीं है, बट ये ऐसी एक चीज है जो मुझे विरासत में मिली है।
0: जी,
1: क्योंकि अगर मैं शुरुआत करूं तो मेरे दादाजी स्वतंत्र सेनानी थे जो भारत की आजादी के लिए लड़े। उसके बाद परंपरा बढ़ाई गई मेरे फादर ने, जो इंडियन आर्मी में भर्ती हुए और 25 साल की सेवा जो उन्होंने देश के लिए की, उसके बाद वो रिटायर्ड हुए एज कर्नल। और परिवार की मैं तीसरी पीढ़ी हूँ जिसने सिर्फ यूनिफॉर्म वर्दी पहनने का सपना ही नहीं देखा, बल्कि उसको जीने का सपना भी देखा।
0: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इसीलिए दोस्तों मैंने आप सभी से ये बात कही कि आज की हमारी अतिथि अनुभवों का खजाना है, और इतना कुछ है इनके पास हमें बताने के लिए, क्योंकि आपके परिवार में प्रारंभ से ही फोर्सेस के लिए बहुत रुझान रहा है ना। तो भारतीय वायुसेना में यानी इंडियन एयरफोर्स में जब आप आई तो वो एक्सपीरियंस आपके लिए कैसा था?
1: अच्छा विनीता जी, मैं थोड़ा सा आपको पीछे ले जाऊंगी
0: जी,
1: मेरे बचपन की तरफ, जहाँ पे मेरा सपना तो डॉक्टर बनने का था। जैसे उस टाइम पे जब मैं छोटी थी उस टाइम मेजरली दो प्रोफेशन ज्यादा नामचीन हुआ करते थे, एक था डॉक्टर दूसरा था इंजीनियर, की ये दो प्रोफेशन है तो आपने जिंदगी में कुछ पा लिया है, नहीं तो नहीं। जो मैं अभी सोचती हूँ ऐसा कुछ नहीं है, ये सब गलत बातें हैं, और भी बहुत अच्छे प्रोफेशन हैं, बट हालांकि उस टाइम मेरा सपना था डॉक्टर बनने का। और जैसे मैंने आपको बताया, मैंने घर पे एक ही प्रोफेशन देखा था, वो था देश सेवा का
0: जी।
1: सो तब मैंने ठाना कि अच्छा डॉक्टर बनूंगी तो डिफेंस फोर्सेस में ही डॉक्टर बनूंगी, ताकि मेरे दो सपने पूरे हो सके, एक तो देश की सेवा और देश के नागरिकों की सेवा। तो मैं पढ़ाई में अच्छी थी, पढ़ाई करती चली गई, अच्छा किया, बायो में मेरा काफी रुझान था, काफी इंटरेस्ट था, तो बायो लिया। जब मैंने प्री मेडिकल एग्जाम दिया तब मेरे उतने अच्छे नंबर नहीं आए कि मैं MBBS कर पाऊं, हालांकि इतने नंबर थे कि मुझे डेंटल में एडमिशन मिल सकता था, लेकिन उस टाइम ऐसा लगा कि नहीं, करना है तो MBBS ही करना है। तो जब मैं कॉलेज में एंटर होने वाली थी, उस टाइम मेरा 12th होने के बाद, मेरे फादर तब तक रिटायर्ड हो चुके थे और वो एक इंजीनियरिंग कॉलेज में नागपुर यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे थे।
0: अच्छा,
1: हालांकि उन्होंने और मेरी मम्मी ने कभी भी मेरे ऊपर किसी प्रकार का दबाव नहीं डाला कि तुमने ये करना है या वो प्रोफेशन चुनना है, बट मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं मेरे फादर के मन में था कि मेरी बेटी भी इंजीनियर बने उन्हीं की तरह। तो उन्होंने देखा कि मैं पढ़ाई में अच्छी हूं, तो उन्होंने बोला मेडिकल के तरफ अगर नहीं हुआ तो क्या हुआ, इंजीनियरिंग कर लो, ये भी एक अच्छा प्रोफेशन है, वहां से भी तुम कुछ ना कुछ अच्छा तो कर ही लोगी, इतना विश्वास उनको मेरे ऊपर था। सो वहां से शुरुआत हुई कि ठीक है, इंजीनियरिंग की एग्जाम दी, मुझे एडमिशन मिला नागपुर यूनिवर्सिटी के वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज में एडमिशन मिला, वन ऑफ द बेस्ट ब्रांच उस टाइम की इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में एडमिशन ली, एंड फिर मैंने अपना करियर स्टार्ट किया इन इंजीनियरिंग। तब तक लेकिन कहीं ना कहीं ये लगता था कि आधा

0: सपना तो मेरा रह गया है जो है डॉक्टर बनने का,
1: हाँ।
0: लेकिन जो बचा आधा था शायद वो भी कहीं छूटता नजर आ रहा था मुझे। लेकिन एक और बात बताना चाहूंगी विनीता जी कि ये हम जो कहते हैं कि हमने सपना छोड़ दिया, वो बात नहीं होती, सपना हमें नहीं छोड़ता, ये बात होती है।
1: सो ब्यूटीफुल, कितनी प्यारी बात कही है आपने।
0: सो कहीं ना कहीं वो सपना मुझे ही चेस कर रहा था कि नहीं, तुम अगर डॉक्टर नहीं बनी हो तो डिफेंस फोर्सेस में तो पक्का जाओगी। सो दैट वॉज द पॉइंट जब मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली जहां पे एयरफोर्स इंजीनियरिंग कॉलेज में नागपुर में रिक्रूटमेंट के लिए आए। मेरे कुछ फ्रेंड्स भी जा रहे थे तो मैं भी गई उनके साथ कि चलो जाते हैं, क्योंकि थर्ड ईयर तक हमारा प्लेसमेंट हो चुका था वन ऑफ द बेस्ट आईटी कंपनीज में। सो लाइफ तो सेट थी। एज अ यंग पर्सन मुझे लगता था लाइफ में और क्या चाहिए, आपका ग्रेजुएशन हो गया है, आपकी नौकरी लग चुकी है, पैसे कमाना है एंड लाइफ में मजे ही मजे हैं, ये होता था उस टाइम। एंड अभी भी काफी यंग लोगों का दिमाग में माइंडसेट ये होता है, बट स्टिल जैसे मैंने आपको बताया कि वो सपना था मेरे मन में कि वर्दी तो पहननी है, यूनिफॉर्म वॉज माई ड्रीम। सो वैसे करके देन रिक्रूटमेंट के लिए हम गए, एयरफोर्स ने एग्जाम्स कंडक्ट की, उस टाइम फास्ट ट्रैक एग्जाम एक होता था, उसमें एग्जाम हुई, क्लियर किया एंड द नेक्स्ट थिंग जो मेरे ध्यान में है, मेरे जहन में है कि हम मैसूर पहुंचे, मैं और मेरे फ्रेंड्स SSB देने के लिए। और आपको एक और चीज बताना चाहूंगी, SSB के जो वो 5 दिन होते हैं, मतलब वो लाइफ के आर द बेस्ट डेज, दैट इज द गोल्डन पीरियड। और एक संदेश जो मैं अभी देना चाहूंगी देश के सब यंग बच्चों को कि रिजल्ट कुछ भी हो लेकिन यू शुड एंजॉय, यू शुड एक्सपीरियंस दोज 5 डेज ऑफ SSB। वो आपको आपके खुद के बारे में इतना सिखाता है जो और कहीं आपको सीखने नहीं मिलेगा।
1: अमेजिंग। और ना सिर्फ सीखने को बहुत कुछ मिलता है बल्कि ये आपका वो सपना पूरा करता है कि आपके तन पर यूनिफॉर्म हो, मन में जज्बा हो और हमेशा आगे बढ़ने के लिए कदम उठें।
0: जी बिल्कुल।
1: और साथ के साथ आपके कदम तो जमीन पर नहीं, आपके कदम तो आसमान के लिए, है ना। तो आपने डिफेंस फोर्सेस ज्वाइन करने का सपना ही नहीं देखा बल्कि इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन भी की। इसके आगे की यात्रा की बात आपसे बिल्कुल करेंगे, लेकिन उससे पहले आपके इस आसमानी यात्रा की शुरुआत के लिए ये गाना विशेष रूप से आपके लिए समर्पित है।

0: नमस्कार दोस्तों, संदेश टू सोल्जर्स में स्वागत है एक बार फिर से आपका। मैं हूं आपके साथ विनीता बेदी और आज हमारी गेस्ट हैं इंडियन एयरफोर्स की रिटायर्ड विंग कमांडर प्रतीक्षा ठाकरे। और प्रतीक्षा जी, एक बात जो मैं आपसे जानना चाहती हूं इस गाने के बाद पर्टिकुलरली, कि क्या कभी कोई ऐसा है जिसने ये गाना आपको डेडिकेट किया है या कोई आपके लिए ये गाना गाता है?
1: जी हाँ बिल्कुल, ये है मेरे हस्बैंड जो खुद एयरफोर्स में है।
0: ओह नाइस, अच्छा अच्छा, वो भी एयरफोर्स में?
1: जी हाँ, वो अभी सर्विंग है, विंग कमांडर अभिषेक लूथरा मेरे हस्बैंड है। एंड बिल्कुल ये गाना वो कभी हमारे लिए गाते हैं, कभी हम उनके लिए गाते हैं।
0: बहुत ही बढ़िया। अच्छा एक बात बताएं, आप एयरफोर्स ने आपकी पर्सनालिटी को कैसे बदल दिया, क्या उसका क्या पॉजिटिव या क्या नेगेटिव तो नहीं ही है, पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या आपकी पर्सनालिटी पे आया? क्योंकि आपने अभी तक जो कुछ भी अपने बारे में बताया प्रतीक्षा जी, मुझे लगता है कि आप तो पहले से ही काफी फोकस्ड और डेडिकेटेड रही, तो एयरफोर्स ने भी कुछ आप में बदला?
1: बिल्कुल, लेकिन एयरफोर्स जाने से पहले जो एक एडवाइस मेरे फादर ने मुझे दिया था, मतलब जस्ट मैं निकल रही थी एयरफोर्स अकेडमी डुंडिगल के लिए, और एक चीज जो आखिरी में उन्होंने मुझे जाते वक्त कही थी कि बेटा ये वर्दी है, ये कोई कपड़ा नहीं है, इसकी इज्जत करना, बिकॉज ये तुम्हें सम्मान और एक पहचान देगी। और उस लास्ट थॉट्स, लास्ट सेंटेंसेस के बाद जब मैं एयरफोर्स अकेडमी पहुंची, सो एक वो अलग दुनिया थी। जैसे मैंने आपको बताया मेरे फादर आर्मी में थे, लेकिन उन्होंने कभी भी मुझे ये नहीं बताया कि ट्रेनिंग में होता क्या है। और जब मैंने उनको वापस जाके पूछा कि आपने मुझे बताया क्यों नहीं, तो उन्होंने बोला वो एक्सपीरियंस तुम्हारा खुद का था और मैं चाहता था कि वो एक्सपीरियंस तुम लो और उसको अपनी तरीके से ढालो, ना कि कोई पहले से दिमाग में कोई चीज लेके चलना, वो ठीक बात नहीं है।
0: दैट्स सो अमेजिंग। इनफैक्ट मुझे लगता है कि आपने ये जो बात कही है ना, ये उन सभी फादर्स को सुनना चाहिए जो अपने बच्चों के स्कूल बैग्स अपने कंधों में रखकर उनको बस स्टैंड पर छोड़ने के लिए आते हैं। दे शुड लर्न कि प्रतीक्षा जी के फादर ने कहा था कि तुम्हें अपनी ट्रेनिंग खुद अपनी नजरों से अपने एक्सपीरियंस के साथ समझनी है, वही तुम्हारे काम आएगी। ब्यूटिफुल, बहुत ही खूबसूरत बात। अच्छा अब ट्रेनिंग की बात आपने कही है, तो ट्रेनिंग के दौरान सबसे कठिन चुनौती, सबसे मुश्किल घड़ी आपके लिए कौन सी रही?
1: वैसे तो मुझे बताना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर एज एक्स फौजी अगर मैं ये बोलूं तो कुछ लोग मेरे ऊपर हंसेंगे, लेकिन ट्रेनिंग के टाइम जो सबसे मुश्किल चीज थी मेरे लिए थी वो थी रनिंग।
0: रनिंग?
1: जी हाँ, ऑल्दो मैं स्पोर्ट्स पर्सन रह चुकी हूँ, मैं वॉलीबॉल खेलती थी, मैं बास्केटबॉल खेलती थी, लेकिन जो अकेडमी में जिस लेवल की रनिंग होती है, क्रॉस कंट्री होती है, उससे मैं डर जाती थी शुरुआत में। बहरहाल ट्रेनिंग होती ही इसके लिए कि आपको पहले ट्रेनिंग में मेंटली टफ बनाया जाता है, उसके बाद आप फिजिकली टफ तो बन ही जाते हो। सो वो एक शुरुआत की चुनौती थी जो मैंने कर ली थी, वो पार कर ली थी मैंने। लेकिन हाँ जी, अगर आप पूछेंगे तो एक रनिंग एक मेरा बहुत बड़ा खौफ था।
0: इसीलिए आपने जमीन छोड़कर आसमान चुना।
1: हो सकता है।
0: अच्छा एक बात और बताइए, विंग कमांडर बनने की जो आपकी जर्नी थी, उसमें कौन कौन से इम्पोर्टेंट हम कह सकते हैं कि माइलस्टोन्स रहे आपके लिए?
1: जी विंग कमांडर की जर्नी बिल्कुल आपको बताना चाहूंगी, बिल्कुल भी आसान नहीं है। डिफेंस फोर्सेस में जाना ही आसान नहीं होता है, क्योंकि मैं चाहती हूँ ये एक और चीज बताना देश के सैनिकों को और जो एस्पायरिंग बच्चे हैं जो आर्म फोर्सेस ज्वाइन करना चाहते हैं।

0: कि डिफेंस केवल एक नौकरी नहीं है, ये एक जीवन शैली है, इट्स अ वे ऑफ लाइफ. तो आपको पूरी तरह अपने में ढालनी पड़ती है. बिल्कुल आपको आपकी पास्ट लाइफ, जो आप एयरफोर्स ज्वाइन करने से पहले जो चल रही थी, जो आपको लाइफ, आपको पूरी तरह छोड़नी पड़ती है. क्योंकि एक वे ऑफ लाइफ का कहने का मतलब ही ये है कि एक डिसिप्लिन लाना, डिसिप्लिन, इंटेग्रिटी एंड कमिटमेंट जो आपको आपके काम की तरफ देनी पड़ती है. तो बहुत सारे उतार चढ़ाव आए हैं उस जर्नी में टू बिकम अ विंग कमांडर, स्टार्टिंग विथ पोस्टिंग्स. आपको अलग अलग जगह पोस्टिंग जाना होता है, आपके फ्रेंड्स छूट जाते हैं और आपको एक्सरसाइजेस में पार्टिसिपेट करना होता है, आपको बंदूक चलानी होती है, आपको फिजिकल फिट रहना पड़ता है. तो सारी चीजें आपके लाइफ में एक साथ हो रही होती है. सो दैट इज, दैट कम्स फ्रॉम योर मेंटल फिटनेस एज वेल एज फिजिकल फिटनेस. तो ये सारी चीजें आपको ट्रेनिंग में ही आपको तैयार किया जाता है ताकि आगे के लाइफ में आप बिल्कुल प्रिपेयर्ड रहें.
1: अच्छा प्रतीक्षा जी, एक बात और बताइए, हम डिफेंस फोर्सेस की बात कर रहे हैं, डिफेंस फोर्सेस में डिसिप्लिन और टाइम मैनेजमेंट की जो इम्पोर्टेंस है आपकी नजर में क्या है? वैसे तो मुझे लगता है कि हमारी सबकी जिंदगी में, चाहे वो फोर्सेस में हो या सिविलियंस हो, टाइम मैनेजमेंट और डिसिप्लिन तो सबकी लाइफ में होना ही चाहिए. लेकिन जब हम फोर्सेस की बात करते हैं तब हम इसे बहुत हाईलाइटेड रूप में देखते हैं, तो एज पर यू इसकी क्या इम्पोर्टेंस है?
0: जी देखिए, डिसिप्लिन, आपने जैसा बोला कि डिसिप्लिन हर एक के लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है. विदाउट डिसिप्लिन आप, मुझे नहीं लगता आप कभी अपने लाइफ में सक्सेसफुल हो सकते हैं. एंड सक्सेस का पैरामीटर हर एक के लाइफ का अलग होता है. सो डिसिप्लिन आर्म फोर्सेस में इसलिए भी जरूरी है क्योंकि देखिए आर्म फोर्सेस बना ही इसलिए ताकि वॉर टाइम में हम काम कर सके और देश को प्रोटेक्ट कर सके. सो उसके लिए पहला स्टेप ही, पहला कदम ही डिसिप्लिन है. अगर आप अपने काम में, आप अपने लाइफ में हर एक चीज को लेके डिसिप्लिन है तो आपका टाइम मैनेजमेंट भी आएगा. और टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है. सेकंड सेकंड का भी बहुत फर्क पड़ता है. अगर आप वॉर टाइम सिनेरियो देखेंगे तो हर एक सेकंड का बहुत बहुत मेजर इंपॉर्टेंस होता है, स्टार्टिंग फ्रॉम कम्युनिकेशन, ऑन ग्राउंड, इन एयर, फ्लाइंग, एवरीथिंग. हर एक जगह पे टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है. सो इसीलिए जैसे आपने कहा बहुत हाईलाइट किया जाता है क्योंकि डिफेंस फोर्सेस चलती ही इन दो चक्कों पे है, वो है डिसिप्लिन और टाइम मैनेजमेंट. कोई भी एक चीज अगर खराब हुई तो आपकी गाड़ी पटरी से नीचे उतर जाएगी.
1: बिल्कुल ठीक कहा आपने. अच्छा, आप उन खास लोगों में से हैं, या कहना चाहिए कि उन महिला सैन्य अधिकारियों में से हैं जिन्होंने इंडियन एयरफोर्स में लीडरशिप, डिसिप्लिन और टेक्निकल एक्सीलेंस का एग्जाम्पल दिया है. तो इस नजरिए से मैं आपसे जानना चाहती हूं कि आपने लीडरशिप का सबसे बड़ा पार्ट खुद क्या सीखा है, मतलब आपकी नजर में लीडरशिप की कौन सा ऐसा लेसन है जिसने आपकी पर्सनालिटी को वो बनाया है जो आज आप हैं और बड़े फक्र से सब आपका नाम लेते हैं.
0: जी, लीडरशिप में मैं तीन चीजें आपको बताना चाहूंगी. एक है पेशेंस एंड पेशेंटली लिसनिंग, खुद धैर्य रखना और धैर्य के साथ सामने वाले की बात सुनना, ये बहुत जरूरी है. दूसरी बात आती है ऑलवेज लीड बाय एग्जाम्पल. आप अपनी टीम को अगर आप बोल रहे हैं कुछ करने के लिए, पहले आपको करके दिखाना पड़ेगा. अगर आप बोल रहे इंटेग्रिटी होनी चाहिए तो आपको इंटेग्रिटी दिखानी होगी, आपको एथिकली एक्ट करना पड़ेगा. वो होता है लीड बाय एग्जांपल. और तीसरी चीज है आपकी टीम. आपकी टीम आपकी सबसे बड़ी ताकत होती है, तो आपकी टीम का ख्याल रखना ये आपकी जिम्मेदारी होती है. दैट इज व्हाट इज लीडरशिप फॉर मी.
1: अमेजिंग, इतनी खूबसूरत डेफिनेशन आपने लीडरशिप की दी है. तो मुझे लगता है कि आप एक अच्छी लीडर ना सिर्फ डिफेंस फोर्सेस में या इंडियन एयरफोर्स में रही हैं, बल्कि अब जो आप कॉरपोरेट वर्ल्ड में हैं, आपने वहां भी लीडरशिप की एक मिसाल कायम की होगी, मैं ऐसा मान के चलती हूं. तो ये तो खैर बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताई आपने, ये कहकर कि आपकी लाइफ में डिसिप्लिन की क्या इम्पोर्टेंस रही है. बट अदरवाइज अगर आपसे ये कहा जाए कि डिफेंस की फील्ड में महिलाओं की भूमिका को आप कैसे देखती हैं, ये बात मैं आपसे इसलिए पूछ रही हूं कि ना सिर्फ एक महिला होने का गौरव आप रखती हैं बल्कि एक बेहतरीन ऑफिसर के रूप में आप

0: जानी जाती हैं, आप रिटायर्ड हुई हैं, लेकिन आज भी लोग आपका नाम बहुत सम्मान से लेते हैं, तो आपको क्या लगता है कि महिलाओं की क्या भूमिका है इस फील्ड में, रक्षा सेवाओं में खासकर?
1: जी देखिए, महिला या मर्द, मुझे लगता है दोनों में कोई फर्क नहीं है। फॉर दैट मैटर इवन डिफेंस फोर्सेस में कोई जेंडर बायस नहीं है जी, क्योंकि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो अगर मैं आपको मेरी ट्रेनिंग के डेज में लेके जाऊं, तो ऐसी कोई चीज नहीं है जो एक महिला होके मैंने नहीं की है, या किसी और मेल ऑफिसर ने हमारे साथ जो थे ट्रेनिंग में उन्होंने ज्यादा की है या हमने कम की है। तो अगर ट्रेनिंग में भेदभाव नहीं है तो आगे भी कोई भेदभाव नहीं होता है। सो एज ए वुमन अगर आप मुझे पूछे, तो बहुत जरूरी है कि आप आपके मेल काउंटर पार्ट्स के साथ कंधे से कंधा मिला के चले। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक जो बंधन होता है वो हमारे दिमाग में होता है कि पता नहीं मैं कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी। वो जो एक सेल्फ डाउट होता है वो हमारे अंदर होता है, ना कि बाहर। बाहर सबको दुनिया एक समान देख रही है, और स्पेशली डिफेंस फोर्सेस सबको एक समान ही देख रही है। तो एज अ वुमेन मैं बस इतना बताना चाहूंगी कि आपने अपने ऊपर सेल्फ डाउट नहीं करना चाहिए, आप उतनी ही केपेबल हो जितना एक मेल ऑफिसर होते हैं।
0: जी बेहतरीन, मुझे लगता है कि कोई जेंडर बायस एटलीस्ट डिफेंस फोर्सेस में नहीं है, ये बात आपकी इस स्टेटमेंट ने तो साबित कर ही दी है। तो अगर किसी के मन में ये वहम हो कि औरत है ये कैसे कर पाएगी, या महिलाएं कैसे इस फील्ड में जा सकती हैं, या आर्मी नेवी एयरफोर्स ये औरतों के लिए नहीं है, उन सब की बात का एक बहुत ही करारा जवाब आपने अपनी इस स्टेटमेंट के द्वारा दिया है। हैट्स ऑफ टू यू, आई रियली गिव यू अप्लॉज फॉर दिस आंसर। और मुझे लगता है कि जिस तरह आपने इंडियन एयरफोर्स को अपनी भूमिका से बहुत गौरवान्वित किया है, तो ये बादलों का गाना तो आपके लिए बनता है।

0: संदेश टू सोल्जर सुन रहे हैं आप आकाशवाणी रेनबो पर। और आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं इंडियन एयरफोर्स की रिटायर्ड विंग कमांडर प्रतीक्षा ठाकरे। और दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त विनीता बेदी। मैं बहुत सारी बातें कर रही हूं प्रतीक्षा जी से, बहुत कुछ अच्छा जानने को भी मिल रहा है और काफी कुछ आपके साथ भी शेयर कर रहे हैं। तो एक बात जो मैं आप सबकी तरफ से प्रतीक्षा जी से पूछना चाहती हूं वो ये है कि आपके लिए अब तक अगर पूछा जाए तो आपकी जिंदगी का सबसे गौरव भरा पल कौन सा था, आपका प्राउडेस्ट मोमेंट ऐसा कौन सा था जिस पर आपको लगे कि ये वो पल है जो मैं सपना देख रही थी जिसका।
1: विनीता जी, वैसे तो काफी है। पहला तो था और अभी भी है, जो जिस दिन मैंने यूनिफॉर्म पहली बार पहनी वो पक्का मेरा एक प्राउडेस्ट मोमेंट था। बट उसके बाद मैं कहना चाहूंगी कि हर सैनिक के जीवन में एक ऐसा पल होता है जो सिर्फ याद नहीं रहता लेकिन उनके रूह में बस जाता है। और मेरे जीवन में एक ऐसा पल आया था 26 जनवरी 2015 में। 26 जनवरी 2015 में जो आरडी परेड हुई थी,
0: रिपब्लिक
1: डे परेड,
0: हां जी,
1: उसमें आर्मी नेवी एंड एयरफोर्स का इंडिविजुअल ऑल वुमेन कंटिंजेंट बना था। और मैं उस कंटिंजेंट का पार्ट थी एयरफोर्स की तरफ से।
0: ओह वंडरफुल।
1: अब आप सोचिए, एक लड़की जिसका बचपन का सपना था यूनिफॉर्म पहनना, देश सेवा करना, अब वो देश के सबसे बड़े मंच पे खड़ी थी, वो था राजपथ। और पहले तो उसका सिलेक्शन हुआ, पहले तो 2 महीने की उसकी पूरी ट्रेनिंग होती है स्टार्टिंग फ्रॉम दिसंबर, क्योंकि जनवरी एंड में होता है, 26 जनवरी को होता है पूरा परेड। तो पहले तो जैसे मैंने आपको बताया वो मेंटल टफनेस से स्टार्ट होती है, फिर फिजिकल टफनेस पे जाती है, बिकॉज वो आसान नहीं होता है। वो परेड होती है लगभग 14 किलोमीटर लंबी परेड, जो आपको पूरे कंटिंजेंट के साथ ताल में ताल मिला के रिदम में आपको मार्च करते हुए जाना होता है
0: पूरे 14 किलोमीटर।
1: बिल्कुल। तो वो सिर्फ एक मार्च नहीं होती, वो एक गौरव होता है और एक अनुशासन होता है कि आप आपकी पूरी टीम के साथ कंधे से कंधा और कदम से कदम मिला के चले। और वो भारत की एक शक्ति का प्रदर्शन होता है पूरे विश्व के सामने।
0: ट्रू।
1: सो जब हम राजपथ पे चले तब मार्च किया कंटिंजेंट के साथ, और फिर वो पल आया जहां हमने भारत के सुप्रीम कमांडर जो राष्ट्रपति थे उस समय के, श्री प्रणब मुखर्जी जी, और उनके साथ हमारे प्रधानमंत्री जी थे श्री नरेंद्र मोदी जी, और भारत के इतिहास में पहली बार अमेरिका के प्रेसिडेंट आए थे इंडिया में एज चीफ गेस्ट फॉर दैट ईयर, मिस्टर बराक ओबामा। सो एक वो जो सलामी थी
0: जी,
1: वो सिर्फ हमारी ट्रेनिंग नहीं थी, वो एक हर लड़की की मेहनत थी, हर महिला का सपना था, और उसके साथ हमको पता था पूरे देश का विश्वास है हमारे साथ। बट आज भी मैं उस पल को याद करती हूँ तो रोंगटे खड़े हो जाते, क्योंकि वो एक सिर्फ पल नहीं था बट वो एक हर महिला, हर लड़की, इस देश की हर लड़की का एक वो सपना था कि उस राजपथ पे मैं चलूं। क्योंकि उस दिन मैंने एक और बात सीखी थी कि सीमाएं बाहर नहीं होती, जैसे मैंने आपको पहले बताया, वो हमारे दिमाग में होती है। और जब आप वर्दी पहनते हैं

0: तो आप खुद को प्रूव नहीं करते, लेकिन आप आने वाली पीढ़ियों के लिए रास्ता बनाते हैं। तो मुझे लगा वो उस तरफ हमने एक छोटा सा योगदान दिया था।
1: इतनी सुंदर बात आपने कही है कि आने वाली पीढ़ियों के लिए आप एक मिसाल बनते हैं, आप उनके लिए एक रास्ता तैयार करते हैं जिस पर चलकर वो आपसे भी आगे निकल पाएं, आपके सपनों को और अधिक बुलंदियों पे पहुंचा सके। बहुत ही खूबसूरत बात और बहुत सुंदर विचार है आपके। प्रतीक्षा जी, एक बात और बताइए, ये जब आपने अपना अनुभव बताया रिपब्लिक डे परेड पर, तो उस वक्त जब आप राजपथ पर थी, आपको अपने बचपन के उस सपने को पूरा होते देखने की खुशी तो होगी ही, साथ में ये भी फीलिंग थी कि आपने अपने पापा को प्राउड किया है आज।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल। और मैं फिर से उस चीज पे जाना चाहूंगी जहां मैंने बोला कि आप सपना छोड़ सकते हो लेकिन सपना आपको नहीं छोड़ता है।
1: हाँ, कितनी
0: क्योंकि
1: सुंदर बात।
0: एक और चीज मैं बताती हूँ आपको, जब मैं स्कूल में थी तब मैं एनसीसी में थी, और तब भी मुझे मौका मिला था रिपब्लिक डे परेड पे जाने का,
1: हाँ
0: लेकिन तब दिमाग में था कि मेरी स्टडीज मिस हो जाएंगी, मेरी पढ़ाई मिस हो जाएगी, क्योंकि तब मैं 9th स्टैंडर्ड में थी। तब मैंने दिल पे पत्थर रख के अपनी मैम को बोला था कि मैम मैं नहीं जाऊंगी क्योंकि मेरी पढ़ाई मिस हो जाएगी। तो वो सपना मेरा शायद अधूरा रह गया था जो एयरफोर्स ने पूरा किया है।
1: हाउ स्वीट, कितनी प्यारी बात है ये कि आपने बचपन के सपने को बड़े होकर जिया, और ना सिर्फ जिया बल्कि दूसरों के लिए एक मिसाल बना दिया। बहुत ही सुंदर। अच्छा प्रतीक्षा जी, एक बात बताइए, आप तो इंडियन एयरफोर्स का हिस्सा रही हैं, तो बहुत थ्रिल माना जाता है इस डिफेंस फोर्स को, तो आपका भी कोई थ्रिलिंग एक्सपीरियंस रहा होगा जो आज आप हमारे साथ बांटना चाहेंगी?
0: जी बिल्कुल। और थ्रिलिंग तो डेफिनेटली है, एयरफोर्स इज फुल ऑफ थ्रिल। और उस थ्रिल में मैंने एक जो काम किया था वो था पैरा जंपिंग का।
1: ओ
0: पैरा
1: वाह।
0: जंपिंग एक ऐसा अनुभव रहा है मेरी लाइफ में जिसने मुझे बाहर से तो बदला ही है, जैसे एयरफोर्स ने मुझे बाहर से बदला है, लेकिन पैरा जंपिंग ने मुझे अंदर से बदल दिया।
1: क्या बात है।
0: उसका अनुभव ऐसा रहा कि Mi-17 हेलीकॉप्टर से आपको 5 जंप्स करनी होती है तब आप ट्रेन पैरा जंपर बनते हैं।
1: और ये जो 5 जंप करनी होती हैं, ये किसी टाइम पीरियड में करनी होती हैं?
0: जी ये 2-3 दिन के पीरियड में करनी होती है क्योंकि मॉर्निंग जंप्स होती है, आपकी नाइट जंप्स होती है, सो वो सब मिला के 2-3 दिन में आपको कंप्लीट करनी होती
1: सिर्फ
0: है।
1: 2-3 दिन में?
0: जी हाँ।
1: माय गॉड।
0: और उसके पहले अगेन हर एक चीज की ट्रेनिंग तो होती ही है, तो वो ट्रेनिंग के बाद फिर आप में वो कॉन्फिडेंस आता है कि आप जंप करें। और वो लगभग 3,000 से 5,000 फीट की ऊंचाई से जंप की जाती है। और मैं ये भी कहना चाहूंगी कि वो सिर्फ एक फिजिकल एक्ट नहीं होता है, वो अपने अंदर का जो डर है वो निकालने के लिए होता है। और आपको मैं एक और चीज बताऊंगी, उस टाइम तक मुझे ऊंचाई का डर था, थोड़ा सा तो डर रहता था मुझे। और जब मेरी पहली जंप थी मैं इतनी एक्साइटेड थी उस पहले जंप के लिए, क्योंकि वो होता है ना, इट्स एन अननोन टेरिटरी, आपको पता नहीं है क्या होने वाला है। तो पहली जंप तो बहुत मजेदार थी और इतना खूबसूरत एक्सपीरियंस, इतना खूबसूरत अनुभव था वो कि आपको पता नहीं होता आगे क्या होने वाला है, बस एक एड्रेनलिन रश होता है, एक एक्साइटमेंट होती है।
1: जी
0: क्योंकि जैसे कहते हैं कभी कभी अनजानी चीज भी डराती नहीं है लेकिन आपको उड़ना सिखाती है।
1: हाँ
0: लेकिन दूसरा जंप जो था वो थोड़ा अलग था क्योंकि तब तक मुझे पता चल चुका था कि पहले जंप में हुआ क्या था। तो दूसरी जंप में मुझे ऑनेस्टली बताओ डर लगा था और मुझे ऐसा लगा कि मैं किसी सुसाइड मिशन पे निकली हूं।
1: ओ माय गॉड।
0: बट तीसरे जंप के बाद मैं बहुत कंफर्टेबल हो गई थी और एक मैजिकल फीलिंग थी उस टाइम पे, क्योंकि आप जब जंप कर जाते हो आप वहां पे होते हो जहां पे और कोई शोर नहीं है, कोई नहीं है आपके आसपास, सिर्फ आप हो, चारों तरफ सन्नाटा है और आपकी अपनी सांस से आप सुन पा रहे हो,
1: इनर स्ट्रेंथ
0: इनर स्ट्रेंथ। वो एक ऐसा पल है जब आपको लगता है कि एक पक्षी होना कैसे लगता है, दैट इज एक्चुअल फ्रीडम। एंड वो एक पॉइंट होता है जहां आप खुद से कनेक्ट करते हो।
1: कितना सुंदर एक्सपीरियंस रहा होगा आपका, और सुनकर ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं अगर आप देख सकें तो मतलब ऐसा जब आप ये अभी एक्सप्लेन कर रही थी, ये बता रही थी, तो ऐसा लग रहा था जैसे हम आपके साथ खड़े हुए हैं और आपके साथ ही जंप करने के लिए नीचे झांक रहे हैं और भगवान को याद कर रहे हैं। तो ये आपका डिस्क्रिप्शन तो बहुत ही खूबसूरत है।

0: आई मस्ट से कि आप बताती बहुत अच्छा है अपने अनुभव। और एक और बात बताइए, देखिए अभी आपने अभी तक जो भी बात बताई वो आपकी सक्सेस स्टोरीज थी
1: जी।
0: क्या ऐसा कभी हुआ कि आपको किसी असफलता का सामना करना पड़ा हो? और अगर ऐसा हुआ तो फेलियर का डर और फेलियर से उबरना, मतलब उस डर को पीछे छोड़ना या उस डर से बाहर निकलना, ये आपका तरीका क्या है इसके लिए?
1: एक कहीं मैंने ये बड़ी अच्छी चीज पढ़ी थी कि असफलता अंत नहीं होता, ये बस एक नया रास्ता दिखाना और उसका दिखाने का तरीका होता है
0: जी।
1: सो फेलियर्स तो बिल्कुल आए हैं लाइफ में, बहुत फेलियर्स है और वो जिंदगी ही क्या जहां पे फेलियर्स ना हो।
0: हाँ,
1: लेकिन आपको लाइफ सिखाती है कि आप गिरिए, आप उठिए, आप अपने कपड़े झाड़िए, साफ कीजिए और आगे बढ़िए, ये जिंदगी है।
0: बहुत सुंदर।
1: तो आप जैसे पूछ रही हैं कि फेलियर्स काफी आए हैं, लेकिन हाँ इनिशियली एक जो सेटबैक लगता है आपको, एक थोड़ा सा धक्का सा लगता है, आपने उस पीरियड से जल्दी उबर जाना चाहिए। अगर आप उस फेज में ज्यादा दिन तक रहे या ज्यादा टाइम तक रहे, फिर वो फेलियर आपको खा जाएगा। एंड वही मेंटल टफनेस डिफेंस फोर्सेस हर एक इंसान को सिखाती है, रादर डिफेंस फोर्सेस तो सिखाती है, लेकिन एक संदेश जो मैं सबको देना चाहूंगी कि ये आपने खुद में भी डेवलप करना चाहिए कि फेलियर्स तो आएंगे, जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं सबके लाइफ में फेलियर्स तो आए हैं, लेकिन कितनी जल्दी आप उन फेलियर्स से उबर के आगे बढ़ना सीख लेते हैं वो एक्चुअल लाइफ है।
0: बिल्कुल, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। मुझे लगता है कि जो भी आपके साथ थोड़ी देर भी बैठ जाता होगा ना प्रतीक्षा जी, वो एक बेहतर इंसान बनकर ही बाहर निकलता होगा। आई एम श्योर फॉर दैट, बिकॉज यू हैव सच पॉजिटिव वाइब्स, इतनी पॉजिटिव एनर्जी है आप में जो हर किसी को, जो भी आपके संपर्क में आता है उसको प्रेरित ही करता है, मोटिवेट ही करता है। अच्छा, आपकी इस जब भी हम आपके एक्सपीरियंस की बात करते हैं तो आपकी सेवा काल के दौरान ऐसा कोई आपका एक्सपीरियंस रहा जिसने आपको बहुत इमोशनल किया हो और मोटिवेट किया हो?
1: इमोशनल किया हो
0: जी,
1: ऐसे तो काफी इंसिडेंट हुए हैं, क्योंकि जैसे अगर मैं बोलूंगी कि कुछ चीजें, कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे रहे हैं लाइफ में, मेरे प्रोफेशनल लाइफ में, जो स्टार्ट किए हैं बहुत ज्यादा मेहनत करके, रिसर्च करके, और फिर कहीं ना कहीं उनको आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलता, क्योंकि अलग अलग उसके रीजंस हैं, कुछ भी रीजंस हो सकते हैं, बिकॉज देखिए गवर्नमेंट सर्विस है, आपका बजट होता है, काफी सारी चीजें होती है, तो किसी भी रीजन के वजह से शायद वो आगे ना बढ़े, तो तब बहुत बुरा लगता है, क्योंकि आपने, मतलब मेरे नजरिए से मैंने उसमें अपनी लाइफ झोंक दी थी, लेकिन अगर उसका जो आउटकम मैंने एक्सपेक्ट किया था वो अगर नहीं मिला तो बुरा तो लगता है
0: जी।
1: लेकिन ठीक है, दैट्स अ पार्ट ऑफ योर लाइफ एंड वही सेटबैक्स है जिसको आपको पीछे छोड़ देना है और आगे बढ़ते चले जाना है।
0: इसी बात पर हम एक गाना सुनते हैं जो मोटिवेट भी करता है और इमोशनल भी कर देता है, केसरी फिल्म का गाना जो आपको बेहद पसंद है, संदेश टू सोल्जर्स में आज आप हैं दोस्तों इंडियन एयरफोर्स की रिटायर्ड विंग कमांडर प्रतीक्षा ठाकरे जी के साथ।

0: संदेश टू सोल्जर्स सुन रहे हैं आप मेरे यानी कि विनीता बेदी के साथ, और आज हमारी गेस्ट हैं इंडियन एयरफोर्स की रिटायर्ड विंग कमांडर प्रतीक्षा ठाकरे जी, जिनकी बातें न केवल मोटिवेट करती हैं बल्कि सुनकर ऐसा लग रहा है, ऐसा जज्बा पैदा हो रहा है कि आज ही एयरफोर्स ज्वाइन कर ली जाए। तो मेरे मन में जब ये विचार आ रहे हैं तो मैं सोच रही हूँ कि जितने युवा ये प्रोग्राम सुन रहे होंगे उनके मन में किस तरह के विचार आ रहे होंगे। तो मैं अब आपसे यही पूछना चाहती हूँ प्रतीक्षा जी कि अगर युवा इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो उनको क्या क्या तैयारी करनी चाहिए, पहली बात, और दूसरा एफकैट और सीडीएस जैसी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए आपकी क्या सजेशन है युवाओं के लिए।
1: जी विनीता जी, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, क्योंकि मेरे हिसाब से ये प्रोग्राम, ये मंच उसी के लिए है ताकि हम जो एस्पायरिंग बच्चे हैं जो फौज ज्वाइन करना चाह रहे हैं, हम उनको अच्छा संदेश दें ताकि वो ज्वाइन कर सके। सो तैयारी के हिसाब से देखिए, मैं एक चीज शुरुआत में कहना चाहूंगी कि अगर आपका लक्ष्य नौकरी है तो डिफेंस फोर्सेस आपके लिए सही जगह नहीं है, लेकिन अगर आपका सपना देश सेवा है तो इससे बढ़िया कोई जगह नहीं है। सो तैयारी के हिसाब से पहले तो पक्का आप अपनी पढ़ाई अच्छे से करिए, पढ़ाई में मन लगाइए, क्योंकि आपने ये चीजें सुनी होंगी कि फौज में पढ़ाई नहीं है, जबकि मैं बताना चाहूंगी फौज में बहुत ज्यादा पढ़ाई है, और जो सीनियर ऑफिसर्स भी हैं जो जनरल ब्रिगेडियर बन जाते हैं वो भी पढ़ाई करते रहते हैं। तो पढ़ाई का कोई पीछा नहीं छूटता है अगर आपने फौज ज्वाइन कर लिया, तो ये एक दिमाग में जरूर रखिए कि पढ़ाई तो रहेगी रहेगी। तो आप पहले से खुद को प्रिपेयर कीजिए, पढ़ाई अच्छे से कीजिए, अच्छे से आप अपना ट्वेल्थ पास कीजिए, अच्छे नंबर लाइए, और ग्रेजुएशन के बाद अगर आप ज्वाइन कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप ग्रेजुएशन में भी अच्छे से पढ़ाई कीजिए, क्योंकि आजकल जो अलग अलग तरीके के एग्जाम्स हैं, एफकैट है, जैसे एयरफोर्स के लिए एफकैट है, एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट, और तो इसमें इनिशियली आपके जो ग्रेजुएशन है उसके बेसिस पे एग्जाम होता है। तो अगर आप इंजीनियरिंग ब्रांच में आप एडमिशन ले रहे हैं या इंजीनियरिंग ब्रांच में आप आना चाहते हैं एयरफोर्स में, सो आपके इंजीनियरिंग का जो बैकग्राउंड है उसके बेसिस पे आपको सवाल पूछे जाते हैं, प्लस थोड़ी सी आपकी जनरल नॉलेज जो सामान्य ज्ञान होता है उसके बारे में भी आपने थोड़ी सी तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि आप डिफेंस फोर्सेस में जा रहे हैं एंड उसके रिलेटेड भी एक क्वेश्चन पेपर होता है, एक एग्जाम होता है। तो ऑल इन ऑल पूरी तरीके से आपको पढ़ाई तो करनी ही पड़ेगी, उससे आपका कोई निजात नहीं है। उसके अलावा एक आपको मेंटल टफनेस आपको खुद में

0: करना पड़ेगा, आपको उसकी तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप मेंटली टफ हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इमोशनल लोगों की जगह नहीं है, नहीं, ये बहुत अलग अलग चीजें हैं, आप इमोशनल हो सकते हैं लेकिन आपको मेंटली टफ रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप मेंटली टफ है तभी आप ट्रेनिंग कंप्लीट कर पाएंगे जो मोस्टली फिजिकल होती है, जो इनिशियल 6 महीने की ट्रेनिंग होती है वो ज्यादातर फिजिकल और कम पढ़ाई, और उसके बाद जब आप स्पेशलाइजेशन में जाते हैं तब उसमें ज्यादा पढ़ाई होती है, लेकिन फिजिकल एक्टिविटी आपकी कभी नहीं रुकती। मेरे लास्ट डे तक भी, जहां मैंने 14 साल कंप्लीट किए एयरफोर्स में, आखिरी दिन तक फिजिकल एक्टिविटी चल रही थी, पीटी, परेड, रनिंग, जिससे मैं बहुत डरती थी, वो मैंने आखिरी दम तक किया है एयरफोर्स के और अभी भी करती हूँ, और इसीलिए फिजिकली फिट रहती हूँ। तो ये कुछ प्रिपरेशन है, बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन आपको अगेन डिसिप्लिन रखना पड़ेगा, आपकी लाइफ में आपको डिसिप्लिन रखना पड़ेगा, आपको खुद को कमिट करना पड़ेगा कि हाँ ये मुझे करना है। अगर आपने वो सपना देखा है तो आप वो सपना जिएंगे, क्योंकि सपने वो नहीं होते जो हम सोते हुए देखते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते।
1: कलाम साहब ने ये बात कही
0: जी,
1: बहुत सुंदर। और ये जो आपने एक संदेश दिया है सभी युवाओं को, मुझे लगता है कि हालांकि अभी बहुत कुछ मुझे आपसे बात करनी है, जानना है, लेकिन एक ये छोटा सा गाना मैं जरूर चलाना चाहूंगी आपकी इस बात पर
0: जी,
1: कि जब आप कह रही हैं कि मेंटल फिटनेस के साथ साथ फिजिकल फिटनेस भी बहुत जरूरी है एंड वाइस वर्सा, तो ये एक गीत सभी युवाओं के लिए प्रतीक्षा जी की तरफ से।

संदेश टू सोल्जर्स का लास्ट सेगमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हम सभी के लिए, आपका यहां पर होना प्रतीक्षा जी। दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स की रिटायर्ड विंग कमांडर प्रतीक्षा ठाकरे

0: आज हमसे संदेश टू सोल्जर्स में बात कर रही हैं। बहुत कुछ सजेशंस उन्होंने दी, बहुत कुछ मोटिवेशन दिया, लेकिन एक बात जाने बगैर भला हम आपको कैसे जाने दे सकते हैं। आप स्वयं एक महिला हैं और महिला होने के नाते आपने विशेष प्रयास किए हैं अपनी जगह बनाने के लिए। तो सेना में करियर बनाने के लिए युवतियों के लिए आपका क्या संदेश है? युवाओं को तो सभी संदेश देते हैं, बट विशेष रूप से युवतियों को आप क्या कहना चाहती हैं?
1: युवतियों को मैं एक चीज जो मेरे जहन में बसी है और जो मैंने भी सीखी है, ऐसा नहीं है कि मैं सीख के आई थी, लेकिन मैंने भी अपने एक्सपीरियंस से सीखी है कि सेल्फ डाउट कभी नहीं करना चाहिए। ये कभी नहीं सोचना चाहिए क्या मैं ये कर पाऊंगी, क्या वो लड़का कर रहा है, वो आदमी कर रहा है, तो क्या मैं ये कर पाऊंगी। नहीं, आप सब कुछ कर सकती हो, सब कुछ। आप अभी देखिए, हर दुनिया में, हर फील्ड में लड़की है, ऐसी

0: कर पाऊंगी, क्या वो लड़का कर रहा है, वो आदमी कर रहा है, तो क्या मैं ये कर पाऊंगी? नहीं, आप सब कुछ कर सकती हो, सब कुछ। आप अभी देखिए, हर दुनिया में हर फील्ड में लड़की है, ऐसी कोई फील्ड नहीं है जहां पे लड़की नहीं है, नॉट ओनली इंडिया, अक्रॉस द वर्ल्ड। तो वैसे ही मिलिट्री में भी, डिफेंस फोर्सेस में भी सेल्फ डाउट बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और आप में अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है कि हाँ ये मैं करूंगी। देखिए, फेलियर्स तो आएंगे, वो सबके लाइफ में आते हैं, वो जेंडर देख के नहीं आते। सो फेलियर आते हैं, फेस इट, गिरिए, उठिए, कपड़े झाड़िए और चलते बनिए।
1: मुझे आपकी ये वाली बात तो बहुत ही पसंद आई है कि अगर कभी ऐसा कुछ होता भी है, गिर भी पड़ते हैं, तो भी रुकना नहीं है, कपड़े झाड़िए और आगे चलिए। तो सभी लड़कियों को, सभी महिलाओं को जो फोर्सेस ज्वाइन करना चाहती हैं, इस बात से डेफिनेटली प्रेरणा मिलेगी। अच्छा, आप अब क्योंकि रिटायर हो चुकी हैं, क्या आपके लाइफ में रिटायरमेंट के बाद कोई चेंजेस आए हैं क्या?
0: जी, सबसे बड़ा चेंज तो वो है जो सुबह उठते से ही जो मैं यूनिफॉर्म पहनती थी, वो एक बहुत बड़ा चेंज है और वो मैं बहुत मिस करती हूँ। क्योंकि मैं अपने हस्बैंड को देखती हूँ कि रोज वो यूनिफॉर्म पहन के यूनिट जाते हैं, तो वो एक चीज मैं बहुत ज्यादा मिस करती हूँ। उसके अलावा देखिए, वर्क वाइज तो अभी भी मैं वर्किंग हूँ, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हूँ, मैं जितना मेरा एक्सपीरियंस है आर्म फोर्सेज से, जितना मैं वहां अप्लाई कर सकती हूँ करती हूँ, तो कमिटमेंट में तो कोई कमी नहीं है। लेकिन एक जो ऑरा होता है, और आजकल की जो जेंजी लैंग्वेज में कहते हैं वाइब, वो थोड़ी सी मुझे मिसिंग लगती है। क्योंकि बाहर कॉर्पोरेट में काफी लोग अकेले अकेले से काम करते हैं, जबकि डिफेंस फोर्सेस में इट इज ऑलवेज अ टीम वर्क। सो आई जेन्युइनली मिस दैट टीम वर्क एंड द वाइब ऑफ डिफेंस फोर्सेस।
1: ओह स्वीट, ये जो वाइब आपने बताई है ना, मुझे लगता है कि किसी भी फील्ड में जब सब मिलकर कोई काम कर रहे होते हैं तो अपने आप वो काम भी बहुत अच्छा होता है, और एक वाइब तो पॉजिटिविटी की रहती ही है। अच्छा, महिला अधिकारियों के लिए इंडियन एयरफोर्स में क्या क्या ऐसे अवसर हैं कि वो भी आपकी तरह अपने आप को एक प्राउड ऑफिसर कह सकती हैं?
0: पहली बात होगी, किसी चीज के लिए मना मत कीजिए। मैं ये नहीं कह रही हूं कि आप अनकंफर्टेबल हो किसी चीज, कोई काम करने के लिए और तब भी आप हाँ बोल रहे हैं, नहीं। लेकिन आप में वो क्षमता होनी चाहिए कि आप अपॉर्चुनिटी को भापे
1: जी,
0: और किसी भी चीज के लिए मना मत कीजिए, किसी भी चीज से डरिए मत कि ये होगा नहीं होगा, कोई बात नहीं, चलिए आप काम करिए, और आप में वो कॉन्फिडेंस पूरा होना चाहिए। तो वही कॉन्फिडेंस आपको अपने अंदर जगाना पड़ेगा, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी बोला कि जो बाधाएं होती है, जो हम बाउंड्रीज बनाते हैं, वो हमारे दिमाग में होती है, बाहर कोई नहीं बना रहा हमारे लिए वो बाउंड्रीज, हम खुद ही बनाते हैं। तो अगर आपने वो बाउंड्रीज पार कर ली, आपने वो जो लक्ष्मण रेखा आपने पार कर ली, तो वर्ल्ड इज ऑन योर फिंगर टिप्स, आप दुनिया, पूरी दुनिया अपनी मुट्ठी में कर सकते हैं। वो कॉन्फिडेंस बिल्कुल मत छोड़िए अपना।
1: तो आपको ये लगता है कि हमारी युवा पीढ़ी, स्पेशली जितनी भी हमारी महिलाएं हैं, वो अगर कॉन्फिडेंस का गहना पहन ले तो उन्हें फिर किसी और गहने की जरूरत नहीं पड़ेगी?
0: बिल्कुल सही, आपने बहुत अच्छे से उसको एक्सप्लेन किया। बिल्कुल वही गहना पहनना है हमने, और कोई पहने ना पहने, लेकिन कॉन्फिडेंस का गहना हमेशा होना चाहिए हमारे पास।
1: थैंक यू सो मच प्रतीक्षा ठाकरे जी, आज आप संदेश टू सोल्जर्स में आई हैं और आपने अपने इतने खूबसूरत अनुभव और उससे भी बढ़कर प्रेरक विचार हम सबके साथ बांटे हैं। मुझे लगता है कि डिफेंस फोर्सेस का इससे खूबसूरत उपहार हमारे श्रोताओं के लिए और कुछ हो ही नहीं सकता। तो समय निकालने के लिए आपका आभार, अपनी पॉजिटिविटी हमारे साथ शेयर करने के लिए आपका आभार, और चलते चलते एक सल्यूट तो आपके लिए बनता ही है। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और हम सभी को प्रेरित करने के लिए। आई होप आपका एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा रहा होगा आज यहाँ।
0: धन्यवाद विनीता जी, यहाँ पहली बात तो मुझे बुलाने के लिए और ये बातचीत करने के लिए। और आखिरी में बस एक लाइन कहूंगी कि देश सेवा सिर्फ एक ड्यूटी नहीं, ये एक ऑनर है, और जो ये ऑनर पा लेता है वो जिंदगी में कभी नहीं हारता। धन्यवाद।
1: थैंक यू सो मच, शुक्रिया आपका। और दोस्तों, सुनते रहिए संदेश टू सोल्जर्स, हम सभी दिल से सलाम करते हैं अपने सोल्जर्स का। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से प्रतीक्षा ठाकरे जी का।

अभी आप सुन रहे थे हमारा विशेष कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।

FM 102.6 MHz और मीडियम वेव 212.31 MHz अर्थात 1413 KHz पर। ये आकाशवाणी कोटा बूंदी का चंबल चैनल है। न्यूज ऑन AIR ऐप के माध्यम से आप सुन सकते हैं आकाशवाणी कोटा बूंदी का चंबल चैनल देश और विदेश में कहीं भी और कभी भी। प्रस्तुत है युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युव वाणी।

0: तो हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन, आप सुन रहे हैं आपका मनपसंद इवनिंग शो जिसका नाम है युववाणी। मैं हूं आपके साथ आपका रेडियो दोस्त स्वर्णिम
1: और मैं हूं आपके साथ खुशी।
0: दोस्तों बने रहिए हमारे साथ आज शाम 6 बजे तक, क्योंकि हम करेंगे आपके साथ खूब सारी बातें, सुनाएंगे खूब प्यारे से गाने और देंगे खूब अच्छी सी जानकारियां। वैसे खुशी, अभी एग्जाम्स का माहौल खत्म ही हुआ है।
1: बिल्कुल।
0: दोस्तों के हमारे 12th के रिजल्ट आए हैं।
1: बिल्कुल, बिल्कुल।
0: तो सब हमारी तरफ से सबको सबसे पहले तो
1: कॉन्ग्रेचुलेशंस
0: जी।
1: और कुछ कुछ ऐसा हुआ है ना कि शायद बहुत से बच्चों का रिजल्ट अच्छा भी नहीं आया है, तो प्लीज आप डीमोटिवेट मत होइए। लाइफ बहुत बड़ी है और आपको बहुत सारे चांसेस मिलेंगे।
0: बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए आज की हमारी इस प्यारी सी शाम को शुरू करते हैं और हमारे दोस्तों को सुनाते हैं आज का पहला प्यारा सा गीत।

0: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
1: जी,
0: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
1: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
0: पर ये होगा कैसे?
1: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
0: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
1: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
0: बस
1: बस
0: समझ गया।
1: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
2: आरबीआई कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: दोस्तों एफएम 102.6 पे सुन रहे हैं आप आपका मनपसंद इवनिंग शो जिसका नाम है युववाणी।
1: दोस्तों जिंदगी में हर कोई सफल होना चाहता है, कोई पढ़ाई में, कोई अपने सपनों में,

0: क्या सफलता सिर्फ किस्मत से मिलती है? क्या एक दिन अचानक सब बदल जाता है?
1: शायद नहीं, क्योंकि हर बड़ी सफलता के पीछे छुपे होते हैं छोटे छोटे लगातार प्रयास। गिरना, संभलना, फिर उठना और बिना रुके आगे बढ़ते रहना ही असली सफलता की पहचान है।
0: इसी सोच के साथ आज के संवाद में हम बात करेंगे सफलता निरंतर प्रयासों का परिणाम है।
1: खुशी, अक्सर लोग सिर्फ किसी इंसान की सफलता देखते हैं, लेकिन उसके पीछे की मेहनत, संघर्ष और लगातार की गई कोशिशों को कोई नहीं देखता।
0: बिल्कुल सही कहा तुमने स्वर्णिम। जैसे एक बीज तुरंत पेड़ नहीं बनता, उसे समय चाहिए, धूप चाहिए, पानी चाहिए, वैसे ही सपनों को भी मेहनत और धैर्य की जरूरत होती है।
1: बिल्कुल, और सबसे खास बात ये कि असफलता भी सफलता का हिस्सा ही तो होती है। अगर कोई इंसान हार के डर से कोशिश करना ही छोड़ दे तो कभी आगे बढ़ ही नहीं पाएगा।
0: सही कहा। थॉमस एडिसन ने बल्ब बनाने से पहले भी हजारों बार असफलता देखी थी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने कहा था, मैं असफल नहीं हुआ हूँ, मैंने सिर्फ ऐसे हजार तरीके खोजे जो काम नहीं करते।
1: ये तो निरंतर प्रयास की ताकत है। अगर इंसान हर दिन थोड़ा थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करे तो एक दिन वही छोटी कोशिशें बड़ी सफलता बन जाती हैं।
0: बिल्कुल दोस्तों, आज के समय में कई लोग जल्दी परिणाम चाहते हैं। दो दिन मेहनत करके सोचते हैं कि सफलता क्यों नहीं मिल रही, लेकिन सच तो ये है कि सफलता कोई जादू नहीं बल्कि लगातार मेहनत का फल है।
1: बिल्कुल खुशी, जैसे दोस्तों नदी धीरे धीरे पत्थरों को भी रास्ता दे देती है, वैसे लगातार प्रयास इंसान की हर मुश्किल को आसान बना देता है।
0: और एक बात और दोस्तों, कभी कभी हमें लगता है कि हमारी मेहनत बेकार जा रही है, लेकिन हर कोशिश हमें कुछ ना कुछ जरूर सिखा के जाती है।
1: क्योंकि अनुभव ही सफलता की सीढ़ी है ना। जो इंसान कोशिश करना नहीं छोड़ता वही एक दिन मंजिल तक पहुँचता है।
0: और स्वर्णिम, ये जो बात है ना, ये स्टूडेंट्स की लाइफ में भी पूरी तरह से अप्लाई होती है।
1: बिल्कुल,
0: अगर कोई स्टूडेंट रोज थोड़ा थोड़ा पढ़े, लगातार मेहनत करे तो सफलता जरूर मिलती है।
1: और सिर्फ पढ़ाई नहीं, म्यूजिक, स्पोर्ट्स, आर्ट या किसी भी फील्ड में सफलता पाने के लिए प्रैक्टिस और पेशेंस दोनों जरूरी है।
0: तो दोस्तों, अगर रास्ता मुश्किल हो, अगर बार बार असफलता मिले तो रुकिए मत।
1: क्योंकि हर रात के बाद सुबह जरूर आती है और हर मेहनत एक दिन रंग जरूर लाती है।

जब भी सुनिए कुछ अच्छा सा सुनिए। ये है आकाशवाणी कोटा का चंबल चैनल।

0: दोस्तों, युववाणी सुन रहे हैं आप। अब प्रोग्राम में आगे चलते हैं हमारे अगले सेगमेंट प्रेरक प्रसंग पर।
1: दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे महान स्वतंत्रता सेनानी, कुशल प्रशासक और सच्चे देशभक्त की, जिन्होंने अपना पूरा जीवन देश की सेवा में समर्पित कर दिया। वो हैं पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी।
0: पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी का जन्म 10 सितंबर 1887 को उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में हुआ था। बचपन से ही वो बहुत बुद्धिमान, मेहनती और न्यायप्रिय थे।
1: उन्होंने कानून की पढ़ाई की और एक सफल वकील बने, लेकिन देश गुलामी में था, इसलिए उन्होंने अपने आरामदायक जीवन को छोड़कर स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया।
0: महात्मा गांधी जी के विचारों से प्रेरित होकर पंत जी ने अंग्रेजों के खिलाफ कई आंदोलनों में हिस्सा लिया और कई बार जेल भी गए।
1: दोस्तों, आजादी के बाद वे उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बने और बाद में देश के गृह मंत्री भी रहे। देश के प्रति उनके योगदान के लिए उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया।
0: दोस्तों, अब जानते हैं पंडित गोविंद वल्लभ जी की, पंत जी की जीवन से जुड़ा हुआ एक

0: एक प्रसंग। दोस्तों, ये बात उस समय की है जब पंत जी एक प्रसिद्ध वकील थे। एक दिन उनके पास एक गरीब किसान अपनी समस्या लेकर आया।
1: उस किसान की जमीन पर एक अमीर जमींदार ने गलत तरीके से कब्जा कर लिया था। किसान बहुत परेशान था और उसके पास केस लड़ने के लिए पैसे भी नहीं थे।
0: किसान ने पंत जी से मदद मांगी। पंत जी ने उसकी पूरी बात ध्यान से सुनी और कहा कि न्याय केवल अमीरों का अधिकार नहीं है, इस पे गरीबों का भी उतना ही हक है।
1: उन्होंने बिना कोई फीस लिए किसान का मुकदमा लड़ने का फैसला किया। अदालत में पंत जी ने इतनी ईमानदारी और मजबूती से पक्ष रखा कि फैसला किसान के हक में ही आया।
0: किसान की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने पंत जी को धन्यवाद दिया। तब पंत जी ने मुस्कुराकर कहा कि सच्ची सफलता वही है जिससे किसी जरूरतमंद का भला हो।
1: दोस्तों, इस प्रसंग से हमें सीख मिलती है कि हमें हमेशा सत्य, न्याय और मानवता का साथ देना चाहिए।
0: बिल्कुल। अगर हमारे पास ज्ञान, शक्ति या पद है तो उसका उपयोग दूसरों की मदद के लिए होना चाहिए, ना कि केवल अपने लाभ के लिए।
1: पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी का जीवन हमें ईमानदारी, सेवा और देशभक्ति की प्रेरणा देता है।
0: तो दोस्तों, उम्मीद है कि पंत जी के जीवन की ये घटना आपको जरूर प्रेरित करेगी।

सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।

0: दोस्तों एफएम 102 103.6 पे सुन रहे हैं आप आपका मन पसंद इवनिंग शो जिसका नाम है युवाणी। मैं हूं आपके साथ आपके रेडी दोस्त स्वर्णिम।
1: मैं हूं आपके साथ खुशी।
0: तो चलिए दोस्तों कार्यक्रम में आगे चलते हैं हमारे अगले सेगमेंट नॉलेज कॉर्नर की ओर। तो दोस्तों भारत को गांव का देश कहा जाता है। हमारे गांव सिर्फ रहने की जगह नहीं बल्कि हमारी संस्कृति परंपरा और इतिहास के जीवित प्रतीक हैं। इन्हीं अनमोल विरासतों को संरक्षित करने के लिए भारत सरकार के सांस्कृतिक मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने मेरा गांव मेरी धरोहर कार्यक्रम शुरू किया।
1: दोस्तों ये कार्यक्रम नेशनल मिशन ऑन कल्चरल मैपिंग के अंतर्गत चलाया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य देश के लगभग 6.5 लाख गांव की सांस्कृतिक पहचान को डिजिटली डॉक्यूमेंट करना और संरक्षित करना है।
0: इस अभियान के माध्यम से हर गांव की विशेषताओं और विशेषताओं को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर दर्ज किया जा रहा है, जैसे वहां का लोक कला, लोक गीत, पारंपरिक भोजन, त्योहार, इतिहास, वस्त्र, स्थल, हाथ की कला और गाँव की पुरानी परंपराएं।
1: दोस्तों आज के आधुनिक युग में कई पारंपरिक कलाएं और लोक संस्कृतियां धीरे धीरे समाप्त होती जा रही हैं।
0: और ऐसे में मेरा गांव मेरी धरोहर यानी MGMD कार्यक्रम हमारी सांस्कृतिक विरासत को बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।
1: और स्वर्णिम जरूरी बात ये भी है कि ये योजना सिर्फ संस्कृति को संरक्षित करने तक सीमित नहीं है बल्कि इससे रूरल टूरिज्म और लोकल आर्टिसंस को भी प्रोत्साहन मिल रहा है।

हाँ खुशी, और मैं मानता हूँ कि इसके जरिए ना गांव की कला और परंपरा को देश और दुनिया तक पहुँचाया जा रहा है। जो कलाएं, जो परंपराएं पहले

0: एक ही गांव तक सीमित थी या उसके आसपास की जगहों तक सीमित थी, अब इसके माध्यम से वो अलग अलग देशों तक भी पहुंच पा रहे हैं। तो अगर कोई उसके बारे में रिसर्च करना चाह रहा है तो वो कितना आसान हो गया उसके लिए।
1: बिल्कुल। तो दोस्तों, हमारी धरोहर ही हमारी पहचान है। जब हम अपनी संस्कृति और परंपरा को संभाल कर रखते हैं, तभी हम अपनी आने वाली पीढ़ी को अपनी असली पहचान से जोड़ पाते हैं।

तो दोस्तों, ये था हमारा सेगमेंट नॉलेज कॉर्नर, जहां हमने बात करी मेरा गांव मेरी धरोहर कार्यक्रम के बारे में। अब युववाणी में आगे चलते हैं और आपको ले चलते हैं फिर से गीत संगीत की दुनिया में और सुनाते हैं एक और प्यारा सा गीत।

जब भी सुनिए कुछ अच्छा सा सुनिए, ये है आकाशवाणी कोटा का चंबल चैनल।

0: तो दोस्तों FM 102.6 पे युवाणी सुन रहे हैं आप। मैं आपके साथ आपके रेडियो दोस्त स्वर्णिम,
1: मैं हूँ आपके साथ खुशी।
0: तो आइए दोस्तों बात करते हैं बहुत ही रोचक और खास विषय पर, जो है 64 कलाएं। अब मैं कुछ टाइम पहले इंटरनेट पे ऐसे देख रहा था और मुझे इन 64 कलाओं के बारे में पता चला, तो मैंने सोचा कि हमारे दोस्तों को बताना ज़रूरी है।
1: बिल्कुल स्वर्णिम, और जब भी हम कला शब्द सुनते हैं तो अक्सर हमारे दिमाग में गाना, नृत्य या पेंटिंग जैसी चीज़ें आती हैं। लेकिन प्राचीन भारत में 64 कलाएं का मतलब इससे कई बड़ा था।
0: बिल्कुल दोस्तों, पुराने समय में माना जाता था कि एक आदर्श व्यक्ति सिर्फ पढ़ाई में अच्छा नहीं होना चाहिए, बल्कि उसे जीवन से जुड़ी कई तरह की स्किल्स भी आनी चाहिए। इसी सोच के साथ 64 कलाओं का विचार आया।
1: इन कलाओं में संगीत, नृत्य, अभिनय, कविता, चित्रकला, कहानी सुनाना, खाना बनाना, फूलों की सजावट, बातचीत करने की कला, पहेलियां बुझाना, खेल, हस्तकला और कई दूसरी स्किल्स भी शामिल थी।
0: अब देखो इतनी सारी कलाएं, यानी उस समय इंटेलिजेंस का मतलब सिर्फ किताबों का ज्ञान नहीं था। अगर कोई व्यक्ति रचनात्मक था, क्रिएटिव था, कला समझता था, लोगों से अच्छी तरह बात कर सकता था और अलग अलग कामों में निपुण था, तो उसे एक संपूर्ण व्यक्तित्व माना जाता था।
1: दोस्तों आज के समय में हम अक्सर लोगों को सिर्फ एक पहचान से जानते हैं, जैसे कि कोई सिंगर, इंजीनियर, एक्टर या राइटर। लेकिन 64 कलाओं की सोच कहती है कि इंसान को खुद को कोई कई दिशाओं में विकसित करना चाहिए।
0: और मैं मानता हूँ कि हमें बचपन से ही बताया गया है कि आपको एक ही चीज करनी है, आपको इसी लाइन में आगे जाना है,
1: एक्सपर्टीज होनी चाहिए।
0: तो आज के समय में हम ये अक्सर सुनते ही हैं, है ना? पर पहले के समय में जो प्राचीन लोग थे हमारे, वो इस बारे में मानते थे कि इंसान को सब चीज़ें आनी चाहिए, है ना? और इसी को हम कंपेयर कर सकते हैं एक इंग्लिश टर्म के साथ, जो कि है पॉलीमैथ, है ना? हम इससे उसकी तुलना कर सकते हैं।
1: पॉलीमैथ यानी ऐसा व्यक्ति जिसे कई अलग अलग फील्ड्स की गहरी समझ हो। और एग्जाम्पल के लिए लियोनार्डो दा विंची, जिन्हें दुनिया का सबसे प्रसिद्ध पॉलीमैथ माना जाता है। वे पेंटर भी थे, साइंटिस्ट भी थे, इन्वेंटर भी और इंजीनियर भी थे।
0: लियोनार्डो दा विंची तो बाहर के हो गए। अगर हम भारत में ही देखें तो भारत में भी रविंद्रनाथ टैगोर जैसे लोग पॉलीमैथ माने जाते थे। जैसे रविंद्रनाथ टैगोर जी, वो कवि भी थे, लेखक भी थे, संगीतकार भी थे, चित्रकार भी थे और दार्शनिक भी।

0: देखो कितना कुछ थे वो।
1: बिल्कुल, अगर ध्यान से देखें हम तो 64 कलाएं और पॉलीमर दोनों एक ही विचार को बढ़ावा देते हैं, और वो विचार है एक इंसान को सिर्फ एक स्किल तक सीमित नहीं रहना चाहिए।
0: बिल्कुल, पर दोस्तों लेकिन दोनों में थोड़ा फर्क भी है ना। 64 कलाएं ज्यादा प्रैक्टिकल लाइफ स्किल्स और आर्टिस्टिक एबिलिटीज पर आधारित थी, जबकि पॉलीमैथ का मतलब कई सब्जेक्ट्स में गहरी नॉलेज और मास्टरी होना है।
1: फिर भी दोनों यही हमें सिखाते हैं कि इंसान जितनी ज्यादा चीजें सीखता है उसका व्यक्तित्व उतना ही समृद्ध बनता है।
0: और आज की दुनिया में भी ना मल्टी टैलेंटेड लोगों की बहुत वैल्यू है। कोई कोडिंग करता है, साथ में म्यूजिक भी बनाता है, फिल्म्स भी समझता है, राइटिंग भी करता है और कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छी रखता है, तो वो आधुनिक समय का एक बहुआयामी व्यक्ति कहलाएगा।
1: और शायद यही 64 कलाओं की सबसे बड़ी सीख है कि इंसान सिर्फ करियर के लिए ही नहीं बल्कि खुद को बेहतर और संपूर्ण बनाने के लिए भी सीखता रहे।
0: बिल्कुल, तो दोस्तों सीखना कभी मत छोड़िए, क्योंकि हर नई स्किल आपके व्यक्तित्व में एक नई कला जोड़ देती है।

तो चलिए युवाणी कार्यक्रम में आगे चलते हैं और आपको फिर से ले चलते हैं गीत संगीत की दुनिया में और सुनाते हैं एक और प्यारा सा गीत।

जब भी सुनिए कुछ अच्छा सा सुनिए। ये है आकाशवाणी कोटा का चंबल चैनल।

दोस्तों, ऑल इंडिया रेडियो एफएम 102 103.6 पे युवाणी सुन रहे हैं आप, आपका फेवरेट इवनिंग शो। तो चलिए प्रोग्राम में आगे चलते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर।

0: तो दोस्तों जरा इमेजिन कीजिए कि पूरी दुनिया बदल चुकी है, लोग नई जिंदगी शुरू कर चुके हों, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ चुकी हो, लेकिन एक इंसान अब भी वही सोच रहा है कि युद्ध चल रहा है।
1: और सबसे शॉकिंग बात, ये कोई मूवी स्टोरी नहीं है, ये एक सच्ची घटना है। तो दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं हीरो ओनोडा की।
0: तो दोस्तों साल था 1944, सेकेंड वर्ल्ड वॉर अपने सबसे डेंजरस फेज में था। जापान ने अपने एक सोल्जर हीरो ओनोडा को फिलीपींस के एक आइलैंड पर भेजा। मिशन सिंपल था उनका कि कभी सरेंडर मत करना।
1: और उसने इस आदेश को इतनी सीरियसली ले लिया कि पूरी दुनिया बदल गई, लेकिन वो नहीं बदला।
0: 1945 में वर्ल्ड वॉर टू खत्म हो गया, जापान हार गया, सोल्जर्स वापस लौट आए, लेकिन ओनोडा अब भी जंगल में छुपा हुआ था। उसे लगता था कि एनिमी उसे ट्रिक कर रही है।
1: पैम्फलेट्स गिराए गए, उसने कहा फेक है। रेडियो अनाउंसमेंट्स किए गए, उसने कहा प्रोपेगेंडा है। यहाँ तक कि फैमिली फोटोज तक भेजी गई, लेकिन उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि युद्ध खत्म हो चुका है।
0: अब जरा सोचिए, जब दुनिया टेलीविजन खरीद रही थी, रॉक म्यूजिक सुन रही थी, इंसान मून पर पहुंच चुका था, तब एक आदमी जंगल में बैठा था पुरानी राइफल के साथ और सोच रहा था कि वर्ल्ड वॉर अभी भी चल रही है।
1: और ये सिर्फ कुछ महीनों तक नहीं चला, 29 साल तक चला।
0: 29 साल दोस्तों। फाइनली 1974 में जापान से उसके पुराने कमांडिंग ऑफिसर को बुलाया गया। वो फिलीपींस गए, जंगल में ओनोडा को ढूंढा और ऑफिशियली कहा कि द वॉर इज ओवर।
1: और तब 29 साल बाद ओनोडा जंगल से बाहर आया। अब इमेजिन कीजिए उसका शॉक, जब वो अंदर गया था तब दुनिया ब्लैक एंड व्हाइट थी, जब वो बाहर आया तब दुनिया पूरी बदल चुकी थी। नई जनरेशन, नई टेक्नोलॉजी, एक पूरी नई दुनिया।
0: कभी कभी सबसे खतरनाक चीज युद्ध नहीं होती, बल्कि वो बिलीफ होता है जिसे इंसान छोड़ नहीं पाता।
1: और शायद इसीलिए हीरो ओनोडा की कहानी सिर्फ हिस्ट्री नहीं है, ये रिमाइंडर है कि अगर इंसान रियलिटी एक्सेप्ट ना करे तो वो समय में फंस सकता है।
0: बिल्कुल, एक सोल्जर जो 29 साल तक अतीत में जीता रहा
1: और जब बाहर निकला तो पूरी दुनिया फ्यूचर में पहुंच चुकी थी।
0: है ना कितनी इंटरेस्टिंग कहानी।
1: बिल्कुल।
0: तो दोस्तों इसी के साथ प्रोग्राम में आगे चलते हैं और आपको ले चलते हैं फिर से गीत संगीत की दुनिया में और सुनाते हैं एक और प्यारा सा गीत, क्योंकि हम अभी प्रेजेंट में हैं।

जब भी सुनिए कुछ अच्छा सा सुनिए, ये है आकाशवाणी कोटा का चंबल चैनल।

0: दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका युवाणी में। मैं हूं आपके साथ खुशी।
1: हाँ, मैं हूं स्वर्णिम। दोस्तों, कभी कभी जिंदगी की सबसे बड़ी सीख बहुत छोटी चीजें दे जाती है, और इसलिए आज

0: हम आपके लिए लाए हैं एक कहानी, एक छोटी सी पेंसिल की।
1: एक बच्चा था विवान। एक दिन वो अपने दादाजी को कुछ लिखते हुए देख रहा था। दादाजी बार बार पेंसिल को देखते, मुस्कुराते और फिर लिखने लगते। विवान ने पूछा, दादाजी क्या आप स्टोरी लिख रहे हो? दादाजी हंसे और बोले, स्टोरी भी और जिंदगी भी।
0: और फिर उन्होंने वो पेंसिल विवान को दी और कहा कि इस पेंसिल में जिंदगी के 5 सीक्रेट्स छिपे हैं। विवान हैरान था।

0: रहना पड़ता है, लेकिन उसके बाद ही और बेहतर लिखती है।
1: तीसरी बात ये थी कि पेंसिल गलतियां मिटा सकती हैं, मतलब जिंदगी में मिस्टेक्स एंड नहीं होती, सुधार भी हो सकता है। और चौथी बात ये थी कि इसका बाहर नहीं अंदर का ग्रेफाइट इम्पॉर्टेंट है। जैसे इंसान की असली वैल्यू उसके दिल और कैरेक्टर से होती है, ना कि उसकी बाहर की अपीयरेंस से।
0: और आखिरी बात, पेंसिल जहाँ भी जाती है अपनी एक निशानी छोड़ जाती है। वैसे ही इंसान को भी जिंदगी में कुछ अच्छा छोड़ कर आना चाहिए।
1: उस दिन विवान को समझ आया कि जिंदगी परफेक्ट बनने की नहीं, यूजफुल बनने की जर्नी है,
0: और शायद इसीलिए छोटी चीजें भी बड़ी सीख दे जाती हैं।
1: तो मुस्कुराइए दोस्तों, और अपनी जिंदगी से कुछ अच्छा लिखते रहिए।

0: हाँ ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
1: जी,
0: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
1: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
0: पर ये होगा कैसे?
1: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
0: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
1: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
0: बस
1: बस
0: समझ गया।
1: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
2: आरबीआई कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: तो दोस्तों, अब वक्त आ गया है आपसे विदा लेने का। मैं थी आपके साथ खुशी
1: और मैं स्वर्णिम। नमस्कार,
0: नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आकर्षिता सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग ले रहे विदेश मंत्रियों से मुलाकात की। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्षी, दक्षिण अफ्रीका के विदेश मंत्री रोनाल्ड लामोला और ब्राजील के विदेश मंत्री माउरो वियरा सहित अन्य विदेश मंत्रियों ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इससे पहले अपने शुरूआती संबोधन में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है। बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री पारस्परिक हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। कल दूसरे दिन ब्रिक्स सदस्य और भागीदार देश ब्रिक्स एट 20 लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण विषय पर एक सत्र में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। यात्रा के पहले चरण में श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात जाएंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री अबू धाबी में यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता भारत और संयुक्त अरब अमीरात की मजबूत साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। सरकार ने कहा है कि देश में कच्चे तेल, एलपीजी और प्राकृतिक गैस की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम उठाए गए हैं। नई दिल्ली में पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर अंतर मंत्रालयी प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि घरेलू एलपीजी आपूर्ति सुचारू रूप से जारी है।
1: भारत सरकार ने कई इफेक्टिव स्टेप्स लिए हैं जिसके चलते हमारे पास पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और नेचुरल गैस के पर्याप्त स्टॉक्स अवेलेबल हैं। हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रही हैं और एलपीजी प्रोडक्शन भी इंक्रीज किया जा चुका है। हमारे किसी भी रिटेल आउटलेट पर और एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप पर कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है। सब जगह पर नॉर्मल ऑपरेशन चल रहे हैं।
0: निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर अभियान के तीसरे चरण की घोषणा कर दी है। तीसरे चरण का अभियान 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में संचालित किया जाएगा। इस चरण में आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, पंजाब, सिक्किम, त्रिपुरा, तेलंगाना और उत्तराखंड राज्य शामिल हैं। इस चरण के अंतर्गत केंद्र शासित प्रदेशों में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव शामिल हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने आज पेचिंग में वार्ता की। व्यापार और प्रौद्योगिकी और क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर तनाव के बावजूद दोनों नेताओं ने टकराव के बजाय सहयोग पर बल दिया। व्हाइट हाउस के अनुसार दोनों नेताओं ने इस बात पर सहमति व्यक्त की कि ऊर्जा का निरंतर प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए होर्मुज जलडमरू मध्य खुला रहना चाहिए। बैठक के बाद सभा को संबोधित करते हुए चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा कि चीन और अमेरिका को प्रतिद्वंदी नहीं बल्कि साझेदार होना चाहिए। ब्रिटेन ने कहा है कि संयुक्त अरब अमीरात के पूर्वी तट पर एक जहाज को जब्त कर लिया गया है। रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण होर्मुज जलडमरू मध्य के पास फुजैराह बंदरगाह के करीब इस जहाज पर अनाधिकृत कर्मियों ने कब्जा कर लिया है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देशवासियों से की गई 7 अपीलों के मद्देनजर कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय सहित अपने संबंधित मंत्रालयों और विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के बाद उन्होंने कहा कि मंत्रालय स्तर पर 1 वर्ष तक सोने की खरीद न करने का निर्णय लिया गया है। श्री सिंह ने कहा कि कृषि मंत्रालय ने किसानों को उर्वरकों के संतुलित उपयोग के बारे में जागरूक करने के लिए गांवों में एक अभियान शुरू किया है। प्रधानमंत्री की अपील के अनुरूप दिल्ली सरकार कल से मेरा भारत मेरा योगदान अभियान शुरू करेगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि इसके अंतर्गत आवश्यक सेवाओं को छोड़कर दिल्ली सरकार के सभी कार्यालय सप्ताह में 2 दिन घर से काम करेंगे। थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु महिला सिंगल्स में और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी

हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं। शाम के 6 बजने को हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।

0: तथा चिराग शेट्टी की जोड़ी पुरुष डबल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। और आईपीएल क्रिकेट में आज पंजाब किंग्स का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 102, 103.6 MHz और मीडियम वेव 212.31 मीटर अर्थात 1413 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं। आई श्रोताओं, आपको लिए चलते हैं फिल्म संगीत की ओर।

0: now listen.
1: Get up.
0: That's right.

आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। थोड़ी देर में आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार जिले की चिट्ठी और राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार जयपुर अजमेर केंद्र से रिले किए जाएंगे।

जब भी सुनिए कुछ अच्छा सा सुनिए, ये है आकाशवाणी कोटा का चंबल चैनल।

जब भी सुनिए कुछ अच्छा सा सुनिए। ये है आकाशवाणी कोटा का चंबल चैनल।

0: अब दुनिया के किसी भी हिस्से में सुनिए आकाशवाणी कोटा का चंबल
1: मुख्य समाचार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, आतंकवाद को लेकर भारत का रुख एकदम कड़ा और स्पष्ट। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने ईंधन बचाने के लिए निजी वाहनों का उपयोग कम करने और सार्वजनिक परिवहन को प्राथमिकता देने की अपील की। निर्वाचन आयोग ने 16 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर के तीसरे चरण की घोषणा की और प्रदेश में अगले 2 दिन में एक नए पश्चिमी विक्षोभ के असर से तापमान में मामूली गिरावट की संभावना। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ और अब समाचार विस्तार से। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत का रुख आतंकवाद के खिलाफ कड़ा और स्पष्ट है। उन्होंने कहा कि देश की सुरक्षा को लेकर सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। वे आज नागौर के मेड़ता में राव दूदा प्रतिमा अनावरण समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि भारत आतंकवाद का साथ देने वालों को मुंह तोड़ जवाब देने की ताकत रखता है। श्री सिंह ने कहा कि देश अब रक्षा उपकरणों के मामले में आत्मनिर्भर बनता जा रहा है। उन्होंने राजस्थान की धरती को वीर भूमि बताते हुए कहा कि देश की रक्षा में यहां के सपूतों का बड़ा योगदान है।
2: राजस्थान के युवाओं को तो वैसे भी सेना से बहुत गहरा रिश्ता है। जब भी मैं कहीं जाता हूं सेवाओं के ऊपर, कोई न कोई राजस्थान का ऐसा बहादुर नौजवान अथवा अधिकारी कोई हमको मिल जाता है। यहां के घर घर से फौजी निकलते हैं। आज भी हमारी इस सेनाओं में शामिल होकर नागौर के युवा पूरी निष्ठा के साथ भारत की सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं। सरकार भी योजनाओं के मामले में उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही है। पिछले 10 वर्षों में भारत ने अपनी सुरक्षा नीति में ऐतिहासिक बदलाव किया।
1: समारोह में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार महापुरुषों की याद में पैनोरमा बनवाकर नई पीढ़ी को इतिहास से जोड़ने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार युवा, महिला, गरीब और किसानों के उत्थान के लिए लगातार काम कर रही है।
3: कहते हैं कि हमारे 4 जातियां हैं, किसान, मजदूर, युवा, महिला। अगर इनका उत्थान होगा तो हमारे देश का उत्थान होगा, हमारे प्रदेश का उत्थान होगा। इस ऐतिहासिक आयोजन में प्रदेश के हजारों किसान और पशुपालक उसमें भाग लेंगे। कृषि विशेषज्ञ, वैज्ञानिक, तकनीकी जानकार, कृषि पंचकरण उद्योगपति सभी उसमें आने वाले हैं। हम चाहते हैं कि हमारे हर किसान का भला हो, हमारी माता बहनें भी आगे बढ़े। इसके लिए लगातार हमारी सरकार नवाचार करते हुए हम काम कर रहे हैं। हमारी केंद्र और राज्य सरकार की योजना है, उनका आपको लाभ लेना है, क्योंकि बहुत सारी योजना हमारी केंद्र और राज्य सरकार की है, उनका लाभ जन जन तक कैसे पहुंचे, इसके लिए हम काम करते हैं।
1: इसके बाद रक्षा मंत्री ने जोधपुर में पूर्व उपराष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत की प्रतिमा का अनावरण किया। रातानाड़ा सर्किल पर हुए इस समारोह में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी मौजूद रहे। रक्षा मंत्री ने पूर्व उपराष्ट्रपति श्री शेखावत को भारतीय लोकतंत्र का चलता फिरता विश्वविद्यालय बताते हुए कहा कि उनका जीवन जनसेवा और सादगी का अद्वितीय उदाहरण है। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने ईंधन बचाने की कवायद करते हुए अपने आधिकारिक काफिले में वाहनों की संख्या घटाने का फैसला किया है। राज्यपाल ने आज इस पर अमल करते हुए जयपुर में एयरपोर्ट जाते समय पायलट कार, एम्बुलेंस और दमकल जैसे वाहनों का उपयोग नहीं किया। श्री बागड़े ने आम जनता से भी अपील की है कि वे निजी वाहनों का कम उपयोग करें और सार्वजनिक परिवहन को प्राथमिकता दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊर्जा संरक्षण की अपील के बाद राज्य में ईंधन बचाने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसी सिलसिले में कल अलवर जिले में विभिन्न विकास परियोजनाओं का वर्चुअल माध्यम से लोकार्पण किया जाएगा। इस दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और अश्विनी वैष्णव वर्चुअली जुड़ेंगे। वे भिवाड़ी में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का शुभारंभ करेंगे। साथ ही सरे खुर्द पाइपलाइन और टपूकड़ा के सरकारी स्कूल

0: में नए शैक्षणिक ब्लॉक का भी उद्घाटन किया जाएगा। उधर प्रशासन स्तर पर भी ईंधन बचाने को लेकर व्यापक जागरूकता देखी जा रही है। इसी कड़ी में पाली में जिला कलेक्टर रविन्द्र गोस्वामी और पुलिस अधीक्षक मोनिका सेन आज पैदल चलकर कार्यालय पहुंचे। केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने आज गुजरात के सासन गिर में लायन स्पीशीज स्पॉटलाइट कार्यक्रम का उद्घाटन किया। यह आयोजन अगले महीने नई दिल्ली में होने वाले इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस IBCA शिखर सम्मेलन की तैयारियों के तहत किया गया। श्री यादव ने बताया कि आगामी 1 और 2 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में पहला IBCA सम्मेलन आयोजित होगा। इसमें 95 देशों के प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। इसका मुख्य उद्देश्य बाघ, शेर, तेंदुए, चीता और जगुआर जैसी 7 बड़ी बिल्ली प्रजातियों का संरक्षण करना है। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने आज बीकानेर के सुजान देसर में 40 सरकारी विद्यालयों को स्मार्ट बोर्ड और फर्नीचर वितरित किए। हुडको की ओर से 125 करोड़ रुपए की लागत से उपलब्ध कराए गए इन संसाधनों से 15,000 से अधिक विद्यार्थी लाभान्वित होंगे। श्री मेघवाल ने पावर ग्रिड कॉरपोरेशन द्वारा निर्मित नए कमरों और लाइब्रेरी का भी लोकार्पण किया। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने कहा है कि राज्य सरकार प्रदेश के हर घर तक नल से स्वच्छ पेयजल पहुंचाने के लिए पूरी गंभीरता के साथ काम कर रही है। श्री चौधरी ने आज भीलवाड़ा के मांडल में विभिन्न पेयजल परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण कार्यक्रम के अवसर पर यह बात कही। उन्होंने कहा कि पीने के पानी की व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के लिए व्यापक स्तर पर काम किए जा रहे हैं। श्री चौधरी ने अधिकारियों को भीषण गर्मी को देखते हुए पेयजल संकट वाले क्षेत्रों में टैंकरों से नियमित जलापूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। निर्वाचन आयोग ने आज विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के तीसरे चरण की घोषणा की है। इसे 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में चरणबद्ध तरीके से चलाया जाएगा। इनमें आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, पंजाब, सिक्किम, त्रिपुरा, तेलंगाना और उत्तराखंड शामिल हैं। केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव शामिल हैं। ये मतदाता सूची संशोधन प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसका पूरा उद्देश्य पूरे देश में अपडेटेड और सटीक मतदाता सूची सुनिश्चित करना है। प्रदेश भर में जनगणना 2027 के तहत डिजिटल स्वगणना का काम तेजी से चल रहा है। इसी कड़ी में पाली जिले का तीखी गांव शत प्रतिशत स्वगणना पूरा करने वाला पहला गांव बन गया है। अतिरिक्त जिला कलेक्टर डॉ बजरंग सिंह ने बताया कि ग्रामीणों ने मोबाइल के माध्यम से स्वयं अपना पंजीकरण कर इस प्रक्रिया को पूरा किया है। इस गांव की ये उपलब्धि अन्य गांवों के लिए मिसाल बन रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि राष्ट्रीय आपदा मोचन बल NDRF ने पिछले 2 दशक में देश के 140 करोड़ नागरिकों का विश्वास जीता है। श्री शाह ने आज गाजियाबाद में NDRF के राष्ट्रपति ध्वज समारोह को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि देश में आपदा के समय लोग NDRF की मौजूदगी से सुरक्षित महसूस करते हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी सशस्त्र बल को राष्ट्रपति ध्वज सम्मान मिलना गर्व की बात है।
1: NDRF को राष्ट्रपति निशान का सम्मान दिया गया, वो हम सब के लिए गौरव और प्रतिष्ठा की बात है। ये सम्मान NDRF के समस्त बल के सेवा, साहस, शौर्य और समर्पण के संचित गुणों का सम्मान है। 20 साल के कम अंतराल के अंदर आपदा बचाव के क्षेत्र में भारत को वैश्विक नक्शे पर रखने का काम NDMA और NDRF ने किया है।
0: और अब मौसम। प्रदेश में अगले 2 दिन में एक नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से तापमान में मामूली गिरावट आने की संभावना है। इस दौरान आज और कल बीकानेर, जयपुर और भरतपुर संभाग के साथ साथ शेखावाटी अंचल में तेज हवाएं चलने और कहीं कहीं हल्की बरसात की संभावना है। 17 मई से एक बार फिर पश्चिमी राजस्थान में तापमान में बढ़ोतरी होगी। वहीं प्रदेश के दक्षिणी पूर्वी इलाकों में भी अधिकतम तापमान

44 से 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। इस बीच 24 घंटों में प्रदेश में मौसम के कई रंग देखने को मिले, जहां राज्य के कुछ हिस्सों में मेघ गर्जन और आंधी के साथ बारिश हुई, वहीं अधिकांश स्थानों पर तेज गर्मी और लू का दौर चला। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार पिछले 24 घंटों में राज्य में सबसे अधिक तापमान फलोदी में रहा, जहां पारा 45.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं राज्य के ज्यादातर स्थानों पर दिन का पारा 42 से 44 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया। श्रीगंगानगर जिले के जैतसर में आज करीब 50 बच्चे दूषित भोजन खाने से बीमार हो गए। निजी स्कूल के ये बच्चे पिकनिक मनाने वाटर पार्क गए थे, जहां खाना खाने के बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई। सभी बच्चों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधिकारी सुखपाल बराड़ ने बताया कि बच्चों का इलाज जारी है और स्थिति नियंत्रण में है। भारतीय सेना में भर्ती के लिए ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस एग्जाम CEE 1 जून से 12 जून तक आयोजित किया जाएगा। राज्य के 11 शहरों के 32 केंद्रों पर होने वाली इस परीक्षा के प्रवेश पत्र कल से आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड किए जा सकते हैं। रक्षा जनसंपर्क अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल निखिल धवन ने बताया कि इस दौरान अग्निवीर, सिपाही, फार्मा और धार्मिक शिक्षक सहित विभिन्न श्रेणियों के लिए परीक्षा ली जाएगी। अभ्यर्थी भर्ती से जुड़ी सभी जानकारियां विभाग की वेबसाइट पर देख सकते हैं। किसी भी सहायता के लिए नजदीकी सेना भर्ती कार्यालय से भी संपर्क किया जा सकता है। भरतपुर में केंद्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र की ओर से आज किसानों के लिए प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया। इसमें किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड के बारे में जानकारी दी गई। अनुसंधान निदेशालय के निदेशक डॉ. विजय सिंह वीर ने बताया कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड के जरिए किसान अपने खेत की मिट्टी में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटाश और जैविक कार्बन जैसे तत्वों की सही स्थिति जान सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, आतंकवाद को लेकर भारत का रुख एकदम कड़ा और स्पष्ट है। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने ईंधन बचाने के लिए निजी वाहनों का उपयोग कम करने और सार्वजनिक परिवहन को प्राथमिकता देने की अपील की। निर्वाचन आयोग ने 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में SIR के तीसरे चरण की घोषणा की और प्रदेश में अगले 2 दिन में एक नए पश्चिमी विक्षोभ के असर से तापमान में मामूली गिरावट की संभावना। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप ऋतिका गुप्ता से बाड़मेर जिले की चिट्ठी सुनिए। इसके लेखक हैं जसवंत सिंह डूडी। बाड़मेर देश और दुनिया में थार नगरी के नाम से विख्यात है। सरहदी जिले बाड़मेर में इन दिनों रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ रही है। जबरदस्त उछाल के साथ जिले में दिन का पारा 48 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया। इस सीजन में 48.3 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ बाड़मेर देश में सबसे गर्म स्थान रहा। जिले में प्रचंड गर्मी के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त है। चिलचिलाती धूप और झुलसाने वाली लू के थपेड़ों के कारण लोग बेहाल हैं। दिन के अलावा रात में भी गर्मी से राहत नहीं मिल पा रही है। पंखे और कूलर बेअसर साबित हो रहे हैं। भीषण गर्मी के चलते वन्य जीव भी व्याकुल है। अंतर्राष्ट्रीय सरहद पर मुस्तैद बीएसएफ के जवानों को प्रचंड गर्मी के कारण भारी परेशानी हो रही है। गर्मी से बचाव के लिए लोग ठंडे पेय पदार्थों का सेवन करने सहित कई जतन कर रहे हैं। विभिन्न सामाजिक संगठनों की ओर से पक्षियों के लिए परिंडे लगाए जा रहे हैं। भीषण गर्मी के मद्देनजर जिले के सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों तथा आंगनबाड़ी केंद्रों में विद्यार्थियों के समय में बदलाव किया गया है। स्कूलों में कक्षा 8वीं तक के विद्यार्थियों और आंगनबाड़ी केंद्रों के विद्यार्थियों के लिए समय सुबह 7:30 बजे से 11:30 बजे तक निर्धारित किया गया है। जिले के प्रभारी सचिव डॉ. रोहित गुप्ता बीते दिनों जिले के दौरे पर रहे। इस दौरान वे विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल हुए। उन्होंने कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में पीने के पानी, बिजली, एलपीजी आपूर्ति, हीट वेव से बचाव और विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि गर्मी के मौसम को देखते हुए आमजन को राहत पहुंचाने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं समय पर सुनिश्चित की जाए। उन्होंने सरकारी जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अस्पताल में उपलब्ध चिकित्सा सुविधाओं, दवा वितरण व्यवस्था

0: और मरीजों को दी जा रही सेवाओं का जायजा लिया। प्रभारी सचिव ने ग्राम पंचायत रामसर का कुआं में विकास कार्यों का अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने ग्रेवल सड़क निर्माण कार्य और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत चल रहे कामों का जायजा लिया। श्री गुप्ता ने लाभार्थियों से संवाद करते हुए ग्रामीण विकास योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी चिन्मयी गोपाल ने पिछले दिनों बाड़मेर की नई जिला कलेक्टर के रूप में पदभार संभाला। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कार्यभार ग्रहण करने के बाद विभिन्न विकास योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के अवसर पर बाड़मेर में जसदीर तालाब स्थित शिव शक्ति धाम में जिला स्तरीय कार्यक्रम रखा गया। इस दौरान गुजरात के सोमनाथ मंदिर में आयोजित मुख्य समारोह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन का सजीव प्रसारण किया गया। इस बीच विभिन्न प्रस्तुतियों के माध्यम से देशभक्ति, सामाजिक समरसता और सांस्कृतिक एकता का संदेश दिया गया। इस अवसर पर उद्योग और वाणिज्य राज्य मंत्री के विश्नोई, चौहटन विधायक आदुराम मेघवाल और जिला कलेक्टर सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। बीते दिनों रेल मंत्रालय की ओर से बाड़मेर को विशेष रेल सेवा की सौगात दी गई। ये रेल सेवा बाड़मेर और हरिद्वार के बीच शुरू की गई है। इसके संचालन से हरिद्वार की धार्मिक यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं को सुगम और सुविधाजनक यात्रा का फायदा मिलेगा। ये रेल सप्ताह में दो दिन बाड़मेर से प्रत्येक सोमवार और गुरुवार और हरिद्वार से प्रत्येक मंगलवार और शुक्रवार को संचालित होगी। रेल सेवा की सौगात मिलने पर स्थानीय सांसद उम्मेदाराम बेनीवाल ने लोगों को बधाई दी। जिले में इन दिनों ग्राम रथ अभियान चलाया जा रहा है। राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए चलाए जा रहे ग्राम रथ अभियान में आमजन की सक्रिय भागीदारी देखने को मिल रही है। इसी कड़ी में अलग अलग ग्राम पंचायतों में जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। आधुनिक तकनीक से सुसज्जित एलईडी ग्राम रथों के साथ कला जत्थे आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। लोकगीतों, नुक्कड़ नाटकों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के जरिए आमजन को सरल तरीके से सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। जिले में पिछले दिनों हाली अमावस परंपरागत रूप से मनाई गई। इस पर्व को लेकर किसानों में खासा उत्साह देखने को मिला। हर साल वैशाख महीने की अमावस्या हाली अमावस के रूप में मनाई जाती है। ये किसानों का मुख्य पर्व है। इस अवसर पर किसानों द्वारा सांकेतिक रूप से खेतों की जुताई करते हुए सुकाल की कामना की गई। इस मौके पर हर घर में बाजरे का खीच और गुड़ की गलवोणी बनाई गई। इस बीच पारंपरिक खेल औंधल घेटों की धूम रही। इसके साथ ही बाड़मेर जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर हूँ। पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कहो आतंकवाद रा बारा माय भारत रो रुख एकदम साफ अर करडो। राज्यपाल हरिभाव बागड़े ईंधन बचावन सारू जनताओं खुदरी गाड़ियां काम ले उनो कम कर और सार्वजनिक परिवहन न बधावो देवन बाबत कहो। चुनाव आयोग वोटर लिस्टा रा पुनरीक्षण रा काम SIR रा तीजा दौर रो ऐलान कीनो। अर प्रदेश माय आवता दिना पारो थोड़ो उतरण रा आसार। समाचारों सागे मैं सुदर्शन नाहर। अरब समाचार विगतवार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कहो है कि आतंकवाद रे खिलाफ भारत रो रुख एकदम साफ है। वे आज नागौर जिला रा मेड़ता माय राव दूदारी मूरत रा अनावरण जलसा माय बोल रहा है। रक्षा मंत्री कहो कि भारत आतंकवाद रा सगा ने मुंह तोड़ जवाब देवन रो बूतो रखे है। वे कहो कि देश अब सरहद री हिफाजत तू जुड़िया साजो सामान रा मामला माए खुद रे पाण उबो फेर रियो है। रक्षा मंत्री राजस्थान री जमीन वीर भूमि बताता था का कहो कि देश री हिफाजत रा काम माए अठेरा सपूतां रो मोटो योगदान है।
2: राजस्थान के युवाओं को तो वैसे भी सेना से बहुत गहरा रिश्ता है। जब भी मैं कहीं जाता हूं सेवाओं के ऊपर, कोई न कोई राजस्थान का ऐसा बहादुर नौजवान अथवा अधिकारी कोई हमको मिल जाता है। यहाँ के घर घर से फौजी निकलते हैं। आज भी हमारी इस सेनाओं में शामिल होकर नागौर के युवा पूरी निष्ठा के

0: आप भारत की सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं। सरकार भी योजनाओं के मामले में उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही है। पिछले 10 वर्षों में भारत ने अपनी सुरक्षा नीति में ऐतिहासिक बदलाव।
1: राजनाथ सिंह महिला वारा मान समाज री तरक्की सारू जरूरी बतायो और मेड़ता माय मीरा महोत्सव सारू केंद्र सरकार री ओर 5 करोड़ रूपया देवन रो ऐलान कीनो। जलसा माय मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा कहो कि राज्य सरकार महापुरुषा री याद माय पेनोरमा बनार नुवी पीढ़ी ने इतिहास हूँ जोड़ रही है। वह कहो कि सरकार नौजवाना महिलावा गरीबा और किसाना रा भला सारू लगातार काम कर रही है।
2: कहते हैं कि हमारे 4 जातियां हैं, किसान, मजदूर, युवा, महिला। अगर इनका उत्थान होगा तो हमारे देश का उत्थान होगा, हमारे प्रदेश का उत्थान होगा। इस ऐतिहासिक आयोजन में प्रदेश के हजारों किसान और पशुपालक उसमें भाग लेंगे। कृषि विशेषज्ञ, वैज्ञानिक, तकनीकी जानकार, कृषि पंचकरण उद्योगपति सभी उसमें आने वाले हैं। हम चाहते हैं कि हमारे हर किसान का भला हो, हमारी माता बहने भी आगे बढ़े। इसके लिए लगातार हमारी सरकार नवाचार करते हुए हम काम कर रहे हैं। हमारी केंद्र और राज्य सरकार की योजना है, उनका आपको लाभ लेना है, क्योंकि बहुत सारी योजना हमारी केंद्र और राज्य सरकार की है, उनका लाभ जन जन तक कैसे पहुंचे, इसके लिए हम काम करते हैं।
1: इन पाछे रक्षा मंत्री जोधपुर माय पहली वाला उपराष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत री मूर्त रो अनावरण कीनो। रातानाड़ा सर्किल माथे राखी जिया जलसा माय मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ही मौजूद रहा। इस मौके श्री सिंह भैरव सिंह शेखावत ने भारत रा लोकतंत्र रो चाल तो फिर तो विश्वविद्यालय बताता था का कहो कि वारी जिंदगी जन सेवा और सादगी री बेहतरीन मिसाल है। इस मौके मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा कहो कि भैरव सिंह शेखावत सियासत ने सेवा रो जरियो बनायो। लाडला दिना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कान्यू करीची अपील पाछे राज्यपाल हरिभाव बागड़े ईंधन बचावन रा मकसद वारा आधिकारिक काफिला माय गाड़ियां री तादाद कम करन रा हुकम दीना है। राज्यपाल आज जयपुर हवाई अड्डा ओढ़ी जाती बगत आगे चालन वाली गाड़ी, एम्बुलेंस और दमकल काम नी लीनी। श्री बागड़े जनता हुई खुदरी गाड़ियां कम काम लेवन सागे सार्वजनिक परिवहन ने बधावो देवन री अरज कीनी। काल अलवर जिला माय न्यारी न्यारी विकास योजनावां जनता ने सौंपण रे मौके राख्या जावण वाला कार्यक्रम माय केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, अश्विनी वैष्णव और मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ही वर्चुअल तरीका जुड़ेला। इस दौरान भिवाड़ी माय इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट री शुरुआत करी जावेला। इसा गई सरे खुर्द पाइप लेन और टपूकड़ा री सरकारी स्कूल माय नुआ शैक्षणिक ब्लॉक रोई उद्घाटन करियो जावेला। ईंधन बचावन रे बारा माय जाग जगावन सारू पाली माय जिला कलेक्टर रविन्द्र गोस्वामी और SP मोनिका सेन आज पैदल चाल और दफ्तर पुग्या। जिला कलेक्टर सप्ताह माय एक दिन पैदल या साइकिल दफ्तर जावन रो फैसलो कीनो है। नई दिल्ली माय 1 और 2 जून ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी री सदारत माय पहलो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस IBCA सम्मेलन रखियो जावेला। इनरी तैयारियां सिलसिला माय के शासन गिर माय लॉयन स्पीशीज यादव कहो कि IBCA रो मकसद बाघ, जगुआर और प्यूमा सरीखा, बिल्ली तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर और प्यूमा सरीखा बिल्ली प्रजातिरा मोटा जिनावरा ने बचावन माथे विचार करनो है। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल आज बीकानेर जिला रासुजान देसर री 40 सरकारी स्कूला माय स्मार्ट बोर्ड और फर्नीचर दीना। हुडकोरी ओरों करीब 1.25 करोड़ रूपया खर्च मुहैया कराई जा आ साधनाओं करीब 15,000 विद्यार्थियों ने फायदो फैला। श्री मेघवाल स्कूल माय पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नियम बनवाई जा नुआ कमरा और लाइब्रेरी रोई उद्घाटन कीनो। राज्य माय पड़ रही जोरदार गर्मी बीच जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री कन्हैया लाल चौधरी अहलकारा ने पानी री परेशानी वाला हल्का माय टैंकरा रे जरिए लगातार पानी री पूर्ति तय करावन रा हुकम दीना है। वह आज भीलवाड़ा कन्ने मंडल विधानसभा हलका माय पीवन रा पानी जुड़ी करोड़ा रूपया रा खर्च वाली न्यारी न्यारी परियोजनावा रा काम री नींव रखी और पूरा व्या काम जनता ने सौंपया।

ई मौके वे कहो कि प्रदेश में पानी की व्यवस्था न चोखी बनावन सारू सगला जरूरी जतन करया जा रहा है। समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रहा हो। निर्वाचन आयोग आज वोटर लिस्टा रा विशेष गहन पुनरीक्षण SIR रा तीजा दौर रो ऐलान कर दिनो। 16 राज्यां और केंद्र रा राज वाला 3 प्रदेशां में ओ अभियान चलायो जावेला।

0: ऐलान कर दिनो। 16 राज्यां और केंद्र राज वाला 3 प्रदेशां माए ओ अभियान चलायो जावेला। प्रदेश माए जनगणना 2027 रा तहत डिजिटल स्वगणना रो काम चाल रियो है। पाली जिला माए देसुरी ब्लॉक रो तिखी गांव स्वगणना पूरी करण वालो पहलो गांव बन गयो है। अतिरिक्त जिला कलेक्टर डॉक्टर बजरंग सिंह आ जानकारी दीनी। वे बतायो के गांव वाला शिक्षक उमेश कुमार मेवाड़ा का न्यू तकनीकी जानकारी हासिल कर मोबाइल जरिए खुद पंजीकरण कीना। गृह मंत्री अमित शाह कहो है कि राष्ट्रीय आपदा मोचन बल NDRF 20 साल रा कम बगत माए जनता रो भरोसो जीत लीनो है। वह आज गाजियाबाद माए NDRF रा राष्ट्रपति ध्वज समारोह माए बोल रहा है। गृह मंत्री कहो कि देश माए कणी ठौड़ आपदारी सूरत माए NDRF री मौजूदगी लोग सुरक्षित महसूस करे है। वह कहो कि किणी सशस्त्र बल ने राष्ट्रपति ध्वज नवाजनो वांसारू माथो ऊंचो करण री बात वे है।
1: NDRF को राष्ट्रपति निशान का सम्मान दिया गया, वो हम सब के लिए गौरव और प्रतिष्ठा की बात। ये सम्मान NDRF के समस्त बल के सेवा साहस शौर्य और समर्पण के संचित गुणों का सम्मान है। 20 साल के कम अंतराल के अंदर आपदा बचाव के क्षेत्र में भारत को वैश्विक नक्शे पर रखने का काम NDMA और NDRF ने किया है।
0: अरे मौसम, प्रदेश में पारो थोड़ो उतरण रा आसार है। आज और कल बीकानेर जयपुर और भरतपुर संभाग और शेखावाटी हल्का माए जोरदार बायरो बाजन सागे कठे कठे हल्की बरसात री संभावना है। इन पाछे 17 मई राज्य आतुणी हल्का माए पारो ओजू चढ़बा रा आसार है। प्रदेश लंकाऊ उगनी हल्का माए तापमान 44-45 डिग्री सेल्सियस रे आरएसआर रेवन री संभावना है। इन बीचे लाडला 24 घंटा माए राज्य माए कठे कठे बादलां री गाज और आंधी सागे बारिश हुई। मौसम केंद्र जयपुर रे मुजब लाडला 24 घंटा माए सबू बत्तो तापमान फलौदी माए 45.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज करी चियो। फौज माए भर्ती सारू ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस एग्जाम CEE 1-12 जून ताई फैला। प्रदेश रा 11 शहरां रा 32 केंद्रां माते वेवन वाली ई परीक्षा रा एडमिट कार्ड कालू आधिकारिक वेबसाइट डाउनलोड करिया जा सकेला। रक्षा जनसंपर्क अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल निखिल धवन आ जानकारी दीनी। वे बतायो कि अजमेर अलवर बीकानेर जयपुर और जोधपुर समेत प्रदेश रा न्यारा न्यारा केंद्रां माते अग्निवीर सिपाही फार्मा और धार्मिक शिक्षक सरीखा न्यारा न्यारा ओहदां सारू आ परीक्षा ली जावेला। भरतपुर रा केंद्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र री ओरों सिखावन शिविर लगार किसानां ने मृदा स्वास्थ्य कार्ड रे बारा माई जानकारी दीरी जी। अनुसंधान निदेशालय रा निदेशक डॉक्टर विजय वीर सिंह बतायो कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड रे जरिए किसान खेत री मिट्टी माए नाइट्रोजन फास्फोरस पोटाश और जैविक कार्बन सरीखी चीजा री ठा कर सके है। शिविर माए किसाना ने सरसों री उन्नत किस्मा मिट्टी री जांच जैविक खेती और बागवानी प्रबंधन रवारा माए विगतवार जानकारी दीरी जी। बुनकराओं जुड़ियो जयपुर ग्रामीण दफ्तर हथकरघा बुनकरा ने जिला स्तर रो नकद इनाम देवन सारू अर्जियां मांगी है। लाडला 3 साल हथकरघा बुनाई रो काम करन वाला बुनकर इनाम सारू अर्जी दे सके है। अर्जियां काल ताई जिला उद्योग केंद्र माए जमा कराई जा सके है। आखिर माए खास समाचार एकर फेरू सुन ली रहो। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कहो आतंकवाद रा बारा माए भारत रो एकदम साफ और करड़ो रुख। राज्यपाल हरिभाव बागड़े ईंधन बचावन सारू जनताओं खुदरी गाड़ियां काम लेवनो कम कर और सार्वजनिक परिवहन ने बधावो देवन बाबत कहो। चुनाव आयोग वोटर लिस्टाना पुनरीक्षण रा काम SIR रा तीजा दौर रो ऐलान कीनो। और प्रदेश माए आवता दिना पारो थोड़ो उतरण रा आसार। इसागे प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो फियो। मानो आगलो समाचार बुलेटिन काल सवारे 9 बजा हिंदी माए प्रसारित करियो जावेला। नमस्कार।

FM 102, 103.6 MHz और मीडियम वेव 212.3 मीटर अर्थात 1413 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं। शाम के 7 बज रहे हैं। अब किसान भाई बहन सुनेंगे अपना कार्यक्रम चौपाल।

करसान बन भाइयों, आपने चौपाल में आप देखो नत नई जानकारी ले रहा हूं चा, नया नया पावनों से बातचीत करा चा। करसान बन भाइयों, आज ई कड़ी में आपने चौपाल में पावना छे। आप जो सुरेंद्र कुमार चौधरी और आपको गांव छे केसुराय पाटन, जिला बूंदी का प्रभाड़ा छो। करसान बन भाइयों, ये छे प्रगतिशील किसान और यानी

0: खेती किसानी का क्षेत्र में कैसे प्रगति करी, कहीं कहीं तो यहाँ के समस्या आई, कहीं यहाँ समाधान करियो, और आज ये बढ़िया आर्थिक स्थिति मजबूत में कैसे पूछा, तो यहाँ को आपन जो है खेती बाड़ी को आज अनुभव जानना। तो सुरेंद्र कुमार चौधरी साहब, आपको माँ की चौपाल में घणो घणो स्वागत है। राम राम साहब।
1: राम राम साहब, सभी किसान भाइयों को हाथ जोड़ के राम राम साहब।
0: अच्छा चौधरी साहब, सबसे पहले तो आप ये बताओ, आप कहाँ था पढ़े लिखे जी भाई?
1: मैं बीए सेकंड ईयर कर रखी है सर।
0: अच्छा, और कतरी की उम्र होगी जी भाई आपनी?
1: उम्र 47 होगी।
0: अच्छा, तो आप केसुराय पाटन में कतरा साल से रह रहे जो?
1: मैं 2009 से आ रहा हूँ, 17 साल होगी मेरे यहाँ रहते हुए।
0: अच्छा, कतरी बीघा जमीन जो आपने?
1: 36.5 बीघा जमीन मेरे पास है खेती की।
0: अच्छा अच्छा, तो अब आपने जो 36.5 बीघा जमीन आपने बताई, तो मैं कहीं कहीं कर रखे जी भाई?
1: मैंने अब 2 बीघा में तो भिंडी कर रखी है और सारी हकाई जुताई करके कंप्लीट कर रखी है। आगे फसल चक्कर के हिसाब जैसे भी बारिश होगी, मैं मक्का भी करता हूँ, मूंग भी करता हूँ और चावल भी लगाता हूँ। डायवर्ट 3 भाग 3 हिस्से बना रखे हैं फसल चक्कर के हिसाब से।
0: अच्छा, जैसे आपने आभार की कि भाई मैंने आभार हकाई जुताई कर दी बढ़िया, तो अबार जो हकाई जुताई कर रहे तो किसान है उनको काई फायदा मिला चीज भाई?
1: अब हकाई जुताई सभी किसान भाइयों से मेरे निवेदन है भाई, हकाई गहरी जुताई करें। हमारे किसान भाई क्या करते, नोड़ाइयों को आग लगा देते हैं।
0: अच्छा,
1: सबसे मेन प्लस पॉइंट यही है किसानों के लिए, नोड़ाइयों को जलाते
0: हैं। इनको काई नुकसान होते?
1: इससे अपने को सारा नुकसान है अपने, एक तो खेती हार्ड होती है, आप कहीं भी आग लगाओगे जमीन वहां हार्ड हो जाएगी, आप कभी भी देखना। दूसरी बात, उसमें अपने जो किसान मित्र कीट होते हैं बहुत से, वो जल जाते हैं।
0: अच्छा,
1: और फिर ये नोड़ाइयों को अपन हाक के उसमें छोड़ते हैं तो धीरे धीरे धीरे अपने ये गिंडार होते कीड़े मकोड़े उनको खा के पिंगड़ाते हैं। केचुआ खाद ऑटोमेटिक बन जाता है उसमें जमीन के अंदर,
0: है ना? देखो
1: हाँ, उससे
0: धीरे धीरे
1: धीरे
0: खाद बन जाओ,
1: केचुआ खाद बन जाता है धीरे धीरे। और मेन तो अपने किसान भाई क्या करते हैं भाई, एक हकाई के लिए उसको खेत को प्लेन करते हैं जड़ा के, जबकि मेरे किसान भाइयों से है कि 2 हकाई करके उसको, अगर भाई नोड़ाइयां भी रहती है धान में दिक्कत आए तो उसमें हल्का सा पानी छोड़ दो।
0: अच्छा,
1: क्या होता है नोड़ाइयां एक पानी छोड़ते ही 8 से 10 दिन में अपना ऑटोमेटिक गल जाती है, उसका चूरा हो जाता है।
0: हाँ ना, देखो
1: हाँ। अब किसान भाइयों से कहते हैं कहते यार डीजल महंगा हो रहा है, महंगाई हो रही है, खर्चा बढ़ रहा है, इसलिए वो क्या करते हैं, हकाई लगाई, एक हकाई करी खेत में और डायरेक्ट धान और देते हैं, अभिजाई कर देते हैं।
0: अच्छा अच्छा,
1: जबकि एक महीना अपना खेती को गहरी जुताई करके छोड़ना चाहिए।
0: हाँ ना, देखो अब बात आपने की कि भाई मैं भिंडी भी करूँ छू, लौकी भी करूँ छू, मक्का भी करूँ छू, तो ये जो फरती जो फसल आप लो छो, तो इनको फायदा आप तक कायम मिले जी भाई?
1: मतलब साहब, मैंने 2009 में जमीन ली थी तो जमीन इतनी हार्ड थी कि उसमें हल नहीं लगा।
0: अच्छा,
1: धान बोबो के एक धान और गेहूं, धान और गेहूं, तो मैंने आने के बाद उसमें फसल चक्कर अपनाया।
0: अच्छा,
1: एक साल मैंने आरेड़ करी, दूसरी साल मैंने कपास करी, तीसरी साल मैंने तिल करे,
0: अरे वाह,
1: चौथे साल मक्का करे, मतलब हर साल फसल चक्कर कर करके आज मेरी जमीन ऐसी है कि आपको कंट्रोल बांधना पड़ेगा,
0: बढ़िया भुरभुरी होगी,
1: भुरभुरी होगी, कोई कह नहीं सकता, सोना की तरह हो रही है। आप बीज को बखेर दो, बोना नहीं बखेर दो, सोना उगलती है
0: ना, देखो, और सोंधी सोंधी खुशबू भी आ जाती जमीन जब
1: हकाई होती है जब,
0: है ना। अच्छा, तो आपको जो ये अनुभव है तो ये आपने कहां से सीखो?
1: अजी ये जैसे बाबूजी वगैरह हरियाणा में हमारे थे, वो फसल चक्कर वो कहते हैं भाई 100 बा 1 पाटक बोलते हैं ना, भाई जितनी हकाई करोगे उतना ही खेत सुत रहेगा।
0: हाँ,
1: जबकि आजकल वाले क्या कहते हैं, जितना सेब बोओगे ना
0: हाँ,
1: उतना ही बढ़िया, नहीं, जितनी जमीन में ताकत हकाई से आती इतनी किसी में नहीं आती।
0: हाँ ना, देखो
1: हाँ।
0: अच्छा, हकाई से कैसे ताकत आती जी भाई?
1: हकाई से ये ताकत आती है साहब, देखो जमीन के सारे स्रोत खुलते हैं। भाई जमीन के स्रोत सारे खुलेंगे, अपन पानी पिलाएंगे वो नीचे जाएगा,
0: बिल्कुल
1: खाद डालेंगे वो नीचे जाएगा,
0: जड़ाता ही जाओगे,
1: मतलब बीज ऊपर बाद में आएगा, नीचे जड़े चलेंगी।
0: सही बात,
1: अपन यहाँ क्या सोचते हैं अपन किसान भाई, मैं ऊपर घेर दिया, ऊपर तो पेड़ आ गया, अपने नीचे जड़ विकास नहीं करी। इस साल गेहूं की पैदावार का कारण यही रहा है,
0: और जितनी जड़ मजबूत होगी उतरे अपन ऊपर भी फल बढ़िया मजबूत होगा। अच्छा, और ऑक्सीजन भी बढ़िया जाए,
1: ऑक्सीजन बढ़िया मिलेगी भाई नीचे, अगर अपना पानी नीचे समाएगा तो बढ़िया काम करेगा, स्रोत खुले रहेंगे तो ऊपर पानी पिलाएंगे तो जल्दी बाहर आएगी।
0: अच्छा, नरा किसान तो गजे के खेती बाड़ी तो घाटा को सौदो
1: नहीं, अगर लगन से करे।
0: अच्छा,
1: मैं कहता हूँ लगन से करे तो 40 बीघा जमीन है तो आज किसान नौकरी वाले को फेल कर रहा है।
0: हाँ ना, देखो
1: हाँ। लगन से करे,
0: लगन से करे
1: हाँ।
0: अच्छा,
1: खुद देख रेख स्वयं करे, खेत में जाए भाई, अपन तो ये मानते हैं कि किसान को एक बार खेत में जरूर घूमना चाहिए, चारों मेर पे जाना चाहिए।
0: अच्छा हाँ। बहुत बढ़िया चौधरी साहब, और माना सुनी जी आपने देखो कपास में भी जो हाथ आजमाए जो
1: हाँ साहब, मैंने कपास भी करी थी 2014 में।
0: अच्छा।

0: बारिश गिर गई, शुरू में पूछ पूछ के कृषि विभाग वालों से संबंधित करके उनको बूझ बूझ के दवाइयां डाली, दो स्प्रे करी, कपास ही बढ़िया हुई, पर यहाँ उसको तोड़ने में दिक्कत आई, परेशानी आई, फिर बाद में बेचने में परेशानी आई।
1: अच्छा, पर यूं फसल तो बढ़िया।
0: कपास के बाद आप गेहूं के यकीन करोगे 9.5 क्विंटल बीघा के बैठे है
1: ना। हाँ। और कहीं बाबू बगीचे जी भाई
0: कपास बिकती जब 5100 की समथिंग।
1: अच्छा,
0: तब तो आजकल तो ज्यादा रेट है, 7000 के समथिंग जा रही होगी।
1: कैसी किस्म लगाई थी आपने?
0: मैंने तो सर हरियाणा से बीज मंगाया था।
1: अच्छा,
0: यह अपने तो अवेलेबल ही नहीं था, वहां से रिश्तेदार के थ्रू बीज आया था, उनके पहले प्रैक्टिकल किया था।
1: तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपने एक नवाचार करियो, अठी हाड़ोती में कपास की फसल लगाई और बढ़िया हुआ आपने पैदावार ली।
0: पैदावार बढ़िया
1: है ना। हाँ। तो धीरे धीरे जब आप करेगा तो आसपास का जो तोड़ वाला वो भी सीख जाओगे भाई, इन्हें अच्छे तोड़े जाओ जा।
0: वो सभी करे ना साहब, सभी किसान भाई करे ना, तो दिक्कत नहीं आती।
1: हाँ,
0: एक करता है तो दूसरा किसान कहता है ये नई फसल कहाँ से उठा लाया।
1: नहीं तो पर आपता ही चौधरी साहब, आपता ही देख भी तो सीखेगा ना पड़ोसी किसान, कहना यार चौधरी साहब बढ़िया फायदा में जा रहे थे तो आपने भी देखो कर सका जा। तो यह बहुत अच्छी बात है। अच्छा, इनके अलावा जो आप जैसे खेती बाड़ी तो करो चो, साथ साथ पशुपालन भी आप करो चो?
0: हाँ, पशुपालन अपना एक साइड बिजनेस है साहब।
1: अच्छा, कतरी गाया भैंसा चाहिए? अपना
0: 4-5 भैंसे है, बढ़िया वाली नस्ल वाली भैंसे रखते हैं, दो गाया रखते हैं, 2-3।
1: कैसी कैसी नस्ल की चाची भाई?
0: नस्ल अपनी हरियाणा की मुर्रा नस्ल की भैंसे है साहब।
1: अरे वाह साहब। अच्छा चौधरी जी, ये गाया भैंसा कतरो दूध देते हैं अपना?
0: एक भैंस मिनिमम एक टाइम का 7 लीटर।
1: अच्छा, अबार देखो गर्मी को टर्म छे और तो अबार विशेष तौर से खान पीन पे या का आवास पे कहीं व्यवस्था कर रखी चाप?
0: खान पीन पे हरा चारा मैंने नहीं टूटने देता साहब, दोनों टाइम उधर रज का खत्म होता है, इधर सूट डाल देते अपन।
1: अच्छा,
0: मेन पशुओं को यह होता है भाई हरा चारा मिलना चाहिए। दूसरी बात, इस टाइम थोड़ा सा अपन खड़ को बंद करके, यहाँ अपने किसान भाई क्या करते, खड़ पे ज्यादा ध्यान देते।
1: हाँ हाँ,
0: अपन नाज पे ध्यान देते, गेहूँ खिलाओ।
1: अच्छा,
0: मतलब कोई ध्यान नहीं देता, गेहूँ तो अपने 25 रूपए किलो हो रहे और खड़ मिल रही है 50 रूपए किलो।
1: हाँ, दे दो आपने तो आधी रेट ही होगी।
0: आधी रेट
1: और फायदे भी ज्यादा।
0: फायदे भी ज्यादा है, पर उसमें मेहनत है भाई, उसको गेहूं को दलिया करके उबालना पड़ता है। अब वो खड़ को डायरेक्ट जानवरों को डालते
1: हैं, पर तो अपनी आंखें देखे बना रहे थे ना, खड़ में तो मिलावट भी आ सके।
0: खड़ में तो मिक्स ही आता है साहब, वो तो उसका तेल निकल के चूर आता है, आप समझो।
1: हाँ ना
0: भाई, उसका तो तेल तो निकल ही जाता है, वो तो खाली चूर है।
1: सही बात है।
0: अब वो जानवर को डालते तो दूध कैसे देगे जानवर, भूसा का काम करती है वो।
1: तो आप दड़ियो दो जो बढ़िया।
0: हाँ, दड़ियो।
1: और
0: दलिया में उसमें अपन चना भी मिक्स करते हैं, मेथी मिक्स करते हैं, जो भी मिक्स करते हैं।
1: अच्छा।
0: मक्का मिक्स करते हैं, 5-6 तरह का मिक्स करके जब बनाते हैं एक टाइम का, 2-3.5 किलो उबाल के खिलाते हैं।
1: अच्छा, एक पशु ना?
0: एक पशु में
1: 2-2.5 किलो।
0: 2-2.5 किलो
1: उबाल के
0: खिलाने से ये होता है कि वो अपना पाचन तंत्र भैंस जानवरों का बहुत बढ़िया रहता है।
1: अच्छा,
0: और उसके कोई साइड इफेक्ट नहीं होते।
1: अच्छा,
0: अगर उबाले हुए तो वो पेट में जाएंगे, फूलेंगे। भाई कच्चा भोजन, आप अपन कच्चा भोजन गेहूं को खाएंगे तो यूज पेट में थोड़ी बीमारियां पैदा करेगा,
1: गैस
0: बनेगी
1: ना देखो।
0: भाई अपन रोटी भी पका के खाते, आप एक कच्ची खा लो।
1: हाँ, तो
0: वही जानवर बोलते थोड़ी है।
1: बिल्कुल सही कह रहे थे चौधरी साहब, वाकई आपको बहुत बढ़िया अनुभव है। अच्छा, जो अबार आपकी जमीन है, अब कैसी फसल की आप तैयारी कर रहे हैं भाई?
0: इस बार मैं धान लगाने की कर रहा हूँ, क्योंकि पिछले साल मैंने मक्का थी।
1: अच्छा,
0: तो मैं हर साल फसल चक्कर करता हूँ
1: ना।
0: हाँ।
1: अच्छा,
0: इस बार धान भी ओर के, मैं किसान भाइयों कहता हूँ ओर के करो।
1: अच्छा, इनको कहीं फायदा देखियो?
0: इसको ये फायदा है कि भाई अपना खेत बन जाए, मतलब भारे पिन नहीं होता, अपन जैसे उसमें गेड़ बनाते
1: हैं
0: तो उसमें ले जिम जाती है।
1: अच्छा अच्छा,
0: और फिर उसमें देते के खाद डालते तो वो जमीन बंजर होती है, और एक तो पानी की बचत होगी अपनी।
1: सही बात है। अरुम पानी भरे आपने?
0: अरुम पानी 3 महीना पानी भरा ही रखना है।
1: हाँ, तो उसमें भी जमीन खराब हो रही
0: है। उसे भी जमीन खराब होती है।
1: सही बात है।
0: और इसमें मान लीजिए जैसे नमी बनाए रखे, हर 15 दिन में पानी दे दो, नमी बनाए रखेंगे तो उतना ही अंतर आ रहा। दूसरी बात, उसमें लागत ज्यादा लग रही है।
1: हाँ, सही बात। तो जिंदाड़ बीज आप छाटा जाए?
0: हाँ, से छाटना शुरू करा, 1 महीनों तो बीज का माय लागत लगाओ, आज स्प्रे करो, आज कुछ करो।
1: देख रेख गणी ज्यादा जो
0: देख रेख
1: और मेहनत भी बहुत।
0: इसमें सिर्फ एक, इसमें कचरे का ध्यान रखे किसान भाई।
1: अच्छा,
0: टाइम से इसमें कचरा निकाल दे तो ये उससे भी ज्यादा निकलता है।
1: अच्छा, तो पहले भी करे जोगा आपने?
0: हाँ, मैंने पिछले साल किसी मिलने वाले से करवाया था।
1: अच्छा, तो
0: वो उसके 7.5-8 क्विंटल निकला बीजेगा
1: है ना।
0: हाँ,
1: तो ये तो बहुत बढ़िया है।
0: बढ़िया निकला।
1: अच्छा, ये देखो ये 2-7-8 क्विंटल तो यही निकाल रहे थे जो आज से लगा रहे थे जो।
0: ये 8-9 क्विंटल निकाल रहे, 1 क्विंटल का अंतर आ रहा है।
1: तो उठी आपने खर्चो भी तो कम,
0: खर्चा कम, 3,000 रूपए बीघे का खर्चा कम लग रहा है।
1: और जमीन की उर्वरता क्षमता भी बनी,
0: जमीन वैसी पोली बनी हुई है अपनी।
1: तो फायदा वो सौदो तो यही है। बहुत बढ़िया चौधरी साहब। अच्छा चौधरी साहब, जैसे गलडो आप लियो और

0: के अलावा और किसी किसी फसल आप लो जो?
1: मैंने एक साल आरेड भी लगाई थी सर।
0: अच्छा
1: हाँ, उसका तो खैर पकड़े नहीं दिया, उसका तो मैंने खाद बढ़ाया था।
0: अच्छा अच्छा,
1: जैसे उम्मीद मिला 3-4 फुट होगी जब उसको अपने घसीटा से हाक दिया था।
0: अच्छा अच्छा,
1: एक साल मैंने मूंग बोई, उसका हरा खाद बढ़िया लगा था भाई, 45-1 दिन के उसको हाक दिया था।
0: अच्छा तो उनको फिर कहीं परिणाम आएगी भाई?
1: उसका ये हुआ, अपन देसी खाद तो सभी किसान भाइयों के पास पर्याप्त है नहीं।
0: हाँ,
1: क्योंकि अब धीरे धीरे जानवर कम होने लग गए, और भाई देसी खाद कहाँ से पूर्ति, अपन किसान भाई पेस्टिसाइड गिर रहे, यूरिया डीएपी,
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो सभी किसान भाइयों से तो मैं ये कहता हूँ भाई, अप्रैल में गेहूं खत्म हो जाता है, मूंग बो दो।
0: अच्छा,
1: 2-1 महीना 2 पानी लगते, वो हो जाए 1-1.5 फुट की, 40 दिन की 45 दिन की, जब दिखे भाई बारिश आ रही तो उसको काट दो, 8 दिन में उसका खाद बढ़ जाता है।
0: तो बहुत अच्छी बात है। इनका अलावा आप यो बताओ कि जो पूरी जो जमीन छ आपकी 36.5 बीघा, इमा जिसा एक साथ एक ही फसल करो छो या फिर टुकड़ा में लो छो?
1: अच्छा, 3 भाग बना रखे, एक में मक्का करेंगे।
0: अच्छा,
1: एक में अपने तिलन वाली, जैसे तिल कर दई,
0: अच्छा,
1: सोयाबीन कर दई, ऐसे।
0: अच्छा, इंदिरा किसान भाई लोग आएंगे एक ही फसल ले लेते, और आप करा जगह टुकड़ा में लेनी चाहिए, एक एक जैसे एक तिल ले ली, एक गल्लो कर ली, मक्का कर ली, तो फायदा होगा 100-200 किसी से?
1: देखो किसान भाई तो क्या करता है भाई, आज जमीन रहेगी कम, वो ये सोचता है गड्ढे को पक्की फसल समझता है।
0: अच्छा,
1: और मैं ये कहता हूँ भाई, तीनों फसल लगाओ, अगर तिल्ली नहीं भी हुई तो अगली फसल अपने बढ़िया होगी
0: जी,
1: और होगी बारिश, बारिश अगर कम हुई तो तिल्ली भी आज 10,000 क्विंटल करीब जा रही है।
0: हाँ,
1: अगर 1 क्विंटल भी निकलती, 1 क्विंटल तो मिनिमम निकलती निकलती है।
0: बिल्कुल सही बात,
1: ये मेरा अनुभव है, मैंने आज से 3 साल पहले तिल्ली करी थी, 5-1 बीघा 5 क्विंटल निकली थी मेरे।
0: और अपना खेती बाड़ी का डॉक्टर भी है कि भाई एक टुकड़ा में खेती न करो, ताकि एक में नुकसान ला जाओ तो दूसरो फायदा उसद हो जाओ। और जो खेती बाड़ी के साथ ये पशुपालन मतलब इनके साथ हो वो जरूरी है
1: भाई, इसलिए पशुपालन से अपना घर खर्च चल जाता है, खेती सेफ बच जाती है।
0: हाँ,
1: भाई आज जानवरों को लोग बाग न कहते, भाई मैं कहता हूँ जानवर एटीएम समझता हूँ मैं तो अपना।
0: हाँ बिल्कुल सही,
1: आज 500 खिला लो 1,000 काट लो। जो किसान भाई कहे भाई मेरे समझ में आया तो मैं फार्म पे बता दूंगा भाई कैसे जानवर रखा जाता है, भाई 500 खिलाओ 1,000 काट लो।
0: वाह साहब वाह,
1: भाई उसको हेर शेर करनी पड़ेगी भाई, इस दिन में अब गर्मी का टाइम है, किसान भाइयों से कहते हैं भाई 3 बार जानवरों को पानी पिलाओ।
0: हाँ,
1: पर आजकल क्या होता है, हाड़ियों के भरोसे रहते हैं, हाड़ियों ने पिला दिया ठीक है, नहीं पिलाया तो पिसाए, मैं तो बोलते थोड़ी है भाई, अपन गर्मी में अपनी बॉडी का ध्यान रखते तो जानवरों का भी रखो ना।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: 2 बार नहलाओ।
0: अच्छा अच्छा चौधरी साहब, आपने बहुत ही अच्छी अच्छी बात बताई। अब चालता चालता चौपाल में जो आप किसान भाई लोग सुन रहा है वहां कहता है आप सलाह का तौर पर कहीं खबर जाऊंगा
1: भाई, मैं तो सभी किसान भाइयों से सलाह तौर पर कहता चाहूँ तो भाई खेती को आज तकनीकी से करो।
0: अच्छा
1: भाई, एक फसल मत बनाओ, आजकल फल वाले भी पेड़ आ रहे हैं।
0: हाँ,
1: उसमें बागवानी में भी ध्यान दो भाई, गड्ढे में अपनी जमीन सारी बंजर हो रही है।
0: सही बात,
1: और लागत इतनी निकल रही है, जिस दिन अपन गड्ढा बेच दें उस दिन जीरो हो जाता है
0: ना देखो।
1: हाँ, तो सभी किसान भाइयों से बागवानी की तरफ ध्यान दो और फसल चक्कर अपनाओ, अपन एक सब्जी एक टाइम खाते दूसरे टाइम अपने बढ़िया नहीं लगती।
0: सही बात,
1: और कम फेस्टिवल यूज करो, आज पड़ोसी एक कट्टा दे रहा है तो दूसरा उसका 1.25 दे रहा है।
0: बिल्कुल,
1: जबकि जरूरत उसको 30 किलो की, दे रहे अपन 50 किलो, जबकि 20 किलो वर्थ जा रहा है।
0: बिल्कुल,
1: तो सभी किसान भाइयों से मेरा ये अनुरोध है फेस्टिसाइड का कम प्रयोग करे और अपना जैविक खाद बनाए, कैचवा खाद बनाए, और जैसे हरी खाद बनाए, अगर भाई कैचवा खाद भी नहीं बनाए तो भाई 2 महीना जमीन खाली रहती, तो इसमें हरी खाद का जोर दे, एक ढेंचा आता है, ढेंचा भी बहुत बढ़िया होता है, ढेंचा और मूंग का तो हरी खाद का मेरा प्रैक्टिकल है, इसकी इतना खाद कोई भी नहीं बनता जैसे ये उपजाऊ बनाते हैं।
0: अच्छा अच्छा बिल्कुल, सुरेंद्र कुमार चौधरी साहब, खेती बाड़ी में आपने अनुभव बताया, आप मां की चौपाल माया और अदरी अच्छी अच्छी बात आपने बताई, के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम
1: साहब। राम राम साहब।
2: देखो भाई बनाओ, अबार आप बातचीत सुन रहे थे, किसान का अनुभव और मारा जो मूल बात समझ में आई है, मैं उम्मीद छे कि आपका भी समझ में आई होगी कि देखो पहली चीज तो आपन नोड़ाया बाड़नी न छाजी है ना, और उमा अगर आप थोड़ा सो नोड़ाया पड़ी भी है तो थोड़ा सो पानी छोड़ दे तो खाद में परिवर्तन हो जाओगी, जिससे आपनी मिट्टी की शक्ति बढ़ेगी और उपजाऊ भी बढ़िया होगी। दूसरी चीज, आपन हमेशा एक ही प्रकार से खेती न करनी चाहिए, फसल चक्र जरूर अपनानी चाहिए, कारण फसल चक्र अपनाऊंगा तो बढ़िया खेती होगी, नाली नाली खेती होगी, एक ही एक खेती से जमीन भी अलग तरीका की नुकसानदायक हो जाओ। तीसरी चीज एक और बात है कि आपन केवल खेती पर ही निर्भर न रहो, अपना बागवानी भी करनी।

चाहिए, अपन पशुपालन भी करनी चाहिए। देखो, अगर आप बहुआयामी छो और बहुआयामी सु काम करेगा, अलग अलग तरीका सु काम करेगा, तो आपके पास पैदावार ज्यादा होगी, आपके पास आर्थिक स्थिति ज्यादा बढ़िया होगी। खबा को अर्थ यो छे कि अपन न केवल एक ही चीज पर निर्भर न रहो, अपन सब काम करना छे। यहाँ सुरेंद्र चौधरी जी ने बहुत बढ़िया जानकारी दी और यहाँ सु अपन बात कर रहे थे अपना रामू भाई, बहुत ही बहुत शानदार जानकारी थी, मजेदार जानकारी थी और आपना उपयोगी जानकारी थी। भाई बनाओ टर्म छे, टर्म को पूरा पूरा फायदा उठावा। आपन सुनो चाह रेखा राव की आवाज में यो प्यारो सो मीठो लोकगीत।

भाई बनाओ आयो ना देखो आनंद कितना मीठा स्वर में रेखा राव ने यो गीत गायो जिसु आपन अपनी भाषा में मांड घजा और आनंद भी आयो। भाई बनाओ एक शब्द छे ई नाम यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मार्केट यानी राष्ट्रीय कृषि बाजार। मारो खबा को अर्थ यो छे मु ज्यादा समझे छु बात या छे कि किसान और खरीदार के बीच में जो बिचौलिया हो छे वहां को अब कोई मतलब कोई ना। यानी कि हाड़ोते को किसान अगर महाराष्ट्र में अपनो माल अपनी खेती अपनी उपज ने बेच बुछाओ छे तो वो ऑनलाइन के जरिए आराम से बेच सके छे। और सबसे बड़ी बात है कि वहां को पेमेंट ऑनलाइन भी हो छे। मारो खबा को अर्थ यो छे कि जो बीच का जो लोग छे जो अपने ताई बीच में कई बार नुकसान उठानी पड़ जाओ छे उनको अपने ताई नुकसान न उठा

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम चौपाल, ये आकाशवाणी कोटा बूंदी का चंबल चैनल है। प्रस्तुत है राजस्थानी लोक संगीत का कार्यक्रम माटी के स्वर।

प्रिय श्रोताओं, एक विशेष सूचना। प्रत्येक शुक्रवार यानी दिनांक 15 मई 2026 को शाम 7 बजे से लेकर 7:30 बजे तक सजीव फोन इन कार्यक्रम का विषय होगा जैविक खेती में नए अनुसंधान। हमारे विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर भवानी शंकर मीणा, क्षेत्रीय निदेशक कृषि अनुसंधान केंद्र उम्मेदगंज। आप इस सजीव फोन इन कार्यक्रम में प्रसारण के दौरान विशेषज्ञ से बात कर सकते हैं। हमारे टेलीफोन नंबर है 07442941142। टेलीफोन नंबर एक बार दोबारा नोट कर लें 07442941142। प्रसारण समय शुक्रवार शाम 6 बजे से लेकर 7:30 बजे तक रहेगा।

राजस्थानी लोक संगीत में जिन आवाजों को भी आपने सुना, उनके नाम हैं रेखा राव, डीसी मदाना, अभिषेक, श्वेता रघुवंशी, प्रिया गुप्ता, केरी, दीपिका खांडेल, कोमल चौधरी, सोनू चरण भट्ट, रेपरिया बालम, अक्षत जाकर, हिम्मत वर्मा और कपिल जांगीर। और जिन्होंने संगीत दिया उनके नाम हैं अश्विनी पवार, विनय विनायक, ऋषि सिंह सिसोदिया, एम सुधाकर, शविका जिंदल। FM 102.6 MHz और मीडियम वेव 212.31 मीटर अर्थात 1413 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी कोटा बूंदी का चंबल चैनल है।

अभी आप सुन रहे थे लोक संगीत का कार्यक्रम माटी के स्वर, FM 102, 103.6 मेगाहर्ट्ज़ और मीडियम वेव 212.31 मीटर अर्थात 1413 किलोहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी कोटा बूंदी का चंबल चैनल है। आइए श्रोताओं, आपको लिए चलते हैं चित्रपट संगीत की ओर।

ये गीत हमने लिया है फिल्म दीवाना से। इसे गाया है अलका याग्निक और विनोद राठौर ने, लिखा है समीर ने और संगीत से तराशा है नदीम श्रवण ने।

फिल्म हेलो ब्रदर से हमने एक गीत लिया है कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज में। इसे लिखा है सुधाकर शर्मा और फैयज अनवर ने और संगीत से तराशा है हिमेश रेशमिया ने।

उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ में ये फिल्म, ये एक गीत हमने लिया है फिल्म महाराजा से। इसे लिखा है समीर ने और संगीत से सजाया है नदीम श्रवण ने।

कार्यक्रम चल रहा है चित्रपट संगीत और मैं हूं आपका रेडियो साथी अंकुश। अलका याग्निक और अभिजीत की आवाज में गीत हमने लिया है फिल्म जुदाई से। इस गीत को लिखा है समीर ने और संगीत से तराशा है नदीम श्रवण ने।

कविता कृष्णमूर्ति और उदित नारायण की आवाज में ये गीत हमने लिया है फिल्म राजा भैया से। इस गीत को लिखा है समीर ने और संगीत से तराशा है नदीम श्रवण ने।

कार्यक्रम चल रहा है चित्रपट संगीत और मैं हूं आपका रेडियो साथी अंकुश। ये गीत हमने लिया है फिल्म जान से। इस गीत को आवाज दी है उदित नारायण और साधना सरगम ने। इस गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीत से तराशा है आनंद मिलिंद ने।

का याग्निक और कुमार सानू की आवाज में गीत हमने लिया है फिल्म रंग से। इस गीत को लिखा है समीर ने और संगीत से तराशा है नदीम श्रवण ने।

चित्रपट संगीत का ये आखिरी गीत हमने लिया है फिल्म साजन चले ससुराल से। इस गीत को गाया है कुमार सानू और अलका याग्निक ने, लिखा है समीर ने और संगीत से सजाया है नदीम श्रवण ने।

0: आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से भी आप सुन रहे थे चित्रपट संगीत। 8:45 हो रहे हैं, थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार संध्या का आज का अंक।
1: समाचार संध्या के साथ मैं आकर्षिता सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स का लक्ष्य है बहुपक्षीय और समावेशी विश्व व्यवस्था। निर्वाचन आयोग ने 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया SIR के तीसरे चरण की घोषणा की। केरलम में कांग्रेस नेता VD सतीशन ने राज्यपाल से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश किया। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में बारिश, तूफान और बिजली गिरने से 70 से अधिक लोगों की मौत। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच पेचिंग में वार्ता। होर्मुज जल डमरू मध्य को खोलने पर बल दिया। और गांधीनगर में एशियाई सीनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में अजित नारायण ने पुरुषों के 71 किलोग्राम वर्ग में दोहरे कांस्य पदक जीते। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स बहुपक्षवाद को सशक्त बनाने, सतत विकास को बढ़ावा देने, आर्थिक लचीलापन बढ़ाने और अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था निर्मित करने के लिए मिलकर काम करेंगे। आज नई दिल्ली में श्री मोदी से मुलाकात करने आए ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों और प्रतिनिधिमंडल के प्रमुखों के साथ बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बीच सहयोग को आगे बढ़ाने और ग्लोबल साउथ के देशों की आकांक्षाओं को आवाज देने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरा है। ये बैठक नई दिल्ली में जारी ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक से अलग हुई। इससे पहले ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के अपने शुरुआती संबोधन में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है।
2: हमारी चर्चाओं का उद्देश्य एक ऐसा सतत विकास सुनिश्चित करना होना चाहिए जो समानता के सिद्धांतों तथा साझी लेकिन अलग अलग जिम्मेदारी की भावना पर आधारित हो। तकनीकी प्रगति वैश्विक परिदृश्य को बदल रही है। इसका उपयोग सुशासन और समावेशी विकास के लिए प्रभावी रूप से किया जा सकता है। आतंकवाद के खिलाफ सहयोग मजबूत करने पर सभी देशों की गहरी और साझा सहमति है।

0: मिनिस्टर्स।
1: बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री पारस्परिक हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली के 6 दिवसीय दौरे पर रवाना होंगे। 5 देशों की यात्रा के पहले चरण में श्री मोदी कल अबू धाबी के लिए रवाना होंगे, जहां वे व्यापार, निवेश, ऊर्जा सुरक्षा और उभरती प्रौद्योगिकियों पर केंद्रित उच्च स्तरीय चर्चाओं के लिए संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे। ये यात्रा दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों में तीव्र वृद्धि के बीच हो रही है। एक रिपोर्ट।
2: भारत के यूए को एक्सपोर्ट्स अब 36.63 बिलियन डॉलर से अधिक हो गए हैं, जिससे एमिरेट्स भारत का दूसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन बन गया है। प्रमुख एक्सपोर्ट्स में रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, सोना और डायमंड ज्वेलरी, इंजीनियरिंग गुड्स, गारमेंट्स, फार्मास्यूटिकल्स और प्रोसेस्ड फूड शामिल है। इम्पोर्ट्स की बात करें तो यूए से भारत आने वाले सामान में मुख्य रूप से क्रूड ऑयल, सोना और पेट्रोकेमिकल शामिल है। पारंपरिक व्यापार से आगे बढ़ते हुए अब दोनों देशों के बीच उच्च मूल्य वाले क्षेत्रों में भी सहयोग बढ़ रहा है, जिनमें सेमीकंडक्टर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रिन्यूएबल एनर्जी, फिनटेक, हेल्थ केयर, क्रिटिकल मिनरल्स और सिविल न्यूक्लियर एनर्जी शामिल है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबू धाबी।
1: निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान के तीसरे चरण की घोषणा कर दी है। अभियान 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में संचालित किया जाएगा।
3: इस चरण में आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, पंजाब, सिक्किम, त्रिपुरा, तेलंगाना और उत्तराखंड राज्य शामिल हैं। केंद्र शासित प्रदेशों में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव शामिल हैं। अभियान के दौरान 3,94,000 से अधिक बूथ स्तरीय अधिकारी 36,73,00,000 मतदाताओं के घर जाकर से संपर्क करेंगे। तीसरे चरण में हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख को छोड़कर पूरे देश में मतदाता सूची संशोधन का कार्य पूरा हो जाएगा। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
1: केरलम में आज तिरुवनंतपुरम में आयोजित कांग्रेस विधायक दल की बैठक में VD सतीशन को औपचारिक रूप से नेता चुना गया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता VD सतीशन ने आज शाम राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर से मुलाकात की और केरलम में नई सरकार बनाने के लिए औपचारिक रूप से अपना दावा पेश किया। कांग्रेस विधायक दल की आज शाम तिरुवनंतपुरम में बैठक हुई और उन्होंने VD सतीशन को अपना नेता चुना। इस बीच निवर्तमान मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन को CPM के विधायक दल के नेता के रूप में चुना गया। तिरुवनंतपुरम से स्मृति की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: तमिलनाडु में ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम AIADMK के महासचिव एडप्पा डी पलनीस्वामी ने आज राज्यपाल विश्वनाथ अरलेकर से मुलाकात कर उन्हें SP वेलुमणि के नेतृत्व वाले AIADMK विधायकों के गुट के संबंध में एक याचिका सौंपी। पूर्व मुख्यमंत्री ने राज्यपाल से इस मुद्दे को अध्यक्ष JCD प्रभाकर के समक्ष उठाने का अनुरोध किया। SP वेलुमणि के नेतृत्व वाले गुट के 25 AIADMK विधायकों ने OS मनियन द्वारा जारी व्हिप की अवहेलना करते हुए TV के सरकार के पक्ष में मतदान किया था। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने कहा है कि देश में कच्चे तेल, एलपीजी और प्राकृतिक गैस की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम उठाए गए हैं। नई दिल्ली में पश्चिम एशिया के घटनाक्रम पर अंतर मंत्रालयी प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की

0: संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि घरेलू एलपीजी आपूर्ति सुचारू रूप से जारी है।
1: भारत सरकार ने कई इफेक्टिव स्टेप्स लिए हैं जिसके चलते हमारे पास पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और नेचुरल गैस के पर्याप्त स्टॉक्स अवेलेबल हैं। हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रही हैं और एलपीजी प्रोडक्शन भी इंक्रीज किया जा चुका है। हमारे किसी भी रिटेल आउटलेट पर और एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप पर कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है। सब जगह पर नॉर्मल ऑपरेशन चल रहे हैं।
0: पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग सचिव मुकेश मंगल ने बताया कि भारतीय व्यापारिक जहाज हाजी अली ओमान के जल क्षेत्र में कल तड़की आग लगने से कथित तौर पर डूब गया।
2: एन इंडियन डो
3: सोमालिया से शारजाह जा रहे भारतीय जहाज हाजी अली पर 13 मई की सुबह ओमान के समुद्री क्षेत्र में हमला हुआ जिससे जहाज में आग लग गई और वो डूब गया। जहाज पर सवार चालक दल के सभी 14 सदस्यों को ओमान तटरक्षक बल ने सुरक्षित बचा लिया। भारत सरकार ओमान सल्तनत के अधिकारियों, भारतीय मिशन के अधिकारियों और संबंधित समुद्री एजेंसियों के साथ संपर्क में है।
2: इंडियन मिशन ऑफिशियल्स एंड रिलेवेंट मैरिटाइम एजेंसीज।
0: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 7 अपीलों के मद्देनजर अपने संबंधित मंत्रालयों और विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री की अपील के अनुरूप मंत्रालय स्तर पर 1 वर्ष तक सोने की खरीद न करने का निर्णय लिया गया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली सरकार राजधानी में कल से 90 दिनों तक मेरा भारत मेरा योगदान अभियान चलाने की घोषणा की है।
4: दिल्ली सचिवालय में पत्रकारों को संबोधित करते हुए श्रीमती गुप्ता ने कहा कि इस अभियान के अंतर्गत आवश्यक सेवाओं को छोड़कर दिल्ली सरकार के सभी कार्यालय सप्ताह में 2 दिन घर से काम करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार निजी क्षेत्र को भी सलाह जारी करेगी कि जहां भी संभव हो सप्ताह में 2 दिन घर से काम करने की नीति अपनाएं। वहीं सरकारी वाहनों में पेट्रोल डीजल की खपत 20% तक कम करने का लक्ष्य रखा गया है।
5: हर मंडे को हम मेट्रो मंडे के रूप में काम करेंगे जिसमें हम सभी मंत्री, हमारे सभी वरिष्ठ अधिकारी और कर्मचारी संभव हो मेट्रो से ऑफिस जाएंगे और वापस आएंगे।
4: इसके अलावा दिल्ली सरकार ने सप्ताह में 1 दिन नो व्हीकल डे मनाने की भी अपील की है। आरजू के साथ आकाशवाणी समाचार के लिए शित कुमार वैद्यान।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी

0: कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने आज बीजिंग में वार्ता की। व्यापार, प्रौद्योगिकी और क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर तनाव के बावजूद दोनों नेताओं ने टकराव के बजाय सहयोग पर बल दिया। व्हाइट हाउस के अनुसार दोनों नेताओं ने इस बात पर सहमति व्यक्त की कि ऊर्जा का निरंतर प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए होर्मुज जल डमरू मध्य खुला रहना चाहिए। चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने टकराव के बजाय सहयोग को बढ़ावा देने पर बल दिया और कहा कि चीन और अमेरिका को प्रतिद्वंद्वी नहीं बल्कि साझेदार होना चाहिए। श्री ट्रंप ने कहा कि अमेरिका चीन के साथ व्यापार और निवेश के अवसरों का विस्तार करने के लिए उत्सुक है।
2: अमेरिका और चीन के लोगों में कई समानताएं हैं। हम साहस और उपलब्धि को महत्व देते हैं। दोनों देशों के एकजुट होकर काम करने से हमें इन मूल्यों का उपयोग करके इस क्षेत्र और विश्व के लिए अधिक समृद्धि, सहयोग, सुख और शांति से भरे भविष्य का निर्माण करने का अवसर मिलेगा।
1: इस बीच अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने चीन को चेतावनी दी है कि ताइवान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई एक भयानक गलती होगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग की मुलाकात के बाद ताइवान के प्रति अमेरिका की नीति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। श्री रूबियो ने ताइवान

0: कई समानताएं हैं, हम साहस और उपलब्धि को महत्व देते हैं। दोनों देशों के एकजुट होकर काम करने से हमें इन मूल्यों का उपयोग करके इस क्षेत्र और विश्व के लिए अधिक समृद्धि, सहयोग, सुख और शांति से भरे भविष्य का निर्माण करने का अवसर मिलेगा।
1: इस बीच अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने चीन को चेतावनी दी है कि ताइवान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई एक भयानक गलती होगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग की मुलाकात के बाद ताइवान के प्रति अमेरिका की नीति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। श्री रूबियो ने ताइवान को लेकर चीन की धमकी पर कोई जवाब देने से परहेज किया है। इससे पहले राष्ट्रपति जिनफिंग ने चेतावनी दी थी कि ताइवान मुद्दे पर गलत तरीका अपनाने से चीन और अमेरिका के बीच टकराव और संघर्ष हो सकता है। ये टिप्पणियां दोनों देशों के बीच ईरान संघर्ष, ऊर्जा सुरक्षा और व्यापार जैसे व्यापक मुद्दों पर हुई बातचीत के दौरान आई। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में बारिश, आंधी और बिजली गिरने से 70 से अधिक लोगों की मौत हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिला मजिस्ट्रेट और संबंधित अधिकारियों को घटनास्थल का तत्काल सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया है। एक रिपोर्ट।
2: मौसम में आए अचानक बदलाव ने राज्य भर में भारी तबाही मचाई है। आंधी, भारी बारिश और बिजली गिरने से कई लोगों की जान चली गई। प्रयागराज में 21, भदोही जिले में 15, मिर्जापुर में 18, फतेहपुर में 9, बदायूं में 5 और बरेली जिले में 4 लोगों की मौत हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की और निर्देश दिया कि मुआवजा राशि, बचाव अभियान समेत अन्य कार्यों को सोशल मीडिया पर अपडेट किया जाए और सभी जिलों को हर 3 घंटे में हालात का अपडेट भेजने के लिए भी कहा गया है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: इस बीच मौसम विभाग ने कल अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरलम, माहे, दक्षिणांतरिक कर्नाटक, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारिककाल और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। गुजरात में एशियाई सीनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में आज अजीत नारायण ने कांस्य पदक अपने नाम किया। पुरुषों के 71 किलोग्राम वर्ग के क्लीन एंड जर्क और समग्र दोनों स्पर्धाओं में अजीत ने पदक हासिल किया। प्रतियोगिता में अजीत कोमल कोहर और ज्ञानेश्वरी यादव के बाद पदक जीतने वाले तीसरे भारतीय बन गए हैं। धर्मशाला में आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस और पंजाब किंग्स के बीच मुकाबला जारी है। पंजाब ने 17वें ओवर में 7 विकेट पर 140 रन बना लिए हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स का लक्ष्य है बहुपक्षीय और समावेशी विश्व व्यवस्था। निर्वाचन आयोग ने 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया SIR के तीसरे चरण की घोषणा की। केरलम में कांग्रेस नेता VD सतीशन ने राज्यपाल से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश किया। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में बारिश, तूफान और बिजली गिरने से 70 से अधिक लोगों की मौत। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के बीच पेचिंग में वार्ता। और गांधीनगर में एशियाई सीनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में अजित नारायण ने पुरुषों के 71 किलोग्राम वर्ग में दोहरे कांस्य पदक जीते। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: FM 102, 103.6 MHz और मीडियम वेव 212.31 मीटर अर्थात 1413 kHz पर हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं। आइए ले चलते हैं आपको फिल्म संगीत में बातों बातों की ओर।

आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत बातों बातों में, और मैं हूं आपका रेडियो साथी अंकुश। अगर रिश्तों में थोड़ी सी भी दूरी है तो ये समझना दोस्त कि बात करना बहुत जरूरी है। अगर रिश्तों में थोड़ी सी भी दूरी है तो ये समझना कि बात करना बहुत जरूरी है। जानबूझकर काम बिगाड़ने वाला कभी नादान नहीं होता, इसलिए बता दो जो दिल में है, क्योंकि कोई भी

भूलना चाहें तो भी भूल नहीं पाते, भूलना चाहें तो भी भूल नहीं पाते, आखिरी लम्हे क्यों हैं इतना तड़पाते, जब जानते हैं कि वो आपके बिना नहीं रह पाते, तो अपने दिल की आवाज आप उन्हें क्यों नहीं सुनाते। ये गीत हमने लिया है अरिजीत सिंह की आवाज में फिल्म ऑल इज वेल से। इस गीत को लिखा है शबीर अहमद ने और संगीत से तराशा है हिमेश रेशमिया ने।

मनाकर रूठ जाना उतना ही आसान है जितना रूठ कर मनाना। मनाकर रूठ जाना उतना ही आसान है जितना रूठ कर मनाना। आप दोनों को आप दोनों बखूबी जानते हैं, आखिर क्या कर लेगा ये जमाना। जमाने की बातों में आकर इतना दूर ना जाना कि वापस आने में लग जाए फिर एक जमाना। आतिफ असलम की आवाज़ में ये गीत हमने लिया है फिल्म जहर से। इसे लिखा है सईद कादरी ने और संगीत से तराशा है रूप कुमार राठौड़ ने।

0: बड़ा आसान है ये कहना कि अगर नहीं समझ आ रहा तो छोड़ दो। बड़ा आसान है ये कहना कि अगर नहीं समझ आ रहा तो छोड़ दो, नहीं दिल जगह बना पा रहा तो धड़कनों का रुख मोड़ दो। मैं कहता हूँ अगर आज भी तुम्हारा दिल 1% भी तुम्हें गलत और उसे सही कहता है तो दोस्त याद रखना, रिश्ते तोड़ने में 1 सेकंड और रिश्ते बनाने में, निभाने में वक्त लगता है।
1: ओ तेरे मेरे मिलन की।
0: ये गीत लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने गाया है और फिल्म है, फिल्म का नाम है अभिमान। इस गीत को लिखा है मजरू सुल्तानपुरी ने और संगीत से तराशा है एसडी बर्मन ने।

भाई जब तक सांस है तब तक आस है, जब तक सांस है तब तक आस है, तूफान को अंदर समेटने का हुनर सिर्फ समुद्र के पास है। उफनती नदियों का सैलाब फिर भी तन्हाई का वो आलम खुद अपनी ही परछाई हर बार धोता है। ये फिक्र है उस समुद्र की कि हर रात के सन्नाटे में आज भी उन लहरों का जिक्र होता है। आप सुन रहे हैं बफिन संगीत बातों बातों में और मैं हूं आपका रेडियो साथी अंकुश। ये गीत हमने लिया है किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ में फिल्म सागर से। इस गीत को लिखा है जावेद अख्तर ने और संगीत से तराशा है आर डी बर्मन।

0: कोई आंखों से बात करता है तो कोई अपनी मुस्कुराहट से, कोई आंखों से बात करता है तो कोई अपनी मुस्कुराहट से, डरता है दिल तो बस सिर्फ चाहत से। कोई आंखों से बात करता है, कोई अपनी मुस्कुराहट से, डरता है तो दिल बस सिर्फ चाहत से। कि चांद की अंगड़ाइयाँ कब बन जाती हैं आफ्ताब, कि चांद की अंगड़ाइयाँ कब बन जाती हैं आफ्ताब। कभी बैठिए साथ हमारे, हम बताएंगे आपको दिल लगी का दर्द क्या होता है जनाब।
1: जब से मोहब्बत हो गई है ये दुनिया।
0: ये गीत हमने लिया है फिल्म बॉर्डर से। इस गीत को गाया है सोनू निगम और अलका याग्निक ने। इस गीत को लिखा है जावेद अख्तर ने और संगीत से सजाया है अनु मलिक ने।

जो जाना चाहता है उसे जाने दीजिए, और जो आना चाहता है उसे आने दीजिए। जो आपके आंसू देखकर मुस्कुराता है उसे छोड़ें, जो आपकी मुस्कुराहट के लिए मुस्कुराता है उसे मुस्कुराने दीजिए। क्योंकि कहते हैं नज़र में आने के लिए भी कई बार दिखना पड़ता है, नज़र में आने के लिए भी कई बार दिखना पड़ता है, और किस्सों को कहानी बनाने के लिए कोरे कागज़ पर भी लिखना पड़ता है।

किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ में एक गीत हमने लिया है फिल्म आराधना से। इस गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीत से तराशा है SD बर्मन ने।

आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत बातों बातों में और मैं हूं आपका रेडियो साथी अंकुश। क्या करें, आप ही बताएं क्या करें। इंतजार करें क्या इनकार करें, चाहे तुम्हें बेहिसाब या दरकिनार करें, दुख तीरक पर हाथ रखना बहुत आसान है। इसलिए आने वाले वक्त के लिए खुद को तैयार करें, मत लगाइए आज किसी और से, सिर्फ खुद से प्यार करें।

ये गीत हमने लिया है फिल्म अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों से। इस गीत को गाया है उदित नारायण, अलका याग्निक ने, संगीत से तराशा है समीर ने और संगीत दिया है अनु मलिक ने।

बातें तो अक्सर आंखें किया करती हैं, बातें तो अक्सर आंखें किया करती हैं, होंठ तो महज शब्दों का जरिया है, ना टूट के बिखरने देंगे कभी, क्योंकि ये दिल नहीं मोहब्बत का दरिया है। किसी को झुकाकर या दबाकर प्यार हासिल करना कुदरत के खिलाफ है, प्यार खुद चल कर आएगा अगर तुम्हारा दिल पानी की तरह साफ है। अलका याग्निक की आवाज में एक गीत हमने लिया है फिल्म राज से, इसे लिखा है समीर ने और संगीत से तराशा है नदीम श्रवण ने।

तो कभी खाया है थोड़ा तीखा आपने, कभी खाया है थोड़ा तीखा आपने, और खाया है तो आज क्या सीखा आपने। अंदर से वही बहुत नरम दिल होता है जो बाहर से बहुत सख्त है। सिखाने वाले हम कौन होते हैं, सिखाने वाला तो वक्त है। वक्त रहते बात करनी शुरू कर दीजिए, अपने प्यार की ताकत उनमें इतनी भर दीजिए कि ज़मीन पर रहकर वो आपके लिए अपना आसमान बनाए, कि ज़मीन पर रहकर वो आपके लिए अपना आसमान बनाए, और ख्वाब में भी आपको कभी छोड़ कर ना जाए। फिल्म संगीत बातों बातों में ये गीत हमने लिया है फिल्म एलओसी कारगिल से। इस गीत को आवाज़ दी है अलका याग्निक ने और लिखा है जावेद अख्तर ने, संगीत से तराशा है अनु मलिक ने।

मोहब्बत की दहलीज पर दिल और दिमाग दोनों साथ आ ही नहीं भरते। मोहब्बत की दहलीज पर दिल और दिमाग दोनों साथ आ ही नहीं भरते। दिल और दिमाग दोनों साथ काम नहीं करते। अगर है प्यार दिल में तो बोल दो, क्योंकि प्यार करने वाले किसी से डरा नहीं करते। अलका याग्निक और बाबुल सुप्रियो की इस आवाज में हमने ये गीत लिया है फिल्म गुनाह से। संगीत से तराशा है आनंद राज आनंद ने।

वक्त हो चला है अब आपसे विदा लेने का। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए अपने रेडियो साथी अंकुश को। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत बातों बातों में। ये आकाशवाणी कोटा बूंदी का चंबल चैनल है। आइए श्रोताओं, आपको लिए चलते हैं विविध भारती मुंबई के कार्यक्रमों की ओर।

पेश खिदमत है छाया गीत। छाया गीत के सभी सुनने वालों को संगीता श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार। पारिजात की खुशबुओं से मुअत्तर ये हसीन रात, सहमे गुलशन में फूलों के हसीन साए, चांद सितारों की ये चिलमन, शोख नजारों की ये अंगड़ाइयां, तो धड़कनों की जुबानी मोहब्बत की कहानी अजब समा दिखाती है। सच कहूं बुझती नहीं ये शम्मा, जले जाती है।

निषाद हैं जो शाद भी हो जाएंगे, एक हल्के से तबस्सुम से आबाद भी हो जाएंगे। गुलशन में उनका आना कुछ ऐसा ही होता है, फूलों में खुशबू शाखों पे तराना होता है।

उनके आने से समा और भी पुरनूर होता गया, रात कटती गई, चांद और भी निखरता गया। क्या कहूँ, चलो उनसे ही पूछ लेती हूँ, ऐसी उलझन में कट न जाए ये तमाम रात। इश्क में दोनों तरफ कुछ ऐसा ही समा होता है, ये अफसाना मोहब्बत हरफों में कब बयां होता है।

धड़कनों की बताती है कि वो आए हैं। शाख गुल की लचक है या शानों पे जुल्फों की बिखरी हैं लटें। ये परेशानियां वो आंखों को झुकाने की अदा, अपने आप को खुद से ही छुपाने की अदा। यूं लगता है कि आज ये दिल संभल न पाएगा, शबनमी कतरों पे रात का नूर बरस ही जाएगा।

0: अंधेरे का इशारा समझो, अब तेरा दिल का जलाना होगा।
1: तुम बड़े को हो, मुझे जाने दो।
0: जा सकोगी?
1: मुझे जाना होगा।
0: जाओ।
1: छोड़ो।
0: नहीं
1: छोड़ो ना,
0: आज की रात तो दिल तोड़ो ना।

नमस्कार, इसे इस वक्त आप सुन रहे हैं छाया गीत। छाया गीत कार्यक्रम में आज बस इतना ही। दीजिए इजाजत संगीता श्रीवास्तव को। नमस्कार।

0: जैसे कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर 21 मई शाम 6:30 पर। लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
1: ये आकाशवाणी कोटा बूंदी का चंबल चैनल है। रात्रि के 11 बज रहे हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार, जिसे हम हमारे दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स बहुपक्षवाद को सशक्त बनाने, सतत विकास को बढ़ावा देने, आर्थिक लचीलापन बढ़ाने और अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था निर्मित करने के लिए मिलकर काम करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बीच सहयोग को आगे बढ़ाने और ग्लोबल साउथ के देशों की आकांक्षाओं को आवाज देने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरा है। यह बैठक दिल्ली में जारी ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक से अलग हुई। इससे पहले ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के अपने शुरुआती संबोधन में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है।
1: हमारी चर्चाओं का उद्देश्य एक ऐसा सतत विकास सुनिश्चित करना होना चाहिए जो समानता के सिद्धांतों तथा साझी लेकिन अलग अलग जिम्मेदारी की भावना पर आधारित हो। तकनीकी प्रगति वैश्विक परिदृश्य को बदल रही है। इसका उपयोग सुशासन और समावेशी विकास के लिए प्रभावी रूप से किया जा सकता है। आतंकवाद के खिलाफ सहयोग मजबूत करने पर सभी देशों की गहरी और साझा सहमति है।
0: प्रधानमंत्री मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली के 6 दिवसीय दौरे पर रवाना होंगे। 5 देशों की यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी के लिए रवाना होंगे, जहां वे राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता व्यापार, निवेश, ऊर्जा सुरक्षा और उभरती प्रौद्योगिकियों पर केंद्रित उच्च स्तरीय चर्चा करेंगे। यह यात्रा दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों में तीव्र वृद्धि के बीच हो रहा है। सरकार ने कहा है कि देश में कच्चे तेल, एलपीजी और प्राकृतिक गैस की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम उठाए गए हैं। नई दिल्ली में पश्चिम एशिया के घटनाक्रम पर अंतर मंत्रालयीय प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि घरेलू एलपीजी आपूर्ति सुचारू रूप से जारी है। निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान के तीसरे चरण की घोषणा कर दी है। अभियान 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में संचालित किया जाएगा। केरलम में आज तिरुवनंतपुरम में आयोजित कांग्रेस विधायक दल की बैठक में VD सतीशन को औपचारिक रूप से नेता चुना गया। विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता VD सतीशन ने आज शाम राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर से मुलाकात की और केरलम में नई सरकार बनाने के लिए औपचारिक रूप से अपना दावा पेश किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने आज बीजिंग में वार्ता की। व्यापार, प्रौद्योगिकी और क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर तनाव के बावजूद दोनों नेताओं ने टकराव के बजाय सहयोग पर बल दिया। चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने टकराव के बजाय सहयोग को बढ़ावा देने पर बल देते हुए कहा कि चीन और अमरीका को प्रतिद्वंदी नहीं बल्कि साझेदार होना चाहिए। श्री ट्रंप ने कहा कि अमरीका

0: इनके साथ व्यापार और निवेश के अवसरों का विस्तार करने के लिए उत्सुक है। इस बीच अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने चीन को चेतावनी दी है कि ताइवान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई एक भयानक गलती होगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग की मुलाकात के बाद ताइवान के प्रति अमेरिका की नीति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। इससे पहले राष्ट्रपति जिनफिंग ने चेतावनी दी थी कि ताइवान मुद्दे पर गलत तरीका अपनाने से चीन और अमेरिका के बीच टकराव हो सकता है। मौसम विभाग ने कल अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरलम, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। मौसम में आए अचानक बदलाव ने उधर उत्तर प्रदेश में भी भारी तबाही मचाई। आंधी, भारी बारिश और बिजली गिरने से कई लोगों की जान चली गई। प्रयागराज में 21, भदोही जिले में 15, मिर्जापुर में 18, फतेहपुर में 9, बदायूं में 5 और बरेली जिले में 4 लोगों की मौत हो गई। और खेलों में गुजरात में एशियाई सीनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में आज अजीत नारायण ने कांस्य पदक अपने नाम किए। पुरुषों के 71 किलोग्राम भार वर्ग के क्लीन एंड जर्क और समग्र दोनों स्पर्धाओं में अजीत ने पदक हासिल किया। प्रतियोगिता में अजीत, कोमल कोहर और ज्ञानेश्वरी यादव के बाद पदक जीतने वाले तीसरे भारतीय बन गए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Renuka. Prime Minister Narendra Modi has said that under India's chairmanship this year, BRICS will work together to strengthen multilateralism, promote sustainable development, enhance economic resilience, and build a more inclusive world order. Interacting with foreign ministers and heads of delegation of BRICS countries who called on Mr. Modi in New Delhi today, Mr. Modi said BRICS has emerged as an important platform for advancing cooperation among emerging economies and giving voice to the aspirations of the Global South. The meetings took place on the sidelines of the BRICS foreign ministers meeting, which is being held in New Delhi. Earlier, in his opening remarks at the BRICS Foreign Ministers meeting, External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar said that peace and security remain central to the global order.
2: Our discussions must advance sustainable development while upholding principles of equity and common but differentiated responsibilities. Technological advancements are reshaping the global landscape. It can be leveraged for good governance and inclusive growth. Peace and security remain central to the global order. Recent conflicts only underline the importance of dialogue and diplomacy. There is also a deeply shared interest in strengthening cooperation against terrorism.
1: The theme of the event is Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability. It draws inspiration from Prime Minister Narendra Modi's Humanity First and People-Centric Vision for BRICS. In this session themed on BRICS at 20, External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar highlighted that BRICS has expanded its agenda and membership in response to changing global realities while remaining focused on people-centric development and practical cooperation. The minister said BRICS is strong because it is independent and includes diverse countries. He said the group supports change and reforms, reflects a multipolar world, help countries reduce the risks by expanding partnerships, and believes in mutual respect and equal rights for all nations. Prime Minister Narendra Modi will arrive in United Arab Emirates capital Abu Dhabi tomorrow on the first leg of his five-nation visit. He will later visit the Netherlands, Sweden, Norway and Italy. Our West Asia correspondent reports India and the UAE are preparing to further expand one of Asia's fastest growing economic partnerships during high-level discussions between Prime Minister Modi and President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. The talks are expected to focus on trade, investment, energy security, and emerging technologies. India-UAE trade crossed the $100 billion mark in the financial year 2024-25, achieving the target set under the 2022 Comprehensive Economic Partnership Agreement or CEPA 5 years ahead of schedule. The Election Commission today announced Special Intensive Revision SIR Phase 3, which will be conducted in a phased manner in 16 states and 3 union territories. This phase will cover Andhra Pradesh, Telangana, Karnataka, Uttar

ये आकाशवाणी कोटा बूंदी का चंबल चैनल है। रात्रि के 10:11 हो रहे हैं। हमारी आज की सभा अब यहीं संपन्न होती है। कल प्रातः 5:55 पर आपकी सेवा में फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। शुभरात्रि। जय हिंद।

सबसे ज्यादा सुर्खियों में। इस दौरान हॉर्मुज और ताइवान पर भी चर्चा हुई है, लेकिन तेहरान पर नहीं। आखिर कैसे जिनपिंग ने ट्रंप की रणनीति को पलट दिया, उसी पर होगी आज की विशेष रिपोर्ट। लेकिन उससे पहले देखिए युद्ध के सुपरफास्ट अपडेट सुपर प्राइम टाइम सुपरफास्ट में। ताइवान के मुद्दे पर जिनपिंग ने ट्रंप को चेतावनी देकर बड़ा संकेत दिया है। ताइवान पर अमेरिकी दखल से दोनों देशों में टकराव बढ़ रहा है। ऐसे में जिनपिंग ने कहा कि ताइवान का मुद्दा ठीक से नहीं सुलझा तो तनाव बढ़ेगा।